मन्ना जय हेमंत कुमार सुलक्षणा पंडित की आवाजों से सजी ये रचना राहगीर फिल्म से आपने सुनी। 1969 रिलीज ये फिल्म गुलजार की लिखी रचना थी, हेमंत कुमार का संगीत था। साथियों, इस दुनिया में हमारे माँ पिता ही हमारे भगवान होते हैं, जिन्हें हम आंखें खोलते ही पाते हैं, हमारी परवरिश करते हैं वो। इन माता पिता को, हर माता पिता को नमन करते हुए सुनते हैं ये रचना।

आशा भोसले और साथियों की स्वरों से सजी ये रचना अभी आपने सुनी। मदन मोहन का संगीत था, राजा मेहंदी अली खां की लिखी रचना आपकी परछाइयां, ये था फिल्म का नाम जो रिलीज हुई थी वर्ष 1964 में।

लता मंगेशकर, हेमंत कुमार और साथियों के स्वरों से सजी ये रचना अभी आपने सुनी एक ही रास्ता फिल्म से। 1956 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। हेमंत कुमार का संगीत था, मजरूह सुल्तानपुरी की लिखी रचना थी।

मुकेश और लता मंगेशकर साथियों के स्वरों से सजी ये रचना शोर फिल्म से अभी आपने सुनी। आज के कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में सुनिए ये रचना।

आज के भोर सुहानी कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में ये रचना आप सुन रहे हैं चारुशीला शांताराम और साथियों के स्वरों से सजी। फिल्म का नाम फूल और कलियां। इसी रचना के साथ आज का भोर सुहानी कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अपने मित्र नीता अग्रवाल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 सितंबर सन 2026। प्रातः के 5:53 हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए आपको जानकारी दे देते हैं आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में।

अब से थोड़ी ही देर में 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे। अर्पण कार्यक्रम सुनिएगा 6:10 पर। 6:44:30 पर सुनेगा श्री रामचरित मानस गान। आज इसका अयोध्या कांड होगा भाग 47। संस्कृत में समाचार प्रसारित किए जाएंगे 6:55 पर। 7 बजे हिंदी में समाचार आप सुन सकते हैं। अंग्रेजी में समाचार होंगे प्रातः 7:05 पर। गोल्ड सुप्रभात, ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं प्रातः 7:10 पर। सुनेगा कार्यक्रम आज सवेरे। समाचार प्रभात के तहत हिंदी समाचार आप सुन सकते हैं प्रातः 8 बजे। मॉर्निंग न्यूज के तहत न्यूज इन इंग्लिश प्रातः 8:15 पर। उर्दू में खबरें सुनी जा सकती हैं प्रातः 8:30 पर। म्यूजिकल दिल लगी, ये कार्यक्रम सुनिएगा प्रातः 8:45 पर। हिंदी समाचार 9 बजे और अंग्रेजी में समाचार आप सुन सकते हैं प्रातः 9:05 पर। समाचारों के बाद म्यूजिकल दिल लगी कार्यक्रम जारी रहेगा। ये थी आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। गुजरात में प्रधानमंत्री वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह मेगा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की भी शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर चर्चा होगी। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण 11 सितंबर तक मुंबई में चलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कल गोवा पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने गोवा पुलिस की सेवा, व्यावसायिकता, साहस और अनुशासन की सराहना की। इससे पहले गृह मंत्री ने गोवा के पणजी में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 28वीं बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने कहा कि पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच अब कोई विवाद नहीं है। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ज़ेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत के स्थायी सीट की मांग का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक समाचार एजेंसी को दिए साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि भारत का आकार और वैश्विक महत्व एक विस्तारित सुरक्षा परिषद में इसके समावेश को आवश्यक बनाते हैं। उन्होंने कहा कि यूएनएससी का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भी भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध है। नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ज़ेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन की नई दिल्ली यात्रा से पहले ईरान ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग को गहरा करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने नई दिल्ली के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात को अलग करने और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की गई। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच दूरी घटकर लगभग 30 से 40 मिनट रह जाएगी। बयान में कहा गया है कि लगभग 15 किलोमीटर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने से ग्रेटर नोएडा गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में बारिश और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज से मध्यम वर्षा हुई। शीतल देवी ने विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में महिला कंपाउंड के व्यक्तिगत वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अहमदाबाद में आज सेमीफाइनल में शीतल देवी ने सरिता को हराया। खिताबी मुकाबले में शीतल का सामना कजाकिस्तान के एजेदा सेदान से होगा, वहीं कांस्य पदक मुकाबले में सरिता चीन

महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अद्भुत पराक्रम और शक्ति स्वरूप श्री हनुमान, जो बुरी बुद्धि को दूर कर अच्छी बुद्धि प्रदान करते हैं। मंगल की इस प्रभात आइए अर्पण करें सर्वप्रथम श्री हनुमान के चरणों में। मंगल की मुक्ता है आपके साथ।

संत कहते हैं कि शिव का अर्थ है वे जो नहीं है, ऐसी विशाल शून्य की गोद जिसमें से सृजन हुआ है, ऐसी असीम शून्यता जो अस्तित्व का आधार है, असीमता का बीज है, यही है महादेव, यही है शिव।

संत कबीर लिखते हैं, हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार। हारा तो हरि सो मिले, जीता जम के द्वार। जी हां, ये भक्ति का मार्ग है। यहां जो अपने आप को हार गया, वो सारा संसार जीत गया।

0: करते रहिए अर्पण, करते रहिए भक्ति और बनते रहिए आनंद के पात्र। 6:28 और ठीक 20 सेकंड हुए हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं अर्पण।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

गुरु है बड़े गोबिंद ते, मन में देख विचार, हरि सुमरे सौ बार है, गुरु सिमरे सौ बार। परमात्मा परलोक को सुधारते हैं और सद्गुरु लोक और परलोक दोनों को सुधार देते हैं।

दाता से जो जुड़ा हुआ है कर्म बुरा ना करता है, नेकी और भलाई वाले रस्ते पर पग धरता है। सत्य प्रभु से जुड़ने वाला सत्यता अपनाएगा, कभी नहीं वो भूल कर भी संग झूठ के जाएगा। निरंकार को याद है रखना, इसको ना विसराना है, तूने झूठे अहंकार को

मन में नहीं बसाना है। ऐसा काम किए जा बंदे जो सबको सुखदाई हो। कहे हरदेव, ऐसा मत कर जो आगे को दुखदाई हो।

जो प्रभु राम की शरण में चला गया, जिसने अर्पण कर दिया, उसने जीवन का सच्चा आनंद, जीवन का सच्चा अर्थ पा लिया है। लिखा गया है, जग उजियारा हो जाएगा, मन मंदिर के दीप जलाएं, अपने भीतर बसे राम को जानें, पवित्रता, सत्यता, ये सब पहचान लें। 6:44 और ठीक 25 सेकंड हो चले हैं। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर अब समय है श्री रामचरितमानस के पाठ का। आइए मिलकर श्रवण करते हैं।

वनवासी कोल भीलों के सौभाग्य से ही मानो श्रीराम का चित्रकूट आगमन हुआ है। उनके दर्शन पाकर सभी सनात हो गए हैं। वनवासियों का कहना है, हे नाथ, जहां जहां आपने चरण रखे हैं वे स्थान अपनी समस्त प्राकृतिक संपदा पशु पक्षियों समेत धन्य हो गए हैं। अपने निवास के लिए भी आपने अत्यंत उपयुक्त स्थान चुना है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप आनंदित रहेंगे। हम लोग सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं, हिंसक पशुओं तथा अन्य घातक प्राणियों से आपकी रक्षा करेंगे। आप हमें आज्ञा देने में संकोच न करें। हम आपकी सुख सुविधा के लिए निरंतर आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। जब से लक्ष्मण तथा सीता सहित श्री राम ने वन में निवास किया है, तब से ही ये स्थान मंगलदायक हो गया है। वृक्षों में फूल फल आने लगे हैं, उन पर लताओं ने मंडप तान दिया है। पशु पक्षी जगत नए उत्साह से जीवंत हो गया है। सभी आपसी वैर भाव त्याग कर एक साथ विचरण करने लगे हैं।

6:54 और ठीक 10 सेकंड हो चुके हैं। अभी आप श्री रामचरितमानस का पाठ सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल है। अब समय है संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में समाचारों का।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड का लोकार्पण भी किया जाएगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये विशाल परियोजना अब

0: तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की शुरुआत भी करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन पर चर्चा होगी। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपये से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल परिषद की बैठक में यह मंजूरी दी गई। बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को भी मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मैरीन गैस टर्बाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। वायुसेना की युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 98% खरीद भारतीय कंपनियों से की जाएगी। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अनिश्चितता के दौर में भारत और लग्जमबर्ग के बीच भरोसेमंद संबंध हैं। नई दिल्ली में लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल से मुलाकात के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और वित्तीय सहयोग संबंधों के प्रमुख क्षेत्र हैं। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुश्कन की नई दिल्ली यात्रा से पहले ईरान ने भारत को महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघी ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। 6G नेटवर्क के विकास और वैश्विक पहल में भारत अब अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। इस पहल का उद्देश्य 6G नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने अमेरिकी वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लटकनिक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने 6G के साथ सेमीकंडक्टर, AI और डेटा सेंटर के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात अलग होगा और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर संपर्क स्थापित हो सकेगा। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने बताया कि सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच दूरी घटकर लगभग 30 से 45 मिनट रह जाएगी। उत्तर प्रदेश में वर्षा और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में तेज से मध्यम वर्षा हुई। बरेली, एटा, शाहजहांपुर, बहराइच और लखीमपुर खीरी देश में सबसे अधिक वर्षा वाले 5 जिलों में शामिल हैं। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में भावना और पूजा का सामना चीन से होगा। भारत की पुरुष पैरा रिकर्व टीम फाइनल में स्लोवाकिया से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra today. In Vadodara, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth more than 35,000 crore rupees. More from our correspondent.
3: A major highlight of PM's visit will be the dedication of three key sections of West

हर सुबह दुनिया का निर्माण होता है नारंगी रंग के नीचे सूर्य की किरणों के साथ। रात की राख का जो ढेर है वो फिर से पत्तों में बदल जाता है। जी हाँ, पुनर्निर्माण आशा और ताजगी का संदेश लाई है गोल्ड सुप्रभात मंगल की मुक्ता के साथ।

जी हाँ, सुबह तो खूबसूरत होती ही है, और ऐसे में अगर हल्के बादलों के साथ सूर्यदेव कुछ ठिठोली कर लें तो फिर तो सुबह और खूबसूरत हो जाती है। हल्की धूप, हल्की छांव, हल्की हल्की सी बादल और हल्की हल्की सी बौछार। इस वक्त बहुत खूबसूरत मौसम है दिल्ली का, और अगर इस मौसम का आप भी आनंद उठाना चाहते हैं तो निकलिए घर से बाहर। आज का तापमान अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। फिलहाल आज तो बारिश की उम्मीद दिल्ली में कम दिखाई जा रही है। सूर्योदय हो चुका है सुबह 6:02 पर, और सूर्यास्त का समय है शाम 6:34 का। और सबसे पॉजिटिव बात इस वक्त पता है क्या है कि दिल्ली का AQI बहुत अच्छा चल रहा है। सोनिया विहार में इस वक्त केवल और केवल 63 दिख रहा है AQI। जब 2 digit में आ जाए ना तो समझ लीजिए कि बेस्ट टाइम है वर्कआउट करने का, एक्सरसाइज करने का और पार्क में जाके सैर करके आने का। पूसा रोड इस वक्त वायु की गुणवत्ता का स्तर है 56, पंजाबी बाग में यही है 59 और मंदिर मार्ग में है 60। हल्की हल्की हवा चल रही है, इस पुरवैया का आनंद लेते रहिए और गाते रहिए चुपके चुपके चल रही पुरवैया।

0: हाँ
1: या चुप रहूं
0: ना
1: दिल में मेरे आज क्या है
0: क्या है

7:28 और ठीक हुए हैं 10 सेकेंड। आप सोचते होंगे ना जनाब कि ये समय बार बार क्यों देखा जाता है, देखा नहीं जाता है तो किसी और से सुनकर बार बार याद क्यों कराया जाता है। वो इसीलिए कि ये जो चलती हुई सुइयां हैं ना, ये बताती हैं कि रवानगी बनाए रखनी चाहिए। ये बताती हैं कि आप रुक गए तो दुनिया नहीं रुकेगी, आप ही पीछे रह जाएंगे। और जनाब इसीलिए बैलेंस करना अपने जीवन को, अपने प्रतिदिन की कामों को बहुत ज़रूरी होता है। और ये बैलेंस कैसे होता है कि अपनी बुद्धिमत्ता पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा। जी हाँ, बहुत बड़ी बात कही किसी विद्वान ने कि अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना भी बुद्धिमानी नहीं होती। ये याद रखना बहुत ज़रूरी होता है कि सबसे शक्तिशाली भी कमज़ोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान भी गलती कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट चेतनता। जी हाँ, आप रहिए जागरूक, अपने आप को पहचानिए। ओवर कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस जो लोग रखते हैं वो परेशानी का कारण अपने लिए खुद खड़ा कर लेते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि बैलेंस के साथ इस जीवन को जीते रहें और खूब आनंद लेते रहें। फिलहाल मुक्ता आपसे लेगी इजाजत, क्योंकि अब समय हो चला है समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे का।

0: वाह क्या बात है, स्कूल चले हम। इस गाने को सुनते ही बचपन की वो सुबह, वो भारी बस्ता और दोस्तों के साथ का सफर आंखों के सामने तैर जाता है। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपका अपना पसंदीदा न्यूज मैगजीन कार्यक्रम आज सवेरे। श्रोताओं, जब एक बच्चा स्कूल जाता है तो वो सिर्फ अकेला नहीं पढ़ता, घर में भी पढ़ाई का माहौल बनता है, उसके साथ पूरा परिवार, आने वाली पीढ़ियां भी आगे बढ़ती है। साक्षरता की असली खूबसूरती ही यही है कि यह अंगूठे के निशान को दस्तखत में बदल देती है और इंसान को आत्मनिर्भर बनाती है। साक्षरता सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यह तो वो चाबी है जो हमारे सपनों के बंद दरवाजों को खोलती है। और आज विश्व साक्षरता दिवस पर हम सभी की कोशिश यही होनी चाहिए कि देश का कोई भी कोना ज्ञान की इस रोशनी से अछूता ना रहे। इसी संकल्प के साथ कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम आज सवेरे के आज के अंक में मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त जया भारती और मेरे साथ हैं रेनू कटारिया।
1: नमस्कार जया, एंड जया वेरी ट्रू, टुडे इज वर्ल्ड लिटरेसी डे। एंड हैव यू एवर इमेजिन जया व्हाट लाइफ वुड बी लाइक इफ वी कुड नॉट रीड और राइट, लाइक रीडिंग अ बुक, राइटिंग अ नेम, अंडरस्टैंडिंग एन इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और नोइंग आर राइट्स, ऑल ऑफ दीज आर मेड पॉसिबल थ्रू लिटरेसी। एंड एवरी ईयर 8th of September, दैट इज टुडे, इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड लिटरेसी डे टू रेज अवेयरनेस अबाउट द importance of literacy and education and to promote learning opportunities for everyone. Dear listeners, literacy is not simply the ability to read and write, it is the power to understand, make informed decisions, express ourselves and build a better future. An educated and literate person can transform not only their own life but also contribute to the progress of their family, community एंड कंट्री।
0: बिल्कुल, और इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस अपनी 60वीं वर्षगांठ मना रहा है। वर्ष 1966 में यूनेस्को के 14वें महासम्मेलन के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। इस वर्ष इसका थीम है पृथ्वी और समृद्धि के लिए साक्षरता। यह दिवस हमें साक्षरता की अब तक की यात्रा और उपलब्धियों पर विचार करने का अवसर देता है।
1: जी बिल्कुल, एंड ऑन दिस वर्ल्ड लिटरेसी डे लेट अस मेक अ प्रॉमिस टू हेल्प स्प्रेड द लाइट ऑफ एजुकेशन एंड सपोर्ट दोज हु आर स्टिल डिप्राइव्ड ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज व्हेन एवरीवन कैन रीड everyone can rise. Let us light the lamp of education and remove the darkness of ignorance. Happy World Literacy Day.
0: और अब आइए सबसे पहले रुख करते हैं देश और दुनिया की प्रमुख खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड का लोकार्पण भी होगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह विशाल परियोजना अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में, वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, हाथ में लेके जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: इसके साथ ही प्रधानमंत्री कई नई रेल और मालगाड़ी सेवाओं की भी शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम तकनीक, डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन पर चर्चा होगी।
1: Arunachal Chief Minister Pema Khandu yesterday inaugurated the State Agriculture Information Hub cum Farmers Hostel in Naharlagun. The Agriculture Information Hub cum Hostel is expected to serve as a one-stop facility for farmers, providing information on modern farming practices, schemes and accommodation for visiting farmers. On the occasion, the Chief Minister also flagged off Matasya E-Vahini vehicles and rickshaws aimed at boosting fish vending and marketing infrastructure and promoting clean and sustainable transport. spot for small traders and fish farmers. Speaking on the occasion, he said that Arunachal has immense potential in agriculture, horticulture and honey production. These policies will provide the roadmap to turn that potential into better livelihoods, stronger rural economies and a more prosperous Arunachal.
0: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात को अलग करने और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में चर्चा की गई। प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि इस सड़क से ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेस वे के बीच की दूरी घटकर लगभग 30 से 45 मिनट रह जाएगी। बयान में कहा गया है कि लगभग 15 किलोमीटर तक कनेक्टिविटी बढ़ाने से ग्रेटर नोएडा गंगा एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा।
1: Luxembourg Deputy Prime Minister and Foreign Minister Xavier Bettel has backed India's bid for a permanent seat in the United Nations Security Council, UNSC, saying the body must be reformed to reflect the realities of the present global order. In an interview with the news agency, Mr. Bettel said India's size and global importance make its inclusion in an expanded Security Council necessary. He said the UNSC could be expanded to include major countries that currently do not have a permanent role, citing India and Brazil.
0: 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में भारत अब अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। इस पहल का उद्देश्य 6G नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने अमरीकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने 6G के साथ सेमी कंडक्टर, AI और डेटा सेंटर के क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा की।
1: The 4th United Nations Climate Week has opened in Azerbaijan's capital Baku yesterday, weeks before COP31. Governments, financial institutions, businesses and climate experts have come together for a 5-day meeting being held till the 11th of this month to deliberate upon climate action, finance, adaptation and transparency. The discussions are also expected to feed into preparations for COP31, where governments will face pressure to strengthen climate plans and demonstrate progress under the Paris Agreement. Baku Climate Action Week 2026 is being held alongside the UNFCCC gathering, bringing together investors, businesses, civil society groups and other non-state actors.
0: और अब बात खेलों की। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती पेश करेगा। महिला पैरा रिकर्व टीम के फाइनल में भावना और पूजा का सामना चीन से होगा। पुरुष पैरा रिकर्व टीम फाइनल में हरविंदर सिंह और विजय सुंडी स्लोवाकिया से खेलेंगे। पैरा कंपाउंड पुरुष टीम फाइनल में श्याम सुंदर स्वामी और तोमन कुमार का मुकाबला इराक से होगा। वहीं मिक्स्ड टीम W1 फाइनल में स्वाति चौधरी और आदिल मोहम्मद नजीर अंसारी का मुकाबला चेकिया से होगा। और अब बात करते हैं महानगरों से जुड़ी खबरों का। तो सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली के समाचारों का। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने संपत्ति मालिक परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में हरिराम, पत्नी उर्मिला और बेटा महेश शामिल हैं। पुलिस के अनुसार इमारत का बिजली कनेक्शन हरिराम के नाम था, जबकि उसका प्रबंधन बेटा महेश देख रहा था। संपत्ति उर्मिला के नाम दर्ज थी। तीनों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने हरिराम और उर्मिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत, जबकि महेश को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बताया जा रहा है कि परिवार गुरुग्राम में रहता है और हार्डवेयर की दुकान चलाता है। रविवार को मरम्मत के दौरान दशकों पुरानी यह इमारत ढह गई थी, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली से एक और अपडेट है हमारे पास कि त्योहारों को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्रमुख खाद्य बाजारों में जांच अभियान तेज कर दिया गया है।

0: के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि अभियान के तहत करीब 2300 किलोग्राम खोया और मक्खन सहित अन्य उत्पाद जब्त कर नष्ट किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग को लगातार जांच करने और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।
1: Moving on to Chennai Metro, the first news. The Indian Air Force has taken a significant step towards strengthening specialized security and air-based ground defense training in the Defense Force with the inauguration of IAF Ground Defense College at the Air Force Station Avadi near Chennai. The college was inaugurated by Air Marshal S. Sivakumar, Air Officer in Charge Administration, on 7th of September. The first ground combat course has also been commenced at the newly established facility. The second news from Chennai Metro, a Malaysian Airlines flight MH156 en route from Kuala Lumpur to Jeddah made a safe emergency landing at Chennai International Airport on last evening following a technical failure mid-flight. All 186 passengers and crew on board the Airbus A330-200 are reported safe. And the last news that I have from Chennai Metro is IIT Madras has invited applications for its course on career guidance for students of classes 9 to 12, exposure to various fields to choose the right course. The Center for Outreach and Digital Education at IIT Madras is offering these courses in English and Hindi. Each course is an 8-week online learning combining pre-recorded lectures, live sessions, assignments and computer-based assessments. Students who complete the prescribed requirements receive an official e-certificate from IIT Madras code. The deadline to apply for this is October 26th cohort is 30th of this month. So all listeners, all students who are eager to be to participate in this, please do so before the deadline.
0: बिल्कुल। और अब चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। आज से शुरू हो रहे 62वें APNIC सम्मेलन के लिए मुंबई में 600 से अधिक इंटरनेट विशेषज्ञ, नीति निर्माता और प्रौद्योगिकी नेता एकत्रित होंगे। 3 दिन के इस सम्मेलन के दौरान इंटरनेट के भविष्य को आकार देने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा होगी, जिनमें AI संचालित सेवाएं, नेटवर्क स्वचालन, साइबर सुरक्षा, रूटिंग सुरक्षा और इंटरनेट प्रशासन के मुद्दे शामिल हैं। एक और खबर है हमारे पास महाराष्ट्र से कि महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने अपने DGMHADA ऐप पर डिजिटल गणेशोत्सव 2026 के नाम से एक प्रतियोगिता की घोषणा की है। यह प्रतियोगिता MHADA के विभिन्न संभागीय बोर्डों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी गणेश मंडलों के साथ साथ अपने घरों में गणेश उत्सव मनाने वाले MHADA निवासियों के लिए भी खुली है। प्रतिभागियों को ऐप पर पंजीकरण होगा और फिर अपने गणेश उत्सव की थीम, सजावट और विशिष्टता को दर्शाते हुए अपने बप्पा की तस्वीरें या वीडियो अपलोड करने होंगे। विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार और स्मृति चिन्ह दिए जाएंगे।
1: Moving on to Bengaluru, a cooperative sector seminar on the production and use of ethanol for the farmers was inaugurated by Maharashtra Agricultural Price Commission Chairman Pasa Patel in Bengaluru yesterday. He informed that a national farmers conference will be held in Mumbai on September 28 and 29 regarding the production and use of ethanol for the farmers. Former minister and sugar mill owner Murugesh Nirani said that they produce 1 lakh liters of ethanol per day in 11 factories. That is 460 liters of ethanol can be produced from 1 ton of rice and 80 liters from 1 ton of sugarcane. He said before ethanol production, the price of maize per quintal was over 2,800 rupees, but today it is over 3,200 per quintal.
0: और अगर कोलकाता की बात करें तो आगामी अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के स्वर्ण जयंती संस्करण में वंदे मातरम के 150 वर्ष और आकाशवाणी कोलकाता के शताब्दी समारोह को प्रमुख विषयों के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। कोलकाता के पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र एकातन सभागार में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल पुस्तक मेले की सलाहकार समिति के संयोजक प्रोसेनजीत बख्शी ने इन विषयों की घोषणा की और उन्होंने स्पष्ट किया कि इस माह की 5 तारीख और सोमवार को समाचार

0: पत्रों में मेले के भागीदारी के संबंध में प्रकाशित विज्ञापन जो सलाहकार समिति से परामर्श किए बिना जारी किए गए थे वे प्रभावी नहीं होंगे.
1: And the last news that I have, Jaya, is from Hyderabad. Gail India Limited and Petronet LNG Limited, in collaboration with the MC Square Foundation and ITIC Incubator of IIT Hyderabad, organized the MC Square Plus Ignite Hyderabad Connect on September 7, 2026 at the IIT Hyderabad campus. The event brought together energy sector leaders, academia and startups to foster technological self-reliance with a key focus on digital asset management through artificial intelligence, machine learning and robotics. And Jaya, while delivering the keynote address, former Bank of Baroda CMD Dr. Anil K. Khandelwal stated that innovation dies quietly in fearful organizations, emphasizing that true transformation relies on experimentation and customer centricity. GAIL Chairman and Managing Director Shri Deepak Gupta highlighted India's dual challenge of meeting rising energy demands while transitioning to cleaner energy sources.
0: और अब जानते हैं कि आज मेट्रोज में मौसम कैसा रहने वाला है. तो सबसे पहले बात दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मौसम की. राजधानी दिल्ली में आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है. शहर का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. मुंबई में भी आज बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश का अनुमान है. शहर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. अगर बात करें जॉय सिटी कोलकाता की, तो वहां भी बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है. शहर का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. और अब चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु के मौसम का हाल जानते हैं रेनू से.
1: थैंक यू जया. चेन्नई विल हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन. द मिनिमम टेम्परेचर विल बी अराउंड 27 डिग्री सेल्सियस व्हाइल द मैक्सिमम इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 36 डिग्री. Bengaluru will have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature will be around 20 degrees Celsius, where the maximum may reach 32 degrees Celsius. And Hyderabad will also have partly cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The minimum temperature will be around 24 degrees Celsius, while the maximum may reach 33 degrees Celsius.
0: और अब समय है इतिहास में दर्ज आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जिक्र करने का.
1: So beginning with the year 1504, on this day, that is the 8th of September, Michelangelo's famous sculpture David was unveiled in Florence, Italy. In 1941, the siege of Leningrad began during the Second World War as German forces encircled the Soviet city on this day.
0: और आज ही के दिन 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इटली ने मित्र राष्ट्र के साथ अपने युद्ध विराम की सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी.
1: In 1944, Germany launched the first V-2 rocket attack on London, marking the first use of a long-range ballistic missile in warfare.
0: आज ही के दिन वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन में हिंदी में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली भाषण दिया था. वहीं 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पुनर्निर्मित कर्तव्य पथ, जिसे पूर्व में राजपथ कहा जाता था, उसका उद्घाटन किया. और श्रोताओं, अब वक्त हो चला है आज के हमारे सबसे पसंदीदा और आखिरी सेगमेंट का, जिसमें हम याद करेंगे कि आज के दिन किन महान विभूतियों की जन्मदिन है, कब उनकी पुण्यतिथि है. तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं भारत के महान संगीतकार, गीतकार, गायक और फिल्म निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका जी को. आज उनकी जन्म शताब्दी है. वे एक ऐसे कलाकार थे जो अपने गीत खुद लिखते थे, संगीतबद्ध करते थे और खुद ही गाते थे. खास बात यह है कि भूपेन दा का संगीत सिर्फ मनोरंजन का नहीं था, बल्कि वह समाज का आईना था. उनके गीतों में शोषितों का दर्द भी था और मानवता की पुकार भी. जब वे गाते थे तो ऐसा लगता था जैसे साक्षात ब्रह्मपुत्र नदी गा रही हो. आइए सुनते हैं फिल्म महात्मा और उनके गैर फिल्मी एल्बमों का यह कालजयी गीत जो

अद्भुत। इस गीत का एक एक शब्द सीधे दिल में उतर जाता है। श्रोताओं, भूपेन दा ने असमिया संगीत को वैश्विक पहचान तो दी ही, साथ ही हिंदी सिनेमा को भी अपनी धुनों से समृद्ध किया। फिल्म रुदाली में उनके द्वारा संगीतबद्ध किया गया एक गीत आज भी विरह और दर्द की सबसे खूबसूरत अभिव्यक्ति माना जाता है।

कला और संस्कृति में भूपेन हजारिका जी के अद्वितीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से विभूषित किया। इसके अतिरिक्त उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया गया। उन्हें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। कहा जा सकता है कि उन्हें कला जगत के लगभग सभी सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित किया गया। आज ही जयंती है सुरों की मलिक का, वर्सेटाइल क्वीन और सदाबहार पार्श्व गायिका आशा भोसले जी की।

आशा भोसले जी की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि उन्होंने कभी खुद को किसी एक दायरे में नहीं बांधा। उन्होंने चुलबुले गानों से रोमांटिक गीतों और शास्त्रीय संगीत तक हर विधा में अपनी अमिट छाप छोड़ी। जब संगीतकार खयाम ने उन्हें फिल्म उमरा जान के लिए चुना तो उन्होंने गजल गायकी को एक नया मुकाम दे दिया। आइए सुनते हैं उनकी मखमली आवाज में सजी यह अमर गजल।

0: आशा जी ने 20 से अधिक भाषाओं में 11,000 से ज्यादा गाने गाए और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज कराया। संगीत और कला जगत में उनके इस अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। उन्हें भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया।
1: And today is the birthday of Martin John Christopher Freeman, who is an English actor and comedian known for portraying Bilbo Baggins in Peter Jackson's The Hobbit film trilogy, Tim Canterbury in the original UK version of sitcom The Office, Dr. John Watson in the crime drama Sherlock Holmes. But here we're going to listen to Martin Freeman talking about how he landed the role of Bilbo Baggins in the movie The Hobbit.
2: Whether you're James Cagney or me or whoever, you know, name any one of 100 actors, whoever you are and whatever you're bringing, it has to be real, right? So if you put James Cagney in a film now, he would seem kind of big, right? That's a strong flavor. I didn't disbelieve anything he ever said, right? Nothing, because he means it, right? So whether you're doing something that is up to 11 or something that's 2 or 3, as long as you invest it with the truth of that moment, hopefully the audience will go along with that and believe it.
0: आज हम कला जगत के एक ऐसे चमकते सितारे को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने पर्दे पर तो देवताओं के राजा इंद्र का वैभव जिया। हम बात कर रहे हैं हिंदी और पंजाबी फिल्मों के जाने माने अभिनेता सतीश कौल की। आज उनकी जयंती है। बीआर चोपड़ा की कालजयी महाभारत धारावाहिक में देवराज इंद्र की भूमिका निभाकर वे घर घर में प्रसिद्ध हुए थे। उस धारावाहिक का एक दृश्य आज भी दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देता है, जब युद्ध भूमि में गुरु द्रोणाचार्य क्रोध में आकर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने जा रहे होते हैं, तब देवराज इंद्र स्वयं प्रकट होते हैं और एक राजा होकर भी गुरु के प्रति आगाध सम्मान दिखाते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं।
3: हे आचार्य, मैं यहाँ पर सब देवताओं का प्रतिनिधि बनकर आया हूँ। मेरी आपको उन सब की ओर से प्रार्थना है कि आप दिव्यास्त्रों का प्रयोग ना कीजिए। यही सब ऋषियों की भी इच्छा है। दिव्यास्त्र केवल धर्म की रक्षा के लिए होते हैं।
1: And today is the birth anniversary of James Charles Rogers, who was an American singer, songwriter and musician who rose to popularity in the late 1920s. Widely regarded as the father of country music, he's best known for his distinctive rhythmic yodeling. And here we are going to listen to him singing Waiting for a Train with his yodeling in it.

0: आज सवेरे के आज के अंक में बस इतना ही। अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
1: एंड स्टे ट्यून्ड डियर लिसनर्स फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। हैव अ सुपर्ब डे।
0: नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमेरिका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड का भी लोकार्पण होगा। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे।
2: प्रधानमंत्री के इस दौरे का मुख्य आकर्षण 20,700 करोड़ से अधिक के लागत से निर्मित वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 326 किलोमीटर लंबे 3 मुख्य खंडों को राष्ट्र को समर्पित करना है, जिससे यह पूरा फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क पूरी तरह से कार्यान्वित हो जाएगा। प्रधानमंत्री न्यू साणन, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगाम और न्यू JNPT से मालगाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही वे टांडा रोड और वडोदरा के बीच एक नई यात्री सेवा की भी शुरुआत करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 9,700 करोड़ से अधिक की 3 रेल परियोजनाएं और 1,780 करोड़ की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात सरकार की लगभग 2,600 करोड़ की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जिनमें कडाणा बांध पर 110 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और प्रधानमंत्री आवास योजना के घरों का लोकार्पण शामिल है। गुजरात प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नवसारी में भाजपा के नए AI सक्षम हाईटेक कार्यालय का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंजूरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई।
3: परिषद की बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी गई। नौसेना के लिए अरुद्रा रडार की भी खरीद तथा मरीन गैस टरबाइन के डिजाइन और विकास के बाद उनकी खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वायुसेना की युद्धक क्षमता बढ़ाने के लिए लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों और हेलीकॉप्टरों से जुड़े कई प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा ग्राउंड बेस्ड मल्टीपर्पज जैमर और डिफेंस फोर्सेज सिक्योर एक्सेस कार्ड प्रणाली की खरीद को मंजूरी दी गई है। रिशु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेविये बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
4: श्री बेटल ने कहा कि परिषद का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। श्री बेटल ने मौजूदा वीटो प्रणाली की आलोचना करते हुए इसे द्वितीय विश्व युद्ध का अवशेष बताया और तर्क दिया कि किसी भी एक देश को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित निर्णयों को रोकने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि सुरक्षा परिषद में 2/3 बहुमत वीटो को रद्द करने में सक्षम होना चाहिए। श्री बेटल ने सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की मांग की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजुश्कन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी

0: किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 6G पहल का उद्देश्य नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। एक रिपोर्ट।
4: अमरीकी वाणिज्य विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत ने अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अगली पीढ़ी के नेटवर्क साझा सुरक्षा हितों को प्रतिबिंबित करें, प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करें और नवाचार को बढ़ावा दें। ये घोषणा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की G20 नवाचार मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान अमरीकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक से मुलाकात के बाद हुई। दोनों नेताओं ने 6G प्रौद्योगिकी के भविष्य और अगली पीढ़ी के दूर संचार नेटवर्क के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा की। बैठक के दौरान भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर, AI और डेटा केंद्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। राज्य मंत्री प्रसाद ने ISM 2.0 में अधिक अमरीकी निवेश की संभावना को प्रोत्साहित किया। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
3: दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने संपत्ति मालिक परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में हरिराम, पत्नी उर्मिला और बेटा महेश शामिल हैं। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: मीडिया से बातचीत में पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने बताया कि संपत्ति महिला के नाम पर थी और बिल्डिंग का बिजली कनेक्शन उनके पति के नाम पर था। वहीं बेटा बिल्डिंग का प्रबंधन संभालता था। दंपति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत और बेटे को 2 दिन के पुलिस हिरासत में भेजा गया है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हुई है। कुल 12 लोगों को एम्स दिल्ली लाया गया था। एम्स के अनुसार 3 लोग गंभीर हालत में हैं, जबकि 2 की हालत स्थिर हो गई है, जिनमें से 1 को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने दिल्ली नगर निगम के 5 अधिकारियों को लंबित किया है। इनमें उपायुक्त, अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं। दिलनशी आरजू, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने हापुड़ बाईपास तक 105 मीटर चौड़ी सड़क बनाने का प्रस्ताव रखा है। इससे ग्रेटर नोएडा में माल और यात्री यातायात अलग होगा और गंगा एक्सप्रेसवे से बेहतर संपर्क स्थापित हो सकेगा। इस प्रस्ताव पर कल लखनऊ में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्राधिकरण ने बताया कि इस सड़क से नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गंगा एक्सप्रेसवे के बीच की दूरी घटकर लगभग 30 से 45 मिनट रह जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से अपने दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। वे संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। उत्तर प्रदेश में वर्षा और बांधों से छोड़े गए पानी के कारण 25 जिलों में बाढ़ के हालात हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्षा को देखते हुए बरेली में अगले 2 दिन के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं।
6: राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत दलों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्तर पर नाव और मोटर बोट तैनात की गई है। बाढ़ के बाद संक्रमण और जल जनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह सक्रिय रखा गया है। उधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में राम गंगा, बाराबंकी, अयोध्या और बलिया के तुर्तीपार में घाघरा और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य

0: पूर्वी जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। वहीं अगले दो दिनों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और तेलंगाना में गरज चमक के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत चार स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। भारतीय महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में चीन से खेलेगी। भारतीय पुरुष पैरा रिकर्व टीम स्लोवाकिया और पैरा कंपाउंड पुरुष टीम फाइनल में इराक से खेलेगी। वहीं मिक्स टीम W1 फाइनल में चेक गणराज का मुकाबला करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
3: धन्यवाद मुकेश। रक्षा खरीद परिषद की 1,10,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों की मंजूरी की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई DAC की बैठक, 1,00,000 करोड़ के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी। दैनिक ट्रिब्यून का शीर्षक है, तीनों सेनाओं की बढ़ेगी ताकत, मिलेंगे नए रडार, हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक, विशेष वाहन और जैमर। राजस्थान पत्रिका ने पहली बार शीर्षक से दिया है, पीएम मोदी के कार्यक्रम की ऑनलाइन बुकिंग 1 घंटे में फुल, 42,000 वेटिंग, सारी व्यवस्था डिजिटल। प्रधानमंत्री मोदी आज वडोदरा में नमो फॉर विकसित भारत कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। हिंदुस्तान के अनुसार हत्यारे पीजी का मालिक गिरफ्तार, निगम उपायुक्त समेत 5 अधिकारी निलंबित, असुरक्षित इमारतें खाली कराई गई। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, हाईकोर्ट के निर्देश, जांच हो, अफसर की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते, MCD अफसरों से होगी पूछताछ। अमर उजाला ने उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का गुवाहाटी विश्वविद्यालय में बयान देते हुए लिखा है, विश्वविद्यालयों में ज्यादातर स्वर्ण पदक विजेता महिलाएं, यह मूक क्रांति है। पंजाब केसरी ने गृह मंत्री अमित शाह का बयान देते हुए लिखा है, वैश्विक उथल पुथल के बावजूद आर्थिक वृद्धि कायम, भारत अन्य देशों से जुड़ा रहा, 15 अगस्त 2047 तक भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र होगा। हिंदुस्तान ने ऐलान शीर्षक से लिखा है, हॉर्मुज में नया मार्ग बनाएगा ईरान, पोतों के लिए कॉरिडोर के नक्शे जारी होंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, हिमाचल समेत 15 से ज्यादा राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट, बिहार में बाढ़ का कहर, 13 जिलों के 29 लाख से अधिक लोग प्रभावित, कई नदियों का जलस्तर बढ़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। रक्षा खरीद परिषद ने 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमरीका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के सत्य निकेतन में ढही इमारत के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch development projects worth over 35,000 crore rupees from Vadodara in Gujarat today. To also inaugurate Global FinTech Fest 2026 in Mumbai. Defence Acquisition Council clears capital acquisition proposals worth over 1,10,000 crore rupees for defence forces. Luxembourg backs India's bid for permanent seat in UN Security Council. India joins US and 24 other countries to shape development of next generation 6G networks. Delhi police arrests 3 members of family that owned collapsed building in Satya Niketan area of national capital. And India set to feature in 4 गोल्ड मेडल

0: समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। और आज अहमदाबाद में आलमी तीरंदाजी पैरा सीरीज में भारतीय खिलाड़ी 4 फाइनल मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। अब खबरें तफसील से। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर जा रहे हैं। गुजरात में वज़ीरे आज़म वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे, इफ्तिताह करेंगे और मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। जनाब मोदी बारबरदारी के लिए मखसूस मगरबी कॉरिडोर के 3 अहम सेक्शन भी मुल्क के नाम मुअन्नवन करेंगे। इस तरह ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा। इधर मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर नामनिगारों से बात करते हुए कहा कि ये बड़ा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह मुकम्मल हो गया है और इसे वजीर आजम बाजाब्ता तौर पर मुल्क के नाम वक्फ करेंगे।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान 326 किलोमीटर पर मुश्तमिल बारबरदारी के मखसूस मगरबी कॉरिडोर के 3 सेक्शन को मुल्क के नाम वक्फ किया जाना बड़ी अहमियत का हामिल होगा। इसकी तामीर पर 20,700 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वज़ीर आज़म न्यू सानंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उम्बरगांव और न्यू JNPT से माल गाड़ियों के साथ साथ टांडा रोड और वडोदरा के दरमियान एक नई मुसाफिर ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो अलीराजपुर के दूरदराज के कबाइली इलाकों को रेलवे के कौमी निज़ाम से जोड़ेगी। इसके अलावा जनाब मोदी गुजरात और मध्य प्रदेश में कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने की खातिर 9,700 करोड़ रुपए मालियत के 3 रेलवे प्रोजेक्ट और तकरीबन 1,780 करोड़ रुपए मालियत के 3 कौमी शाहरा प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे। वो कदाना डैम पर 110 मेगावाट के शमसी प्लांट और PMAY हाउसिंग यूनिट समेत 2,600 करोड़ रुपए मालियत के गुजरात हुकूमत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज भी करेंगे। बाद में वजीर आजम BJP के AI से आरास्ता और हाईटेक दफ्तर के इफ्तिताह के लिए नवसरी भी जाएंगे। अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: महाराष्ट्र में वज़ीर आज़म मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का इफ्तिताह करेंगे और वहां मौजूद लोगों से खिताब करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का मौजू है इम्कानात से असरात तक जामे फाइनेंस के लिए एजेंटिक AI क्वांटम भरोसेमंद बाहम मुंसलिक आलमी निज़ाम। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में होने वाले तबादले ख्याल में इस बात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी कि किस तरह AI, क्वांटम टेक्नोलॉजी और दीगर अहम नीज उभरती हुई टेक्नोलॉजियां आलमी सतह पर शहरियों, कारोबारी इदारों और मईशतों के लिए भरोसेमंद, जामे और ठोस नतायज पैदा कर सकती हैं। साल 2020 से ग्लोबल फिनटेक फेस्ट एक लीडरशिप प्लेटफॉर्म के तौर पर उभरा है, जिसमें पॉलिसी साज, इंजबाती इदारे, मरकजी बैंक, माली इदारे, फिनटेक टेक्नोलॉजी कंपनियां, सरमायाकार, तालीमी माहिरीन और दीगर आलमी मुतालिका इदारे फाइनेंस के मुस्तकबिल और इसे संवारने के बारे में तबादला ख्याल करते हैं। ये 7वां फिनटेक फेस्ट मुंबई में इस महीने की 11 तारीख तक जारी रहेगा। दिफाई सामान की सरकारी खरीद से मुतालिक कौंसिल ने दिफाई अफवाज के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की तजवीज़ों को मंजूरी दे दी है। हमारे नामनगार ने बताया है कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में कौंसिल की मीटिंग के दौरान ये मंजूरी दी गई। पेश है एक रिपोर्ट।
3: इन तजवीज़ों में भारतीय फौज के लिए केमिकल, बायोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल नीज न्यूक्लियाई टोह लेने वाली गाड़ियों, हाई मोबिलिटी गाड़ियों, जदीद तर्स के हल्के हेलीकॉप्टरों, ट्रॉल टैंक्स और सर्वत्र ब्रिज निज़ाम की सरकारी खरीद की तजवीज़ें शामिल हैं। भारतीय बहरिया के लिए अरुद्र रडार की सरकारी खरीद और मैरीन गैस टर्बाइंस के डिज़ाइन और तैयारी नीस इसकी सरकारी खरीद के लिए तजवीज़ को भी मंजूरी दी गई है। अरुद्र रडार बहरिया के मुख्तलिफ एयर स्टेशनों पर नस्ब मौजूदा एयर रूट निगरानी रडार की जगह लेगा। इस तरह गैर मुल्की इदारों पर इन्हिसार कम हो सके। इधर भारतीय फजाइया के लिए मुकाबला करने की सलाहियत बढ़ाने के खातिर मुख्तलिफ तजवीजों को भी मंजूरी दी गई है। कसीर मकसदी जैमर की सरकारी खरीद और

0: दिफाई अफवाज का महफूज रसाई का कार्ड निजाम नस्ब करने की भी मंजूरी दी गई है। दिफा की वजारत ने कहा है कि इनमें से 98% दिफाई सामान की सरकारी खरीद भारतीय सनतों से की जाएगी। दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: लक्जमबर्ग के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-खारजा ज़ेवियर बेटेल ने अक़्वाम-ए-मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मुस्तक़िल रुकनियत के लिए भारत की कोशिश की, ये कहते हुए हिमायत की है कि आलमी इदारे में इस्लाहात की जानी चाहिए ताकि मौजूदा आलमी निज़ाम के हक़ाइक़ की अक्कासी हो सके। एक खबरसा एजेंसी के साथ इंटरव्यू में जनाब बेटेल ने कहा कि भारत के वसी व अरीज होने और इसके आलमी अहमियत के मद्देनज़र तोसी शुदा सलामती कौंसिल में इसका शामिल किया जाना ज़रूरी है। उन्होंने भारत और ब्राज़ील का हवाला देते हुए कहा कि यूएन सलामती कौंसिल में उन बड़े मुल्कों को शामिल करके तौसी की जा सकती है जिनका सरदस्त कोई मुस्तकिल रोल नहीं है। जनाब बेटेल ने मौजूदा वीटो निज़ाम पर नुक्ताचीनी भी की और इसे दूसरी आलमी जंग के बाकियात से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि किसी एक मुल्क को उन फैसलों को रोकने का इख्तियार नहीं होना चाहिए जिनकी हिमायत वसीतर बैन अल-अक़वामी बरादरी ने की हो। लक्जमबर्ग के नायब वज़ीर-ए-आज़म भारत के 3 दिन के सरकारी दौरे पर आए हुए हैं। भारत नए सिलसिले के 6G नेटवर्क के फरोग के मकसद से अमरीका और 24 दीगर मुल्कों के साथ बैन अल-अक़वामी पहल में शामिल हो गया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमेरिका के कॉमर्स के महकमे ने कहा है कि इस कोशिश का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि नए सिलसिले के नेटवर्क से मुश्तरका सिक्योरिटी मफादात की अक्कासी हो, मुसाबिकत मुस्तहकम हो और इख्तरा को बढ़ावा मिले। अमेरिका के मियामी में G20 के इख्तराई वजीरों की कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमरीका के कॉमर्स के वजीर हॉवर्ड लुटनिक के साथ कॉमर्स और सनतों के मरकजी वजीर ममलिकत जितिन प्रसाद की मुलाकात के बाद ये ऐलान सामने आया है। दोनों रहनुमाओं ने 6G तकनीक के मुस्तकबिल और नए सिलसिले का टेलीमवासिलाती नेटवर्क तैयार करने में बैन अल-अक़वामी इश्तराक की अहमियत पर तबादला ख्याल किया। ईरान ने ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए सदर मसूद पेजिशकियान के नई दिल्ली के दौरे से कबल एक अहम सिफारती मरकज के तौर पर भारत के रोल को उजागर किया है और ये उम्मीद जाहिर की है कि ये ग्रुप दो तरफा तजारती और क्लीदी इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने इस बात को उजागर किया कि ईरान भारत के साथ तवील अरसे से कायम अपने ताल्लुकात को किस कदर अहमियत देता है। ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में सदर पेजिशकियान की शिरकत के ताल्लुक से जनाब बकाई ने यह एतमाद जाहिर किया कि कसीर रुखी सिफारतकारी से दो तरफा ताल्लुकात में और तेजी के साथ पेशरफ्त होगी। ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस से इस महीने की 12 और 13 तारीख को नई दिल्ली में होने वाली है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत ढह जाने के मामले में 3 अफराद को गिरफ्तार किया है और अपनी तहकीकात तेज कर दी हैं। इस वाकये में 7 अफराद की मौत हुई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: दिल्ली पुलिस ने इस वाकये के सिलसिले में इमारत के मुबैना मालकिन और उसके शौहर और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। ये वाकया इस महीने की 6 तारीख को पेश आया था। मुबैना मालकिन और उसके शौहर को 14 दिन के लिए अदालती तहवील में भेज दिया गया है, जबकि बेटे को 2 दिन के लिए पुलिस तहवील में दिया गया है। इस वाकये में हलाक होने वालों की तादाद 7 हो गई है। मजमुई तौर पर 12 जख्मियों को दिल्ली के एम्स अस्पताल लाया गया था। अस्पताल के मुताबिक जिन 3 अफराद को बचाया गया था उनकी हालत नाजुक है, जबकि 2 की हालत में इस्तेकाम है और इनमें से 1 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इधर दिल्ली सरकार ने दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन MCD के 5 अहलकारों को मुअत्तल कर दिया है। दिल्ली से दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
1: बारिश होने और डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से उत्तर प्रदेश के 25 अजला में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई है। रियासत के कई अजला में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान औसत से शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है। बरेली, एटा, शाहजहांपुर, बहराइच और लखीमपुर खीरी गुज़िश्ता 24 घंटे में बारिश के लिहाज से मुल्क के 5 सबसे ज्यादा बारिश वाले अजला में शामिल हैं। शदीद बारिश के पेश नज़र बरेली में अगले 2 दिन के लिए तमाम स्कूल बंद कर दिए गए हैं और सरकारी अहलकारों की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
0: ریاست کے ریلیف کمیشنر کے دفتر کے مطابق سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی ٹیم

0: की रसाई को यकीनी बनाने के लिए कश्तियों और मोटर बोट्स को लगाया गया है। सैलाब के बाद इन्फेक्शन और पानी से होने वाली बीमारियों के खदशे के पेश नजर महकमे सेहत से पूरी तरह मुस्तैदी बरतने को कहा गया है। इधर बदायूं और बलिया में गंगा, शाहजहांपुर में रामगंगा, बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा, जबकि लखीमपुर खीरी में शारदा दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। पीलीभीत में पिछले दो दिन से लगातार बारिश होने और बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से शारदा और देवहा दरिया तुगयानी पर हैं। सैलाब के इम्कान के पेश नजर इंतजामिया ने अलर्ट जारी किया है। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: भारतीय मौसमियात महकमे ने अगले दो दिन के दौरान मुल्क के शुमाल मशरकी हिस्सों में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मगरबी बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। इधर अंडमान निकोबार जजायर, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खत्ते, सिक्किम और तेलंगाना में अगले दो दिन के दौरान गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पेशगोई की गई है। आज अहमदाबाद में आलमी तीरंदाजी पैरा सीरीज में भारतीय खिलाड़ी चार फाइनल मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। पैरा रिकर्व खवातीन के टीम गोल्ड फाइनल में भारत की भावना और पूजा का मुकाबला चीन की खिलाड़ियों से होगा। इधर मर्दों के पैरा रिकर्व टीम गोल्ड फाइनल में भारत के हरविंदर सिंह और विजय सुंडी स्लोवाकिया के खिलाड़ियों से मुकाबला करेंगे। इसके अलावा भारत मर्दों के पैरा कंपाउंडर टीम फाइनल में भी सोने का तमगा जीतने की कोशिश करेगा, जहां श्याम सुंदर स्वामी और तुमन कुमार का मुकाबला इराक के खिलाड़ियों से होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
2: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शेयर सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने अपने पहले सफ़े पर अहमियत के साथ शाये किया है। गोवा के पनाजी में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के जेर सदारत मुनक़दा मगरबी जोनल काउंसिल की 28वीं मीटिंग में वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को अखबारात ने नुमाया किया है कि तमाम जोनल काउंसिलें अब रियासतों के दरमियान तनाज़ा सुलझाने के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़कर अवामी फलाही स्कीमों की निगरानी का मौसर जरिया बन गई हैं। अखबारात ने दिफाई खरीद की काउंसिल की तरफ से 1,10,000 करोड़ रुपए के दिफाई सौदों को मंजूरी दिए जाने की खबर को भी अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के कारोबारी एतमाद के सर्वे से मुतालिक खबर को शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, मजबूत तलब और माशी आदादोशुमार से कारोबारी एतमाद कई सहमाही की बुलंद तरीन सतह पर।
1: खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में वडोदरा से 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वजीर आजम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का इफ्तिताह भी करेंगे। दिफाई सामान की सरकारी खरीद से मुतालिक काउंसिल ने दिफाई अफवाज के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की तजवीजों को मंजूरी दे दी है। लग्जमबर्ग ने अक्वामी मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में मुस्तकिल रुकनियत की भारत की कोशिश की हिमायत की है। भारत नए सिलसिले के 6G नेटवर्क के फरोग में अमेरिका और 24 दीगर मुल्कों के साथ शामिल हो गया है। दिल्ली पुलिस ने कौमी राजधानी के सत्यनिकेतन इलाके में ढह जाने वाली इमारत के मालिक समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। और आज अहमदाबाद में आलमी तीरंदाजी पैरा सीरीज में भारतीय खिलाड़ी 4 फाइनल मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।

0: थोड़ी शिकायत, थोड़ा शिकवा और बहुत सारा प्यार, ये रिश्तों की ताजगी को बनाए रखता है। और जनाब, ये सब आमने सामने किसी मीडिया के माध्यम से नहीं। आप जब भी मीडियम बनाएंगे, आप जब भी मीडिया को सहारा बनाएंगे, तो क्या होगा नुकसान, ये मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर, सुनते रहिए म्यूजिकल दिल लगी।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो?
3: Yes,
2: इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ envelopes हैं। आप सब यहाँ आओ और ये envelopes ले लो।
4: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
5: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
6: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
7: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है। मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
2: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं, याद रखोगे।
8: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: जनाब, हम कहते हैं कि जब भी हम रिश्तों में किसी मीडिया को या किसी मीडियम को लेकर आते हैं, तो वो रिश्ते खराब होने की पूरी गुंजाइश होती है, या ये कहें कि उस रिश्तों की मजबूती जो है वो अच्छी नहीं बनती है। यानी कि मीडिया के जरिए सोशल होना वास्तविक नहीं है। सोशल मीडिया की दुनिया, ये भी तो रील की दुनिया है, रियल की नहीं है। सुबह उठते ही स्क्रॉल करने की आदत दिमाग पर सीधा असर डाल रही है। आप जानते हैं, ताजा स्टडी कहती है कि सोशल मीडिया के 46 से ज्यादा साइड इफेक्ट हैं। स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई पर, और कामकाजी हैं तो परफॉर्मेंस और मानसिक तनाव पर इसका पूरा असर पड़ता है। एक इंडियन रिसर्च के मुताबिक जो युवा रील की दुनिया का ज्यादा हिस्सा हैं, वो सोशल आइसोलेशन यानी कि अकेलेपन की बीमारी के असर दिखा रहे हैं। ऐसे में आमने सामने बात करने की आदत खत्म सी होती जा रही है। कुछ कहने की इच्छा है तो बोलकर कहिए, टेक्स्ट करके अपनी कमजोरी मत दिखाइए। सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी आती है, इन्फ्रियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता है और फोमो यानी कुछ छूटने का डर पैदा हो जाता है अगर हम बहुत ज्यादा समय बिताते हैं सोशल मीडिया की दुनिया में। अगर आप में भी कुछ ऐसे फीलिंग्स हैं, तो जनाब कम कीजिए अपने स्क्रीन टाइम को, प्रकृति से मिलिए, खुद को जानिए और अपने आप से, अपनों से रूबरू हो जाइए।

म्यूजिकल दिल्लगी का ये सफर रेखा रखेंगे आपके साथ जारी। फिलहाल आप मुक्ता को दीजिए इजाजत, एक छोटा सा विराम, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए और उसके बाद जुड़ जाइए वापस आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर म्यूजिकल दिल्लगी के लिए रेखा के साथ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे। 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: श्री मोदी कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में ली गई। बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ट्रॉल टैंक

और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को भी मंजूरी दी गई। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजोश्किन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से बातचीत की है। श्री सिंह ने बताया कि यह मुलाकात दूतावास के संरक्षण में अखिल भारतीय संचालन समिति के एक कार्यक्रम में हुई। श्री सिंह ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में भारत और सऊदी अरब के संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय के अमूल्य योगदान की सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान देने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में भारत, अमेरिका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल हो गया है। इस पहल का उद्देश्य 6G नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हार्वर्ड लटनिक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने 6G के साथ सेमीकंडक्टर, AI और डेटा सेंटर के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। डॉक्टर यादव संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठक भी करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि साक्षरता ज्ञान, अवसर और बेहतर भविष्य का मार्ग खोलती है। उन्होंने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित ना रहे। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षित और सशक्त नागरिक ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न स्रोतों से ज्ञान हासिल करने के महत्व पर बल दिया है। संस्कृत श्लोक साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह मधुमक्खी कई फूलों से मधु एकत्र करती है, उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति को हर क्षेत्र से उपयोगी ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। भारतीय महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में चीन से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, क्या कभी आपने गुलाब और गेंदे की तुलना की है? कभी सोचा है कि गुलाब ज्यादा सुंदर है या गेंदा? नहीं ना, क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी खूबसूरती की वैल्यू है, अपनी अपनी खुशबू रखते हैं। पर हम इंसानों के साथ क्या करते हैं, हम हर वक्त खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है। उसका बच्चा ज्यादा होशियार है, मेरा नहीं है। वो ज्यादा सुंदर दिखती है, मैं नहीं दिखती। और इस तुलना में हम अपना सारा सुकून जला देते हैं। एक बात याद रखिए, भगवान ने इस दुनिया में दो इंसान एक जैसे नहीं बनाए हैं। आपके उंगलियों के निशान भी किसी से नहीं मिलते, तो आपकी जिंदगी किसी और से कैसे मिल सकती है? तुलना करना ऐसा है जैसे मछली को पेड़ पर चढ़ने के लिए कहना। मछली कभी पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगी और जिंदगी भर खुद को बेकार समझती रहेगी, जबकि वो तो पानी की रानी है। आपका अपना समय है, आपकी अपनी रफ्तार है। कोई जल्दी सफल होता है, कोई देर से, पर सफलता दोनों की सफलता ही है, है ना? दूसरों को देखकर जलिए मत, उनसे सीखिए, पर अपने आप को कभी छोटा मत समझिए। आज से एक काम करिए, जब भी मन में तुलना आए तो खुद से कहिए, मैं जैसा हूं बहुत अच्छा हूं, मेरी अपनी खुशबू है, मेरा अपना रंग है। क्योंकि बगीचे की खूबसूरती एक फूल से नहीं, हर तरह के फूलों से होती है। और आप भी इस जिंदगी के बगीचे के सबसे खूबसूरत फूलों में से एक हैं। तो बस जैसे हैं वैसे रहिए, क्योंकि आपकी बराबरी कोई और नहीं कर सकता। 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आर्जे रेखा, क्रिस्टल वॉइस, और ये है म्यूजिकल दिल्ली।

जैसे है वैसे रहना अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ों में, कुछ मायनों में बदल जाना चाहिए। आज तक कई जगहों पर ये परंपरा होती है कि वहाँ पर बेटों को ज़्यादा सशक्त बनाया जाता है, बेटियों को नहीं। लेकिन बेटियाँ जो हैं वो दो परिवारों को सशक्त बनाती हैं अगर वो खुद सशक्त हों। इसीलिए सुकन्या समृद्धि योजना जो है वो लाई गई सरकार की तरफ से, ताकि हमारी बेटियों का भविष्य सुनिश्चित हो सके। सुकन्या समृद्धि भारत की एक छोटी बचत योजना है, जिसकी शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत की गई, जिसके अंतर्गत माता पिता या कानूनी अभिभावक बेटी के नाम से खाता खोल सकते हैं। और इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए बच्चे की उम्र सीमा जो है वो 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। सुकन्या समृद्धि योजना यानी SSY भारत सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए शुरू की गई एक छोटी बचत योजना है, और इसका उद्देश्य बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करना है, खासकर उनकी शिक्षा और विवाह के लिए। और अगर मैं बात करूं तो बालिकाओं को उच्च शिक्षा और विवाह के लिए वित्तीय सहायता इस योजना के अंतर्गत दी जाती है। एक बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। और अगर बात करूं इसकी अवधि की, तो खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष की अवधि के लिए ये वैलिड होता है। और इसमें आपको क्या योगदान करना होता है, एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए यानी 1.5 लाख रुपए जमा किए जा सकते हैं। इस पर ब्याज दर भी अच्छा मिलता है, 8.2 प्रति वर्ष के हिसाब से प्रतिशत जो आपको वार्षिक ब्याज है वो वर्तमान राशि जो है वो ये है। और अगर मैं बात करूं 18 वर्ष की उम्र के बाद की, तो बालिका अपनी शिक्षा या विवाह के लिए कुछ परसेंट जो पैसा है इसमें से वो निकाल सकती है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत अगर मैं बात करूं, तो जो आप टैक्स देते हैं, निवेश करते हैं, उस पर भी आपको कुछ फायदे मिलते हैं। और अगर बात की जाए सरकार समर्थित योजना होने की वजह से ये एक सुरक्षित निवेश ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत कम है, कम क्या है ही नहीं। और अन्य बचत योजनाओं की तुलना में अगर मैं बात करूं, तो सुकन्या समृद्धि योजना में बेहतर ब्याज दर भी मिलती है, जो कि बाकी योजनाओं में नहीं मिलती। योजना में जब आप निवेश करते हैं तो कर में आपको छूट मिलती है, और जमा राशि को एकमुश्त या फिर किश्तों में जमा किया जा सकता है। आप चाहें तो एक साथ राशि को जमा कर दें, या फिर थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें छोटी छोटी बचत कर सकते हैं। ये योजना बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने में तो मदद देती ही है, और कहीं ना कहीं उन्हें सशक्त भी बनाती है। ज्यादा जानकारी अगर आप चाहते हैं तो खाता डाकघर या अधिकृत बैंकों में खोला जा सकता है, यहाँ जाकर आप पता कर सकते हैं। खाता भारत में कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता है, और परिपक्व होने पर जमा राशि और ब्याज सहित पूरी राशि बच्ची को दी जाती है। बालिका की शादी 21 वर्ष से पहले अगर होती है तो खाते को समय से पहले बंद भी किया जा सकता है। तो फिर अगर आपने अभी तक अपनी छोटी छोटी नन्ही नन्ही इन परियों के लिए, इनके भविष्य के लिए कुछ नहीं सोचा है, तो आज ही सोचिए और इस योजना में निवेश करिए।

0: एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आऊंगी, जहां भी जाएं सुनते रहें आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, अ मोमेंट वेयर लीडर्स, इनोवेटर्स, बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज फ्रॉम द ब्रिक्स नेशंस कम टुगेदर टू स्ट्रेंथन पार्टनरशिप्स। इंडिया वेलकम्स द ब्रिक्स कंट्रीज as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ envelopes हैं। आप सब यहाँ आओ और ये envelopes ले लो।
3: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
4: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
5: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
2: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान। पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आपकी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं भले ही ब्रेक पे चली जाऊं लेकिन आप फिर भी कान लगाए मेरे साथ जुड़े रहते हैं। 9:47:42 हो चुके हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा, क्रिस्टल वॉइस, म्यूजिकल दिल लगी सुन रहे हैं आप। तो चलिए हो जाए एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों आज है 8 सितंबर और आज का दिन जानते हैं किस लिए मनाया जाता है। आज का दिन इंटरनेशनल लिटरेसी डे के तौर पर भी जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, जो कि आज यानी 8 सितंबर को मनाया जा रहा है। और इस साल जो वर्षगांठ है वो है 60वीं वर्षगांठ, यानी 60 साल हो गए हैं जिसे यूनेस्को ने 1966 में घोषित किया था। इस साल के विषय की बात करूं, थीम की बात करूं, तो लोगों, ग्रह और समृद्धि के लिए साक्षरता इस बार का विषय है। और दिन विश्व को याद दिलाता है कि पढ़ना और लिखना सिर्फ स्कूली कौशल नहीं है, ये लोगों को जानकारी समझने, निर्णय लेने, अपने अधिकारों को जानने और समाज में भाग लेने में मदद करता है। दोस्तों पहले साक्षरता का खास अर्थ पढ़ना लिखना हुआ करता था, आज इसका अर्थ कहीं ज्यादा व्यापक है। लोगों को संख्या ज्ञान यानी संख्याओं का उपयोग करने की क्षमता और डिजिटल और मीडिया साक्षरता की भी जरूरत होती है। ये कौशल हमें प्रौद्योगिकी का सुरक्षित रूप से इस्तेमाल करने, समझने, ऑनलाइन जानकारी की जांच करने और भ्रामक खबरों को पहचानने में मदद करते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करें या एआई की, तो इन कौशलों को और भी जरूरी बना देती हैं ये चीजें, क्योंकि लोगों को जानकारी पर सवाल उठाने और तय करने की जरूरत होती है कि कोई जवाब भरोसेमंद है या नहीं। विश्व ने प्रगति की है लेकिन लाखों लोग अभी भी साक्षरता संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। यूनेस्को का अनुमान है कि कम से कम लगभग 739 मिलियन वयस्कों में बुनियादी साक्षरता कौशल की कमी है और इनमें लगभग 2/3 महिलाएं हैं। 10 में से 4 बच्चे सिर्फ बेसिक एजुकेशन तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। गरीबी, स्कूलों में प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, संघर्ष, भाषा संबंधी बाधाएं और प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुंच सीखने को मुश्किल बना सकती है। साक्षरता का अंतर अक्सर उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा होता है जो पहले से ही कठिनाई का सामना कर रहे होते हैं। साक्षरता, जैसा कि मैंने कहा, सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं है बल्कि ये दुनिया को, ये लोगों को समझने, गलत जानकारी से बचने, पैसे का प्रबंधन करने, अवसरों को खोजने, जिम्मेदार निर्णय लेने में भी मदद करती है। और यही नहीं, लोगों को प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसी पर्यावरणीय समस्याओं को समझने में भी इससे मदद मिलती है। पढ़कर लोग एक दूसरे के साथ अपने विचार

साझा करने में सक्षम होते हैं। एक साक्षर दुनिया लोगों को सीखने, भाग लेने और बेहतर भविष्य बनाने की ताकत देती है। तो बहुत जरूरी है कि हम सभी पढ़े लिखे हों, सभी साक्षर हों। तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जिन्हें शिक्षा का मौका नहीं मिला, या जिनके पास आज भी पढ़ने लिखने के लिए कोई ऐसे उपकरण नहीं है, या फिर ऐसी जगह नहीं है जहां वो जाकर सीख सके, तो आप आगे आ सकते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अपने आसपास लोगों को साक्षर कर सकते हैं। और न सिर्फ आप आसपास की बात करें, बल्कि अगर घर में भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं जिन्होंने स्कूल जाकर पढ़ाई नहीं की है या कम एजुकेशन लिया है, तो आप उन्हें भी मदद कर सकते हैं। आज हम देखते हैं ना कि हमारे मम्मी पापा कई बार फोन नहीं चला पाते हैं, लेकिन सीखना वो भी चाहते हैं, और अगर आप उन्हें भी चलाना सिखाएं तो वो ज़रूर सीखेंगे। ऐसी नई नई स्किल्स आपको अपने बुजुर्गों के साथ शेयर करनी चाहिए। इससे न सिर्फ आपका ज्ञान बढ़ता है, उन्हें तो सीखने का मौका मिलता ही है, आपके स्किल्स भी कहीं ना कहीं आपकी कमियां बताते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि भाई हमें ये नहीं पता चल रहा है और आप सीखने की कोशिश करते हैं, तो भाई बिल्कुल पीछे मत हटिए। अपने आसपास के लोगों को इससे पूरी तरह से जुड़िए, साक्षरता के साथ जुड़िए, चीज़ों के साथ जुड़िए, नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ जुड़िए, फिर देखिएगा कि हम सब कितना खूबसूरती से देश को आगे लेकर जा पाएंगे, है ना।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: वेलकम बैक। 9:45 और ये हुए पूरे 45 सेकंड्स, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजी रेखा क्रिस्टल वॉइस। आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दी लगी, और म्यूजिकल दी लगी वो सफर जिसमें गीतों के साथ साथ हम आपको बहुत सारी काम की चीजें भी बताते हैं। वेल, आज की अगर मैं बात करूँ तो भाई आज एक और खास चीज सेलिब्रेट हो रही है, या फिर आज से शुरू हो रही है अगर ऐसा कहूँ। दोस्तों, सभी धर्मों के अपने कुछ पर्व और रीति रिवाज होते हैं जिनका पालन करना बहुत जरूरी माना जाता है। जिस तरह हिंदू धर्म में होली, दीपावली, गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा का पर्व मनाया जाता है, उसी तरह से जैन धर्म की बात करें तो पर्युषण पर्व मनाया जाता है, और इसे जैन धर्म का महापर्व भी कहा जाता है। इस दौरान जैन धर्म के लोग कई नियमों का पालन करते हैं। पर्युषण पर्व दुनियादारी के कामों को सोच समझ कर कम करने और मन की ऐसी स्थिति को बनाने का मौका देता है जो आत्मा की गहराई में जाने वाली यात्रा में मदद करता है। ये पर्व आत्मचिंतन, आत्मशुद्धि और क्षमा मांगने और क्षमा

करने का पर्व पवित्र पर्व माना जाता है, समय माना जाता है। और इस साल जैन धर्म का ये महापर्व 8 सितंबर यानी आज से शुरू होकर 15 सितंबर तक मनाया जाएगा। इस पर्व की शुरुआत के पहले दिन 8 सितंबर को उपवास, स्वाध्याय और अहिंसा का संकल्प लिया जाता है। पर्व के दूसरे दिन 9 सितंबर को आत्मचिंतन का दिन होता है। तीसरे दिन की बात करूं यानी 10 सितंबर को पवित्र कल्प सूत्र के स्वागत के लिए एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। और पर्व के चौथे दिन कल्प सूत्र का पाठ आधिकारिक तौर पर शुरू होता है, जिसमें तीर्थंकरों के जीवन का वर्णन होता है। इसके पांचवें दिन भगवान महावीर के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। पर्युषण पर्व के छठे दिन से आखिरी दिन तक अहिंसा पर ज्यादा ध्यान देना इस पर्व की खासियत है। खान पान के कड़े नियमों का पालन होता है और सांसारिक कामों से दूर रहना जरूरी माना जाता है। पर्व का आठवां दिन यानी 15 सितंबर को संवत्सरी और क्षमा याचना का दिन माना जाता है और क्षमा मांगने के साथ ही पर्व का समापन होता है। तो भाई, इस साल ये पर्व मनाया जा रहा है 8 से 15 तारीख तक। तो सभी ऐसे अनुयायियों को जो इस धर्म को मानते हैं और जो इस पर्व को मना रहे हैं, उन सभी को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर मैं बात करूं तो भाई, जब इस पर्व की बात हुई है तो एक प्यारा सा भजन तो बनता है ना।

दोस्तों कई लाख कहे कि भाई मैं किसी से नहीं डरता, पर ये सच में झूठ ही लगता है मुझे तो, क्योंकि एक शब्द है जिससे हम सब डरते हैं और वो है असफलता या फेल होना। बचपन से हमें सिखाया गया है फेल मत होना, पास होना ही सब कुछ है, इसलिए हम फेल होने से इतना डरते हैं कि कोशिश करने से भी डरने लगते हैं। पर सच तो ये है कि इस दुनिया में कोई भी बड़ा आदमी बिना फेल हुए बड़ा नहीं बना है। थॉमस एडिसन को बल्ब बनाने से पहले 1000 बार असफलता मिली थी। किसी ने पूछा, आप 1000

फेल हुए, बुरा नहीं लगा, तो उन्होंने हंसकर कहा, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यही फर्क है सोच का। हम असफलता को अंत समझ लेते हैं, पर असफलता अंत नहीं, वो तो एक मोड़ है। वो हमें बताती है कि देखो, ये रास्ता ठीक नहीं था, दूसरा रास्ता ले लो। सफलता हमें बताती है कि हम क्या हैं, पर असफलता हमें बताती है कि हम क्या बन सकते हैं। सफलता पर तो सब ताली बजाते हैं, पर असफलता हमें सिखाती है कि कैसे हमेशा आगे बढ़ते रहना है। सीख देती है हमें। जब आप फेल होते हैं तो दो चीजें होती हैं, एक तो आपको पता चलता है कि आपके अपने कौन हैं, और दूसरा आपको अपनी असली ताकत का पता चलता है। तो अगली बार जब जिंदगी में कभी लगे कि सब खत्म हो गया है, कुछ नहीं हुआ, घबराइए मत, खुद से कहिए, मैं फेल नहीं हुआ हूँ, मैं सीख रहा हूँ। याद रखिए, जो गिरकर भी उठना जानता है वही तो चलना सीखता है, और जो चलना सीख लेता है वो एक दिन दौड़ना भी सीख लेता है ना।

0: इसी के साथ मैं आपकी दोस्त आरजी रेखा क्रिस्टल वॉइस लेती हूँ म्यूजिकल दिल लकी के सफर से विदा, लेकिन फिर से मिलूंगी 10:30 बजे लेकर दिल का मेल बॉक्स। जुड़े रहेगा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित किए जाएंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना पूरी तरह से तैयार हो चुकी है।
2: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
1: श्री मोदी कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भी शुरुआत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से अधिक के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई परिषद की बैठक में दी गई। बैठक में सेना के लिए रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु टोही वाहन, हाई मोबिलिटी वाहन, स्वचालित माइन लेयर, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, टॉल टैंक और सर्वत्र ब्रिज सिस्टम की खरीद को भी मंजूरी दी गई। लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ज़ेवियर बेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक है। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है।

0: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार को और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से बातचीत की। श्री सिंह ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में भारत और सऊदी अरब के संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय के अमूल्य योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान देने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में भारत, अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। इस पहल का उद्देश्य 6G नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और नई तकनीक को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से दुबई यात्रा के तीसरे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। डॉ यादव संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ व्यक्तिगत बैठकें भी करेंगे। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि साक्षरता ज्ञान, अवसर और बेहतर भविष्य का मार्ग खोलती है। उन्होंने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षित और सशक्त नागरिक ही विकसित भारत की नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विभिन्न स्रोतों से ज्ञान हासिल करने के महत्व पर बल दिया। संस्कृत श्लोक साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह मधुमक्खी कई फूलों से मधु एकत्र करती है, उसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति को हर क्षेत्र से उपयोगी ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। और खेलों में अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। भारतीय महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में चीन से खेलेंगी। भारतीय पुरुष पैरा रिकर्व टीम स्लोवाकिया से और पैरा कंपाउंड पुरुष टीम इराक से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Maharashtra today. In Vadodara, the Prime Minister will lay the foundation stones, inaugurate and dedicate to the nation various development projects worth more than 35,000 crore rupees. More from our correspondent.
2: A major highlight of PM's visit will be the dedication of three key sections of Western Dedicated Freight Corridor spanning 326 route kilometers. Built at a cost exceeding 20,700 crore, this marks the full completion and operationalization of the freight corridor network. The Prime Minister will also flag off the freight train services from New Sanand, New Makarpura, New Umargam and New JNPT, along with a new passenger train service between Tanda Road and Vadodara, connecting remote tribal regions of Alirajpur to the national rail network. In addition, Mr. Modi will also lay the foundation stone for three railway expansion projects worth over 9,700 crore rupees and three national highway projects costing around 1,780 crore rupees to ease the cognition and boost connectivity across Gujarat and Madhya Pradesh. He will also launch various civic and infrastructure projects of Gujarat government worth 2,600 crore, including a 110 megawatt floating solar plant at Kadana Dam and inauguration of PMAY housing units. Later, the PM will also visit Navsari to inaugurate the BJP's new AI-enabled high-tech office. Aparna Khun, Akashvani News, Ahmedabad.
1: In Maharashtra, the Prime Minister will inaugurate and address the Global FinTech Fest GFF 2026 in Mumbai this evening. Luxembourg Deputy Prime Minister and Foreign Minister Xavier Bettel has backed India's bid for a permanent seat in the United Nations Security Council, UNSC, saying the body must be reformed to reflect the realities of the present global order. In an interview with the news agency, Mr. Bettel said India's size and global importance make its inclusion in an expanded Security Council necessary. He said the UNSC could be expanded to include

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमेरिका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। ईरान ने उसकी संपत्तियों पर किसी भी हमले के जवाब में अमेरिका की ऊर्जा अवसंरचना पर कार्रवाई की चेतावनी दी। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का विषय है संभावना से प्रभाव तक, एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय कनेक्टेड वैश्विक प्रणालियां। एक रिपोर्ट।
1: इस आयोजन में डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। फेस्ट में नीति निर्माता, नियामक, बैंक, वित्तीय संस्थान, फिनटेक कंपनियां, निवेशक और तकनीकी विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2020 से एक नेतृत्व मंच के रूप में उभरा है, जो नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक कंपनियों, प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक धारकों को वित्त के भविष्य पर चर्चा करने और उसे आकार देने के लिए एक साथ लाता है। इसका 7वां संस्करण मुंबई में 11 सितंबर तक चलेगा। प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: लग्जमबर्ग के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री जेवियर पेटल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अनुसार इस निकाय में सुधार आवश्यक हैं। एक साक्षात्कार में श्री बेटल ने कहा कि आकार और वैश्विक महत्व के कारण विस्तारित सुरक्षा परिषद में भारत की जगह आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
2: श्री बेटल ने कहा कि

0: भारत का विस्तार उन प्रमुख देशों को शामिल करने के लिए किया जा सकता है जिनकी वर्तमान में कोई स्थायी भूमिका नहीं है। उन्होंने भारत और ब्राजील का उदाहरण दिया। श्री बेटल ने मौजूदा वीटो प्रणाली की आलोचना करते हुए इसे द्वितीय विश्व युद्ध का अवशेष बताया और तर्क दिया कि किसी भी एक देश को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित निर्णयों को रोकने की शक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि सुरक्षा परिषद में 2/3 बहुमत वीटो को रद्द करने में सक्षम होना चाहिए। श्री बेटल ने सुरक्षा परिषद में अधिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया की मांग की। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजुश्कन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने सऊदी अरब की यात्रा के दौरान वहां के भारतीय समुदाय से बातचीत की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात दूतावास के संरक्षण में अखिल भारतीय संचालन समिति के कार्यक्रम में हुई। श्री सिंह ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में भारत और सऊदी अरब के संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय के अमूल्य योगदान की सराहना की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान देने के लिए भी प्रोत्साहित किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव राज्य में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से संयुक्त अरब अमीरात यात्रा के तीसरे दिन आज दुबई में कई महत्वपूर्ण बैठकें करेंगे। डॉक्टर यादव संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: श्री यादव राज्य में निवेश के अवसरों और सरकार की निवेशक हितैषी नीतियों पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री शारजा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष अब्दुल्ला सुल्तान अल ओवेस से भी मुलाकात करेंगे। चैम्बर के सदस्यों और भारतीय व्यवसाय और व्यावसायिक परिषद IBPC शारजा के प्रतिनिधियों के साथ एक गोलमेज बैठक भी आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री भोपाल में आयोजित होने वाले वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2027 में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। वे मध्य प्रदेश में निवेश करें सत्र में UAE के उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। डॉक्टर यादव कल AIM कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र में भाग लिया और मध्य प्रदेश मंडप का उद्घाटन किया। उन्होंने विनिर्माण, फार्मा, पर्यटन, कृषि, लॉजिस्टिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के संबंध में UAE और रूस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकें की। उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात की अर्थव्यवस्था और पर्यटन तथा औद्योगिक निवेश पर चर्चा की। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारत 6G नेटवर्क के विकास की वैश्विक पहल में अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ शामिल हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य 6G नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करना, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना और नई तकनीक को बढ़ावा देना है।
3: अमरीकी वाणिज्य विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत ने अमेरिका और 24 अन्य देशों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि अगली पीढ़ी के नेटवर्क साझा सुरक्षा हितों को प्रतिबिंबित करें, प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करें और नवाचार को बढ़ावा दें। ये घोषणा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की G20 नवाचार मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान अमरीकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक से मुलाकात के बाद हुई। दोनों नेताओं ने 6G प्रौद्योगिकी के भविष्य और अगली पीढ़ी के दूर संचार नेटवर्क के विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर चर्चा की। बैठक के दौरान भारत और अमेरिका ने सेमीकंडक्टर, AI और डेटा केंद्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। राज्य मंत्री प्रसाद ने ISM 2.0 में अधिक अमरीकी निवेश की संभावना को प्रोत्साहित किया। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: ईरान ने चेतावनी दी है कि उसकी संपत्तियों पर अमेरिका के किसी भी और बड़े हमले से खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा अवसंरचना पर जवाबी कार्रवाई हो सकती है। इन ऊर्जा अवसंरचनाओं में अमेरिकी तेल और गैस हित भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
4: ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलीवाफ ने कहा कि हमारी संपत्तियों पर हमला करोगे तो तुम्हें भी हमला झेलना पड़ेगा। ये चेतावनी सप्ताहांत में जहाजों पर हुए अमरीकी ईरानी हमलों के बाद आई है, जिससे तेल की कीमतें लगभग 6 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। ये चेतावनी बढ़ते तनाव के बीच आई है। संघर्ष को समाप्त करने और खाड़ी क्षेत्र में सामान्य ऊर्जा प्रवाह बहाल करने के लिए किसी भी राजनयिक सफलता के कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। इस बीच

0: रविवार को वरिष्ठ ईरानी सुरक्षा अधिकारी मोहसिन रेजाई ने कहा कि ईरान जल्द ही खाड़ी में एक प्रतिबंधित क्षेत्र की घोषणा करेगा और जलडमरू मध्य के माध्यम से एक नया जहाजरानी गलियारा शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र वहां से शुरू होगा जहां से ईरान की अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी शुरू होती है। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले जहाजों को संभवतः ईरानी प्रतिबंध सूची में डाल दिया जाएगा। विश्व दर्पण के लिए जया भारती।
1: ईरान ने अधिक पेट्रोल खरीदने वाले उपभोक्ताओं के लिए ईंधन की कीमत बढ़ा दी है। दिसंबर के बाद ये दूसरा मौका है जब पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं। नई व्यवस्था के अंतर्गत महीने में 110 लीटर से अधिक पेट्रोल खरीदने पर प्रति लीटर 1,00,000 रियाल देने होंगे, जो पहले की कीमत से दोगुना है। ईरान की कमजोर होती मुद्रा और घटती क्रय शक्ति के बीच ये निर्णय लिया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार पेट्रोल महंगा होने से महंगाई और बढ़ सकती है। ईरान में महंगाई दर पहले ही करीब 67% है। ईरान में सस्ता पेट्रोल लंबे समय से लोगों के लिए अहम मुद्दा रहा है और कीमत बढ़ने पर पहले भी बड़े विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लायन ने ग्रीनलैंड के लिए 20 करोड़ यूरो के निवेश पैकेज की घोषणा की है। इसका उद्देश्य यूरोपीय संघ और ग्रीनलैंड के बीच सहयोग मजबूत करना और वहां निवेश को बढ़ाना है। ये पैकेज वर्ष 2026 और 2027 में लागू होगा। अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में आज भारत 4 स्वर्ण पदक मुकाबलों में अपनी चुनौती रखेगा। भारतीय महिला पैरा रिकर्व टीम फाइनल में चीन से खेलेगी। भारतीय पुरुष पैरा रिकर्व टीम स्लोवाकिया और पैरा कंपाउंड पुरुष टीम फाइनल में इराक से खेलेगी। वहीं मिक्स टीम W1 फाइनल में चेक गणराज्य का मुकाबला करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। लग्जमबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन किया। भारत अगली पीढ़ी के 6G नेटवर्क के विकास के लिए अमेरिका और 24 अन्य देशों के समूह में शामिल। ईरान ने उसकी संपत्तियों पर किसी भी हमले के जवाब में खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की ऊर्जा अवसंरचना पर कार्रवाई की चेतावनी दी। और भारत आज अहमदाबाद में विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला में 4 फाइनल मुकाबले खेलेगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। 10:31 हो चुके हैं और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस, और ये है दिल का मेल बॉक्स जिसका इंतजार आपको रहता है लगातार। तो जल्दी से बता दूं कि कहाँ पर भेज सकते हैं आप हमें मैसेजेस। वैसे तो आप सब जानते ही हैं, हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं आप, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ नए श्रोता जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि 9868868753 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, यानी 9868868753। जी हाँ, 9868868753। या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com। और एक बार फिर से बता दूं, fmgoldairdelhi@gmail.com। और वो जो हमारे थोड़े से शैतान श्रोता है ना, जो बार बार हमें मैसेज करते हैं, बार बार ईमेल्स करते हैं, थम जाइए भाई, थम जाइए। टाइम हुआ नहीं कि आपने बरसात करना शुरू कर दिया, ये अच्छी बात नहीं है, समझिए। क्योंकि फिर आप ही के मैसेज मुझे नज़र आते हैं और बाकी लोगों के मैसेजेस चूक जाती हूँ मैं पढ़ने से, तो ऐसे भी अच्छा नहीं लगता है ना। पढ़ूंगी मैं एक ही बार।

चाहे आप 100 बार भेजें, और ज़्यादा भेजेंगे तो फिर ये भी कोशिश होगी कि मैं आपका नाम ना ही पढ़ूँ, वही अच्छा है। और हाँ, एक और चीज़ कि इतने सारे नाम एक ही मैसेज पे मत लिख दो, पूरा गांव अगर सुन रहा है तो फिर सिर्फ पूरा गांव अपना गांव का नाम लिख दो, काफ़ी है। और अगर आप किसी चौपाल में बैठ के सुन रहे हैं तो फिर उन सबसे कहिए ना कि अपने अपने फ़ोन से ईमेल या मैसेज करें हमें। तो चलिए अब शामिल कर लेते हैं आपके मैसेजेस को। नियम कानून तो बता दिए मैंने। जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु ने हमें लिखा है होली चौक उत्तम नगर से, और मुंबई से अनुबर जातिया, शमसुल खान, अनुराज बेनारा का मैसेज हमें मिला है। असम से हितेंद्र दास ने हमें लिखा है। उग्रसेन यादव, शकुंतला यादव गरिमा ने हमें दिल्ली से लिखा है, और मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा का हमें मैसेज मिला है। और हमें किसने लिखा है, जिला खरगोन सेनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा और पूरे परिवार ने हमें मैसेज किया है। भाई जब भी आपके किसी के भी मैसेजेस में मुझे 10-15 नाम दिखाई देंगे तो मैं सिर्फ 2-3 नाम ही पढ़ूंगी, याद रखिएगा, क्योंकि इस तरह तो फिर मैं एक मैसेज से आगे बढ़ ही नहीं पाती हूँ। पंकज मोहड़ अमरावती महाराष्ट्र से हमें लिख रहे हैं, और इसके अलावा दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश का हमें पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से मैसेज मिला है। गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम का हमें पूरे परिवार के साथ नवाशहर पंजाब से हमें मैसेज मिला है। संतोष भाकरे, सुनैना और सुकन्या भाकरे, सविता भाकरे हमें लिख रहे हैं नांदेड़ महाराष्ट्र से। कमल मालूजा, मधु, सागर हमें लिख रहे हैं मजनू का टीला से। सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक का मैसेज। देखो अब एक ही मैसेज में कितने सारे नाम लिखते हैं ना आप। नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम यशफ का हमें मैसेज मिला है, और किदवई नगर से जुबैर अली, सबीहा, जुबैर, अंजुमन खान का मैसेज, फिर से वही किया आपने। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना गुरवंश सिंह जौड़ा का मैसेज, और हमें लिखा है संदीप मक्कर, ज्योति, मन्नत, भरत, पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से लिख रहे हैं, और अमित अनिल ताम्रकर, अमर, दिलीप राजू ताम्रकर और पूरे परिवार ने हमें लिखा है कहाँ से, शिवाजी चौक कटनी से। सुरेश मालोद, वर्षा मालोद हमें कोपरगांव से लिख रहे हैं। शेव गांव से हमें राम गोंदली, श्री राम गोंदली, उषा गोंदली का मैसेज मिला है। अनिल जैन, जैन साहब, संयम मुस्कान का पूरे परिवार के साथ हमें मिला है। मालियान सरधना मेरठ से, और सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन का हमें शांति नगर से मैसेज पहुंचा। धर्मेंद्र शिपा, कपिल, ईशान, पूजा का भोपालगढ़ राजस्थान से, और ये मैसेज हमें मिला है होली चौक उत्तम नगर से। फिर से देखिए, फिर से पहुंच गया। दिग्दर्शन गौड़, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया का हमें शोभापुर से मैसेज पहुंचा है, और गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जगदीश जौहरी का मैसेज। मोहम्मद सईद अब्बासी, ऊपरकोट मोहल्ला चुखुंडी बुलंदशहर से, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन और पूरे परिवार के साथ। इसके अलावा रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश, प्रीतेश और पूरे संघई परिवार का हमें मैसेज मिला है। कहाँ से, परभणी महाराष्ट्र से। सौराष्ट्र राजकोट से हमें जूली, जगदीश गुजराती और प्राची, परवीन, पुजारी का मैसेज पहुंचा। और हमारे पास ये मैसेज हमें फिर से सहारनपुर, चंद्रनगर, सुरेश नारंग, आशु नारंग और सोनाली का मैसेज। कांडला, पंदरगाह, कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल जौहरी का मैसेज, और ग्रेटर कैलाश से ओम प्रकाश दीक्षंदानी का मैसेज हमें मिला है, और साथ में ये उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश का हमें मैसेज पहुंचा। और खोरवाल साहब रुक जाइए, बहुत सारे मैसेज पहुंच गए हैं आपके हमारे पास। फकीरा फिल्म किसने लिखा है ये गीत हमें, रमेश कुमार यादव, माया यादव, रिंकू, सनी कोमल यादव का हमें मैसेज मिला है। कहाँ से नहीं पता, सिमगा सी जी से, कहाँ से है ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। गंज चुनवारा से शमसुल कमर राही, शाहीन, फातिमा, अदनान, अनु खान का मैसेज। मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, राजपाल, काजल और पूरे परिवार का ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से। सरोज चुरसिया, सुरेश, संजू, लल्ला का हमें पूरे परिवार के साथ। फरुखाबाद साहबगंज चौराहा यूपी से, और उग्रसेन यादव, शकुंतला और गरिमा का दिल्ली से, और आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ, सारिक का हमें मैसेज। मंडी टटीरी बागपत से, और मैसेजेस को शामिल करूंगी ज़रूर, लेकिन फिलहाल कुछ गीतों की बारी हो जाए तो चलिए ये गीत आपको सुनाती हूँ। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है सौराष्ट्र राजकोट से जूली, जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी ने। ये

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सब के लिए कुछ envelopes हैं। आप सब यहाँ आओ और ये envelopes ले लो।
2: मैम, मेरे वाले में तो HIV से related अलग अलग messages हैं।
3: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
4: मेरे वाले में needle या injection share करने से HIV फैलने की बात लिखी है।
5: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
6: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क।
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
7: HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
8: और अब हम वापस आ गए हैं, तो चलिए जल्दी से कुछ नाम और शामिल कर लूं। रणधीर गुप्ता, बबीता, सत्यम सुंदरम का हमें संगम विहार से मैसेज पहुंचा है, अरुण मौसम शिवम का मधुबनी से, और हमें लिखा है बिहार स्टेट बक्सर से डब्लू अंसारी, शरफुद्दीन और फातिमा नाज ने, और इसके साथ ये मैसेज हमें पहुंचा है डॉक्टर बेबी अंसारी। और देखिए डब्ल्यू साहब, ये गलत बात है, आप अलग अलग जगह से हैं क्या? एक ही जगह रहते हैं ना। इंदिरा विहार दिल्ली से ये हमें मैसेज भेज रहे हैं, और हमारे पास चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम और अदीबा का मैसेज, जगदीश धाकड़, नायमा रंजूबाई धाकड़ और युवराज सिंह का शिवांगी के साथ हमें मैसेज पहुंचा है रतलाम से, और हमें कस्मा कन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज फरहीन और पूरे परिवार ने लिखा है, और इसके अलावा रणधीर गुप्ता, बबीता, ये तो फिर से हो गया, और इसके अलावा ये मैसेज कहाँ से, ग्राम नागर कोहरा से हमें बबलू साहू, जमुना देवी साहू, राजू लल्ला और पूरे परिवार का मैसेज हमें पहुँचा है, और ये मैसेज है अफरोज शेख नेमुआ सुपौल बिहार से हमें लिख रहे हैं, फारूक अली खान का भी हमें मैसेज मिला है, कहाँ से आपने नहीं लिखा, प्रदीप सलूजा, संगीता, प्रथम और पारुल का मैसेज हमें अजय के साथ जनकपुरी से मिला है, और हमें मिला है सनावत से शेख मूसा मोहसिन का मैसेज, सतप्रकाश सनोटिया ने हमें लिखा है कहाँ से आपने नहीं मेंशन किया, पारसमणि रेडियो श्रोता हमें लिख रहे हैं गांधी चौक बाड़मेर से, बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, और ये देखिए फिर से आप वही करते हैं, हर अलग अलग जगहों से एक ही मेल में इतने सारे नाम होते हैं, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श, रामदेवदास से दिनेश चौहान, डागरी से बाबू राम जयपाल, और पुराना तालाब डुमराव से वल्ला अंसारी, असमानाज अंसारी, गुड़िया रानी और शबनम का मैसेज, और खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, बेबी अरीबा, हबीबा, पटियाला रोड गंजवाड़ा से, मीना तेमलाम से तेजस और जय हर्षिता का मैसेज हमें छिंदवाड़ा बेरडी से मिला है, आसिफ अली खान का हमें बागपत यूपी से मैसेज पहुंचा, रेनू गोयल रोहिणी से लिख रही हैं, रेशमा बेगम सलीम अख्तर हमें अलीगढ़ से लिख रहे हैं, और मन्नत मक्कड़, भारत मक्कड़ कमल के साथ पिंगावाला चौक गोरैया जालंधर से, कमलेश मुकुल, सचिन दीपांशु का हमें मैसेज पहुँचा है दिल्ली से, नाजमा बेगम, तौसीफ और कलीम यासीन के साथ हमें गंजवाड़ा से लिख रहे हैं, मधु किरण का भी हमें मैसेज पहुंचा है कहाँ से नहीं लिखा, ये मैसेज भोजपुर टागा सहारनपुर से हमें मिला है, मोहम्मद इंतज़ार, मोहम्मद जावेद,

जाकिर हुसैन और वकील अहमद का, और इसके अलावा हमारे पास मस्कीन परिवार, तुलसी मस्कीन, वीना, आशीष, चैतन्य, मेघा ने हमें लिखा है बिहारी कॉलोनी शाहदरा से, सतीश अनेजा, विमला अनेजा का चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक हमें लिख रहे हैं, अनिल शर्मा और साथियों के साथ मोहाली चंडीगढ़ से, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा और अभिजीत गवानकर और सरिता एकांश और पूरे परिवार का हमें मैसेज मिला है, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से डुगू के साथ, और ये मैसेज हमें नागलोई से राजेंद्र चड्डा, रेखा चड्डा का मिला, हितेंद्र सिंह भाटिया, एंजल और सोनू तमन्ना का हमें जमशेदपुर से मैसेज पहुंचा, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी, सोना मदीबा, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद, अभियानंद आर्य, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी और आसमा खातून का मैसेज, बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, निधि, निखिल, यश का हमें मैसेज पहुंचा है छत्तीसगढ़ से, और इससे पहले कि बाकी के मैसेजेस को मैं शामिल करूं, अब जल्दी से एक गीत शामिल करती हूं, और इसे हमें भेजा है कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा जौहरी और पायल जौहरी ने, और हमें लिखा है रमेश कुमार यादव, माया और सनी, रिंकू, कोमल यादव ने फकीरा फिल्म से गीत सुना चाहा है सिमगा से, तो लीजिए ये रहा आपकी फिल्म, आपकी पसंद का गीत।

और अब वक्त बहुत कम बचा है, जल्दी से कुछ और नाम पढ़ दूं। हीरामणि वर्मा पारस मणि का हमें दतरंगी भटापारा से मिला है, और सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे और पूरा परिवार हमें सुन रहे हैं जाफराबाद से। और इसके अलावा हमारे पास सलीम हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू और तमन्ना का ये मैसेज फिर से शायद दिख रहा है। संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया का हमें बागपत यूपी से मैसेज पहुंचा। महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी और पूरे परिवार ने हमें सुना है छत्तीसगढ़ से। और इसके अलावा हमारे पास शिव मंदिर हकीकतपुर मऊ से पूरा स्वर्णकार परिवार, मुन्ना भाई, पिंकी स्वर्णकार, राजेश कुमार और प्रीति वर्मा के साथ सुन रहे हैं। और हमारे पास ये सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका गव्या का अनारक बाजार जगराओं पंजाब से मैसेज पहुंचा। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली का मैसेज पूरे परिवार के साथ। दुर्गा कॉलोनी हांसी से हमें राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्लू डब्लू का मैसेज। और हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह और पूरे परिवार का नेपा नगर मध्य प्रदेश से। गांव फ्रांसी सहार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार, पुष्पेंद्र कुमार का मैसेज। लालगिरी गोस्वामी, हेमलता इना, हर्षित खुशी गोस्वामी का हमें मैसेज मिला है श्रीगंगानगर राजस्थान से। पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु का मैसेज। आफ्ताब अंसारी, रियाज मोहम्मद कैफ, शेरवानी स्कूल गंजुनवाड़ा से परिवार के साथ लिख रहे हैं। और हमारे पास ये मैसेज मिला है मेरा जहां गुलाब साबिर, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से लिख रहे हैं। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक का मैसेज। धनोरा विटाली तहसील नांदुरा से भगवान पाटिल, मंगेश और सचिन का मैसेज। और हमारे पास ये पहुंचा है दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायब और लड्डू का मैसेज। हमें लिखा है रघुबीर नगर से दिनेश वर्मा, करुणा रिंगनी छत्तीसगढ़ से लिख रहे हैं। और हमारे पास ये मैसेज जगदीश कुमार, राहुल, रितिका नांगलोई से हमें पहुँचा रहे हैं। झारखंड धनबाद से हमें गिरधारी लाल अग्रवाल ने लिखा है। छत्तीसगढ़ भवपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, जगदीश का मैसेज। दुखी राम यादव, स्नेहलता और कौशल यादव का बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से। और ये मैसेज कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, अशोक कुमार का, आकाश कुमार का हमें मिला है। कहां से नहीं लिखा आपने, आईएसआई कहां से लिखा है नहीं पता। और इसके अलावा ये मैसेज हमें मिला है राहुल, रितिका, जगदीश कुमार का। उमेश गाजियाबाद से हमें लिख रहे हैं। कृष्णा मेहरा, कोमल, किरण, कपिल का हमें दादरी गेट भिवानी से। इलियास कुरैशी, अब्दुल सतार अब्बासी, महेश चंद्र, प्रकाश कुमार, मनोहर सिंह का हमें कहाँ से मिला है मैसेज नहीं दिख रहा मुझे भाई, थोड़ा सा आप क्लियर लिखें। हाँ, बागपत से। तो भाई ये सब के मैसेजेस मैंने बहुत सारी कोशिश की कि मैं शामिल कर पाऊँ, फिर भी कुछ रह जाता है, तो नाराज़ मत होइए, कभी किसी रोज़ आपकी बारी भी ज़रूर आएगी। चलते चलते एक और गीत सुना दूँ, पुराना तालाब डमराव से वली अंसारी, असमानाज गुड़िया और शबनम की पसंद, ये रहा। और फिर इसी के साथ इस सफ़र से आपसे विदा लेती हूँ। 11:10 पर फिर मिलूँगी लेकर तस्वीर। जुड़े रहिएगा आकाश।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री वडोदरा में 35,000 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। पश्चिम में समर्पित माल ढुलियारे गलियारे के 3 महत्वपूर्ण खंड वे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: श्री मोदी कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलुओं के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। इस दौरान रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की है कि ये समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से बातचीत की। श्री सिंह ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में भारत तथा सऊदी अरब के संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय के अमूल्य योगदान की सराहना की। श्री सिंह ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 के विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में योगदान देने के लिए भी प्रोत्साहित किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और डॉ जितेंद्र सिंह आज मध्य प्रदेश के विदिशा में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में कैंसर के मरीजों की देखभाल के लिए कीमोथेरेपी डे

केयर यूनिट का उद्घाटन करेंगे। ये नई इकाई कैंसर के मरीजों को बेहतर और सुव्यवस्थित ढंग से कीमोथेरेपी सेवाएं उपलब्ध कराएगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। यूनेस्को ने 26 अक्टूबर 1986 को आम सभा के 14वें सत्र में 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। 1967 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षित और सशक्त नागरिक ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज भारत रत्न डॉ भूपेन हजारिका की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ हजारिका की आवाज ने पूर्वोत्तर की भावना को पूरे देश तक पहुंचाया। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि भूपेन हजारिका के संगीत ने असमिया संस्कृति को उसकी संपूर्ण विविधता के साथ विश्व मंच पर पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त

आ जाओ भाई हमारे घुमक्कड़ दोस्तों, चलो कहीं घूमने के लिए चलते हैं। और मुझे पता है कि आपको इंतज़ार रहता है कि कहीं तो आज चलेंगे कहीं बढ़िया सी जगह पर। तो चलिए, इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, पहले बता दूं कि 11:11:17 हो चुके हैं और ये है FM गोल्ड, आपका पसंदीदा चैनल 100.1 MHz पर। और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त, आवाज़ से तो पहचान ही जाते हैं आप, लेकिन नाम फिर भी बता देती हूँ, आज रेखा क्रिस्टल वॉइस है आपके साथ। और आज हम कहाँ चले हैं, आज हम चलेंगे भाई गुलाबी नगरी, गुलाबी शहर। जी हाँ, किसे कहते हैं पता है ना आपको? मुझे मालूम है, सबको पता है गुलाबी शहर, जिसे हम जयपुर के नाम से भी जानते हैं। और ये जो शहर है अपने आप में, क्योंकि गुलाबी रंग से रंगा हुआ है, तो इसकी खासियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि गुलाबी शहर है, गुलाबी रंग से रंगा है, इसीलिए तो इसे गुलाबी शहर कहते हैं। और यहाँ के जो लोग हैं ना, वो भी वाकई बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे से हैं, क्योंकि यहाँ पर जो खूबसूरत पोशाकों में आपको लोग देखने को मिलते हैं ना, उनका तो क्या कहने भाई। आप जयपुर में पहुँच जाइए फिर तो आप वहाँ के रंग में रंग ही जाएंगे। लेकिन जयपुर में बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ यही नहीं, क्या क्या है देखने के लिए आज सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। दोस्तों, विद्याधर भट्टाचार्य द्वारा नियोजित जयपुर को ना पहला नियोजित शहर होने का गौरव प्राप्त है। अपने रंग बिरंगे रत्नों के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है ये। और राजस्थान की राजधानी शहर अपने प्राचीन इतिहास के आकर्षण को महानगर की सभी खासियतों के साथ जोड़ता है। यहाँ पर वो हर खासियत मिलेगी जो किसी भी महानगर में होती है। हलचल भरा आधुनिक शहर स्वर्णिम त्रिभुज के तीन कोनों में से एक, जिसमें दिल्ली, आगरा और जयपुर शामिल है। और 876 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत के दौरे पर आए थे, चूंकि गुलाबी रंग आतिथ्य का प्रतीक होता है और इसलिए जयपुर के महाराजा राम सिंह ने पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंग दिया था। शहर को रंगने वाला गुलाबी रंग देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और जयपुर, नाहरगढ़, जयगढ़ और गढ़ गणेश मंदिर और किलों की पृष्ठभूमि में राजसी ढंग आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जयपुर की उत्पत्ति 1727 में हुई थी, जब इसे आमेर के राजा जयसिंह द्वितीय ने स्थापित किया था। प्रसिद्ध वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य ने शहर के निर्माण के लिए वास्तुशास्त्र के स्थापित सिद्धांतों का इस्तेमाल किया था। भाई ये तो हुई जयपुर की थोड़ी सी जानकारी, लेकिन बहुत सारी जानकारी अगर आप चाहते हो तो फिर जुड़े रहना मेरे साथ इस सफर में, जिसे हम कहते हैं तस्वीर। शुरू करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ।

भाई यहाँ पर बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जो आपको देखनी चाहिए। जयनिवास उद्यान में लाइट एंड साउंड शो आप देख सकते हैं, जो कि राजस्थान के पहले 3D प्रोजेक्शन मैपिंग आधारित लाइट एंड साउंड शो में से एक है, जिनमें 25,000 लुमेन के 3 चिप DLP प्रोजेक्टर, DMX नियंत्रित LED लाइट्स और बहुत सारे ऑडियो सराउंड सिस्टम यहाँ पर लगाए गए हैं। शो में जयपुर के विश्व प्रसिद्ध गोविंद देव जी मंदिर की कहानी को दर्शाया गया है, जिसमें ब्रजनाभ यानी भगवान कृष्ण के जो प्रपौत्र थे द्वारा श्री गोविंद देव जी की मूर्ति की नक्काशी, वृंदावन में श्री गोविंद देव जी मंदिर की स्थापना, मंदिरों पर आक्रमणकारियों के हमलों के कारण मूर्ति का छिपना और चेतना महाप्रभु जो है श्री चेतना महाप्रभु के शिष्यों द्वारा मूर्ति की पुनः खोज, जयपुर के राजा द्वारा गोविंद जी की मूर्ति लाना, जयनिवास उद्यान में श्री गोविंद जी की स्थापना, ये सब कुछ शामिल है। तो आपको ये वाला लाइट एंड साउंड शो जरूर देखना चाहिए। और अगर मैं बताऊं आपको यहाँ पर घूमने के लिए, तो भाई आमेर का किला, जो कि अगर आप जयपुर जाते हैं तो बहुत खास है और इसे तो आपको जरूर अपनी लिस्ट में शामिल करना चाहिए। जयपुर से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर है ये, अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है और आमेर के कछवाहों का गढ़ था ये कभी, जब तक की राजधानी को मैदानी इलाकों में स्थानांतरित नहीं कर दिया गया था, जिसे आज जयपुर कहा जाता है। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों में स्थित ये महल हिंदू और मुगल शैलियों का सुंदर मिश्रण है और राजा मानसिंह प्रथम ने 1592 में इसका निर्माण शुरू किया था और ये बहुत ही खूबसूरत महल है, तो आपको इसे जरूर एक बार देखना चाहिए। अगर मैं बात करूं तो आप जा सकते हैं सिटी पैलेस, जो कि चार दीवारी वाले शहर के भीतर स्थित एक कॉम्प्लेक्स की परिकल्पना और निर्माण है, जो कि जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई सिंह द्वितीय ने कराया था और मुगल और राजपूत वास्तुकला का एक सुंदर मिश्रण आपको यहां भी देखने के लिए मिलता है। ये महल अभी भी अंतिम शासक शाही परिवार का घर है, जो महल के एक निजी हिस्से में रहते हैं। महाराजा सवाई सिंह द्वितीय को ज्यादातर संरचनाओं के निर्माण का श्रेय जाता है, लेकिन बाद के शासकों द्वारा इसका विस्तार भी किया गया था। तो ये एक और बहुत खूबसूरत जगह है जिसको आपको देखना चाहिए। सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स में मुबारक महल आपको देखने को मिलेगा और महारानी का महल, जो कि यहाँ पर रानी का महल भी कहलाता है, ये भी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक संग्रहालय है जिसमें महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय का संग्रहालय आप इसे कह सकते हैं, शाही परिधान और नाजुक पश्मीना कश्मीरी शॉल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, बनारस रेशम की साड़ियां, सांगेनेरी प्रिंट और लोक कढ़ाई के परिधान का एक विशाल संग्रह भी यहां पर प्रदर्शित है, तो ये आपको जरूर देखना चाहिए। और कुछ दिलचस्प राजपूती हथियार भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 15वीं शताब्दी के बताए जाते हैं। हथियारों के अलावा महल की छत पर सुंदर चित्रकारी है जिसका रखरखाव बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर आपको जरूर जाना चाहिए। जंतर मंतर एक जगह है यहाँ पर देखने के लिए, जैसे कि दिल्ली में भी है, तो ऐसा जंतर मंतर जहाँ पर आप यूनेस्को की विश्व धरोहर के तौर पर इसे जानते हैं, जयपुर में जंतर मंतर को जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। खगोलीय वेधशालाओं में से सबसे बड़ा माना जाता है इसे, ये 16

ज्यामितीय उपकरण हैं यहाँ पर, जिन्हें समय मापने, खगोलीय पिंडों को ट्रैक करने और सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का निरीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है। और अगर मैं बात करूं तो हवा महल चले जाइए, ये भी बहुत खास है यहाँ पर देखने के लिए, जिसका शाब्दिक अर्थ है हवाओं का महल। 1799 में कवि राजा सवाई प्रताप सिंह ने अपने और अपने परिवार के लिए गर्मियों में विश्राम के लिए इसे बनवाया था। और ये एक ऐसी जगह है, जगह थी भी उस समय में भी, जहां शाही घराने की महिलाएं बिना खुद को देखे रोजमर्रा की जिंदगी यहां पर देख पाती थी। और एक अनूठी 5 मंजिला ये संरचना है, बिल्डिंग है, हिंदू और इस्लामी वास्तुकला का मिश्रण है। छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं, कई झरोखे हैं, और इसी से हवा जो है वो इस महल में जाती है, बाहर निकलती है। जब छोटे छोटे झरोखों से हवा क्रॉस होती है, और बहुत सारे झरोखे जब एक ही दीवार पर होते हैं या एक महल के चारों तरफ होते हैं, तो फिर वो जो छोटी हवा का जो बहाव होता है छोटे छिद्रों से, वो बहुत ठंडा होता है। कभी आपने नोटिस किया, जब आप मुंह खोल के हवा मुंह से बाहर निकालते हैं तो गर्म आती है, लेकिन जब आप मुंह को गोल करके और तब हवा फेंकते हैं तो ठंडी हवा बाहर आती है। तो यही राज है कि पुराने समय में ऐसे छोटे छोटे झरोखे बनाए जाते थे ताकि ठंडक को अंदर बुलाया जा सके गर्मी की बजाय। अगर बड़े झरोखे होंगे तो गर्म हवा अंदर आएगी, लेकिन अगर छोटे छोटे झरोखे होंगे तो फिर उनसे ठंडी हवा आएगी और महल जो है वो ठंडा रहेगा। तो ये एक वास्तुकला देखने के लिए बहुत खूबसूरत जगह है, आपको ज़रूर यहाँ जाना चाहिए। विज्ञान और वास्तुकला का एक खूबसूरत नमूना आपको ये देखने को मिलेगा। और खिड़कियों की जो एक तरह से एयर कंडीशनिंग का ये काम करते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सजावट भी कह सकते हैं की हुई है नक्काशियों से, और यहाँ के लोग इसे देखते ही हैं, लेकिन बाहर से भी दूर दूर से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय भी है एक जगह, जिसे केंद्रीय संग्रहालय भी कहते हैं, और इस इमारत का नाम लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय से लिया गया है, जो इसकी डिजाइन की प्रेरणा भी है। शानदार ढंग से निर्मित अल्बर्ट हॉल रामनिवास गार्डन के केंद्र में है, और सर स्विंटन जैकब, जो कि राजस्थान में कई और महलों के पीछे भी मास्टरमाइंड है, इन्हें सरसैनिक वास्तुकला शैलियों का उपयोग करके इसकी अवधारणा और डिजाइन को तैयार किया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स ने 1876 में इमारत की आधारशिला रखी थी। और इस संग्रहालय में आपको धातु की वस्तुएं, लकड़ी के शिल्प, कालीन, पत्थर और धातु की मूर्तियां, हथियारों और शस्त्रों का बहुत अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। इसमें बूंदी, कोटा, किशनगढ़, उदयपुर और जयपुर कला विद्यालयों की लघु चित्रों का भी एक बड़ा संग्रह है, ये भी आपको जरूर देखने को मिलेगा। और अगर आप चाहें तो चले जाइएगा नाहरगढ़ किला, और इसके बारे में क्या खास है बताऊंगी जरूर, पर इस गीत के बाद जुड़े रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: तो भाई जयपुर की सैर पर निकले हैं आज आप और हम, और मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर देखने के लिए क्या क्या है। तो एक और जगह है जिसे हम नाहरगढ़ किला के नाम से जानते हैं। अरावली पहाड़ियों की एक चोटी पर गर्व से स्थित है ये, जो जयपुर शहर के लिए एक प्रभावशाली उत्तरी पृष्ठभूमि बनाता है। और इसका निर्माण 1734 में जय सिंह के शासनकाल के दौरान किया गया था और बाद में 1868 में इसका विस्तार किया गया। नाहरगढ़, जिसका अर्थ है बाघों का निवास, एक दुर्जय बाधा थी जो दुश्मनों पर हमला करने से जयपुर की रक्षा करती थी। मतलब जो दुश्मन जयपुर की तरफ बढ़ते थे उन्हें रोकने का काम ये करती थी। तो इसलिए भी ये बहुत खास है। और इसकी दीवारों के भीतर किले में माधवेंद्र भवन है, जो शाही परिवार के सदस्यों के लिए ग्रीष्मकालीन एक स्थान था जहां पर वो समय बिताते थे। सवाई माधो सिंह द्वारा निर्मित महल में रानियों के लिए 12 मिलते जुलते ऐसे प्लेसेस हैं, स्पेसेस हैं जहां पर वो भी निवास करती थी, जिनके शीर्ष पर राजा के लिए एक स्वीट भी है। और सभी नाजुक जो दीवारें हैं उन्हें, गलियारों को, सभी को भित्ति चित्रों से सजाया गया है। आज भी महल स्थानीय पिकनिक मनाने वालों के लिए पसंदीदा स्पॉट है। रात में यहां पर किले की जो लाइटिंग होती है वो बहुत शानदार होती है, तो उसे ज़रूर आप देखें। और अगर मैं बात करूं एक और जगह की, तो ये है जयगढ़ किला, जो कि जयपुर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है। जयगढ़ किला सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा 18वीं शताब्दी की शुरुआत में शुष्क चट्टानी और कांटों से ढकी पहाड़ियों के बीच बनवाया गया था। अपने प्राचीन निर्माण के बावजूद ये अभी भी भव्य गढ़ की ज़्यादातर उपस्थिति को बरकरार रखे हुए हैं। यहाँ आने वाले लोगों के बीच दुनिया की सबसे तो

यहाँ पर प्रदर्शित की जाती है, दिखाने के लिए रखी हुई है, तो ये भी आप देख सकते हैं, जिसका नाम है जयबाण। तो ये भी एक यहाँ का मेन आकर्षण है। और अगर मैं बात करूँ तो बिरला मंदिर है यहाँ पर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसे बिरला मंदिर भी कहते हैं, जैसे कि इसे ज़्यादातर लोकप्रिय रूप में जाना जाता है। मोती डोंगरी के तल पर स्थित है ये, और एक ऊँचे मंच पर ये स्थापित है। और अगर मैं बात करूँ तो ये संगमरमर से बना हुआ है, और इसकी जो खासियत है वो यही है कि यहाँ पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, जिन्हें नारायण भी कहा जाता है, और उनकी साथ ही लक्ष्मी जी की भी यहाँ पर आराधना होती है। इन दोनों को ये समर्पित है मंदिर। और इसके अलावा ये मंदिर जो है वो कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, तो आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए। मंदिर के गुंबद और यहाँ की नक्काशी अपने आप में बहुत खास है। संगमरमर के एक टुकड़े से उकेरी गई लक्ष्मी और नारायण की छवियों पर जब आपकी नजर जाती है, तो ये अपने आप में सचमुच एकदम मन जीतने वाला अनुभव आपको देता है। और यहीं पर एक संग्रहालय भी है, जिसमें बिरला परिवार की पुरानी चीजें प्रदर्शित हैं, तो आपको ये भी जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जल महल है जयपुर में सबसे शानदार जगहों में से एक, खूबसूरत जल महल या लेक पैलेस इसे आप कहते हैं। हल्के रेत के रंग की पत्थर की दीवारें और पानी का गहरा नीला रंग एक बहुत ही खूबसूरत कंट्रास्ट बनाते हैं, और ये महल मानसागर झील के बीच में तैरता हुआ प्रतीत होता है, जहाँ इसके शानदार बाहरी हिस्से पर पर्यटक जो है वो अगर इसकी नक्काशी को देखते हैं, इसकी खूबसूरती को देखते हैं, तो ये अपने आप में बहुत ख़ास है। और इसके साथ साथ गोविंद देव जी का मंदिर भी है, जहां आप जा सकते हैं। कृष्ण मंदिर का एक दुर्लभ शिखर रहित मंदिर है ये, इसमें गोविंद देव जी की मूर्ति है, जिसे सवाई जयसिंह वृंदावन से लेकर आए थे, और पूर्व राज परिवार द्वारा पूजे जाने वाले इस देवता को स्थानीय लोग भी पूजते हैं, तो गोविंद देव जी की यहाँ पर काफ़ी मान्यता है, और यहाँ पर भी श्रद्धालु काफ़ी मात्रा में पहुँचते हैं, काफ़ी तादाद में पहुँचते हैं। इसके साथ साथ मोती डोंगरी गणेश का मंदिर है। मोती डोंगरी एक छोटी पहाड़ी है, जिसके चारों तरफ जयपुर शहर बसा है। मोती डोंगरी का मतलब है मोती की पहाड़ी, क्योंकि ये पहाड़ी वास्तव में मोती की बूंद जैसी दिखती है, और यहाँ पर आने वाले लोग जयपुर के सबसे पवित्र और ख़ास धार्मिक मंदिर प्रसिद्ध गणेश मंदिर में पूजा करने के लिए यहां आते हैं। गणेश मंदिर का निर्माण सेठ जयराम पालीवाल ने 18वीं शताब्दी की शुरुआत में करवाया था, और यहां पर एक किंवदंती भी है कि मेवाड़ के राजा एक लंबी यात्रा के बाद अपने महल की ओर लौट रहे थे, और एक बैलगाड़ी पर एक विशाल गणेश प्रतिमा लादकर वो ले जा रहे थे। राजा ने तय किया कि जहां भी बैलगाड़ी रुकेगी, वहां भगवान गणेश की मूर्ति के लिए एक मंदिर बनवाएंगे। जाहिर है बैलगाड़ी मोती डोंगरी के तल पर रुकी थी, जहां आज मंदिर स्थित है। पहाड़ी के ठीक ऊपर एक अनोखा महल भी है, स्कॉटिश महल की प्रतिकृति इसे आप कह सकते हैं, और ये कभी महाराजा सवाई मानसिंह का शाही घर था, ये अभी भी शाही परिवार के पास है, और इस महल का नज़ारा सचमुच बेहद अनोखा है, तो आपको इसे भी ज़रूर देखना चाहिए। और भी कुछ बताऊंगी, लेकिन इस गीत के बाद

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: ग्यारह बजकर 38 मिनट और 38 सेकंड्स हो चुके हैं। आप हैं इस वक्त तस्वीर के सफर में मेरे यानी आर्जेरिका क्रिस्टल वॉइस के साथ और हम आज जयपुर की सैर पर निकले हैं। तो आपको मैं बता रही थी कि यहाँ पर घूमने के लिए कौन कौन सी प्लेसेस हैं। तो यहाँ एक दिगंबर जैन मंदिर भी है। जयपुर में प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर जो है वो शहर से 14 किलोमीटर दूर सांगानेर में स्थित है। सांगे जी मंदिर में मुख्य मूर्ति जो है वो पद्मासन यानी कमल की स्थिति में मुद्रा में भगवान आदिनाथ की है और मंदिर लाल पत्थर से बना है और इसमें आकर्षक नक्काशी है। 7 मंजिला मंदिर में आसमान छूते शिखर हैं और इसका आंतरिक गर्भगृह जो है वो एक पत्थर का मंदिर है जिसमें 8 आसमान छूते हुए शिखर आपको नजर आएंगे। तो ये भी अपने आप में एक बहुत खास जगह है, आपको जरूर जाना चाहिए। और गलता जी एक जगह है जहां आप जा सकते हैं। जयपुर का एक प्राचीन तीर्थ स्थल है, निचली पहाड़ियों के बीच स्थित है और ये पर्यटकों से अक्सर भरा रहता है। यहाँ आकर्षणों की बात करूं तो स्थान यहाँ पर मंदिर है, मंडप है, पवित्र कुंड है और प्राकृतिक झरने या पानी के टैंक जो आपको देखने को मिलेंगे वो एक तरह के पवित्र कुंड माने जाते हैं। यहाँ पर कुंड की तरह से बने हैं। गलता जी आने वाले पर्यटक रामगोपाल जी मंदिर के परिसर में यहाँ पर पहुँचते हैं और जिसमें स्थानीय रूप से बंदर मंदिर कहा जाता है, इसे गलवार बाग भी कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बंदर आपको देखने को मिलते हैं। इसे ये नाम वहाँ रहने वाले बंदरों की वजह से ही मिला है, उनके समूह की वजह से मिला है। गलता जी हरा भरा परिदृश्य और चहचहाते बंदर इस क्षेत्र की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। पहाड़ी की चोटी पर सूर्य देवता को समर्पित एक छोटा सा मंदिर है जिसे सूर्य मंदिर कहा जाता है और इस मंदिर को अगर मैं बात करूँ तो दीवान कृपाराम द्वारा ये

निर्मित है। मंदिर को शहर में कहीं से भी देखा जा सकता है, तो ये अपने आप में बहुत अनूठी बात है। और अगर मैं बात करूं तो कनक वृंदावन आप जा सकते हैं, आमेर के रास्ते में नाहरगढ़ पहाड़ियों की तलहटी में स्थित कनक वृंदावन स्थानीय लोगों के बीच पिकनिक के लिए लोकप्रिय है। खूबसूरती से बनाए गए इस बगीचे में एक जटिल नक्काशीदार मंदिर है, कई सीढ़ीदार जगहें हैं जहाँ पर आप घूम फिर सकते हैं, संगमरमर के स्तंभ और जालियाँ हैं जो इसे फिल्म शूटिंग के लिए भी एक स्वप्निल जगह बनाते हैं, तो कई फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पर होती हैं। और अगर बात करूँ तो अमर जवान ज्योति है, यहाँ आप जा सकते हैं। या अगर मैं बात करूँ अमर सैनिकों की लौ, राजस्थान के शहीदों को समर्पित एक स्मारक है। ये स्मारक जयपुर के विधानसभा भवन के पास स्थित है। अमर जवान ज्योति का मुख्य आकर्षण ये है कि संरचना के चारों ओर कोनों पर मशालें हमेशा जलती रहती हैं। शाम के समय ये जो जगह है ये चमकीले रंगों में जगमगाती है और शानदार प्रकाश इसके आसपास नजर आता है। काफी लोकप्रिय है ये यहाँ आने वालों के बीच। इसके अलावा आप चाहें तो महारानी की छतरी देखने के लिए जा सकते हैं। महारानी की छतरी जयपुर के शाही परिवारों की महिलाओं के लिए एक विशेष अंतिम संस्कार स्थल था और ये आमेर किले के रास्ते में स्थित है। वैसे तो ये एक शमशान भूमि है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये काफी प्राचीन है और बेहतर नक्काशीदार समाधि स्थल यहाँ पर बने हुए हैं। संगमरमर से बने हैं तो स्थानीय पत्थरों से भी इनको बनाया गया है। लोकप्रिय मान्यता के अनुसार समाधि स्थल पर छत की संरचना तभी बनाई जाती थी जब रानी की मृत्यु उसके राजा से पहले हो जाती थी। अगर वो राजा के बाद मृत्यु को प्राप्त होती थी तो ये नहीं होता था, ऐसी छतरियां नहीं बनाई जाती थी। इन समाधियों की एक खास विशेषता है कि ये जो छतरियां हैं ये इनका इस्तेमाल किया गया है जो कि राजपूतों की एक सर्वोकृति कहा जा सकता है या सर्वोत्कृष्ट स्थापत्य की शैली में ये बनी हुई है और ये भी इसकी खास बात है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो और भी ऐसी प्लेसेस हैं जैसे कि यहाँ जैविक उद्यान है नाहरगढ़ का, इसे भी आप देख सकते हैं। एक काइंड ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये जो जयपुर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है, जयपुर दिल्ली राजमार्ग पर है। 720 हेक्टेयर के बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है ये, तो यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। अलग अलग पक्षियों को, अलग अलग जीवों को, जानवरों को यहाँ पर आप देख सकते हैं और आपको बहुत सारे चीज़ें आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। अगर मैं बात करूँ तो भेड़िए, हिरण, मगरमच्छ, भालू, हिमालयी काला भालू, जंगली सुअर, लकड़ बंगाल टाइगर, ऐसी बहुत सारी एशियाई शेर, बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ मिलती हैं। एक तरह का जू भी है ये। तो ये 15 मार्च से 14 अक्टूबर तक खुला रहता है, सुबह 8:30 से शाम 5:30 बजे तक का वक्त रहता है ये। 15 अक्टूबर से 14 मार्च तक इसे बंद कर दिया जाता है। अगर आप इस बीच में जाते हैं, बंद नहीं होता है, मतलब टाइम चेंज हो जाता है तो मैं आपको बता दूं कि 15 अक्टूबर से 14 मार्च तक जो समय है वो बदलता है, 9 बजे से सुबह 5:00 बजे तक ये खुलता है और मंगलवार को बंद रहता है। बंद होने की बात यहाँ पर थी, तो भाई ध्यान रखिएगा कि जब भी आप यहाँ जाएं तो मंगलवार का दिन ना हो। और इसके अलावा आप यहाँ जा सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर अंदर जाने के लिए टिकट आपको लेना होता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अगर बात करूँ मैं जयपुर वैक्स म्यूजियम की, तो ये भी है, अगर वक्त बचा तो जरूर बताऊंगी। फिलहाल एक गीत आपके लिए।

तो मैं आपको बता रही थी कि वैक्स म्यूजियम भी है यहाँ पर अरावली की तलहटी में नाहरगढ़ किले के बीच जयपुर वैक्स म्यूजियम है, जिसे देखने के बाद आप निश्चिंत रूप से हैरान रह जाएंगे। इसे एंटरटेनमेंट सेवन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। प्रसिद्ध हस्तियों की 30 से अधिक मोम की मूर्तियां यहाँ पर आपको दिखाई देंगी, जिनमें की भगत सिंह, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, माइकल जैक्सन जैसी कई मूर्तियां हैं। अमिताभ बच्चन की मूर्ति है यहाँ पर, महारानी गायत्री देवी की मूर्ति है, और भी सवाई जयसिंह द्वितीय की मूर्ति यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 10 फुट लंबी बुलेट गति गामिनी राजस्थान पर्यटन की खास मोटरबाइक का प्रदर्शन भी है। और इसके अलावा 10 बजे से सुबह 6:30 बजे शाम तक ये खुला रहता है। कुछ शुल्क आपको यहाँ पर जाने के लिए देना होता है, तो आप ये ध्यान में रखकर जाएं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ आप जा सकते हैं। राज मंदिर है यहाँ पर, जहाँ आप देख सकते हैं एक अलग तरह का थिएटर है ये, यहाँ पर आपको फिल्मों के प्रदर्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन ये एक तरह का राजसी फील देता है, तो इसलिए भी इसे खास माना जाता है। माधवेंद्र पैलेस है, यहाँ आप जा सकते हैं। अक्षरधाम मंदिर है, इसके अलावा जगत शिरोमणि मंदिर है, मूर्ति कला पार्क जो है वो नाहरगढ़ में स्थित है, इसे भी आप देख सकते हैं। झालाना सफारी पार्क है जयपुर में, ये आप देख सकते हैं। मसाला चौक पर आप जा सकते हैं, ये भी यहाँ पर बहुत सारे कैफेज हैं, अलग अलग तरह का स्ट्रीट फूड आप यहाँ पर चख सकते हैं, तो ये भी एक जगह है जो बहुत खास है। आपको पहुंचना कैसे जयपुर जल्दी से बता दूं, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सांगानेर हवाई अड्डा कहा जाता है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, जोधपुर, उदयपुर और कई भारतीय अलग अलग प्लेसेस से ये अच्छी उड़ानें उपलब्ध हैं यहाँ के लिए। जयपुर से दुबई, मस्कट, सिंगापुर और बैंकॉक के लिए भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं, तो आप यहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। कार की बात करूँ तो जयपुर की यात्रा करने का सबसे सुविधाजनक तरीका है सड़क मार्ग से। आप बाय कार या बाय बस यहाँ पर पहुँच सकते हैं। राजस्थान के सभी प्रमुख शहरों से एसी और डीलक्स बसेस आसानी से मिल जाती हैं। ट्रेन की बात करें तो जयपुर दिल्ली, आगरा, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, बेंगलोर, सभी जगहों से यहां की अच्छी रेल से कनेक्टिविटी है, तो आप

के ज़रिए भी यहाँ पहुँच सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो भाई जयपुर जो है वो एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर का संगम है। यहाँ पर महल, बावड़ी, धार्मिक स्थल और बहुत सारे ऐसे पर्यटन प्लेसेस हैं जहाँ पर आपको जाना चाहिए। हवेलियाँ हैं राजपूताना शैली में बने हुए, बहुत सी ऐसी आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे जो कि आप यहाँ देखने लायक हैं और देखना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ यहाँ की संस्कृति की, तो भाई यहाँ की कल्चर में तो आप जानते ही हैं कि एक गुलाबी शहर तो ये है ही अपने आप में। मेहमान नवाजी के बहुत शौकीन लोग यहाँ पर रहते हैं और जयपुर की संस्कृति स्थानीय मेलों और त्योहारों के उत्सव में भी दिखाई देती है। ज़्यादातर यहाँ समुदाय में त्यौहार मनाते हैं लोग। और इसके अलावा अगर यहाँ के जैसे कि गणगौर की पूजा यहाँ पर की जाती है, तीज मनाई जाती है, हरियाली तीज जिसे कहते हैं, और मकर संक्रांति का भी त्यौहार यहाँ बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो ऐसे बहुत से त्यौहार हैं जब मेहंदी लगाकर यहाँ पर काफ़ी उत्साह के साथ इन्हें मनाया जाता है। हाथी मेला, ऊँट मेला यहाँ पर लगता है और इसके अलावा यहाँ पर अलग अलग जीवों के लिए मेले लगते हैं। राजा और जमींदार हाथी रखते थे जिस समय में। जयपुर की इस पालतू संस्कृति को मनाने के लिए एक अलग अलग मेलों का आयोजन यहाँ पर किया जाता है और इनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो भाई यहाँ पर बहुत से महोत्सव भी होते हैं, जैसे कि शीतला माता महोत्सव, मेवाड़ महोत्सव, नागौर महोत्सव, रेगिस्तान महोत्सव, मकर संक्रांति मेला और सीता माता मेला। तो ये सब आप देख सकते हैं। ये भी ख़ास है यहाँ पर, यहाँ के लिटरेचर फेस्टिवल का हिस्सा बन सकते हैं। जयपुर का ये भी काफ़ी लोकप्रिय है। नृत्य और संगीत की बात करें तो यहाँ संस्कृति के शौकीन, लोक नृत्य संस्कृति के शौकीन लोग यहाँ पहुँचते हैं और इसे देखते हैं। नृत्य और गायन शामिल होता है यहाँ की संस्कृति में। और घूमर, चरी जैसे अलग अलग नृत्यों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा जयपुर में नृत्य की कथक शैली विकसित करने के लिए एक ख़ास जगह है। शास्त्रीय नृत्य क्षेत्र में भी ये अपनी एक ख़ास जगह रखता है। कला हस्तशिल्प की बात करूँ तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऐसा सामान मिल जाएगा जो हाथ से बनाया जाता है। ब्लू पॉटरी, सिल्वर ज्वेलरी मेकिंग या फिर पारंपरिक कपड़ा उत्पाद जैसे कि जरदोजी, जरी, बंदनी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें, बगरू ब्लॉक प्रिंट आपको यहाँ मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आप खरीद के भी अपने घर ला सकते हैं। यहाँ के खूबसूरत लहरिया प्रिंट वाली ड्रेसेस आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ के भोजन की, तो भाई घेवर, गजक, फेनी, चौगुनी के लड्डू, मूंग थाल जैसी मिठाइयाँ यहाँ पर बहुत फेमस हैं। बाटी चूरमा, मिसी रोटी, दाल बाटी चूरमा, इसे आप ले सकते हैं। ये बहुत ख़ास है। क्या कुछ नहीं है अगर मैं बात करूं जयपुर की, सचमुच वक्त कम पड़ जाता है और मुझे लगता है कि जयपुर का गुणगान बखान करना बिल्कुल कम पड़ता है मुझे इतने समय में, क्योंकि जयपुर है ही इतना खूबसूरत। इतना कुछ है यहाँ पर देखने को और इतना कुछ है यहाँ से ख़रीद कर लाने को, यादों में संजो कर लाने को। तस्वीरें आप यहाँ पर ले सकते हैं जयपुर की संस्कृति की, यहाँ की अलग अलग चीज़ों की। सचमुच जयपुर की यात्रा अगर आप बार बार भी करें ना अपने जीवन में, तो भी आपका मन बार बार खींचा चला जाएगा जयपुर की तरफ। इतना खूबसूरत है ये शहर। तो इससे पहले कि वक्त ख़त्म हो जाए, मुझे एक प्यारा सा गीत आप तक पहुंचा देना चाहिए। और इस गीत के साथ ही अब क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है तो मैं इजाज़त भी ले लेती हूं आपसे, क्योंकि अब इसके बाद बातें ज़्यादा नहीं कर पाऊंगी मैं आपसे। लेकिन फिर किसी रोज़ किसी और सफ़र में आपसे मुलाकात ज़रूर होगी और आपको बहुत सारे खूबसूरत गीत और जानकारियों का ख़जाना यहाँ पर ज़रूर मिलता रहेगा। फ़िलहाल ये प्यारा सा गीत आपके लिए और मैं चलती हूँ। आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस जुड़े रहेगा FM गोल्ड के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। वे वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। वे पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WDFC के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित करेंगे। अहमदाबाद में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना पूरी तरह तैयार हो चुकी है।
1: डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्ट और वेस्ट, ये दोनों देश के लिए बहुत बड़ी एक बैकबोन की तरह है ट्रांसपोर्टेशन में। वो प्रोजेक्ट अब कंप्लीट हुआ पूरी तरह से, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के प्रति समर्पित करेंगे। ये परियोजना ऐसी है जिसमें कई वर्ष लगे, 2014 में प्रधानमंत्री ने उस काम को हाथ में लिया, जितनी भी उसमें प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया।
0: श्री मोदी कई रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सरकार की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने सऊदी अरब में भारतीय समुदाय से बातचीत की। श्री सिंह ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में भारत और सऊदी अरब के संबंधों को मजबूत करने में भारतीय समुदाय के अमूल्य योगदान की सराहना की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने भारत को एक महत्वपूर्ण राजनयिक केंद्र बताया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह समूह द्विपक्षीय व्यापार और रणनीतिक सहयोग प्रगाढ़ करने के लिए एक मजबूत मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि ईरान ने भारत के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों के महत्व पर बल दिया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और डॉ. जितेंद्र सिंह आज मध्य प्रदेश के विदिशा में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में कैंसर के मरीजों की देखभाल के लिए कीमोथेरेपी डे केयर यूनिट का उद्घाटन करेंगे। ये नई इकाई कैंसर के मरीजों को बेहतर और सुव्यवस्थित ढंग से कीमोथेरेपी सेवाएं उपलब्ध कराएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। 1967 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षित और सशक्त नागरिक ही विकसित भारत की मजबूत नींव है।

चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल एक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। कल भारत अंतिम पूल मैच में चीनी ताइपे से मुकाबला करेगा। ये मैच जीतने पर भारत सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगा। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 427 अंक गिरकर 75,705

तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह का मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आज का दिन है बहुत ही खास, बेहद खास, यानी कि आज है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। कहते हैं किताब किसी इंसान की जिंदगी बदल सकती है, लेकिन शिक्षा पूरी पीढ़ी की तस्वीर बदल सकती है। साक्षरता का मतलब सिर्फ अपना नाम लिखना नहीं है, इसका मतलब है सोच पाना, समझ पाना, सवाल पूछ पाना। आज की दुनिया में करीब 77 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास बुनियादी साक्षरता नहीं है, और 6 करोड़ से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर हैं। और इसके अलावा इस साल 2026 में इसकी 60वीं वर्षगांठ है, और थीम आज की है यानी कि साक्षरता दिवस की, लोक, पृथ्वी और स्मृति के लिए साक्षरता। इस दिन का उद्देश्य सिर्फ लोगों को पढ़ना लिखना सिखाना नहीं, बल्कि शिक्षा के महत्व को समझाना और हर व्यक्ति तक ज्ञान की रोशनी पहुंचाना है। साक्षरता से ही किसान नई तकनीक सीखता है, महिला अपना हक समझती है और देश तरक्की करता है। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति पहली बार अपना नाम खुद लिखता है, किसी को चिट्ठी पढ़कर सुनाता है, किसी फॉर्म को बिना मदद से भरता है, या फिर अपने अधिकारों को समझ पाता है, तो उसके अंदर कितनी सारी खुशियां और आत्मविश्वास की एक नई रोशनी जगती है, और यही साक्षरता की असली ताकत है। साक्षरता हमें केवल अक्षर पहचानना नहीं सिखाती, बल्कि सही और गलत में फर्क करना, अपने फैसले खुद लेना और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाना भी सिखाती है। आज के डिजिटल दौर में साक्षरता का अर्थ और भी व्यापक हो जाता है। जैसे किताब और कागज़ के साथ साथ मोबाइल, इंटरनेट और डिजिटल माध्यमों को समझना भी ज़रूरी है, ताकि कोई व्यक्ति जानकारी के अभाव में पीछे ना रह जाए। आइए इस साक्षरता दिवस पर हम संकल्प लें कि हम अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करेंगे जिसे इसकी ज़रूरत है, क्योंकि शिक्षा एक छोटा सा प्रयास किसी के पूरे जीवन को बदल सकता है, और अक्षर से, ज्ञान से, आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से ही बनता है एक बेहतर समाज।

अभी आप सुन रहे थे सितंबर फिल्म से गीत, जिसे गाया था आशा भोसले और किशोर कुमार ने। और अब बात कुछ करते हैं खास।

आप सुन रहे थे अपने अपने फिल्म से गीत, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने। और दोस्तों अब बात करते हैं विश्व फिजियोथेरेपी दिवस की। क्या कभी चोट, दर्द या किसी बीमारी के बाद हमें अपने शरीर की सामान्य गतिविधियां करने में परेशानी हुई है? ऐसे समय में फिजियोथेरेपी हमारी जिंदगी को फिर से सामान्य लय में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर साल 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया जाता है और इस दिन का उद्देश्य खास तौर पर लोगों के स्वास्थ्य एवं जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यानी कि फिजियोथेरेपी केवल दर्द कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि चोट के बाद शरीर की ताकत और गतिशीलता वापस लाने में और पाने में, सर्जरी के बाद रिकवरी के मदद करने में और कई शारीरिक समस्याओं से बचाव में भी सहायक हो सकती है। नियमित व्यायाम, सही मुद्रा और शरीर की जरूरत के अनुसार गतिविधियां हमें लंबे समय तक स्वस्थ और सक्रिय रखने में मदद करती हैं। आज के समय में हमारी जीवन शैली भी बदल रही है। घंटों बैठकर मोबाइल में और कंप्यूटर पे हमें काम करना, उसका अधिक इस्तेमाल करना और ख़ास तौर पर बैठकर ही हम हर समय काम करते हैं। शारीरिक गतिविधियों की कमी के कारण गर्दन, कमर और कंधों में दर्द जैसी समस्याएं आम होती जा रही हैं। अपने शरीर की आवाज़ सुने, सक्रिय रहें और ज़रूरत पड़ने पर योग्य फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह लें। याद रखिए, स्वस्थ शरीर ही सक्रिय और खुशहाल जीवन की मजबूत नींव होती है और जिंदगी खुशनुमा और भी खूबसूरत बनती जाती है।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और अमित कुमार को फिल्म थी तेरी कसम। और दोस्तों बात करते हैं आज महापर्व पर्युषण पर्वारंभ जैन धर्म की। आज हम बात कर रहे हैं जैन धर्म के अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण पर्युषण पर्व के आरंभ की। पर्युषण केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि यह आत्मचिंतन संयम तप और आत्मशुद्धि का अवसर है। इन दिनों व्यक्ति बाहरी दुनिया की भागदौड़ से थोड़ा विराम लेकर अपने अंदर झांकने का प्रयास करता है। पर्युषण का संदेश है अपने विचारों वाणी और कर्मों को बेहतर बनाना। इस दौरान उपवास ध्यान प्रार्थना स्वाध्याय और संयम जैसे आध्यात्मिक कार्यों पर विशेष

ध्यान देते हैं। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में सच्ची शांति केवल सुख सुविधाओं से नहीं बल्कि मन की शुद्धता और अच्छे कर्मों से मिलती है। पर्युषण के दौरान क्षमा का विशेष महत्व है। हम अपने द्वारा जाने अनजाने में किसी को पहुंचाए गए दुख के लिए क्षमा मांगते हैं और दूसरों को भी क्षमा करते हैं। यही भावना आगे चलकर मिच्छामी दुक्कडम के रूप में व्यक्त होती है। तो आइए इस पावन पर्व के अवसर पर हम भी अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, लोभ और नकारात्मकता को कम करने का संकल्प लें। किसी का दिल दुखाया हो तो क्षमा मांगे, दूसरों की गलतियों पर भी दिल साफ करें। पर्युषण पर्व हमें यही सुंदर संदेश देता है कि अपने भीतर बदलाव लाइए, मन को निर्मल बनाइए और प्रेम, करुणा और क्षमा के साथ जीवन को आगे बढ़ाइए।

और दोस्तों अब बात करते हैं कुछ हंसी मजाक करें पर किसी का दिल ना दुखाएं। जिंदगी में हंसी मजाक बहुत जरूरी है। एक छोटी सी हंसी और एक प्यारी सी मुस्कान कभी कभी पूरे दिन का मूड बदल देती है। दोस्तों के साथ मजाक हो, परिवार के साथ हंसी मजाक हो या फिर सहकर्मियों के साथ हल्की फुल्की बातचीत, ये पल जिंदगी में खुशियों के रंग भर देते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मजाक वही अच्छा है जिसमें सब हंसें, किसी एक का दिल ना दुखे। अक्सर हम मजाक करने के बाद ही कह देते हैं, अरे मैं तो मजाक कर रहा था या कर रही थी। लेकिन जिस इंसान को हमारी बात से ठेस लगी हो, उसके लिए सिर्फ मजाक नहीं होता। किसी के रंग रूप, शरीर, आर्थिक स्थिति, परिवार या किसी भी निजी कमजोरी को मजाक का विषय बनाना शायद हमें कुछ पल के लिए हंसा दे, लेकिन सामने वाले के दिल में वो बात लंबे समय तक टिक जाती है। तो क्यों ना ऐसा मजाक करें जिसमें प्यार हो, सम्मान हो, अपनापन हो। अपने दोस्तों के साथ मज़ेदार किस्से साझा कीजिए, बचपन की शरारतें याद कीजिए और ऐसी बातें याद कीजिए जिन्हें सुनकर हर चेहरे पर मुस्कान आ जाए। और अगर कभी मजाक करते हुए महसूस हो कि सामने वाला असहज महसूस या उदास हो गया है तो तुरंत रुक जाइए और दिल से सॉरी कह दीजिए या माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि माफ़ी मांगने से इंसान छोटा नहीं बल्कि बड़ा बनता है। तो आज का संदेश बहुत ही सरल है, हंसी बांटिए, खुशियां बांटिए, लेकिन किसी के आंसू की वजह मत बनिए, क्योंकि सबसे अच्छा मजाक वही है जिसके बाद चेहरे पर मुस्कान भी रहे और अपनापन भी रहे।

0: दोस्तों, आप क्या सुनना चाहते हैं? आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? आपके सुझाव और आपके विचार और आपकी पसंद का स्वागत है। आप हमें मेल भेज सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com।
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।

जी हाँ दोस्तों, और इस तरह से शुक्रिया शुक्रिया हम भी आपको कहेंगे जब आपके खूब ढेर सारे हमारे पास मैसेज आएंगे। अब बात करते हैं कुछ महिलाओं के कौशल विकास की। आज हम ऐसे विषय को लेकर आए हैं जो आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और समाज की प्रगति से साथ सीधे जुड़ा है। महिलाओं का कौशल विकास यानी ऐसी कला या योग्यता जिसके जरिए हम अपने ज्ञान का काम में बदल सकते हैं। सिलाई कढ़ाई, खाना बनाना, ब्यूटी, वेलनेस, कंप्यूटर, डिजिटल तकनीक, हस्तशिल्प, खेती, व्यवसाय या कोई भी आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण या हर तरह का कौशल महिला के लिए नए अवसरों के दरवाजे खोल देता है। और महिलाओं का कौशल विकास इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि वह उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में मदद करता है। जब एक महिला अपने हुनर से कमाई करती है तो उसके भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने परिवार के फैसले में भी अपनी अधिक मजबूती से भाग ले पाती है। और ख़ास तौर पर आज के युग में महिलाओं के लिए घर बैठे ही सीखने और काम करने के अनेक अवसर हैं। और इसके अलावा जैसे कि सोशल मीडिया और ई कॉमर्स जैसे माध्यमों के छोटे व्यवसाय को भी बड़े बाजार तक पहुंचाना आसान बनाया है। लेकिन कौशल विकास का मतलब सिर्फ रोजगार पाना नहीं, ये महिलाओं को अपने सपनों को पहचानने और उन्हें पूरा करने का अवसर भी देता है। तो एक प्रशिक्षित और आत्मनिर्भर महिला अपने बच्चों और आसपास की दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए ज़रूरत है कि परिवार और समाज महिलाओं की प्रतिभा को पहचाने, उन्हें सीखने के अवसर दे और उनके हुनर पर भरोसा करे। तो याद रखिए, एक महिला का कौशल सिर्फ उसकी अपनी ताकत नहीं बनता बल्कि पूरे परिवार और समाज की तरक्की का आधार भी बनता है। तो आइए महिलाओं को केवल अवसर देने की बात ना करें बल्कि उन्हें सीखने, आगे बढ़ने, आत्मनिर्भर बनाने और जरूरी कौशल और विश्वास भी देना बहुत ज़रूरी है।

और अब बात करते हैं कुछ प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की। केंद्र सरकार की एक नई पहल प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की, जिसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और कृषि क्षेत्र को अधिक सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत देश में चुनिंदा कृषि प्रधान जिलों में खेती की खास तौर पर आधुनिक तकनीक अपनाने, सिंचाई सुविधाओं में सुधार, फसल विविधीकरण और भंडारण व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही किसानों को बेहतर प्रशिक्षण, नई तकनीकों की जानकारी और कृषि से जुड़ी सुविधाओं का लाभ उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। इस योजना का मकसद केवल अधिक उत्पादन करना ही नहीं, बल्कि किसानों की लागत कम करना और खास तौर पर उनकी आय बढ़ाना और खेती को अधिक टिकाऊ बनाना भी है। यदि यह योजना प्रभावी ढंग से लागू होती है तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। अगर आप किसान हैं तो आपके परिवार में कोई खेती से जुड़ा है या अपने नजदीकी कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र में इस योजना की जानकारी जरूर लें और देखें कि इसका लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसी उम्मीद के साथ कि हमारी खेती और हमारे किसान दोनों समृद्ध हों।

0: और दोस्तों अब हम यही कहना चाहते हैं कि हमें यूं ही सुनते रहिए घर आंगन के शो में, और इसी वादे के साथ आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। होगी आपसे अगली मुलाकात, तब तक के लिए अपनी दोस्त खुश सिमरन कौर को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: मेरे घर के

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WGFC के 3 महत्वपूर्ण खंड राष्ट्र को समर्पित किए। प्रधानमंत्री इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: 50,000 आधुनिक कोच तो किए ही, करीब 2.5 लाख वैगन, मालगाड़ी के लिए जो वैगन होते हैं, भारतीय रेल में जोड़े गए हैं। 2.5 लाख। साथियों, अब भारत चीप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है। यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी। और ये हम सोलर पावर के मामले में देख रहे हैं, जैसे कड़ाना डैम पर जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट प्रोजेक्ट है, कुछ साल पहले तक देश में सोलर प्रोजेक्ट लगाने बहुत महंगे पड़ते थे, क्योंकि पीवी मॉड्यूल से लेकर हर प्रकार का हार्डवेयर इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन बीते वर्षों में हमने भारत में ही पीवी मॉड्यूल बनाने शुरू किए।
0: प्रधानमंत्री आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। इसमें डिजिटल भुगतान, वित्तीय समावेशन और नई तकनीकों के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर विचार विमर्श होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नेते और महासागर संबंधी पहलुओं के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रभावित छात्रों और मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डोसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। 1967 में पहली बार इस दिवस का आयोजन किया गया था। इसका उद्देश्य व्यक्ति, समुदाय और समाज के लिए साक्षरता का महत्व उजागर करना है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोगों से शिक्षा को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने की अपील की कि कोई भी सीखने से वंचित न रहे।

जी हाँ, सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 MHz और वक्त हो गया है कलाकार बेमिसाल का। आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात करेंगे गायिका आशा भोसले जी की। जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं। उन्होंने अपनी मधुर आवाज़ और अलग अंदाज से हर दौर और हर पीढ़ी को अपना दीवाना बनाया। उनकी आवाज़ में मोहब्बत के साथ साथ मस्ती भी थी तो शरारत और चुलबुलाहट भी थी। ऐसे भी गीत उन्होंने गाए जिनमें दर्द सुनाई दिया। उनका एक खास और अलग अंदाज था जो उन्हें बाकी गायिकाओं से बिल्कुल अलग करता था। वो सिर्फ एक गायिका नहीं थी बल्कि अपने आप में एक दौर थी। उनके जीवन में गीत और संगीत भरा हुआ था और अपने गीतों के जरिए, आवाज के जरिए वो हमेशा याद की जाती हैं और याद की जाएंगी। तो आज कलाकार बेमिसाल के जरिए हम बात करेंगे आशा ताई की। जी हाँ, और सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 MHz। मैं हूँ रुचिका आपके साथ।

जी हाँ, आशा भोसले की आवाज़ का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने रोमांटिक गीतों, गज़लों से लेकर जोशीले डांस नंबर्स, हर तरह के गानों में अपनी एक खास पहचान बनाई है। आपको बता दें कि आज कलाकार बेमिसाल के ज़रिए हम बात कर रहे हैं गायिका आशा भोसले जी की। उनका जन्म आज ही के दिन यानी 8 सितंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली में हुआ था। उनका बचपन संगीत के माहौल में बीता। छोटी उम्र में ही उनका संगीत का सफ़र शुरू हो गया था और धीरे धीरे हिंदी सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित गायिकाओं में वे शुमार हो गई थी। और आपको बता दें कि ख़ास बात ये है कि उन्होंने खुद को कभी एक तरह के गानों तक सीमित नहीं रखा। उनके करियर में कैबरे, पॉप, लोकगीत, गज़ल, भजन और फिल्मी गीतों से लेकर नॉन फिल्मी गीत शामिल थे। इन सब का एक शानदार मेल देखने को मिलता है।

कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं, और ऐसी ही एक आवाज़ आशा भोसले जी की है। जी हाँ, आशा भोसले जी की आज हम जयंती मना रहे हैं, और उनकी आवाज़ जो है वो सिर्फ कानों तक ही नहीं बल्कि सीधे दिल में उतर जाती है। आशा भोसले की आवाज़ में इतना दम था कि उनकी गायकी केवल सुरों और तालों का संगम नहीं थी बल्कि भावनाओं का एक ऐसा संसार थी जिसमें हर एक रंग हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। उनकी गायकी में कभी अदाओं की चंचलता हमें महसूस होती थी तो कभी एक दर्द की गहराई का हमें एहसास होता था, और आशा जी ने अपनी हर आवाज़ में हर एहसास को जिया है।

लगभग 8 दशक लंबे करियर में उन्होंने फिल्म संगीत को बहुत सारे ऐसे अनगिनत यादगार गीत दिए हैं, और ख़ास तौर से उनकी ताकत ये थी कि उन्होंने समय के साथ खुद को बदला, लेकिन अपनी पहचान को कभी भी उन्होंने खोने नहीं दिया, और यही वजह है कि उनकी आवाज़ आज भी उतनी ही ताज़ा, प्रभावशाली और बेहद आकर्षक महसूस होती है जितनी कि शुरुआती दौर में थी। तो चलिए उनके अंदाज में, उनकी आवाज़ में एक और गीत हम आप तक पहुंचाते हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz।

आपको बता दें कि आशा भोसले ने अपने दौर के लगभग हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया था। शुरुआत करते हैं ओपी नैयर साहब से। उनकी मुलाकात आशा भोसले से 1952 में हुई थी। सीआईडी, हम सब चोर हैं, बाप रे बाप, दुनिया रंग रंगीली, नया दौर जैसी हिट फिल्मों में उन दोनों ने साथ में काम किया। फिल्म नया दौर की सफलता से तो नैयर और आशा जी की जोड़ी सुपरहिट हो गई थी। इन फिल्मों के अलावा हावड़ा ब्रिज, किस्मत, मेरे सनम, तुमसा नहीं देखा, एक मुसाफिर एक हसीना, कश्मीर की गली जैसी सुपरहिट फिल्मों में संगीतकार नैयर और गायिका आशा भोसले की जोड़ी ने खूब वाहवाही बटोरी। वहीं बात की जाए संगीतकार खयाम के साथ भी आशा भोसले जी ने उनके काम को सराहा गया। उनके साथ में उन्होंने फुटपाथ, फिर सुबह होगी, उमराव जान जैसी फिल्मों में काम किया था। रवि की बात की जाए तो उनके साथ भी आशा जी ने कई सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें वचन, घराना, गृहस्थी, काजल और फूल और पत्थर, दिल का ठग, वक्त, चौधवी का चांद, गुमराह, बहु बेटी, चाइना टाउन, आदमी और इंसान, धुंध, हमराज जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। अब बात करते हैं एसडी बर्मन यानी सचिन देव बर्मन साहब की। इनके साथ तो आशा भोसले ने एक से बढ़कर

सुपरहिट गीत दिए थे जिनमें 9-2-11, काला पानी, काला बाजार, इंसान, जाग उठा लाजवंती सुजाता और तीन देवियां शामिल हैं। बप्पी लहरी को हम कैसे छोड़ सकते हैं? बप्पी लहरी की बात ना हो जब हम आशा भोसले की बात करते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। फिल्म हथकड़ी, नमक हलाल, शराबी, हिम्मत वाला, मवाली, तोहफा, प्रेम प्रतिज्ञा, एतबार जैसी फिल्मों में उन्होंने आशा जी के साथ काम किया था। और अब बात कर लेते हैं हमारे पंचमदा यानी आरडी बर्मन साहब की। तो उनके साथ उनकी ऐसी जुगलबंदी थी आशा भोसले की कि एक बार उन्होंने उनका हाथ थामा और उसके बाद जिंदगी भर उन दोनों का साथ नहीं छूटा। फिल्मों की बात की जाए तो कारवां, हरे रामा हरे कृष्णा, अपना देश, यादों की बारात, जवानी दीवानी, बुढ़ा मिल गया, इजाज़त, सागर जैसी सुपरहिट फिल्मों में इन्होंने अपने गीत, संगीत और आवाज़ से खूब वाहवाही बटोरी थी। और फिलहाल आप तक पहुंचाते हैं फिल्म कारवां से आशा भोसले जी की आवाज़ में ये सुपरहिट गीत। सुनते रहिए एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: Monica!
1: वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।

0: great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आशा भोसले जी की. आपको बता दें, आशा भोसले जी ने अपने दौर के लगभग हर बड़े संगीतकार के साथ काम किया था, चाहे वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हो, नौशाद अली हो, रविंद्र जैन हो, एन दत्ता, हेमंत कुमार रोशन, कल्याण जी, आनंद जी, उषा खन्ना, जतिन ललित, नदीम श्रवण, अनु मलिक, शंकर जयकिशन, जयदेव और चाहे हो ए आर रहमान, और इन सब के साथ वे सुपरहिट साबित हुई थी. और अपने करियर में उन्होंने एक नहीं बल्कि ढेरों अवार्ड्स और सम्मान अपने नाम किए. 2008 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया भारत सरकार के द्वारा. 2018 में पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें बंगा विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया. वहीं महाराष्ट्र भूषण उन्हें प्राप्त हुआ 2021 में, और 7 बार वे फिल्मफेयर अवार्ड से भी नवाजी जा चुकी हैं. 2 बार उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिला उमराव जान और इजाज़त फिल्म के लिए. वहीं आपको बता दें, आशा भोसले पहली ऐसी भारतीय गायिका बनी थी जो ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नामांकित की गई थी, और 2000 में उन्होंने दादा साहेब फाल्के अवार्ड अपने नाम किया था.

0: कलाकार बेमिसाल में बस इतना ही। फिलहाल वक्त हो चला है समाचारों का, सुनते रहिए एफएम गोल्ड।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और कौम के नाम वक्फ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने 2800 किलोमीटर के बार बर्दारी के लिए मखसूस कॉरिडोर की तकमील को 21वीं सदी के भारत के लिए एक तारीखी हुसूलियाबी बताया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम मुंबई में आलमी फिनटेक फेस्ट GFF 2026 का इफ्तिताह करेंगे और खिताब करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान से मुतालिक कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर 2019 के एक हतके इज्जत मामले में समन वापस लेने से इनकार कर दिया है। IMD ने बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, मगरबी बंगाल और मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्सों में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। और आज अहमदाबाद में भारत ने 2026 आलमी पैरा तीरंदाजी सीरीज में सोने के 2 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वडोदरा में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा, जिनकी लागत 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म ने माल लाने ले जाने वाली मखसूस मगरबी राहदारी के 3 अहम हिस्सों को मुल्क के नाम वक्फ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने न्यू सनंत, न्यू मकरपुरा, न्यू उम्बरगांव और न्यू GNPT से मालबरदार रेलगाड़ी को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ साथ टांडा रोड और वडोदरा के दरमियान एक नई पैसेंजर ट्रेन का भी आगाज किया। ये ट्रेन अलीराजपुर के दूरदराज के कबायली इलाकों को कौमी रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एक बड़े इज्तिमे से खिताब करते हुए भारत के ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स शोबे को तेजी से तब्दील करने की बात भी उजागर की। उन्होंने मालबरदारी की मखसूस राहदारियों की तकमील के लिए कहा, जिनकी तवालत 2800 किलोमीटर से ज्यादा है, जो 21वीं सदी के भारत की एक तारीखी हुसूलियाबी है और मुल्क के कामकाज के बदलते हुए कल्चर का एक सबूत है।
2: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने इशारा दिया कि अगरचे इस प्रोजेक्ट का तसव्वुर 2006 में पेश किया गया था, लेकिन इस पर कई साल तक कार्रवाई न हो सकी। इसके बरक्स पिछली दहाई में इस पर तेजी से काम शुरू हुआ और इसकी वजह से लॉजिस्टिक्स के कौमी इको निज़ाम में पूरी तरह तब्दीली आ गई। आज ये मालबरदारी की राहदारी तेजी से तरक्की करते हुए भारत के लिए अशद जरूरी हो गई है। बाद में वज़ीर-ए-आज़म नवसारी का दौरा करेंगे और वहां BJP के नए AI से लैस हाईटेक दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। मुंबई में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का इफ्तिताह करने वाले हैं, जिसका शुमार दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे मुअस्सर सालाना फिनटेक कॉन्फ्रेंसेस में होता है। 4 रोजा ये फेस्ट 11 सितंबर को इख्तिताम पजीर होगा। तफसील हमारे नामा निगार से।
3: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का ये 7वां एडिशन है, जो आज मुंबई में शुरू हो रहा है। इस फेस्ट का आगाज 2020 में किया गया था। GFF कायदाना प्लेटफॉर्म का एक बैन अलावामी तस्वूर बनकर उभरा है, जहां पॉलिसी साज, जाब्तकार, मरकजी बैंकों से वाबस्ता शख्सियतें, माली इदारे, फिनटेक टेक्नोलॉजी से मुतालिक कंपनियों से वाबस्ता शख्सियतें, सरमायाकार तालीमी इदारों से वाबस्ता शख्सियतें और दीगर आलमी मुतालिका फरीकैन मुस्तकबिल की मालियात को शक्ल देने के लिए यकजा होते हैं। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं

0: दली।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज कांग्रेस मेंबर पार्लियामेंट राहुल गांधी को जारी किए गए समन को मुस्तरद करने से इनकार कर दिया है। ये समन 2019 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी की रायजनी पर हतके इज्जत के एक केस में जारी किया गया था। जस्टिस एनआर बोरकर की इनफरादी बेंच ने जनाब गांधी की ये दरखास्त मुस्तरद कर दी, जिसमें मैजिस्ट्रेट की एक अदालत के उस हुक्म को चैलेंज किया गया था जिसके तहत राहुल गांधी के खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू की गई थी। हाईकोर्ट ने अलबत्ता मैजिस्ट्रेट की अदालत में इस समात को 6 हफ्ते तक मुलतवी करने की 2021 की हिदायत को बरकरार रखा। इस तरह जनाब गांधी को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की मोहलत मिल गई है। इस केस का ताल्लुक राफेल सौदे के बारे में जनाब गांधी की 2018 की रायजनी पर एक हतके इज्जत की शिकायत से है। उनके वकीलों ने इसे एक बेजा शिकायत करार दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मशहूर गुलूकार और आसाम कानून साज असेंबली के साबिक मेंबर भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका के 100वें यौमे पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि डॉक्टर हजारिका की आवाज ने आसाम और शिमाल मशरक की रूह को पूरे मुल्क तक पहुंचाया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी मशहूर गुलूकार और आसाम कानून साज असेंबली के साबिक मेंबर भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका को उनके यौमे पैदाइश पर अकीदत पेश किया। दिफाई साजो सामान की सरकारी खरीद से मुतालिक काउंसिल ने दिफाई अफवाज के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की तजवीजों को मंजूरी दे दी है। हमारे नामा निगार ने बताया है कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में काउंसिल की मीटिंग के दौरान ये मंजूरी दी गई। आज खानगी का बैनुल अक्वामी दिन है। ये दिन अफराद बिरादरियों और मुआशरों के लिए खानगी की अहमियत की याद दहानी कराने के लिए हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस साल खानगी के बैनुल अक्वामी दिन का मौजू है अवाम के लिए खानगी, कुर्राए अर्ज और खुशहाली। पेश है एक रिपोर्ट।
2: 1966 में अपने आम इजलास के दौरान यूनेस्को ने बैनुल अक्वामी यौम खानगी का आगाज किया था। ये दिन तेजी से बदलती हुई दुनिया में खानगी में इजाफा, मौजूदा और उभरते हुए चैलेंजों की गहरी समझ और मुस्तकबिल के एजेंडों का जायजा लेने का मौका फराहम करता है। बैनुल अक्वामी यौम खानगी 2026 मनाने के लिए यूनेस्को मेक्सिको की हुकूमत के साथ मिलकर मेक्सिको में अवाम के लिए खानगी, कुर्रा अर्ज और खुशहाल के मौजू पर एक आलमी तकरीब का इनेकाद कर रही है। इस प्रोग्राम में यूनेस्को बैनुल अक्वामी खानगी इनामात भी पेश किए जाएंगे। 2015 से खानगी में इजाफा, पायदार तरक्की और अमन कायम करने में इसके तआवुन का जायजा लेना आलमी इजलास का अहम मकसद है। पीएस विष्णु की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
1: अक्वामे मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के माहिरीन ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में बलोच शहरी इमरान अली की ताकत के बल पर मुबैना गुमशुदगी और गैर कानूनी हलाकत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। माहिरीन ने पाकिस्तान से जोर देकर कहा है कि वो इस हलाकत के वाक़े की आज़ाद, मुनसिफाना और गहरी तहकीकात करे। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने अगले 2 दिन के दौरान भारत के शिमाल मशरकी हिस्सों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD के मुताबिक बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और मगरबी बंगाल में आज इसी तरह का मौसम रहेगा। उधर अंडमान निकोबार जजायर, बिहार, ओडिशा, मगरबी बंगाल के हिमालयी इलाके, सिक्किम और तेलंगाना में अगले 2 दिन के दौरान गरज चमक के साथ बारिश होगी और तेज हवाएं चलने के इम्कान हैं। आज अहमदाबाद में आलमी पैरा तीरंदाजी सीरीज में भारत ने सोने के 2 तमगे जीते हैं। हरविंदर सिंह और विजय संधी ने मर्दों के पैरा रिकर्व डबल्स के फाइनल में स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर आलमी पैरा तीरंदाजी सीरीज में अपना लगातार 3रा टाइटल जीता। इधर खवातीन के पैरा रिकर्व डबल्स में पूजा और भावना को चांदी का तमगा मिला। वो फाइनल में चीन की खिलाड़ियों से 6-0 से हार गई। कंपाउंड डिवीजन में तोमर कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने इराक के खिलाड़ियों को 139 के मुकाबले 152 पॉइंट से हराकर मर्दों का डबल्स का टाइटल हासिल किया। हॉकी में भारत की मर्दों की जूनियर टीम आज चीन के शहर मोकी में एशिया कप सेमीफाइनल में जगह बनाने के करीब है। उसने जनूबी कोरिया को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और कौम के नाम वक्फ किया। वजीर आजम ने 2800 किलोमीटर के बारबरदारी के लिए

0: today. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। कहा, भारत उन्नत रेलगाड़ियों और मेट्रो कोच के निर्माण का वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ वर्ष 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार किया। बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे WFDC के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में तेजी से बदलाव का उल्लेख किया।
2: इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्तधारा का आह्वान किया है। इस सप्तधारा में एक धारा गति शक्ति की भी है। आज 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि इस परियोजना की परिकल्पना वर्ष 2006 में की गई थी, लेकिन इस दिशा में आगे प्रगति नहीं हुई। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में इस पर तेजी से हुए काम ने देश के लॉजिस्टिक तंत्र को पूरी तरह बदल दिया है, जो तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है।
2: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपने उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। चिप से शिप तक स्थानीय उत्पादों के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश के अंदर संपूर्ण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा रही है।
2: साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है। यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
1: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने न्यू सानंद, न्यू मकरपुरा, न्यू उमरगांव और न्यू JNPT से मालगाड़ी सेवाओं को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा उन्होंने टांडा रोड और वडोदरा के बीच नई यात्री रेल सेवा को भी झंडी दिखाई। ये सेवा अलीराजपुर के दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 9,700 करोड़ रुपए से अधिक की 3 रेल विस्तार परियोजनाओं और लगभग 1,780 करोड़ रुपए की 3 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसका उद्देश्य गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करना है। उन्होंने गुजरात सरकार की 2,600 करोड़ रुपए की विभिन्न नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री नवसारी भी जाएंगे, जहां वे भारतीय जनता पार्टी के नए AI सक्षम और अत्याधुनिक कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे।
3: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का 7वां संस्करण आज से मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। GFF वर्ष 2000

0: 2020 से ही नीति निर्माताओं, नियामकों, केंद्रीय बैंकों, वित्तीय संस्थानों, फिनटेक और प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, शिक्षाविदों और अन्य वैश्विक हितधारकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में उभरा है। GFF 2026 का विषय है प्रभाव डालने की क्षमता, एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय जुड़ी हुई वैश्विक प्रणालियां। GFF में इस वर्ष एजेंटिक AI, प्रोग्रामेबल फाइनेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी जैसे विषयों पर चर्चा आयोजित की गई है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के एक लेख को आज साझा किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि मातृ वंदना योजना के 10 वर्ष और पोषण माह पर आधारित ये लेख आंगनवाड़ी व्यवस्था को जन आंदोलन बनाने के संदेश को दर्शाता है। महिला और बाल विकास मंत्री ने अपने लेख में कहा कि आंगनवाड़ी समाज से अलग कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारे आसपास के समुदाय का अभिन्न हिस्सा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि दीर्घकालिक साझेदारी और गहरे ऐतिहासिक तथा दशकों से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों के कारण श्रीलंका भारत की पड़ोसी पहले नीति और महासागर संबंधी पहलों के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण साझेदारों में से एक है। रक्षा मंत्री श्रीलंका में रहने वाले भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: अपडेट रहे, आगे रहें। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी टिप्पणियों को लेकर वर्ष 2019 के मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति NR बोरकर की एकलपीठ ने श्री गांधी की याचिका को खारिज किया। याचिका में उन्होंने मैजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसके अंतर्गत उनके खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने मैजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई को 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने के अपने 2021 के निर्देश को बरकरार रखा। ये मामला रफाल सौदे पर राहुल गांधी की वर्ष 2018 की टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा है कि इस याचिका को सुनवाई के लिए कल स्वतः सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में PG इमारत ढहने के बाद ये याचिका दायर की गई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। संवाददाताओं से मुख्यमंत्री ने कहा कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उन्होंने घायल छात्रों के अभिभावकों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी।
3: सारी स्थिति को देखते हुए हमने पेरेंट्स को भी इंश्योर किया है कि उनका इलाज पूरी तरीके से अच्छा हो और सरकार उसमें उनकी पूरी मदद करेगी, हर तरह की सहायता करेगी और जो बच्चे का या लेबर का जो परिवार है उनको हम हर तरह की आर्थिक मदद भी करेंगे और सभी पेरेंट्स से हम टच में हैं, किसी भी तरह की कोई जरूरत की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आलोचना की है। नई दिल्ली में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है और फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। श्री भाटिया ने संगरूर जिले की घटना का जिक्र किया जिसमें एक निवासी ने राज्य के मंत्री हरपाल सिंह चीमा से नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं ने उसे कथित रूप से धमकाया और मंत्री से माफी मांगने को कहा था। इसके बाद उस निवासी ने आत्महत्या कर ली थी। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नई दिल्ली में मणिपुर के संगीतकार चोंगथाम विक्रम सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया।

0: है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि पूर्वोत्तर के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा और गरिमा सर्वोपरि है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से त्वरित कार्रवाई और गहन जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। दक्षिण पूर्वी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने बताया कि इस मामले में कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है।
1: श्री विक्रम सिंह जी मूल रूप से मणिपुर के निवासी है। वो अपनी गली में एकत्रित कुछ लड़कों के साथ उनकी कहासुनी हुई शोर शराबे के ऊपर। उसके बाद वो कहासुनी के बाद उन दोनों पक्षों में हाथापाई हुई जिसमें इनको कुछ चोटें आई। इनकी फैमिली द्वारा इनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां पर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट सुबह 7 बजे के करीब इनकी डेथ हो गई। पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करते हुए अभी तक हमने इसमें टोटल 7 लोग अरेस्ट करे हैं और एक माइनर को अप्रिहेंड किया।
0: तमिलनाडु विधानसभा में वाणिज्य कर और पंजीकरण मंत्री डी लोकेश तमिल सेल्वन ने तमिलनाडु वस्तु एवं सेवा अधिनियम में और संशोधन करने वाला एक विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य केंद्रीय अधिनियम के साथ एक रूपता बनाए रखने के लिए अधिनियम में संशोधन करना है। तमिलनाडु विधानसभा ने आज केंद्र सरकार से समुदायों और उनकी सामाजिक स्थिति की जानकारी के लिए जाति आधारित जनगणना को स्पष्ट रूप से शामिल करने का आग्रह किया। सदन में प्रस्ताव पर बोलते हुए सदस्यों ने सुझाव दिया कि जस्टिस पार्टी का जनगणना मॉडल एक व्यापक मॉडल है। दिल्ली यातायात पुलिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव के सिलसिले में आज छात्र संवाद कार्यक्रम और चुनाव प्रचार को देखते हुए यातायात परामर्श जारी किया है। शाम 4 बजे तक नॉर्थ कैंपस के आसपास के इलाकों में यातायात प्रभावित रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: और ज्यादा खबरों के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और YouTube पर न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और तेलंगाना में कल तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी और सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी आने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत मिली है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हालांकि कुछ इलाकों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है।
3: गंगा, गंडक, कोसी, सोन समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को थोड़ी राहत मिली है। गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर, भोजपुर और पटना में विभिन्न स्थानों पर 12 से 25 सेंटीमीटर तक की कमी दर्ज की गई है। हालांकि डाउनस्ट्रीम में मुंगेर और भागलपुर के विभिन्न इलाकों में जलस्तर में बढ़ोतरी जारी है। प्रदेश के 13 जिलों में 27 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ की विकट स्थिति का सामना कर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने वैशाली और सारण जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों दौरा किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न सामुदायिक रसोई केंद्रों और राहत शिविरों में जाकर लोगों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत के काम और तेज करने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधिश्री।
0: अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी 2026 में भारत ने आज 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स के फाइनल में स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। पैरा महिला रिकर्व स्पर्धा में पूजा जत्यान और भावना चौधरी को चीन के हाथों 6-0 से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने चीन में एशिया कप के पूल मैच में आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हराया। कप्तान अनमोल इक्का ने 2 गोल किए। भारत के अब 3 मैचों से 7 अंक हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 548 अंक गिरकर 75,585 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का उद्घाटन करेंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार किया। और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। इसके साथ ही

जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 MHz के साथ आप बने हुए हैं। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं रुचिका आप सभी का, और वक्त हो गया है संगीत.com का। तो चलिए संगीत.com की शुरुआत करते हैं आंधी फिल्म से इस गीत के साथ। सुनते रहिए FM गोल्ड।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: जी हाँ, FM गोल्ड 100.1 मेगा हर्ट्ज के साथ आप बने हुए हैं और फिलहाल संगीत.com का सफ़र जारी है. आपको याद है फिल्म कभी कभी? जी हाँ, यश चोपड़ा की सुपरहिट फिल्म कभी कभी. उससे जुड़ा एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ कि इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट था वो यश चोपड़ा को अपने दोस्त और गीतकार साहिर लुधियानवी की कविता कभी कभी पढ़कर आया था. और फिल्म में अमिताभ बच्चन की जो किताब कभी कभी नाम से प्रकाशित होती है वो असल में साहिर लुधियानवी की ही एक कविता थी. और आपको बता दें कि यश चोपड़ा इस फिल्म के जो गाने हैं उनके लिए मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से कंपोज करवाना चाहते थे, लेकिन बाद में साहिर ने सुझाया संगीतकार खयाम का नाम और उन्हें आखिरकार फिल्म का संगीत देने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके बाद इतिहास गवाह है और इस फिल्म के गाने आज भी अमर हैं.

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: जी हाँ, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ के साथ आप बने हुए हैं और संगीत.com का सफ़र जारी है। फ़िलहाल बात कर लेते हैं एक बेहद खूबसूरत फिल्म की जिसका नाम था एतबार और वो रिलीज़ हुई थी 1985 में, आपको याद होगा। और इस फिल्म की एक गज़ल बेहद मशहूर हुई थी, भूपेंद्र सिंह और आशा भोसले की आवाज़ थी। और ये जो गज़ल है आज भी लोगों की ज़ुबान पर रहती है और आज भी उतनी ही ताज़ा महसूस होती है जब हम सुनते हैं जितनी उस वक्त थी। तो चलिए सुनते हैं आशा भोसले जी और भूपेंद्र जी की आवाज़ में ये गज़ल। सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: क्षेत्र विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में तेजी से बदलाव का उल्लेख किया।
1: इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्त धारा का आह्वान किया है। इस सप्त धारा में एक धारा गति शक्ति की भी है। आज 2800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपने उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। चिप से शिप तक स्थानीय उत्पादों के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि देश के अंदर संपूर्ण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा रही है।
1: साथियों, अब भारत चिप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करेंगे। सरकार ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में आईटीआई क्लस्टरों के लिए 735 करोड़ रुपए से अधिक के व्यय वाली महत्वपूर्ण निवेश परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसमें राजस्थान के लिए 241 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश के लिए 240 करोड़ रुपए से अधिक और तेलंगाना के लिए 254 करोड़ रुपए की निवेश योजना शामिल है। इसे प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन पीएम सेतु की 5वीं राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक में मंजूरी दी गई। बम्बई उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके टिप्पणियों को लेकर 2019 के मानहानि मामले में जारी सम्मन को रद्द करने से इनकार कर दिया। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के मैजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने मैजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई को 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने के अपने 2021 के निर्देश को बरकरार रखा। इससे श्री गांधी को सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का समय मिल गया। ये मामला रफाल सौदे पर राहुल गांधी की 2018 के टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि इस याचिका को सुनवाई के लिए कल स्वतः सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्य निकेतन में पीजी इमारत ढहने के बाद ये याचिका दायर की गई। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायलों से आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रभावित छात्रों और मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने घायल छात्रों के अभिभावकों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाएगी। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी 2026 श्रृंखला के तीसरे चरण में भारत ने आज 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। हरविंदर सिंह और विजय सुंडे ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स के फाइनल में स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। वहीं तोमर कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने पुरुष डबल्स के फाइनल में इराक की जोड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। मौसम विभाग ने आज बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने कहा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और तेलंगाना में कल तक बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stones for various development initiatives worth over 35,000 crore rupees in Vadodara in Gujarat. The Prime Minister dedicated to the nation 3 key

बहुत कम कलाकार ऐसे होते हैं जो अपने नाम को अपने जीवन में चरितार्थ कर देते हैं। आशा भोसले भी ऐसी ही एक बेमिसाल गायिका थी जो अनगिनत लोगों की आशा और अभिलाषा की खुशनुमा आवाज बन गई। देश की साहसी गायिकाओं में उनकी गिनती होती थी और हमेशा होती रहेगी। उनकी चुलबुली शोख और मदहोश कर देने वाली आवाज का जादू आज भी उनके चाहने वालों के सर चढ़कर बोलता है। जी हाँ, सही पहचाना आपने। आज मन भावन में आशा ताई के गीत लेकर आई हूं मैं अपराजिता, आप सबके लिए आपके अपने आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, क्योंकि आज है उनकी जयंती। आप अपनी पसंद के गीत यानी कि आशा ताई के गाने, आशा भोसले के गाने सुन सकते हैं अब से लेकर 4 बजे तक। आपको हमें ईमेल लिखकर भेजनी है fmgoldaiadelhi@gmail.com पर।

0: possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: स्वागत आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर, जहां आप सुन रहे हैं मन भावन। मैं हूं आपके साथ अपराजिता, और देखते हैं कि किसके संदेश आए हैं। और जैसा हमने आपको कहा था कि आशा जी के गाने आज हम आप ही के पसंद के यहां प्ले करेंगे, तो पहला ईमेल जो हमें मिला है वो आ जाता है अजीत भावसर का। और आप हमें लिखते हैं विरमगाम से, प्रमिला भावसार, भावेश, सनी भावसार के साथ ताजमहल फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। अगला मैसेज हमारे पास माइकल कश्यप का आता है, और आप मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं। और आज मैं देखूं जिधर न जाने क्यों उधर मुझे दो चांद नज़र आते हैं, ऐसा आप लिखकर भेजते हैं। इस गाने की फरमाइश आपने लिखी है। इसी के साथ हरजिंदर सिंह भाटिया की भी रिक्वेस्ट आती है हमारे पास, जान लेते हैं एंजल सोनू और तमन्ना भाटिया के साथ ये कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। जी शिकार फिल्म से पर्दे में रहने दो, पर्दाना हटाओ, ऐसा आप लिखकर भेजते हैं। बसंत कुमार सिन्हा भी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और कहते हैं कि आप आशा जी की कोई भी जो है आवाज़ में कोई भी गाना सुनवा दें तो मेरा दिन बन जाएगा। आपके साथ हैं कुमारी साहू, गुड्डू कुमार गुप्ता, मुन्नी देवी शॉ, जयप्रकाश साव, रिया जिया, टूसी, आयुषी, अनिरुद्ध बाबू, बसंत लाल साव, शिवानी कुमारी, प्रियंका, अभय कुमार, सनातनी, और आपके साथ तनुश्री गुप्ता, नन्नी पोती अन्विका भी हैं, और रिम्मी तनुश्री गुप्ता और अजय कुमार गुप्ता भी हैं। साथ ही रेखा देवी शॉ, अजय कुमार, इनका नाम तो मैं ले चुकी हूं, आप सब प्रोग्राम सुन रहे हैं। रविंद्र मोहन दास का भी संदेश हमें मिलता है, और आपके साथ किशनगंज बिहार से आशा देवी भी हैं। और आपने हमें रिक्वेस्ट लिख भेजी उमराव जान से कोई गाना सुनने की। साथ ही मास्टर अशोक कुमार का भी ऐसा कहना है, आप हमें खरगांव मध्य प्रदेश से मैसेज लिखते हैं। आपके साथ हैं अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुडाना, और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगताप। मोहम्मद सईद अबासी भी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। आपके साथ बुलंदशहर से हैं निगत परवीन शाहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान अब्बान। तो ये खूबसूरत गीत पहुँचा रहे हैं आप तक उमराव जान से।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: आज मन भवन में हम याद कर रहे हैं आशा जी को, क्योंकि आज है उनकी जयंती। आशा जी का करियर 8 दशकों तक चला और उनकी गिनती भारत की सबसे मशहूर प्लेबैक गायिकाओं में होती है। उन्होंने 20 से ज़्यादा भाषाओं में 12,000 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए। और अब जानते हैं कि हमारे कितने ईमेल्स यहाँ हैं जो आशा जी के गाने सुनना चाहते हैं। उनकी रिक्वेस्ट पढ़ लेते हैं। पीएस नवांकर आन मिलो सजना फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। नलेश्वर नगर महाराष्ट्र से आप हमारे साथ हैं, आपके साथ हैं निर्मला विशाल नवांकर। मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताइड़े, आशीष मोनेकर का भी मैसेज इसी ईमेल में आता है। शीशपाल वर्धन प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। और गाजियाबाद से आप हमारे साथ हैं। मोहम्मद सादिक खत्री का संदेश मिलता है हमें और आप पसंद कर रहे हैं प्रोग्राम। मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकामा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और शादाब खत्री के साथ। और साथ ही गोंगावा से हाजी इशाक लोनामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी का भी मैसेज हमें मिल जाता है। इसी के साथ ओम बगड़िया का मैसेज आता है हमारे पास, क्रियांश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया के साथ। शोर फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं और जैसा कि आप सुन पा रहे होंगे बैकग्राउंड में आप सुन सकते हैं आशा जी के ही एक बहुत फेमस गाने की प्रिल्यूड धुन। तो इस गाने की फरमाइश हमारे पास बहुत सारे लिसनर्स ने लिखकर भेजी, जिनमें उग्रसेन, शकुंतला यादव, गरिमा का भी नाम शामिल है दिल्ली से। मस्कीन दादा भी इसी की रिक्वेस्ट लिखकर भेजते हैं हमें, बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्कीन के साथ। और उत्तम सिंह जंगेल छत्तीसगढ़ से इसी गाने को सुनना चाहते हैं, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदनी जंगेल के साथ। नमक हलाल फिल्म से ये गाना पहुंच रहा है आप सब तक।

जी, ढेर सारे संदेश आपके हमें मिल रहे हैं और अगला मैसेज जो आता है वो बक्सर से हमें मिला है और राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान प्रोग्राम सुन रहे हैं और इसी के साथ श्रद्धानंद आर्य, अभय नंद आर्य और परमानंद आर्य का भी मैसेज मिलता है। डुमराव बिहार से डॉक्टर बबलू अंसारी, डॉक्टर सोना मदीबा और दानिश अंसारी भी हैं इनके साथ और शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुमित रमेश साहू, आप सब एक साथ हमें ईमेल करते हैं। सतीश अनेजा प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, आपके साथ हैं बिमला अनेजा भी चंडीगढ़ से और शोक नजर की बिजलियां, ये गाना आप सुनना चाहते हैं वो कौन थी फिल्म से। राशिद हुसैन अंसारी का भी मैसेज हमें मिलता है और आपके साथ प्रोग्राम पसंद करने वालों में नाम शामिल है नसरी अंसारी, नौरी नासना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी का और इसी के साथ मैसेज आता है हमारे पास सिद्धार्थ गुंडाने का। आप प्रोग्राम सुन रहे हैं अमरावती से अर्चना ताई गुंडाने, हीरामन शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गुंडाने के साथ। शमशूल कमर राही गंज डुंडवारा से प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। धर्मेंद्र चीपा और पूजा, ईशान, कपिल सब आपके साथ है राजस्थान से और बहुत सारी रिक्वेस्ट हमारे पास पहुंच रही हैं। दिलावर खान भी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और आपके साथ दिलावर खान के साथ हमें मैसेज आता है हसीना बानो, एलीजा नायब और लड्डू का। मल्होत्रा, टीडी मल्होत्रा का मैसेज मिलता है हमें ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह के साथ। डॉक्टर अमनदीप भी आपके साथ है चंडीगढ़ से और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज भी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। अत्तर सिंह करदम का मैसेज मिलता है हमें और राजकुमारी, अनुज, अंजलि, डॉक्टर पारुल, अद्विक समयपुर दिल्ली से आशा जी की आवाज़ में गाना सुनना चाहते हैं। और आशा जी की आवाज़ में कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं इसकी रिक्वेस्ट हमारे पास पहुंच रही है। लूटमार फिल्म से गाने की रिक्वेस्ट आई है, जब छाए मेरा जादू, तो बहुत सारे गानों की रिक्वेस्ट आ रही है। आप जानते हैं कि टाइम कम है तो कोशिश करते हैं जिस गाने की ज़्यादा रिक्वेस्ट हम तक पहुंचती है उसे ज़रूर आप तक पहुँचाएँ, है ना। वैसे तो कलाकार बेमिसाल भी आप आशा ताई पर सुन चुके हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब गाने इतने सारे हों तो क्या करें।

क्या आप जानते हैं कि आज एक और बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व की जयंती है? जी हाँ, मैं बात कर रही हूं भूपेन हजारिका की। असम के सादिया में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ और इनका प्यारा सा पुकारू नाम था सुधा कंठ, जो उनकी आवाज का पर्याय भी बन गया। कुछ समय इन्होंने गुवाहाटी के आकाशवाणी में भी काम किया और उनकी गायकी की शुरुआत की अगर बात करें तो उसकी शुरुआत उनकी माँ से सुनी हुई लोरियों से हुई। माँ शांति प्रिया हजारिका ने उन्हें न सिर्फ लोरियां सुनाई बल्कि असम के परंपरागत संगीत से भी परिचित कराया। रुदाली फिल्म से उन्हीं की आवाज में मैं सुनवा रही हूं आपको एक बहुत ही मधुर गाना।

0: ढेर सारे संदेश आपके हमें मिल रहे हैं और अगला संदेश जो हमारे पास पहुंचता है वो मिला है सनावत से शेख मूसा मोहसिन का। और मास्टर खिल्लू परवेज भी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, उत्सव फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश से आपका मैसेज मिलता है। बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा नामदेव आपके साथ हैं। और संदीप मक्कड़ का भी मैसेज हमें मिलता है, लूटमार फिल्म से जो गाना सुना वो आपको पसंद आया। अंकित कांगड़ा, भाई मूसा शेख और भारत भूषण, नीटू मल्होत्रा, मोहसिन रजा। और संदेश मिलता है हमें होली चौक उत्तम नगर से जयराम खोरवाल, सचिन खोरवाल, अमन खोरवाल, दीपांशु खोरवाल का। और गानों की फरमाइश लगातार जारी है आप लोगों की तरफ से। उमेश कुमार साहब का ख्याला से मैसेज आता है, विष्णु गार्डन से आप राकेश कुमार और मनीष कुमार के साथ प्रोग्राम ये पसंद कर रहे हैं। इसी के साथ मास्टर खलील कुरेशी का भी मैसेज हमें मिलता है और आप गंज डुंडवारा से प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं नुसरत बेगम, हमम हमद जमील, बेबी अरीबा हबीबा के साथ। और मोहम्मद कमर का भी मैसेज आता है, आदिल कमर गुन्नौर से आप मैसेज करते हैं, प्रोग्राम पसंद आ रहा है ऐसा आप कहते हैं। लालगिड़ी, उमेश कुमार और साधना श्रीपाल गोयल बहादुरगढ़ से प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। और बलमा फिल्म से आपने गाना सुनने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी है। निसार अली का भी मैसेज हमें मिलता है, घनौरी तेरी वाला उत्तराखंड से। निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू आपके साथ हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि हम भूपेन हजारिका जी की बात कर रहे हैं और इनके विषय में मैं आपको बता चुकी हूं कि ये सुधा कंठ के नाम से मशहूर थे। भारत रत्न भी जो है इन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो 2019 में दिया गया और मानवतावादी कहलाते थे ये। इनके गीत जो हैं, दिल हुम हुम करे और ओ गंगा बहती है क्यों, हमेशा सहानुभूति, न्याय और वैश्विक भाईचारे का संदेश देते थे।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: स्वागत एक बार फिर आप सभी का मन भावन में। मैं हूं आपके साथ अपराजिता और आपके संदेशों की बारी आती है। अब लुबना अंसारी का मैसेज हमें मिलता है, सुदर्शन मुखी भी है हमारे साथ, अनीता सिमरन मुखी आपके साथ हैं शांति नगर से और आपने बंदिश

फिल्म से एक गाना सुनने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी है। अनिल मोहन का भी मैसेज हमें मिलता है, बोधराज खोरवाल है हमारे साथ, जाकिर साहब का भी मैसेज आया है और आप मूंगी ईसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना, यश मंसूरी और नवासा नुमेर मंसूरी आपके साथ हैं, निखिल कांगड़ा, बोधराज खोरवाल, अनिल मोहन, अनिल ग्वांकर, आप सब प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। और अगर हम दूसरे पेज की ओर बढ़ते हैं जो कि ऑलरेडी बहुत भर चुका है, या यूं कहें कि तीन जो हैं उन पेजेस में आपके मैसेजेस रन कर रहे हैं, संदीप मक्कड़, मास्टर खिल्लू परवेज का मैसेज हमें मिलता है और साथ ही उमेश कुमार साहब का मैसेज आया है। गुड़िया कुरेशी मैसेज करती हैं कि गंज डुंडवारा से हमें सुन रहे हैं आप, के एच राही, वकील प्रेमी और हमाद जमील के साथ, और आज गाने सुनने का आनंद ही कुछ और है। अशोक डाले प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, सविता डाले, अनिकेत डले और ऋषिकेश डले, जीविका डले, रोहिणी डले के साथ, पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने का भी मैसेज हमें मिलता है। साथ ही मैसेज आता है हमारे पास दिनेश वर्मा का और आपके साथ करुणा वर्मा है रिंगिनी छत्तीसगढ़ से, और इसी के साथ मैसेज मिलता है हमें प्रकाश रामभड़े का, आप नागपुर से भारती रामभड़े, जाह्नवी और वैष्णवी हर्षल के साथ प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं। एम खलील कुरेशी का भी मैसेज मिलता है हमें, नुसरत बेगम के साथ आप ये जो समय है आकाशवाणी को देते हैं यानी कि ये प्रोग्राम ज़रूर सुनते हैं। जॉन विलिस, रोजी और पर्ल डिकॉस्ट्रो प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं जनकपुरी सहारनपुर से, और आपने भी अपनी रिक्वेस्ट हमें लिख भेजी है। बबलेश पवार का मैसेज हमें मिलता है, डैनी पवार, मनीष पवार, खलीफों की बावड़ी से आप मैसेज भेजते हैं, रामदेवरा सिंह चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, आप सब प्रोग्राम सुन रहे हैं और गहरी चाल फिल्म से गाना सुनने की रिक्वेस्ट हमें लिख भेजते हैं। ताज मोहम्मद का मैसेज हमें आता है, आपके साथ हैं गुलाम साबिर राही, मेराज जहां और आजाद नगर से आपका मैसेज आता है, हरिद्वार से। सुधाकर जादव भी प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपके साथ हैं प्रशांत राजे जादव, जागुताई जा राजे जादव देशमुख और कुमार संचित देशमुख, प्रथमेश सरवद, हर्षिता सानवी और प्रणाली देशमुख का भी मैसेज हमें मिल रहा है। साथ ही मैसेज आता है हमारे पास गौरीशंकर वर्मा का, आपके साथ हैं गौरीशंकर वर्मा, नंगलोई से प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, राम राम लिखकर भेजते हैं, और आशा ताई के गानों की रिक्वेस्ट आपने भी हमें लिख भेजी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं आपको भूपेन हजारिका का कंपोज किया गया गाना, जिसे उन्होंने कंपोज भी किया और गाया भी, वो सुनवा रही हूँ, जिसके लिरिक्स लिखे गुलजार साहब ने। गाने के बोल हैं, आलसी सावन बदरी उड़ाए।

जी, इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, आपके कुछ संदेश रह गए हैं शामिल होना, तो मैंने सोचा क्यों ना इस समय का सदुपयोग किया जाए। आसिफ अली का संदेश हमें मिलता है और कस्बा अग्रवाल मंडी बागपत से आप हमारे साथ हैं, और बब्बल साहब का मैसेज आता है, बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, मोहाली पंजाब से आपने ये प्रोग्राम जो है इसका आनंद लिया, ताज मोहम्मद प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं। हालांकि आप हमें बहुत सारे मैसेजेस एक साथ भेज रहे हैं, अब देखिए 3:55 पे आपकी 10 ईमेल हमारे पास पहुंची हैं, अब बताएं क्या करें जब मैं आपका नाम शामिल कर चुकी हूं। संदीप मकड़ का भी मैसेज आता है शायद दोबारा, अनिल मोहन भी दोबारा मैसेज कर रहे हैं, मैं ये सब नाम शामिल कर चुकी हूं। इशाक मोहम्मद प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, अफरोज शेख है हमारे साथ, कमलकांत गुप्ता का मैसेज हमें मिलता है पिपरिया से, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता आपके साथ हैं, और मैसेज आता है हमारे पास आफ्ताब अंसारी, जॉन डिकोस्ट्रो, मनोहर लाल गांधी का। तो मैं यहीं आपसे विदा लेती हूं, आपसे कुछ ही देर बाद फिर से मिलूंगी समाचारों के बाद FM गोल्ड पर ही।

समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष

0: प्रधानमंत्री मोदी इस समय गुजरात के नवसारी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: 50 भाई बहनों ना माथा बधु न नाखी दे भाई भाई, ये तो इमनी सेवा करे थे, सरकारी व्यवस्था ना भाग रूपे लागेला थे, पण गंदगी न करवानी जवाबदारी तो आपणी छे के नहीं? आपणा घर में पण आपणी मां केटली बधी सफाई राखती होय, અને એકાદ છોકરો ઘરમાં કઈ કઈ ગંદુ કર્યા કરતો હોય તો માને દુઃખ થતું હોય કે નથી થતું? અને એટલા માટે સાથીઓ, હવે તમારે સૌરાષ્ટ્રના ભાઈઓ ઘણા રહે છે અહીંયા।
0: सरकार ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में आईटीआई क्लस्टरों के लिए 735 करोड़ रुपए से अधिक के व्यय वाली महत्वपूर्ण निवेश योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसमें राजस्थान के लिए 241 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश के लिए 240 करोड़ रुपए से अधिक और तेलंगाना के लिए 254 करोड़ रुपए की निवेश योजना शामिल है। इसे प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन पीएम सेतु की पांचवीं राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठक में मंजूरी दी गई। बम्बई उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके टिप्पणियों को लेकर 2019 के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। हालांकि उच्च न्यायालय ने मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई को 6 सप्ताह के लिए स्थगित करने के अपने 2021 के निर्देश को बरकरार रखा। ये मामला रफाल पर राहुल गांधी की 2018 की टिप्पणियों को लेकर दायर मानहानि की शिकायत से जुड़ा है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी कॉलेजों में छात्रावास की सुविधा की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से आज इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि इस याचिका को सुनवाई के लिए कल स्वतः सूचीबद्ध किया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय के साउथ कैंपस के पास सत्यनिकेतन में पीजी इमारत ढहने के बाद ये याचिका दायर की गई। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायलों से आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रभावित छात्रों और मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। श्रीमती रेखा गुप्ता ने बताया कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष के पुरस्कार विभिन्न भाषाओं, विधाओं और सिनेमाई रूपों में विविधताओं का प्रतीक है। मंत्रालय ने बताया कि आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में सम्मानित किया जाएगा, भंगार को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म और रामनामी को ज्यूरी द्वारा सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र चुना गया है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी 2026 श्रृंखला के तीसरे चरण में भारत ने आज 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने पैरा रिकर्व पुरुष डबल्स के फाइनल में स्लोवाकिया को 6-2 से हराकर लगातार तीसरी बार खिताब अपने नाम किया। वहीं तोमर कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने पुरुष डबल्स के फाइनल में इराक की जोड़ी को हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stones for various development initiatives worth over 35,000 crore rupees in Vadodara in Gujarat. The Prime Minister dedicated to the nation 3 key sections of the Western Dedicated Freight Corridor, marking the full completion and operationalization of the freight corridor network. Mr. Modi also flagged off freight train services from New Sanand, New Makarpura, New Umargaon and New JNPT, along with the new passenger train service between Tanda Road and Vadodara, connecting remote tribal regions of Alirajpur to the national rail grid. Addressing the gathering, the Prime Minister emphasized that India has emerged as a global manufacturing hub, now producing its own advanced train and metro coaches. He highlighted the rapid transformation of India's transport and logistics sector, calling the completion of over 2,800 kilometers of dedicated freight corridors a historic achievement for 21st century India and a testament to the nation's changing

0: भारत का सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों अथवा किसी उच्च न्यायालय के पात्र अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। पदनाम है सहायक रजिस्ट्रार कंप्यूटर। आवश्यक शैक्षणिक योग्यता रहेगी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, इनमें से कोई एक, कंप्यूटर एप्लीकेशन में मास्टर्स डिग्री या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक डिग्री अथवा कंप्यूटर आईटी में बीई या कंप्यूटर साइंस में बीटेक या समकक्ष योग्यता। सहायक रजिस्ट्रार कंप्यूटर पद के लिए अन्य जानकारी, नियम, शर्तें, शैक्षणिक योग्यता आदि जानने के लिए देखिए वेबसाइट www.sci.gov.in। रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन। इंजीनियर E1 कुल रिक्तियां 12, सहायक प्रबंधक E2 कुल रिक्तियां 4, उपप्रबंधक E3 कुल रिक्तियां 2, इंजीनियर E1 कुल रिक्तियां 3, अधिकारी E1 कुल रिक्तियां 1 और सहायक प्रबंधक E2 एक रिक्ति। इसके अतिरिक्त अधिकारी E1 की भी एक रिक्ति उपलब्ध है तथा अधिकारी साचिविक एडिशनल CMO CMO E5 पदों के लिए भी एक एक रिक्तियां उपलब्ध हैं। लेखा अधिकारी E1 के लिए 3 रिक्तियां, सहायक प्रबंधक E2 के लिए 2 रिक्तियां, मुख्य प्रबंधक E6 के लिए 1 रिक्ति और इंजीनियर E1 ग्रेड के लिए 1 रिक्ति उपलब्ध है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.rfcl.co.in। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान मुंबई आमंत्रित कर रहा है इन पदों को भरने के लिए आवेदन। कारपेंटर 2 रिक्तियां, इलेक्ट्रीशियन 3, फिटर 1, वेल्डर 1, पेंटर, मशीनिस्ट और टर्नर एक एक रिक्तियां। योग्यता, सामान्य विवरण और चयन हेतु साक्षात्कार से संबंधित विवरण के लिए देखिए टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान की वेबसाइट www.tifr.res.in/positions। भंडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण सलाहकार बैंकिंग के एक पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। देखिए वेबसाइट www.wdra.gov.in। कोल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के अधीन अनुसूची ए महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसका कॉरपोरेट मुख्यालय कोलकाता में है। कोल इंडिया लिमिटेड आमंत्रित कर रहा है प्रबंधन प्रशिक्षुओं की भर्ती के लिए आवेदन। प्रबंधन प्रशिक्षुओं के लिए शैक्षणिक योग्यता, नियम, शर्तें, आरक्षण और वेतनमान आदि की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.coalindia.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार। शाम के 4:30 हुए हैं। वक्त है न्यूज मैगजीन परिक्रमा का, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानेंगे उनके क्षेत्र के खास समाचार। खेल गतिविधियां भी कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे और उन खास हस्तियों को भी याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। परिक्रमा के आज के अंक में मैं हूं नईम अख्तर और मेरे साथ हैं बहुत अच्छे शगुन में शगुन चोपड़ा।
4: नमस्कार। And a very warm welcome to all our listeners. A very good day, everyone. Today, I'm very, very thrilled and very excited to begin our program Parikrama on Akashvani Gold at 100.1 FM. Well, today my co-host is Naeem Akhtar, as we all know. And well, yes, as Naeem told us, there is a lot of interesting stuff that we have lined up for you for the next half an hour that consists of news, discussion segment, Dateline India. Very interesting. You have to listen to that, listeners. We also have reports and capsules, and there will be attributes to the personalities.

0: to whom this day is dedicated especially. And that's towards the end of the program. This is our way of telling you all that you have to stay tuned for the next 30 minutes. First, Naeem, headlines. Should we begin with the headlines?
1: Ji, main karun.
0: Exactly, start with
1: जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया. कहा, भारत उन्नत रेलगाड़ियों और मेट्रो कोच के निर्माण का वैश्विक केंद्र बनकर उभरा है.
0: Prime Minister Modi to inaugurate and address the Global FinTech Fest GFF 2026 in Mumbai this evening.
1: Bombay उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ वर्ष 2019 में दायर मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार किया.
0: IMD forecasts heavy rainfall over Bihar, eastern Uttar Pradesh, Odisha, West Bengal and northeastern parts of the country today.
1: और अहमदाबाद में भारत ने विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता.
0: एंड नाउ दिस इज आवर डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया. टुडे वी आर डिस्कसिंग एंड वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट टचेस ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइव्स, समथिंग दैट बिगिंस विद अ सिंपल एबिलिटी बट कैन ओपन काउंटलेस डोर्स. टुडे इट्स इंटरनेशनल लिटरेसी डे.
1: जी जी, लिटरेसी डे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ना सिर्फ हमारे लेवल पर बल्कि पूरी दुनिया के लेवल पर.
0: ट्रू
1: जी. हम साक्षरता की बात कर रहे हैं, यानी पढ़ने लिखने और समझने की जानकारी का इस्तेमाल करने की क्षमता, और आज 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है.
0: And when we think, when we hear the word actually literacy, when we think about it, many of us, we immediately think of books, classrooms, notebooks, students sitting in the classroom, studying, looking at the teachers, learning the alphabet and the numbers. But literacy, it's just so much more than that, Naeem.
1: Right, right.
0: And actually, it can determine whether someone can understand important information related to health, or even apply for a job, or access government services properly, manage their finances, and also support their children's education and make informed decisions, critical thinking.
1: एक वक्त हुआ करता था कि जिस वक्त में ये कहा जाता था कि पढ़ लिख जाओ, उसी को साक्षरता माना जाता था. फिर एक वक्त आया आपसे कुछ दशक पहले कि वही पढ़ा लिखा है जिसको कंप्यूटर की नॉलेज है. लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि साक्षरता आज की दुनिया में जो है वो उन कौशलों में से एक है जो चुपचाप हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालती है.
0: एवरीडे
1: सुबह की दिनचर्या के बारे में जरा अगर हम सोचें, एक नजर डालें, तो सोच के देखिए, सबसे पहले हम उठते हैं, अपना फोन देखते हैं, कोई मैसेज पढ़ते हैं, खबरें देखते हैं, रास्ता देखते हैं, किसी प्रोडक्ट का लेबल पढ़ते हैं, और शायद ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या कोई फॉर्म भरते हैं. सभी भी तो लिटरेसी की जरूरत है ना.
0: Well, that is true. So many practical applications on the daily basis, minute by minute,
1: right.
0: And all of these activities which you mentioned, which I mentioned, they require us to understand and use information. And actually, this is why literacy, it is considered a fundamental human right. Everyone should be literate, and it helps people access many other rights and opportunities. If we are literate, if we have knowledge of all the stuff that we mentioned, which includes education, employment, healthcare and participation in society, only then we'll be able to access all these information or rights.
1: हाँ, और इसके महत्व को समझते हुए, जी, इसके महत्व को समझते हुए हमारी सरकार ने भी साक्षरता के लिए राइट टू एजुकेशन भी है ना, तो साक्षरता का अधिकार भी हमारे अधिकारों में से एक है. लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का इतिहास 1966 से शुरू होता है. इसी साल यूनेस्को ने अपनी 14वें जनरल कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल लिटरेसी डे बनाने का ऐलान किया था, और पहला इंटरनेशनल लिटरेसी डे 1967 में मनाया गया था.
0: इट्स ग्रेट दैट यू मेंशनड इट. एंड सिंस देन, नईम, सितंबर 8
1: यानी आज का दिन,
0: वेल राइट, हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट ग्लोबल ओकेजन टू ड्रॉ आवर अटेंशन टू लिटरेसी चैलेंजेस, आल्सो एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन and celebrate the progress which has been already made around the world.
1: और साल दर साल ये मनाया जाता रहा है, लेकिन ये साल जो चल रहा है 2026 का साल, ये खास तौर पर इसलिए अहम है क्योंकि इस साल अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस की शुरुआत की 60वीं सालगिरह है.
0: 6 decades have passed since then, and over these 60 years, the world has made significant progress in expanding access to education and thereby improving literacy worldwide. But progress does not mean that the journey is over.
1: बिल्कुल ठीक बात है. आज भी लाखों लोगों को पढ़ने लिखने की बुनियादी क्षमता हासिल करने में रुकावटों का सामना करना पड़ता है. हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, इसलिए हमें उसका अंदाजा इतना ज्यादा नहीं है. लेकिन आप दूर दराज गाँव देहात में चले जाएं तो पता चलता है कि ये रुकावटें अक्सर बड़ी चुनौतियों से जुड़ी होती हैं, जैसे गरीबी, शिक्षा.

0: तक असमान पहुंच, लैंगिक असमानता, संघर्ष और मुश्किल सामाजिक आर्थिक हालात भी इसके अंदर शामिल है।
1: That is true, gender inequality and other struggles as well. And according to UNESCO's 2026 education data refresh, let's turn our attention to that. The global literacy rate is approximately 88% among adults and 93% among young people. And these numbers certainly represent enormous progress that we have to mention.
0: जी जी ऐसा करते हैं, लेकिन इस तरह की काम ये होते हैं, लेकिन हमें एक जरूरी बात ये भी बतानी है कि सभी लोगों के साक्षर होने का लक्ष्य अभी तक भारत में कम से कम हासिल नहीं हुआ है।
1: गुड पॉइंट एक्चुअली। जी People may struggle to read a letter, understand a health instruction or complete a form. Form filling, it's required nowadays a lot. And also find themselves, for their children, for their friends even, for their family members, employment information and help to their children complete their school work, which is why literacy is not simply an education issue. It is also a social and economic issue. Don't you think so?
0: बिल्कुल बिल्कुल। social issue के बारे में मुझको ये याद आया कि अब से कुछ दशक पहले तक ये था कि अगर किसी ने अपने signature करने सीख लिए हैं, साक्षर करने सीख लिए हैं, तो उसको भी साक्षर में माना जाता था, है ना? अब मुझे नहीं लगता, हो सकता है कि अभी भी कोई हो ऐसा, लेकिन अब नहीं लगता कि शायद अभी हस्ताक्षर करने किसी को ना आते हो।
1: And I think the numbers would have significantly reduced. That's what we can say.
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो आइए ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो पढ़ने लिखने में बहुत कुशल है। वो नौकरी का विज्ञापन पढ़ सकते हैं, आवेदन तैयार कर सकते हैं, काम की जगह पर दिए गए निर्देशों को समझ सकते हैं और शायद साथ साथ, और शायद क्या, हमने तो बहुत लोगों को देखा है कि नौकरी के साथ साथ आगे की पढ़ाई भी करते हैं।
1: Nowadays, it's very common.
0: Very common. स्वास्थ्य की सेवा के बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, जरूरी दस्तावेज समझ सकते हैं, अपने रुपए पैसे का हिसाब किताब रख सकते हैं और बेहतर ढंग से बातचीत कर सकते हैं।
1: एंड नईम, literacy can make a difference within their families as well. Parents who have stronger literacy skills, they can often play a greater role in their own children's education by helping them read, by helping them complete their homework, their project work, or communicate with teachers well what they want for their child, and thereby develop a love for learning.
0: जी, इसीलिए किसी एक व्यक्ति की साक्षरता का असर उस व्यक्ति से कहीं आगे तक जा सकता है। ये परिवारों, समुदायों और यहाँ तक कि आने वाली पीढ़ियों पर भी असर डाल सकता है। और काम की जगह को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। हम अगर 50s और 60s के जमाने की फिल्में देखते हैं, हिंदी फिल्में, तो उसमें हम देखते हैं कि लोग, जैसे मदर इंडिया जैसी फिल्म, कि पता ही नहीं था कि साहूकार क्या लिख रहा है, महाजन क्या लिख रहा है, और कर्ज तले दबते चले जाते थे क्योंकि वो कुछ भी अपनी किताबों में लिख सकता था। तो अब वो वाला सिनेरियो कम से कम नहीं है, उससे हम आगे बढ़ाए हैं।
1: यस, दोस स्ट्रगल्स दे वर देयर एक्चुअली देयर ड्यूरिंग दोस टाइम्स।
0: जी
1: And why don't we focus on today's economy, Naeem? Reading and writing skills, they are essential across almost every sector. And from following instructions to understanding technology, communicating with colleagues, literacy supports participation in the world of work. You were talking about workplace. But literacy has also changed with technology, with the new technological developments.
0: जी, डिजिटल दौर में पढ़ना लिखना जानना ही सब कुछ नहीं है। हम हर तरफ जानकारी से घिरे हुए हैं, जैसे वेबसाइट, सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो, विज्ञापन, मैसेज और ऑनलाइन डॉक्यूमेंट। और चुनौती सिर्फ उस जानकारी को पढ़ना नहीं है, क्या है कि हमें ये भी पूछना चाहिए कि क्या ये सही है, क्या ये भरोसेमंद है, इसे किसने बनाया है, इसके लिए क्या सबूत है। यही तो पढ़े लिखे की पहचान है कि आप पढ़ो और अपने दिमाग को, जिसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं, कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, उन चीजों की असलियत तक पहुंचो, भ्रामक बातों में न जाओ।
1: Yes, because there is information overload that we have to look into, and critical thinking is what is required. And if we in simplest of terms, if we define it, modern literacy also involves understanding, evaluating, as you mentioned rightly, and using information responsibly.
0: aur aaj ye baat khaas taur par ahem hai shagun ke jab galat jankari tezi se phail rahi hai.
1: Well, yes Naeem, literacy helps people become more confident, and you can spot them, confident people in a crowd, you can spot them.
0: Bilkul.
1: And informed participants in the digital world as well. And now let's come to the theme which you mentioned, International Literacy Day 2026. So this year's theme which you mentioned, Literacy for People, the Planet and Prosperity, we have a detailed report which we'll now listen in.
2: Proclaimed by UNESCO in 1966 during the 14th session of its General Conference, International Literacy Day provides an opportunity to review progress, deepen understanding of persistent and emerging challenges, and shape future literacy agendas in a rapidly changing world. To mark the International Literacy Day 2026, UNESCO, in collaboration with the Government of Mexico, is organizing a global celebration on literacy for people, the planet, and prosperity in Mexico. The

0: Event will also feature the presentation of the UNESCO International Literacy Prizes. The main objectives of the global conference include to take stock of literacy progress since 2015 and its contribution to sustainable development and peace. Literacy is a fundamental human right for all. It opens the door to the enjoyment of other human rights, greater freedoms and global citizenship. This is Vishnu P.S. for Akashwani News, Delhi.
1: Let us now mention what Education Minister Prahlad Joshi today said. He actually said that literacy opens the door to knowledge, opportunity and a better future. He also mentioned in a social media post that, and he urged the citizens to celebrate the transformative power of education and renew their commitment to ensuring that no one is left behind in the journey of learning. He also said that an educated and empowered citizenry is the strongest foundation for Viksit Bharat.
2: और शगुन जब लोग जानकारी पा सकते हैं और अलग अलग नजरिए को समझ सकते हैं तो वो अपने समुदायों में बेहतर ढंग से और सकारात्मक रूप से हिस्सा ले सकते हैं और इससे ऐसे समाज बन सकते हैं जो भेदभाव और लोगों को अलग थलग करने के बजाय बातचीत पर आधारित हो.
1: So why don't we tell our listeners that we can all take a moment now to appreciate something we use every single day. Number one,
2: जी,
1: the ability to read a sentence. Number two, to write our thoughts.
2: उसके अलावा जानकारी को समझना या फिर सवाल पूछना जो कि अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था और साथ ही कुछ नया सीखना.
1: And also, on this International Literacy Day 2026, let's remember this year's powerful message, the theme, Literacy for People, the Planet and Prosperity.
2: पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और अपने लिए और दूसरों के लिए नए रास्ते खोलते रहिए. और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है. पहले गुजरात चलें क्या?
1: Well, yes, there actually, Naeem, President Draupadi Murmu will present the 72nd National Film Awards on 22nd of this month in Gujarat at Ekta Nagar. The Information and Broadcasting Ministry has said that this year's awards, they celebrate the diversity across a wide range of languages, genres and cinematic forms. It also added that Article 370 will be honored as the best feature film. Bhangar has been adjudged the best non-feature film. Also, Ram Nami was chosen as the best documentary by the jury.
2: Film Brahma Yugam ke liye actor Mammootty aur Chandu Champion ke liye Kartik Aaryan ko best actor in a leading role award ke liye chuna gaya hai, jabki Yami Gautam ko Article 370 ke liye best actress in a leading role ke taur par sammanit kiya jayega. Randeep Hooda ko Swatantraya Veer Savarkar ke liye best debut director award milega. In awards mein Marathi, Santhali, Tamil, Malayalam, Telugu, Kannada, Tulu aur Garhwali jaisi kai भाषाओं और तरह तरह की बेहतरीन फिल्मों में बेहतरीन काम को भी सम्मानित किया जाएगा. मंत्रालय ने बताया कि पहली बार नेशनल फिल्म अवार्ड्स के नॉन फीचर फिल्म सेक्शन में किसी संथाली फिल्म को सम्मानित किया जाएगा. जी, और संथाली फिल्म के नाम से मुझे संथाल ट्राइब्स याद आ गए जिन्होंने आजादी के आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था. मंत्रालय ने नेशनल फिल्म अवार्ड्स को देश की राजधानी से बाहर देश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित करने का फैसला किया है. और गुजरात से निकल के अब कोलकाता चलते हैं.
1: श्योर, गो अहेड.
2: जी, पश्चिम बंगाल में नई बीजेपी सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा सुरक्षित, सुलभ, सस्ता, कुशल और लोगों की जरूरतों के हिसाब से बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं. हमारे संवाददाता से और जानकारी लेते हैं.
3: As part of strengthening public grievance redressal, dedicated control rooms will operate during operational hours across state transport units. Officials will take necessary action on complaints received and escalate matters to higher authorities wherever required for speedy resolution. The department has also launched a special drive for recovery of outstanding motor vehicle tax. As per the Vahan database, 362,622 vehicles have outstanding dues of approximately ₹1,589 crore, with special focus on persistent and high-value defaulters. Other major initiatives include implementation of free bus services for women, introduction of new bus routes and strengthening of existing services, regulation of e-rickshaws on national and state highways, and strengthening of interstate connectivity through reciprocal transport arrangements. Road safety is also being accorded priority. ₹4.35 crore has been sub-allotted to police authorities for road safety activities, while an annual action plan involving

0: भूपेन हजारिका बहुत बड़ी हस्ती थे, और एक और बहुत बड़ी हस्ती की भी आज जयंती है, जिनका नाम है आशा भोसले, जो सिर्फ हिंदी फिल्मी गीतों के लिए ही नहीं बल्कि संगीत की पर्यायवाची मानी जाती हैं।
1: That is true.
0: जी, मशहूर पार्श्व गायिका रही हैं। उन्होंने फिल्मी और गैर फिल्मी जगत के लगभग 16,000 गाने गाए हैं, और इनकी आवाज के प्रशंसक न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। 800 से अधिक फिल्मों में 10,000 से ज्यादा गाने गाए। महान भारतीय गायिका आशा भोसले का नाम दुनिया में संगीत की 20 शीर्ष हस्तियों में शामिल किया गया है। उनकी भी आवाज में कुछ सुनते हैं।
2: बचपन में क्या होता है कि बड़ी बहन की नकल छोटी बहन करती है, तो दीदी जैसा गाती थी वैसा मैं गाती थी। लेकिन मैंने जब देखा कि दीदी लता मंगेशकर का नाम इतना बड़ा हो गया, तो उसकी जैसे गाने वाले को गाना कौन देगा, उसकी अपनी जगह कुछ नहीं होगी। लोग सब कहेंगे कि अरे बहन जैसा गाती है वो लता नहीं है, वो जैसा जो है वो मुझे लाइफ में पसंद नहीं है, मुझे चाहिए कि मैं खुद क्या हूँ, वैसा मेरा गाना मेरा होना चाहिए। तो फिर मैंने ये शुरू किया कि गाना दीदी कैसा गाती है उसको बिल्कुल अलग से निकल जाने का। तो बचपन में मैंने कैरमन मरांडा का गाना बहुत सुना था, पिक्चर देखते थे छोटे छोटे थे जब, तो कैरमन मरांडा गाती थी, मम मम मम मम करो मम करो शुबा ला ला ला। वो सुन के हम बोलते थे कुछ अलग है, ये अपने जैसा नहीं, क्योंकि हम लोग क्लासिकल सीखते थे, तो इसको पकड़ो। फिर ऐसा वक्त आया कि एक गाना आया मिर्जान बाबा खान या ला ला रोशनदान, तो बगैर पूछे मैंने रिकॉर्डिंग में गया, मिस्टर जॉन बाबा खान या ला ला रोशनदान, ये जैसा किया तो अण्णा श्री रामचंद्र चिल्लाते हुए, अरे अरे क्या किया तुमने, बहुत अच्छा है ऐसे ही करो। आहिस्ता आहिस्ता मैंने बोला कि अपना गाना थोड़ा सा अलग होना चाहिए।
1: Oh, wow, while speaking, she could sing so well. This is amazing. 2011 as the most recorded artist in the music history.

0: और दिल तो नहीं कर रहा है कि आशा जी की आवाज़ का साथ छोड़ा जाए, लेकिन वक्त कह रहा है चलिए। श्रोताओं, समय हो चुका है आज का परिक्रमा कार्यक्रम यहीं खत्म करने का। अनुमति दीजिए नईम अख्तर और शगुन चोपड़ा को।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा है कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब उन्नति रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है।

0: रहे हैं।
1: अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति और उसके बाद मई और अगस्त 2026 में जो मीटिंग हुई थी बीजिंग में और दिल्ली में WMCC के बैठकों में, उस चर्चाओं पर आधारित वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की पहली फ्लैग मीटिंग 6 सितंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश के वाचा में और 7 सितंबर 2026 चीन की तरफ दमाई में आयोजित की गई।
0: श्री जायसवाल ने बताया कि नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था CBAM के अंतर्गत दी है। अब ब्रिटेन में कार्बन टैक्स के दायरे में आने वाले भारतीय उत्पादों पर भारत में पहले से चुकाए गए कार्बन मूल्य के आधार पर राहत मिल सकती है। इनमें इस्पात, एल्यूमिनियम, उर्वरक और सीमेंट जैसे उत्पाद शामिल हैं। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। भंगार को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म और रामनामी को जूरी द्वारा सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र चुना गया है। फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। यामू गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फलफूल रहा है और फिर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मुंबई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया है। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में भारत ने आज 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीते हैं। हरविंदर सिंह और विजय सुंडी ने रिकर्व पुरुष डबल्स में तथा तोमर कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने पुरुष डबल्स में स्वर्ण पदक जीता। वहीं पूजा जत्यान और भावना चौधरी ने महिला रिकर्व स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

स्वागत अभिनंदन आप सभी का गाते गुनगुनाते में। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चैनल आपका अपना आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और गाते गुनगुनाते में हर बार की तरह मैं आपके लिए आज भी लेकर आई हूं सवाल, और जिसके जवाब देंगे आप मुझे ईमेल पर लिखकर। तो कुछ सवाल हैं जिसमें हम आपके लिए फिल्मों का ट्रिविया लाते हैं, यानी कि कुछ

इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं और आपके साथ यहाँ कुछ क्लूज शेयर करते हैं, फिल्मों से जुड़े, उनके हीरो हीरोइन से जुड़े, स्टोरीज से जुड़े, पटकथा से जुड़े या फिर गानों से जुड़े, अवार्ड से जुड़े, और फिर आप इन सब क्लूज को एक साथ जोड़कर बताते हैं हमें फिल्म का नाम।

गाते गुनगुनाते में आज का पहला सवाल है आप सबके लिए 90s की एक ऐसी फिल्म से जिसे डायरेक्ट किया मणिरत्नम साहब ने। इस फिल्म का संगीत दिया एआर रहमान ने और इसी फिल्म की बदौलत वो अपना फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड जीत पाए और वो भी तमिल में। पहले फिल्म की फीमेल लीड के लिए ऐश्वर्या राय को लेने का जो है वो विचार बनाया गया, लेकिन क्योंकि वे उस समय व्यस्त थी इसीलिए उनकी जगह किसी और अदाकारा को लिया गया। ये एक तमिल फिल्म है जिसे हिंदी, तेलुगु और मलयालम में डब किया गया। इस फिल्म ने फिल्मफेयर अवार्ड, ईडनबर्ग इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, नेशनल फिल्म अवार्ड्स, इन सभी में अलग अलग कैटेगरीज में लगभग 20 अवार्ड जीते। अगर आप पहचान चुके हैं ये कौन सी फिल्म है जिसकी मैं बात कर रही हूं, तो आपको करना है आसान सा काम। आपको ईमेल लिख भेजनी है fmgoldaiadelhi@gmail.com पर और फिर करना है क्या, फिल्म का नाम लिखना है। जी हाँ, आप जब ईमेल टाइप करें तो आप ईमेल के सब्जेक्ट कॉलम में फिल्म का नाम लिखकर भेज सकते हैं, क्योंकि सेंडर नेम हमें अपनी स्क्रीन पर दिख जाता है। ऐसा मैं इसलिए कहती हूँ ताकि आपकी ईमेल्स हमारे पास जल्द से जल्द पहुँच जाएँ और हम पता पाएँ कि पहले सवाल का सबसे पहले जवाब देने वाला श्रोता कौन है, या फिर पहला, दूसरा, तीसरा। तो आप जल्द से जल्द इसे टाइप करेंगे, भेज पाएंगे, तभी तो आप फर्स्ट नंबर पर आएंगे। दिल चाहता है इसे सुनते हैं ये गाना।

0: गाते गुनगुनाते में फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर से आते ही जानेंगे कि किसने दिया है पहले सवाल का सही जवाब। वैसे बहुत मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आए हैं, तो सही जवाब जो मैंने है ना वो सिलेक्ट कर लिए हैं कि किस किस ने सही जवाब लिखकर भेजा है। आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, टू इमेजिन व्हाट्स पॉसिबल। दिस इज द ब्रिक्स 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सब के लिए कुछ envelopes हैं। आप सब यहाँ आओ और ये envelopes ले लो।
3: मैम, मेरे वाले में तो HIV से रिलेटेड अलग अलग मैसेजेस हैं
4: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है।
5: मेरे वाले में नीडल या इंजेक्शन शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है
6: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है।
7: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब

0: HIV का ज्यादा रिस्क?
1: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे।
2: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

तो जान लेते हैं कि किसने सबसे पहले सही आंसर हमें लिखकर भेजा है। तो पहला सही जवाब लिखा है अमित नरूला ने, दूसरे नंबर पर आते हैं नवीन भाटिया मोतीनगर से, और तीसरे नंबर पर बाजी मारी है नागेंद्र ठक्कर ने। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। चौथे नंबर पर आते हैं पवन के कासेरा, इसके बाद इदरित सैफी, सचिन कुमार और बहुत सारे मिक्स जवाब। कन्फ्यूजन देखी बॉम्बे और रोजा फिल्म के बीच में, तो जाहिर सी बात है कि कुछ सिमिलैरिटीज होने की वजह से ऐसा हुआ होगा जो हमने हिंट्स दिए। तो फिल्म का नाम है बॉम्बे, जिस फिल्म का जिक्र मैंने यहाँ किया, इसमें एक्टिंग की अरविंद स्वामी और मनीषा कोइराला ने। इससे पहले कि मैं आपको इस फिल्म से गाना सुनवाऊं, पहले मैं अपना अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे ज़रूर पूछूंगी। 90s में ही एक फिल्म आई जो करण जौहर ने डायरेक्ट की। ये एक रोम कॉम ड्रामा फिल्म है, यानी कि रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म। और हाँ, ये बतौर डायरेक्टर करण जौहर की पहली फिल्म है जिसे प्रोड्यूस किया उनके पिता यश जौहर ने। फिल्म की शूटिंग इंडिया, मॉरिशियस और स्कॉटलैंड में की गई। कमर्शियली फिल्म ने बहुत अच्छा काम किया। फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट भी मिला। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स में अलग अलग कैटेगरीज में फिल्म को 8 अवार्ड, जी हाँ, फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में 8 अवार्ड इस फिल्म के नाम हुए। फिल्म का म्यूजिक जतिन ललित ने दिया और लिरिक्स लिखे समीर साहब ने। फिल्म के साउंडट्रैक भी सुपर डुपर हिट रहे। अगर आप पहचान चुके हैं ये कौन सी फिल्म है, जिससे जुड़े मैंने कुछ क्लूज आपको बताए हैं, अगर आपने इन्हें एक साथ एक तार में पिरो लिया है और एक सुंदर सी माला बना ली है, तो जल्दी से लिख भेजिए इस माला का नाम, यानी कि मैं पूछ रही हूँ फिल्म का नाम। तो fmgold@daily@gmail.com है हमारा ईमेल आईडी। अगर आपने बिल्कुल अभी ट्यून इन किया है एफ एम गोल्ड पर, तो ये जो क्लूज हैं ये मैंने आपको बताए हैं हमारे दूसरे सवाल के, आज के दूसरे क्वेश्चन के, और आपको जल्दी से अपना आंसर ईमेल के सब्जेक्ट कॉलम में लिखकर भेज देना है। तब तक मैं आपको बॉम्बे फिल्म से सुनवा रही हूँ ये बहुत ही खूबसूरत गीत हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में।

क्या म्यूजिक है ना, ए आर रहमान साहब का म्यूजिक, और आप उस म्यूजिक का इफेक्ट देख सकते हैं, आप लोग सुन रहे हैं, मैं यहाँ स्टूडियो में सुन रही हूँ और ऐसा बिल्कुल एक माहौल बन गया है। खैर, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और बहुत सारे सही जवाब इस बार आए हैं। और ऐसा क्यों होता है कि मेरे पहले क्वेश्चन के बाद दूसरे तीसरे तक आते आते आप सब सही जवाब लिखने लग जाते हैं क्लास की तरह लगता है, जैसे टीचर आई और पढ़ाना शुरू किया तो आगे के सारे आंसर सही। तो चलिए, पहला सही आंसर दिया है हमें नवीन भाटिया साहब ने मोतीनगर से, दूसरे नंबर पर आते हैं संकेश पाटिल, और तीसरे नंबर पर रोहित ठाकुर गुरुग्राम से। इसके बाद सही जवाब देने वाले हैं नागेंद्र ठक्कर, शशि भूषण, राजेश मानकलाल शाह, आदित्य कलेले, प्रफुल मोहद प्रफुल, सरोज यादव, सचिन कुमार, पवन के कसेरा, भारती, पुष्पेंद्र सिंह, दरवेश मोड़, निरंजन भालेराव, दविंदर यादव, अक्षत कुमार, अजीत भावसार, जगदीश बजाज, मोहम्मद सईद अबासी, निगत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान, सुदर्शन, अनीता, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से बताते हैं सही सही। श्रीनिवास पी देश पांडे का भी सही जवाब आता है, उमेश कुमार साहब खयाला से बताते हैं, और सही जवाब देने वाले हैं सोमराज फ्रॉम जम्मू कश्मीर, क्या बात है, और बबलेश पवार, शशि भूषण का नाम मैंने पढ़ दिया है ये सोचकर कि सही जवाब है लेकिन है नहीं आपका सही, पंकज कुमार, इदरिस सैफी, डीबी राणा साहब नेहरू विहार से देते हैं सही जवाब, और राजकोट से जैमिन जैन का सही जवाब आता है, फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन, फाहिरा ताहिरा, आप गुन्नौर से बताते हैं हमें कि फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है। बिल्कुल सही जवाब, अधिकतर सही जवाब हमारे पास आए, हम कह सकते हैं कि सिर्फ दो तीन को छोड़ के सभी ने सही जवाब लिखकर भेजा। और इस फिल्म में आप जानते हैं किस किस ने अभिनय किया, और ऐसा मेरा मानना है कि आप सभी जानते होंगे, फिर भी बता देती हूँ, शाहरुख खान, काजोल, रानी मुखर्जी और सलमान खान भी इस फिल्म में रहे, अनुपम खेर ने भी बहुत बढ़िया एक्टिंग इस फिल्म में की। गाना सुनवाऊँ उससे पहले अगला सवाल है 2000 में आई एक फिल्म से, सन 2000 में ये फिल्म आई जिसमें अनुपम खेर, दलीप ताहिल, मुनीश बहल, आशीष विद्यार्थी और सतीश शाह ने एक्टिंग की। मेन लीड के बारे में मैं यहां नहीं बता रही हूं आपको, हाँ उसके बारे में एक क्लू है जो थोड़ी देर बाद बताऊंगी। फिल्म को डायरेक्ट किया राकेश रोशन ने और फिल्म में हीरो का है डबल रोल। जी हाँ, अब मेन लीड के बारे में हीरो से जुड़ी यही इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकती हूँ। अगर आप पहचान चुके हैं फिल्म का नाम तो आपको जल्दी से टाइप करके भेजना है fmgoldaiadelhi@gmail.com पर। तब तक सुनते हैं कुछ कुछ होता है ऐसे, ये बहुत ही प्यारा सा गाना।

0: innovation, cooperation and sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

सही जवाब आपके ढेर सारे हमारे पास पहुंच गए हैं और पहला सही जवाब हमें लिख भेजा है रोहित ठाकुर ने गुरुग्राम से। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं पंकज कुमार और तीसरे नंबर पर आते हैं अमित नरूला। तो भाई आप तीनों को बहुत बहुत बधाई और बधाई उन सबको भी जिन्होंने आपके बाद भी बहुत सारे सही जवाब हमें लिखकर भेजे हैं। नागेंद्र ठक्कर हैं, संकेश पाटिल का जवाब आता है, श्रीनिवास देश पांडे ने भी सही जवाब लिखकर भेजा, नवीन भाटिया साहब हैं मोतीनगर से, सरोज यादव हैं हमारे साथ, और इसके बाद सचिन कुमार, दरवेश मूड़, शशि भूषण, बबलेश पवार, राजेश मानकलाल शाह, प्रफुल मोहद प्रफुल, सारिका सिंह, गिरीश बम, इदरिस सैफी, सचिन कुमार का एक बार और मैसेज आता है, पुष्पेंद्र सिंह, अक्षत कुमार, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान, प्रणव शिंदे, ललित कुमार, पवन के कासेरा, अजीत भावसार, दविंदर यादव, जगदीश बजाज, देवेंद्र लुडाया, और आपने ह्यूस्टन अमेरिका से जवाब भेजा है, क्या बात है। बहुत अच्छा लगता है जब हमें ये पता चलता है कि सिर्फ भारत में नहीं बाहर से भी लोग आपको सुन रहे हैं, सुनने के साथ साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आंसर लिखकर भेज रहे हैं। तो स्वागत आपका और ऐसे ही तमाम हमारे लिसनर्स का भी स्वागत जो हर दिन हमारे साथ नए जो लिसनर्स हैं वो जुड़ते जा रहे हैं, इस परिवार का एफएम गोल्ड का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो अगला मैसेज आता है उमेश कुमार साहब का, आदित्य कलेले, फारूक अली खान, प्रणीत थाले, सोमराज, डीबी राणा और अमर जोशी, आप सब ने बिल्कुल सही सही जवाब लिखकर भेजा। फिल्म का नाम है कहो ना प्यार है और कहो ना प्यार है में एक्टिंग किसने की ये भी आप जानते होंगे। जी हाँ, ऋतिक रोशन का इसमें डबल रोल रहा और अमीषा पटेल इसमें फीमेल लीड में नजर आई। अनुपम खेर, दिलीप ताहिल का तो हम जिक्र पहले ही कर चुके थे। तो इस फिल्म से एक बहुत ही खूबसूरत गाना मैं पहुंचा रही हूँ आप सब तक।

इस गाने के साथ छोड़े जा रही हूँ आप सभी को। हमारे इस प्रोग्राम में पार्ट लेने के लिए, आंसर्स लिखकर भेजने के लिए, पूरी इन्वॉल्वमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अपना और अपनों का बहुत खास ख्याल रखिए, क्योंकि दोबारा भी तो मिलना है ना। फिर किसी रोज यहीं पर बहुत सारी बातों और गानों के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। इस गाने के बाद आप सुन सकेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत यूक्रेन और रूस दोनों के संपर्क में है और संघर्षों को रोकने में मददगार सुझावों और विचारों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद कर सकता है तो वो इसके लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है।
1: अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों के बीच बनी सहमति और उसके बाद मई और अगस्त 2026 में जो मीटिंग हुई थी बीजिंग में और दिल्ली में WMCC की बैठकों में, उस चर्चाओं पर आधारित वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की पहली फ्लैग मीटिंग 6 सितंबर 2026 को अरुणाचल प्रदेश के वाचा में और 7 सितंबर 2026 चीन की तरफ दमाई में आयोजित की गई।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि दोनों नेता आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्री पेस्कोव ने कहा कि रूस भारत को वैश्विक

0: संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: आज ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के व्यापार कारोबार का मुख्य आधार बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर तेजी से विकसित होते भारत की जीवन रेखा है। इसने भारत के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का कायाकल्प कर दिया है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। फिल्म ब्रह्मयुगम के लिए अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। इस दौरान रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री सहयोग साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। अब ब्रिटेन में कार्बन टैक्स के दायरे में आने वाले भारतीय उत्पादों पर भारत में पहले से चुकाए गए कार्बन मूल्य के आधार पर राहत मिल सकती है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 555 अंक गिरकर 75,578 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 144 अंक की गिरावट के साथ 23,635 पर दर्ज हुआ। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stones for various development initiatives worth over 35,000 crore rupees in Vadodara in Gujarat. The Prime Minister dedicated to the nation 3 key sections of the Western Dedicated Freight Corridor, marking the full completion and operationalization of the freight corridor network. Mr. Modi also flagged off freight train services from new Sanand, new Makarpura, and new Umbergaon and new JNPT, along with new passenger train service between Tanda Road and Vadodara, connecting remote tribal regions of Alirajpur to the national rail grid. Addressing the gathering, the Prime Minister emphasized that India has emerged as a global manufacturing hub, now producing its own advanced train and metro coaches. He also highlighted the rapid transformation of India's transport and logistics sector.
1: आज 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
2: During the program, Mr. Modi also laid the foundation stone for 3 railway expansion projects worth over 9,700 crore rupees. He addressed a massive public rally following the inauguration of the newly built BJP office in Navsari. He called upon citizens and public representatives to turn social service and cleanliness into an effortless everyday habit while ensuring the last mile reach of developmental schemes. In Mumbai, Prime Minister Modi will inaugurate Global FinTech Fest, GFF 2026, one of the world's largest and most influential annual FinTech conferences this evening. The 4-day fest will conclude on the 11th of September. Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with numerous leaders during the BRICS summit, which will be held on the 12th and 13th of this month in New Delhi.

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नईम अख्तर। श्रोताओं, भारत कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जूट केवल एक फसल या उद्योग नहीं है, इससे देश के करीब 40 लाख किसान परिवार जुड़े हैं और जूट मिलों तथा इससे जुड़े उद्योगों में लगभग 3,70,000 लोगों को सीधे रोजगार मिलता है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में 76 लाख गांठ कच्चे जूट का उत्पादन हुआ और करीब 12,80,000 मीट्रिक टन जूट उत्पाद तैयार किए गए। इसी अवधि में भारत ने करीब 1,71,000 मीट्रिक टन जूट उत्पादों का निर्यात किया, जिसकी कीमत 3,155 करोड़ रुपए से अधिक रही। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि भारत में जूट उत्पादन की शुरुआत कैसे हुई, समय के साथ ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उद्योग का महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे बना और सरकार की नीतियों, तकनीक और नए उत्पादों के जरिए गोल्डन फाइबर को एक टिकाऊ और आधुनिक उद्योग के रूप में कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। श्रोताओं, भारत का गोल्डन फाइबर इंडस्ट्री यानी जूट उद्योग एक लंबे इतिहास से जुड़ा है। भारत में जूट के इस्तेमाल का इतिहास 3rd शताब्दी ईसा पूर्व तक जाता है। ब्रिटिश काल में जूट का व्यावसायिक महत्व तेजी से बढ़ा, खासतौर पर सेना से जुड़े कामों में इसके इस्तेमाल के कारण जूट की मांग बढ़ी और बंगाल में बड़ी संख्या में जूट मिलें स्थापित हुईं। लेकिन 1947 में देश के विभाजन के बाद जूट उद्योग के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। जूट उगाने वाले करीब 80% इलाके पूर्वी पाकिस्तान में चले गए, जबकि ज्यादातर जूट मिलें भारत में रह गईं। यानी कच्चा माल एक तरफ था और उसे तैयार करने वाली मिलें दूसरी तरफ। इससे भारत में कच्चे जूट की कमी हुई। इसके बाद सरकार ने सितंबर 1949 में ग्रो मोर जूट अभियान शुरू किया। किसानों को धान की जगह जूट की खेती बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बाद के वर्षों में सरकार ने जूट के लिए बाजार बनाए रखने पर जोर दिया। वर्ष 1987 का जूट पैकेजिंग एक्ट इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके जरिए जरूरी वस्तुओं की पैकिंग में जूट की बोरियों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिला और किसानों के लिए जूट का एक स्थिर बाजार तैयार हुआ। आज पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में सबसे आगे है।

0: बाद बिहार, असम, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्य आते हैं। जूट की बुआई आम तौर पर मार्च और अप्रैल में होती है और फसल लगभग 100 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। आइए अब समझते हैं जूट आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है।
1: जूट जैव अवक्रमणीय यानी प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाला और दोबारा इस्तेमाल किया जा सकने वाला फाइबर है। ये तेजी से बढ़ता है, आसानी से उपलब्ध है और इसकी लागत भी अपेक्षाकृत कम है। इसके रेशे मजबूत और टिकाऊ होते हैं, इनमें नमी सोखने की क्षमता होती है और जूट से बने उत्पादों में तापमान और आवाज को रोकने जैसी उपयोगी खूबियां भी पाई जाती हैं। इसी वजह से जूट का उपयोग खेती, निर्माण, उद्योग, सजावटी सामान और में भी हो रहा है। जूट को दूसरे प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों के साथ मिलाकर भी नए उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। जूट की एक और खास बात है जिसका संबंध सीधे हमारे खानपान से है। जूट के पत्तों को अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में सब्जी के रूप में खाया जाता है। जापान में भी जूट की पत्तियों को स्वास्थ्य से जुड़े खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इनमें विटामिन, कैल्शियम, पोटेशियम और आहार फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जूट की पत्तियों से एंटीऑक्सीडेंट हर्बल ड्रिंक और स्वास्थ्य से जुड़े दूसरे उत्पाद बनाने की तकनीक पर भी काम हुआ है। जूट के आधुनिक इस्तेमाल का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है जूट जियोटेक्सटाइल। जूट जियोटेक्सटाइल यानी जूट से बना ऐसा कपड़ा जिसका इस्तेमाल सड़क निर्माण और मिट्टी के कटाव को रोकने जैसे कामों में किया जाता है। इसे खास तरीके से बुना जाता है, इसकी सतह खुरदरी होती है और शुरुआती दौर में इसकी पकड़ मजबूत होती है, इसलिए इसे ढलानों, सड़क किनारे की मिट्टी, नदियों के किनारों और नहरों जैसी जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जूट का इस्तेमाल अब केवल पैकेजिंग के लिए नहीं हो रहा, ये ऐसे बुनियादी ढांचे का भी हिस्सा बन रहा है जिसमें पर्यावरण और विकास दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की जाती है।
0: श्रोताओं, ऐसे समय में जब दुनिया प्लास्टिक और दूसरे कृत्रिम पदार्थों के टिकाऊ विकल्प तलाश रही है, तब जूट की उपयोगिता और बढ़ रही है। साथ ही जूट के लिए नए बाजार और नए अवसर तैयार हो रहे हैं। इसका फायदा किसानों और जूट से जुड़े उद्योगों तक पहुंचाना भी जरूरी है। यही वजह है कि सरकार का ध्यान केवल जूट का उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। कोशिश ये है कि किसान से लेकर बाजार तक जूट की पूरी वैल्यू चेन को मजबूत किया जाए। किसानों को बेहतर कीमत देने, खेती की प्रोडक्टिविटी और गुणवत्ता बढ़ाने, जूट से नए उत्पाद तैयार करने, छोटे कारोबारियों और कारीगरों को बाजार से जोड़ने और डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई स्तरों पर काम किया जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि इन सरकारी प्रयासों से जूट उद्योग में क्या बदलाव आया है और इसका असर किसानों, कारीगरों और उद्योग तक किस तरह पहुंच रहा है।
1: जूट किसानों के लिए सरकार की सबसे महत्वपूर्ण पहल मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कच्चे जूट का MSP 5,925 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। ये अखिल भारतीय औसत लागत के मुकाबले करीब 61.8% का लाभ देता है। MSP पर खरीद के लिए जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। जब बाजार में जूट की कीमत MSP से नीचे जाती है, तब JCI किसानों से सीधे जूट खरीद सकती है। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में डिपार्टमेंटल परचेज सेंटर्स बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा में ऐसे करीब 110 केंद्र काम कर रहे हैं। नेशनल जूट डेवलपमेंट प्रोग्राम जूट क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ी योजना है। वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक इसके लिए 485,58,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका जोर जूट की खेती, किसानों की आय और जूट के नए उत्पादों को बढ़ावा देने पर है। इसी के तहत जूट आई केयर योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक खेती, बेहतर बीज, मशीनों और बेहतर रेटिंग यानी जूट के रेशे को पौधे से अलग करने की प्रक्रिया के जरिए उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाना है। जूट के रेशे को पौधे से अलग करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी योजनाओं के साथ मिलकर रेटिंग के लिए तालाब तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन जूट उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए केवल खेती बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, जरूरत है कि जूट से ऐसे उत्पाद बनाए जाएं जिनकी बाजार में अधिक कीमत हो। इसी सोच के साथ जूट डाइवर्सिफिकेशन स्कीम के जरिए जूट की प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और सेल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। जूट रॉ मटेरियल बैंक छोटे उत्पादन केंद्रों, कारीगरों, महिला स्वयं सहायता समूहों और MSMEs को नियमित और अच्छी गुणवत्ता का कच्चा जूट उपलब्ध कराने में मदद करता है। जूट के बाजार को मजबूत करने के लिए क्वालिटी और ब्रांडिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जूट मार्क इंडिया लोगो जूट उत्पादों की गुणवत्ता और ऑथेंटिसिटी देने का काम करता है। जूट स्मार्ट नाम का ई गवर्नेंस पोर्टल जूट की खरीद और फूड ग्रेन पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली जूट बोरियों की सप्लाई को डिजिटल बनाने में मदद करता है। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने JCI और नेशनल जूट बोर्ड के साथ मिलकर जूट क्रॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम विकसित किया है। रिमोट सेंसिंग और फील्ड डेटा के जरिए जूट की खेती की निगरानी की जाती है। भुवन जंप मोबाइल ऐप और पटसन वेब प्लेटफॉर्म के जरिए फील्ड लेवल इंफॉर्मेशन जुटाकर खेती से जुड़े फैसलों के लिए डेटा उपलब्ध कराया जाता है। समाचार कक्ष से मैं प्रशांत कुमार।
0: श्रोताओं, इन सभी प्रयासों को एक साथ देखें तो जूट उद्योग में बदलाव की एक स्पष्ट तस्वीर सामने आती है। पहला बदलाव है किसान के स्तर पर। MSP और सरकारी खरीद से किसानों को कीमत में सुरक्षा देने की कोशिश की जा रही है। वहीं बेहतर बीज, वैज्ञानिक खेती और मशीनों के इस्तेमाल से उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर है। दूसरा बदलाव है उद्योग के स्तर पर। जूट को केवल बोरी और पैकेजिंग तक सीमित रखने के बजाय जियो टेक्सटाइल्स, हैंडलूम और दूसरे उत्पादों के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। तीसरा बदलाव है छोटे कारोबारियों और कारीगरों का। जूट रॉ मटेरियल बैंक्स, ट्रेनिंग सेंटर्स और मार्केट लिंकेजेस के जरिए छोटे उद्यमों को वैल्यू चेन का हिस्सा बनाया जा रहा है। यानी जूट की कहानी अब केवल खेत से मिल तक की कहानी नहीं है, ये किसान से शुरू होकर प्रोसेसिंग, छोटे उद्यम, महिला समूह, टेक्नोलॉजी, डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट्स तक पहुंचने वाली पूरी वैल्यू चेन की कहानी बन रही है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक अलका सिंह। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
2: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य गुजरातस्य वडोदरायां 35,000 कोटि रूप्यतोप्यधिक मूल्यानां विभिन्न विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासः च कृतः। उक्तं च यत् भारतं वैश्विकोत्पादन केन्द्र रूपेण उदितमस्ति। मुम्बय्यां प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 28,000 ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इत्यस्य उद्घाटनं विधास्यति। बॉम्बे उच्च न्यायालयेन अद्य प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं प्रति 19-2000 वर्षे प्रदत्तं वक्तव्यं सम्बद्धे मानहानि प्रकरणे कांग्रेस सांसदस्य राहुल गांधिनः विरुद्धं प्रत्याख्यापितस्य समाह्वानपत्रस्य निरस्तीकरणं निराकृतम्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य त्रिदिवसीय श्रीलंका यात्रायै कोलंबो नगरं सम्प्राप्तवान्। अपि च अहमदाबादे अनुष्ठीयमानायाम् ऐषमः विश्व दिव्यांग धनुर्क्रीडायां भारतेन 2 स्वर्णपदके 1 रजतपदकं च अधिगतम्। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य गुजरातस्य वडोदरायां 35,000 कोटि रूप्यतोप्यधिक मूल्यानां विभिन्न विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासः च कृतः। प्रधानमन्त्रिणा पश्चिम समर्पित मालवाहक मार्गस्य 3 प्रमुखाः खण्डाः राष्ट्राय समर्पिताः, येन मालवाहक मार्गजालस्य पूर्णं परिचालनं सम्भविष्यति। प्रधानमन्त्री मोदी न्यू सानन्द, न्यू मकरपुरा, न्यू उम्बरगांव तथा न्यू JNPT इत्येतेभ्यः स्थलेभ्यः मालवाहक रेल यान सेवानां हरितध्वजं प्रदर्श्य शुभारंभं कृतवान्। तेन टांडा मार्गस्य वडोदरायाः च मध्ये नवीन यात्री रेल सेवायाः शुभारम्भोऽपि कृतः। एषा सेवा अलीराजपुरस्य दूरस्थेषु

0: जनजातीय क्षेत्रेषु राष्ट्रीय रेलजालस्य संपर्कं स्थापयिष्यति। विशाल जनसमूहं संबोधयन् प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् भारतं वैश्विकोत्पादन केन्द्र रूपेण उदितमस्ति, तथा अधुना देशः स्वयमेव उन्नतयोः रेल मेट्रो चेत्येतयोः यानयोः कक्ष निर्माणं करोति।
1: आज 2800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री उक्तवान् यदस्याः परियोजनायाः परिकल्पना 6-2000 वर्षे कृता, किन्तु सा बहूनि वर्षाणि निष्क्रियावस्थायाम् आसीत्। तद्विपरीतं गतदशके द्रुतगतिना कृतस्य कार्यान्वयनस्य फलस्वरूपं राष्ट्रियापूर्तिव्यवस्था पूर्णतया परिवर्तिता अस्ति। अद्य अयं मालवाहकमार्गः द्रुतगत्या विकासमानस्य भारतस्य जीवनरेखारूपेण कार्यं करोति। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् मालवाहनस्य यात्रीरेलमार्गेभ्यः पृथक्करणेन कार्यक्षमतायां महत्वपूर्णः परिष्कारः अभवत्। यात्राकाले महन्यूनतया इन्धनस्य पर्याप्तं संरक्षणं भवति, पर्यावरणे दुष्प्रभावः न्यूनीभवति, सम्पूर्णराष्ट्राय च द्रुततरा स्वच्छा च आपूर्तिव्यवस्था स्थापिता भवति।
1: इस वर्ष लाल किले से मैंने विकसित भारत के लिए संकल्प की सप्त धारा का आह्वान किया है। इस सप्त धारा में एक धारा गति शक्ति की भी है। विकसित भारत के लिए हमें ऐसी कनेक्टिविटी चाहिए जो सुगम भी हो और जमाने के हिसाब से जरा तेज भी हो।
0: कार्यक्रमावधौ प्रधानमंत्री मोदी 97,00,000,000,000,000 रूप्यतोप्यधिकमूल्यानां त्रयाणां रेल विस्तार योजनानां शिलान्यासमपि कृतवान्। मुंबय्यां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 26,00,000,000 ग्लोबल फिनटेक फेस्ट इत्यस्य अद्य उद्घाटनं विधास्यति। अस्य वार्षिक सम्मेलनस्य सप्तमं संस्करणमद्य समारब्धं सत् आगामिनि सितम्बर मासस्य 11 दिनांके समाप्तिमेष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य सामाजिक सेवां स्वच्छतां च प्रभावी दैनन्दिन आचरण रूपेण स्वीकर्तुम् अथ विकास योजनानां लाभं समाजस्य प्रति प्रापयितुं च नागरिकेभ्यः जनप्रतिनिधिभ्यश्च आह्वानं कृतवान्। प्रधानमन्त्रिणा नवसारीत्यत्र नवनिर्मितस्य भाजपा कार्यालयस्य उद्घाटनानन्तरम् आयोजिता विशाल जनसभा सम्बोधिता। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनायाः परिवर्तनकारी प्रभावस्य उल्लेखं कुर्वन् प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् अनया योजनया लघुमार्ग विक्रेत्रेभ्यः पथ विक्रेतृभ्यश्च सुलभ ऋणस्य अथ आधुनिक अंकीय देय सौविध्यानाञ्च सुलभ प्राप्तिं सुनिश्चित्य वित्तीय समावेशनं प्रवर्धितम्। जनस्वास्थ्यस्य स्वच्छतायाश्च महत्वं प्रतिपादयन् प्रधानमंत्री स्वागमनात् पूर्वं स्थानीय प्रशासनेन निवासीभिश्च संचालितस्य व्यापकस्य सूक्ष्म स्वच्छताभियानस्य प्रशंसां कृतवान्। प्रधानमंत्री मोदी जनकल्याणाय निरन्तर समर्पणस्य कृते दलकार्यकर्तृणामपि प्रशंसां कृतवान्। इतः पूर्वमद्य प्रधानमंत्री मोदी वडोदरायां 35,00,000,000,000 रूप्यतोप्यधिकमूल्यानां विभिन्न विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ newsonair चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। असम विधानसभायाः भूतपूर्वसदस्याय विश्रुतसङ्गीतज्ञाय भारतरत्नविभूषिताय डॉक्टर भूपेन हजारिका महोदयाय तस्य शततमे जन्मजयन्त्यवसरे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन्, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, गृहमंत्री अमितशाहश्च अद्य स्वकीयां भावपूर्णां श्रद्धाञ्जलिं समार्पयन्। साम्प्रदायिक संचार

0: Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: Namaskar, aur hamare saath khabron par charcha ke liye studio mein aamantrit hain desh ke jane mane अर्थशास्त्री डॉक्टर एस पी शर्मा. डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
0: वार्म वेलकम डॉक्टर शर्मा.
2: जी शुक्रिया, थैंक यू.
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 550 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 23,635. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन, इनॉग्रेट्स एंड डेडिकेट्स टू द नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ 35,000 crore rupees in Gujarat, says India has emerged as a global manufacturing hub, producing its own advanced train and metro coaches. And global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज हुई गिरावट. सेंसेक्स 550 अंक से अधिक लुढ़का. निफ्टी 23,635 दर्ज हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए राष्ट्र को समर्पित किया. कहा, स्वदेशी उन्नत ट्रेन और मेट्रो कोच का उत्पादन कर भारत वैश्विक निर्माण हब के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम बढ़े.
0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और आइए अब शुरू करते हैं घरेलू शेयर बाजार से खबरों का सिलसिला. घरेलू शेयर बाजार में

0: लगातार दूसरे दिन आज बिकवाली की गई और प्रमुख सूचकांक इस वर्ष जून के मध्य के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आकर बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 555 अंक यानी 0.73% नुकसान के साथ 75,578 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 144 अंक यानी 0.61% घाटे के साथ 23,635 दर्ज हुआ। हालांकि विस्तारित बाजारों में लिवाली कहीं अधिक तेज देखी गई सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 और स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 0.2% लाभ में रहा।
1: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्स डिक्लाइन फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव सेशन टुडे, एंडिंग एट द लोएस्ट लेवल सिंस मिड जून। The Sensex declined 555 points or 0.73% to end at 75,578, while the Nifty shed 144 points or 0.61% to settle at 23,635. However, in the broader market of the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 and the Small-Cap 100 indices gained 0.2% each. Earlier, the markets opened lower and remained under pressure throughout the session as Brent crude prices edged closer to the $100 per barrel mark, heightening concerns over inflation and broader economic uncertainty.
0: नजर डालते हैं सेंसेक्स में शामिल कंपनियों पर जिनके प्रदर्शन में कहीं गिरावट कहीं तेजी देखने को मिली। सबसे पहले अधिक नुकसान में रहने वाली कंपनियां, ICICI बैंक को आज 2% का घाटा हुआ। एक्सिस बैंक के शेयरों में 1.7% की गिरावट आई। अल्ट्राटेक सीमेंट 1.2% नुकसान के साथ बंद हुआ। उधर लाभ कमाने वाली कंपनियों में सम्मिलित रही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे 1.5% का फायदा हुआ। अडानी पोर्ट्स के शेयरों में 1.1% और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर 0.8% लाभ के साथ बंद हुए।
1: इन द सेक्टोरल इंडेक्सेस ऑन द BSE 14 आउट ऑफ 28 सेक्टर एज्ड डाउनवर्ड। अमंग द टॉप अंडर परफॉर्मेंस, इंश्योरेंस एज वेल एज टॉप 10 बैंक्स फेल 1%, प्राइवेट बैंक्स index dropped 0.9% and financial services lost 0.8%. In contrast, capital goods advanced 1.3%, power gained 0.7%, and healthcare as well as industrials added 0.6%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,384 companies declined, 2,009 advanced and 216 remained unchanged.
0: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 34 पैसे कमजोर हुआ, ₹94.83 के स्तर पर बंद हुआ। डॉक्टर शर्मा, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। कुल मिलाकर ठीक ठाक गिरावट हुई और जून मध्य के बाद से अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है बाजार, किस अर्थ में ले रहे हैं कारोबार को?
2: देखिए मनोज जी, एक तो ये बहुत स्ट्रांग प्रॉफिट बुकिंग मैं कहूँगा, क्योंकि जो ग्लोबल सिचुएशन है, जो अनसर्टेनिटीज़ हैं, वो वापस फिर एक हाइटेंड मोड पर हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसमें कोई ऐसा चिन्ह नहीं आ रहा है जिससे कि हमें लगे कि शांति किसी एजेंडा पे हो या कुछ उसका वजूद हमें नज़र आए, तो जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस वापस एस्केलेशन में है। और जब क्रूड प्राइसेस एस्केलेशन में है तो उसका सीधा असर जो है पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर आता है, भारत के ऊपर आता है और जो भी इसके इम्पोर्टर हैं उनके ऊपर आता है। ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर ही बहुत काफ़ी असर होता है। तो उससे के मद्देनज़र मैं ये समझता हूँ कि जो अभी मार्केट में जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है वो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ रहा पिछले कुछ सेशंस में, जिसमें उन्होंने प्रॉफिट बुक किया अनसर्टेनिटीज को देखते हुए कि ग्लोबल लेवल पे कुछ ऐसी दिशा नहीं मिल रही है कि कोई पीस की वार्ता आगे कोई किसी एजेंडा में हो। तो एक तो ये, दूसरा जो एक जो इन्फ्लेशन को लेके कि जो इन्फ्लेशन अभी आने वाले टाइम में या तो राइज कर सकता है या फिर उसी जो हायर स्टिकी जोन में रह सकता है, जैसे कि US का इन्फ्लेशन है 3.4% पे, तो उनके टॉलरेंस लेवल से काफ़ी ज़्यादा है, जिसे फेड आने वाले टाइम में क्या डिसीजन लेगा वो एक अनसर्टेनिटी जो है इन्वेस्टर्स के माइंड में है, जो भी कुछ ही दिनों में हमारे सामने आएंगे उनके रिजल्ट जो भी फेड डिसीजन लेगा, और तीसरे नंबर पे जो एक ऐसा जो अनुमान था कि बहुत जल्दी मार्केट्स में एक तेजी आएगी, जब पीस हो जाएगा, जब कुछ ऐसी वार्तालाप होगी, तो वो सभी चीज़ों के ऊपर कोई ऐसा विचार नहीं।
1: सो व्हाई डिड द मार्केट फेल टू फाइंड सपोर्ट डिस्पाइट सेलेक्ट रिजिलियंस इन मिड कैप एंड डिफेंसिव सेक्टर्स?
2: मिस्टर लेक, बिकॉज पीपल आर बुकिंग देयर प्रॉफिट्स एट दिस जंक्चर, अपना एंटिसिपेटिंग द हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस इन द कमिंग टाइम्स एंड द हाई इन्फ्लेशन एंड द अनसर्टेनिटी एट द ग्लोबल लेवल। दैट्स व्हाई इन्वेस्टर्स आर नॉट टेकिंग द लॉन्ग कॉल टू गो अहेड विद द इन्वेस्टमेंट्स। Where there is some profit, then they are booking some partial profit or the full profit or far profit. But the profit booking is significantly high in the market at this juncture. That's why markets are significantly low to the level of June 2026. But going forward, if some peace process happens at the global level, then I believe markets will recover sooner than later.
1: So today the top 10 banks fell 1%, private banks index fell 0.9%, and the financial services lost 0.8%. So are banks vulnerable mainly because of risk aversion, or could high crude ultimately affect loan growth and asset quality as well?
2: I believe all these three factors are working, because when the crude prices rise, then the inflation trajectory also expands and go high. Then the central banks are also in a mood of tough monetary measures. So that's why banking sector is not in that much comfortable position after observing such kind of developments at the global level, whether the West Asia or the Russia Ukraine, their war is also intensifying. So that's why the situation is not in any direction. People are confused and they are taking their decisions to book the profit and to make some gains from the market.
1: So in contrast to what I just mentioned about banks and all going down, we also had pharma and healthcare attracting money today. What could be the reason? Is it defensiveness? Is it export potential? Or is it
2: because
1: a rupee related benefit?
2: Yes, because this is a export oriented sector actually, jo pharma and Ayush and all these related activities, like the technical stocks also. These export-oriented stocks sometimes gain when the market declines. So that may be the reason that these stocks are showing the strength in the market.
1: So what does it say to you about the domestic investors being very confident when you see that the mid-cap has gained today? Does it show their confidence, or could that pocket face delayed profit booking if volatility persists?
2: No, Alekji, this is some kind of churning. When the people book their profits in the blue chips and then they shift to the other prospective mid caps, so that their investments are not out of the market. So that's why this is the shift from some profit booking in the blue chip companies, then the shift towards the mid-cap, small and mid-cap. So that churning is happening between the larger and smaller stocks.
0: यहाँ पर एक संक्षिप्त सा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि रुपया कमजोर हुआ है, निसंदेह आज भी गिरावट हुई है, लेकिन रुपये के गिरने ने किस रूप से हमारे निर्यात को प्रोत्साहित किया है और किस रूप से प्रतिस्पर्धी बने हैं हमारे बाजार? बहुत संक्षिप्त में
2: मनोज जी, जब रुपी डेसिलेरेट होता है, गिरता है, तो उसका उसके जब तो प्राइस कॉस्ट मार्जिन जो एक्सपोर्टर के लिए थोड़ा फायदा होता है, उनके जो प्रोडक्ट्स है वो कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, जिससे अर्निंग्स भी इंक्रीज हो जाते हैं।
1: सेबी चीफ इज एड्रेसिंग द ग्लोबल फिनटेक फेस्ट समिट 2026 इन मुंबई व्हाइल वी स्पीक, दिस इज लाइव, सो लेट्स लिसन टू हिम।
3: रिजर्व बैंक has consistently viewed fintech as a valuable partner in building the financial system of the future, the regulatory sandbox, the Reserve Bank innovation hub, and our structural and continued dialogues with startups, fintechs, and other stakeholders all rest on the conviction that better policy emerges from continuous, open, and constructive engagement. We have encouraged self-regulation within the sector. We have supported the development of digital public infrastructure that fintechs can build upon. We have been open to new ideas and new players. We have promoted responsible innovation while safeguarding trust that is the very foundation of finance. And we will continue with this approach, guided by a vision to build a financial system that is safer, more trustworthy, more inclusive, fair, efficient, and supports economic growth and public welfare. Honorable Prime Minister, this festival is a testament to what is possible when policymakers, regulators, investors, financial intermediaries, and innovators share a common purpose. I, on behalf of all the participants, express a heartfelt gratitude to you for taking out precious time for this event.
1: Listening live to SEBI Chief Tuhin Kanta Pandey, who is speaking at the Global FinTech Fest 2026 in Mumbai.
0: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. प्रधानमंत्री ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 3 अहम हिस्सों को देश को समर्पित किया, जिससे फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क का काम पूरा हो गया और अब ये चालू हो गया है. इस अवसर पर एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में तेजी से हो रहे बदलावों का जिक्र किया. उन्होंने 2,800 किलोमीटर से अधिक लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पूरा होने को 21वीं सदी के भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि और देश की बदलती हुई कार्य संस्कृति का प्रमाण बताया. प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभरा है और अपनी खुद की उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच बना रहा है. उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे नेटवर्क में 50,000 से अधिक आधुनिक रेलवे कोच और 2.5 लाख वैगन जोड़े गए हैं. प्रधानमंत्री ने चिप टू शिप लोकल प्रोडक्शन के दृष्टिकोण के बारे में बताते हुए कहा कि देश के भीतर एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर सप्लाई चेन बनाई जा रही है, जिसमें हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर भारी समुद्री शिपिंग तक सब कुछ शामिल है.
1: लेट्स टेक यू लाइव वंस अगेन टू मुंबई where the Prime Minister is now addressing the gathering at the Global FinTech Fest 2026.
4: तीसरी बार सरकार बनने से लगी थी और ये हैट्रिक आप सभी के बीच आने से जुड़ी है. ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में लगातार ये मेरा 3rd ईयर है. ये हैट्रिक बताती है कि विकसित भारत के लिए आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आपका काम कितना महत्वपूर्ण है. साथियों, हर बार जब मैं यहां आता हूं तो मुझे पहले से ज्यादा युवा दिखाई देते हैं, पहले से ज्यादा एनर्जी अनुभव होती है. मुझे पॉसिबिलिटीज का दायरा एक्सपेंड होता दिखता है. ये साफ साफ लगता है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, ड्रीम्स और बोल्ड हो रहे हैं. और इसलिए विकसित भारत के फ्यूचर को लेकर मेरा विश्वास और मजबूत हो रहा है. साथियों, फिनटेक की इस एनर्जी के बीच ही मुंबई में सांस्कृतिक ऊर्जा भी इन दिनों चरम पर है. कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र सहित पूरे देश में गणेशोत्सव शुरू होने जा रहा है. हमारे यहां

0: हर शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश को याद किया जाता है। मैं गणपति बापा को नमन करते हुए आप सभी को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
1: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में प्रधानमंत्री तीसरी बार पहुंचे और उन्होंने लोगों को शुभकामनाएं देते हुए नए विकसित हो रहे भारत के भविष्य के बारे में थोड़ी सी जानकारियां दी। हम समझना चाहेंगे कि इस तरह के आयोजन किस रूप में एक विश्व समुदाय को आपस में नज़दीक लाते हैं और ये जो फिनटेक फेस्ट है वह क्या आकार लेगा, हमारे आर्थिक तंत्र को, वैश्विक आर्थिक तंत्र को क्या योगदान देगा।
2: देखिए मनोज जी, जो फिनटेक है वो हमारी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है और वी आर प्राउड के हम भारत पूरे ग्लोबल लेवल पे लीडर हैं। हमारी जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं वी आर नंबर वन, 20 बिलियन से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं एक महीने में, एक बहुत बड़ी बात है जिसमें जो बड़े कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी पीछे हैं। तो ऐसे जो सम्मेलन है इससे एक तो हमारी जो अवेयरनेस है, हमारी जो अप्रोच है वो पूरे विश्व में उजागर होती है कि भारत में किस तरीके की डेवलपमेंट्स हैं और भारत इन इन चीज़ों में आगे अपनी लीडरशिप बना के रखे हुए है। और दूसरा जो हमारा लक्ष्य है, जो हम विकसित भारत की तरफ जो बहुत तेज गति से दौड़ रहे हैं, जो अभी हमारे पास 20 साल और है हमें बड़ी ऊर्जा के साथ काम करने के, तो ये जो सेक्टर है चाहे वो फिनटेक है, एआई है, डिजिटलाइजेशन है, तो ये सभी सेक्टर जो न्यू इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं ये पूरी इकोनॉमी को गति दे रहे हैं, उसकी स्पीड को तेज कर रहे हैं, जो हमारे जिसकी वजह से हम देखिए अपना जो जीडीपी है 7.8% जी। जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज पहले होती थी उनसे कहीं ज़्यादा हमारा जो ग्रोथ है वो कहीं आगे निकल गया है। अब चाइना का ग्रोथ है वो 4-4.5% के आसपास अटका हुआ है एंड वी आर सिग्निफिकेंटली हायर देन द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो ये सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि हमारी जो रफ्तार है, हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो ऊर्जा है वो पूरे विश्व में अभी विजिबल है।
3: सो इन नटशेल, GFF 2026 सीक्स टू बिल्ड ऑन इंडियाज लीडरशिप इन डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड मूव फ्रॉम पोटेंशियल टू इम्पैक्ट।
1: यहाँ पर डॉक्टर शर्मा, हम आपको एक बार फिर से श्रोताओं को लिए चलना चाहेंगे गुजरात, जहाँ वडोदरा में एक बड़ी उपलब्धि देश ने हासिल की है। हमारा पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आज देश को समर्पित कर दिया गया, इसके 3 अहम हिस्से हैं वो भी पूरे हो गए। किस रूप में ये सहायक होगा माल परिवहन के लिए और कैसे यह जो लॉजिस्टिक्स का हमारा क्षेत्र है उसे कह लें योगदान देने वाला है।
2: देखिए मनोज जी, मैं इन कॉरिडोर्स को फ्रेट कॉरिडोर्स ही नहीं, मैं इनको ग्रोथ कॉरिडोर्स मानता हूँ जी। ये भारत की ग्रोथ कॉरिडोर्स हैं। जब भी कोई नए कॉरिडोर्स आते हैं तो भारत की जो ग्रोथ है और भी गतिमान हो जाती है। तो आने वाले टाइम में हम समझते हैं कि जो हमारा लक्ष्य है, जिस तरीके से हम हमारी जो रफ्तार है जैसे मैंने पहले बताया, तो और सुदृढ़ होगी और हमारी ग्रोथ जो है उसको आगे सस्टेनेबल बनाने में ऐसी हमें ग्रोथ कॉरिडोर्स और चाहिए जो हमें और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे।
1: यहाँ पर एक और तथ्य हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है और खुद की उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच तक बनाने लगा है। किस रूप में देख रहे हैं आप हब बनने की स्थिति?
2: जी बिल्कुल मनोज जी, देखिए अभी हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हो या फिर मोबाइल एक्सपोर्ट्स में हो, वी आर द लीडिंग इकोनॉमी अमंग द मेजर इकोनॉमीज। तो जो पहले हम नेट इम्पोर्टर होते थे, जो मोबाइल नाम का नामो निशान नहीं था, हम सब कुछ ही 100% हम इम्पोर्ट कर रहे थे, तो अभी हम उसके बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन गए हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग की ही देन है कि हमारी जो ऊर्जा जो हमारी मेक इन इंडिया से हमें मिली, उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और PLI स्कीम सभी ने हमें इतना सपोर्ट किया और हमारी जो विश्व में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं अभी वो विख्यात होने लगे हैं, जिसे हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स बताते हैं कि अवर प्रोडक्ट्स आर इन डिमांड सिग्निफिकेंटली एट द ग्लोबल लेवल। जो एक्सपोर्ट्स है वो 13-14% के ऊपर ग्रो करना और मर्चेंडाइज 17-18% पे ग्रो करना एक बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम वैल्यू एडेड देखें, जो पहले चाइना कहीं आगे होता था तो अभी चाइना भी उससे पीछे है। हम मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्रोथ है उसमें वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ से ऊपर है, 2% पॉइंट ऊपर हम जो ग्लोबल लेवल का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ से ऊपर है। तो स्वाभाविक है कि हम एक आने वाले टाइम की एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहे हैं।
1: आइए आगे
0: बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे।
1: फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन FADA की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त में देश में ऑटोमोबाइल की खुदरा बिक्री वार्षिक आधार पर 17.51% बढ़कर 24,23,201 इकाई पर पहुंच गई। CNG हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक अगस्त महीने में ही EV जैसे वैकल्पिक ईंधन वाले पैसेंजर वाहनों की बिक्री पहली बार पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से आगे निकल गई और बाजार में ट्रांजेक्शन हुए 41.95% रहे।
0: यानी
1: पेट्रोल वाहनों की हिस्सेदारी
0: हम यहाँ जितनी देर से बैठे हैं
1: जो ग्राहकों की पसंद में बड़े बदलाव को दिखाता है। अगस्त में पैसेंजर वाहनों की बिक्री 16.14% बढ़े जबकि कमर्शियल वाहनों की बिक्री में सालाना आधार पर 14.45% की बढ़ोतरी हुई। साथ ही उल्लेखनीय बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में ऑटोमोबाइल की बिक्री शहरी इलाकों की तुलना में बेहतर रही है। शहरी बिक्री में 15.17% की वृद्धि हुई जबकि आलोच्य अवधि में ग्रामीण बिक्री वार्षिक आधार पर 19.79% बढ़ी है। यहाँ पर बहुत संक्षेप में आपको आपसे ये प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, क्या दिखा रहे हैं आंकड़े, खासतौर से जो ईवी की बिक्री बढ़ी है और ग्रामीण भारत में वाहनों की बिक्री अधिक बढ़ रही है।
2: देखिए मनोज जी, जो पैसेंजर व्हीकल्स है ये एक डिमांड इंडिकेटर है जिसे हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी में डिमांड कितनी है। और सेकंड जो रूरल डिमांड, जैसे आपने बताया कि जो रूरल एरियाज में इनकी डिमांड और तेज गति से बढ़ी है, तो आने वाले टाइम में ये एक इंडिकेशन है कि हमारी जो डिमांड ट्रैजेक्टरी है वो बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से जो हमारा जो ग्रोथ है वो भी सुदृढ़ रहेगा। सो दिस इज इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इन द कमिंग टाइम्स।
1: आइए लिए चलें श्रोताओं आपको वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई बाजार, जहां जापान का निक्की 225 1.7% बिकवाली के दबाव में नीचे आ गया। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.6% की कमी आई। अन्य आर्थिक खबरों पर ध्यान दें तो इस वर्ष पिछली तिमाही की तुलना में अप्रैल जून तिमाही में जापान के GDP में 0.4% की वृद्धि हुई। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वार्षिक आधार पर देश की अर्थव्यवस्था में इस दौरान 1.4% की वृद्धि हुई। यूरोपीय बाजारों में ध्यान दें तो समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में जर्मनी का डैक्स 0.2% नीचे था। लंदन के फुटसी 100 में भी 0.1% की कमी चल रही थी। यहाँ पर अगले सप्ताह के जापान में केंद्रीय बैंक की बैठक होने वाली है, साथ ही जापान के GDP के जो आंकड़े आए हैं वो क्या दर्शा रहे हैं, ये जो तेज वृद्धि यानी इसे हम कहें या किन अर्थों में ले।
2: देखिए जापान ने भी ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए बहुत एफर्ट किए हैं और उसी की वजह से ग्रोथ बड़ा स्ट्रांगली विजिबल हुई है, रिबाउंड हुई है
1: जी।
2: और जो मेजर्स लिए गए हैं, मैं समझता हूँ कि अभी आने वाले टाइम में जो ग्रोथ है जापान की बहुत सुदृढ़ रहेगी और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी
1: जी।
2: सो दिस इज अ ग्रेट सपोर्ट फॉर दी वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो।
3: Moving on, the U.S. stock markets remained closed yesterday on account of Labor Day. The Dow Jones Industrial Average declined 0.5%, the S&P 500 lost 0.4%, and the Nasdaq Composite fell 0.3%. This was in the previous session where the major U.S. indices ended lower, followed by stronger than expected jobs data. Very, very briefly, what are your expectations on the Fed's policy decision in the coming week, or rather towards the end of the week?
2: I think they will remain in a status quo mode. I don't see they are in a mode to increase the Fed rate or decrease the Fed rate, because their inflation is in a sticky zone. So they will also be in a wait and watch situation in the coming times. And West Asia crisis is the major driver of such developments.
3: Okay. Canada's retaliatory tariffs on $28 billion Canadian dollars worth of U.S. goods took effect today with duties of up to 50%. The tariffs target products including steel, furniture and clothing, while fresh fish and lobster were removed following pressure from Canada's seafood industry. The move comes after trade talks between Canada and the United States collapsed last week with no sign yet of negotiation resuming anytime soon. The global crude oil prices climbed to multi-week highs as Houthi attacks on Saudi energy facilities intensified concerns about disruptions in global oil supplies. Brent crude was trading 1.7% up at $98.67 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 2.4% up at $93.90 per barrel when reports last came in. What do you expect, Dr. Sharma, now that the oil is now towards $98?
2: Yes, considering the very tense situation in the Strait of Hormuz, so I believe the prices will remain elevated. Though the volatility will come in the coming times, the prices are in the rising mode at this juncture.
1: यानी किस रूप में हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा बहुत संक्षेप में?
2: देखिए, जहाँ तक क्रूड का सवाल है, अगर वो $100 या इसके नीचे रहता है तो हमारी ग्रोथ के ऊपर कोई असर आने की संभावना नहीं है, हमारी ग्रोथ इंटैक्ट रहेगी। हाँ, अगर इसमें बहुत तेज एस्केलेशन आती है तो हमारी ग्रोथ इम्पैक्ट हो सकती
1: है। आइए श्रोताओं, आपको लिए चलें सर्राफा बाजार। भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.2% बढ़त के साथ 1,53,077 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी भी थोड़ी सी तेज थी। इसके मूल्यों में 0.9% की बढ़ोतरी थी और इसके भाव 2,33,826 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रहे थे। और बस अब यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको डॉक्टर शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद देना
2: जी, शुक्रिया मनोज जी,
3: थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू, बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन, benchmark domestic indices decline, Sensex falls over 550 points, Nifty settles at 23,635. Prime Minister Narendra Modi lays foundation stone, inaugurates and dedicates to the nation development projects worth 35,000 crore rupees in Gujarat, says India has emerged as a global manufacturing hub, producing its own advanced train and metro coaches. And global crude oil prices rise. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
4: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को बढ़ाकर ए श्रेणी में कर दिया है। प्रधानमंत्री इस समय सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: भूमिका है, इसी अनुभव से सीखते हुए हमें फिनटेक की ताकत से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और बढ़ाना है। मैं आपको कैपिटल और क्रेडिट की दुनिया से एक उदाहरण देता हूं। एक बहन है जो छोटी दुकान चलाती है, उसको हर दिन डिजिटल पेमेंट मिलता है। अब उसकी इनकम और खर्च में एक क्लियर पैटर्न दिखता है, उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। वो उस लेवल से आगे बढ़ चुकी है जहां कम कैपिटल भी काफी था।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा है कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने

0: ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान एआई एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया जाएगा। फिल्म ब्रह्म युगम के लिए अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 555 अंक गिरकर 75,578 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 144 अंक की गिरावट के साथ 23,635 पर दर्ज हुआ। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Global FinTech Fest GFF 2026 in Mumbai this evening. The theme of GFF 2026 is Potential to Impact, Agentic AI, Tokenization, Quantum, Trusted Connected Global Systems for Inclusive Finance. Addressing the gathering, Mr. Modi said India is taking its fintech journey to new heights with innovation and inclusion at its core. He congratulated all the guests and delegates who have come from India and abroad to the Global FinTech Fest. He said this is his 3rd consecutive year at the Global FinTech Fest and this hat-trick shows how important they are for a Viksit Bharat. We now go over live to Mumbai where Prime Minister Modi is addressing the Global FinTech Fest 2026 event.
2: अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है। हमारी फिनटेक सक्सेस स्टोरी की अब तक की सफलता स्केल है, स्कोप है, सिक्योर सिस्टम है, डेमोक्रेटाइजेशन अब टेक्नोलॉजी है और जनता का ट्रस्ट है। इन्हीं कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए फिनटेक सेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन पर फोकस करना है। इसी आग्रह के साथ आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: Earlier in the day, Prime Minister Modi inaugurated and laid the foundation stones for various development initiatives worth over 35,000 crore rupees in Vadodara in Gujarat. The Prime Minister dedicated to the nation 3 key sections of the Western Dedicated Freight Corridor, marking the full completion and operationalization of the freight corridor network. Mr. Modi also flagged off freight train services from New Sanand, New Makarpura, New Umbergaon and New JNPT along with a new passenger train service between Tanda Road and Vadodara, connecting remote tribal regions of Alirajpur to the national rail grid.
2: आज 2,800 किलोमीटर से अधिक का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूरा हो गया। ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
1: During the program, Mr. Modi also laid the foundation stone for 3 railway expansion projects worth over 9,700 crore rupees. He addressed a massive public rally following the inauguration of the newly built BJP office in Navsari. He called upon citizens and public representatives to turn social service and cleanliness into an

0: effortless everyday habit while ensuring the last mile reach of developmental schemes. Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with numerous leaders during the BRICS summit, which will be held on 12th and 13th of this month in New Delhi. External Affairs Ministry spokesperson Ranveer Jaiswal said this during a media briefing in New Delhi today. On Russia-Ukraine conflict, the spokesperson said India is in touch with both the Ukrainian and Russian sides and is trying to see if there are ideas and suggestions that can contribute to the cessation of the conflict. Speaking on devastating flash floods in Nepal, Mr. Jaiswal said that India has expressed solidarity and sympathy with the people and government of Nepal. He added that India has responded promptly and will continue to support relief, rescue and reconstruction efforts. Mr. Jaiswal said 95 tons of relief material has so far been sent by 7 aircraft and some more relief material will be dispatched soon. Mr. Jaiswal said India-China ties are gradually moving in a positive direction. He added that this gradual normalization of ties, people-to-people ties, are very important. Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin will hold bilateral talks on the sidelines of BRICS summit. Addressing media at a virtual briefing in New Delhi, Kremlin spokesperson Dmitry Peskov said both leaders are expected to discuss issues of mutual interest. Mr. Peskov said Russia considers India a very important player in the global majority. Defence Minister Rajnath Singh arrived in Colombo today on a three-day visit to Sri Lanka aimed at deepening bilateral defence and maritime cooperation. During his visit, the Defence Minister will hold talks with Sri Lanka's leadership on various issues. And that is the end of this news bulletin. Surkhiyon mein.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक।
2: नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। हम आज इन्हीं सब कुछ विषयों पर आज इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी। केतन जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार।
2: सबसे पहले तो केतन जी हमें यही बताइए कि प्रधानमंत्री की जो आज की सभा रही है और विशेष रूप से जो विभिन्न विकास परियोजनाओं का आरंभ हुआ है वह किस रूप में है और कैसे गुजरात समेत पूरे देश को इसका लाभ मिलेगा।
3: प्रधानमंत्री जी ने आज गुजरात के प्रमुख दो शहर की मुलाकात लेके वेरियस डेवलपमेंटल वर्क्स है उनको या तो शिलान्यास किया है या तो डेडिकेट किया है नेशन को। सुबह सबसे पहले वो वडोदरा आए थे सेंट्रल गुजरात में, जहां करीबन 35,000 करोड़ से भी ज्यादा वेरियस डेवलपमेंट वर्क्स का उन्होंने शिलान्यास किया या तो फिर इनोग्रेशन किया, जिसमें मेनली देखे जाए तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कुछ प्रोजेक्ट्स और इंडियन रेलवे के कुछ प्रोजेक्ट्स को समावेश किया जाता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के करीबन 1840 करोड़ प्रोजेक्ट्स की कीमत के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। और जो जिस प्रोजेक्ट पर सबकी नजर है वो जैसे आपने जिक्र किया कि 3 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे के, उसका उन्होंने आज राष्ट्र को समर्पित किया
2: जी।
3: तो एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा जो प्रधानमंत्री का दौरा है भारत का, उसमें ये सबसे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण है तो 20,000 करोड़ का एक वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर WDFC
2: जी,
3: ये जो 3 प्रमुख उपक्रम है उसका लोकार्पण आज हुआ है।
2: यहाँ पर श्रोताओं हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही, खासतौर से रेलवे के क्षेत्र में देश ने जो प्रगति की है उसका उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में भारत न केवल रेलवे कोच और मेट्रो कोच बल्कि रेलवे लोकोमोटिव के लिए भी एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के तौर पर उभरा है। 2014 से लेकर अब तक देश में 50,000 आधुनिक रेलवे कोच बनाए गए हैं। आइए हम प्रधानमंत्री का वक्तव्य समझते हैं।
4: जब देश की मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है तो मैं एक और आंकड़ा बताना चाहता हूं।

0: बीते एक दशक में भारत रेल कोच, मेट्रो कोच बनाने का, रेल इंजन बनाने का भी एक बड़ा निर्माता बना है। 2014 के बाद से अब तक भारत ने करीब 50,000 आधुनिक रेल कोच बनाए हैं। पुरानी सरकार 10 साल में 50,000 टॉयलेट नहीं बना सकती थी, 50,000 आधुनिक कोच तो किए ही। करीब 2.5 लाख वैगन, मालगाड़ी के लिए जो वैगन होते हैं, भारतीय रेल में जोड़े गए हैं, 2.5 लाख।
1: यहाँ पर केतन जी, हम समझना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह कहा कि रेलवे का बजट काफी बढ़ा है, उससे पूरा इकोसिस्टम बदल गया, इसे थोड़ा और स्पष्ट कीजिए, किस रूप में परिवर्तन हो रहा है?
2: देखिए, प्रधानमंत्री का जो पहले विजन था कि जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और 2014 में प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया है, वेरियस प्रोजेक्ट चाहे वो, और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन की दिशा में उन्होंने बहुत कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। थोड़े साल पहले बड़ौदा में ही एक बोम्बाडियर रेलवे कोच बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन भी उन्होंने किया था। तो आज जो बड़ौदा में हुआ है, करीबन 329 किलोमीटर का जो रेलवे प्रोजेक्ट्स है, मोर देन 9,700 करोड़, उसमें वडोदरा रतलाम का एक रेलवे लाइन है, करजन से मलसर तक का ब्रॉडगेज कन्वर्जन है, और विश्वामित्री डभोई सेक्शन का एक डबलिंग रेलवे ट्रैक है, वो सब प्रोजेक्ट का उन्होंने जिक्र किया और या तो इनोग्रेशन किया या तो शिलान्यास किया। लेकिन सबसे ज्यादा देखने की बात है कि मुंबई से वडोदरा, मतलब महाराष्ट्र को सेंट्रल गुजरात और सेंट्रल गुजरात से अहमदाबाद तक,
1: जी,
2: वो पूरा जो इंडस्ट्री कॉरिडोर है, जिसको गुजरात में हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है, उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत अब तक आया करती थी वो माल परिवहन की थी, गुड्स परिवहन की,
1: जी,
2: कि एक ही ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन भी चलती थी। जैसा कि प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में आज कहा है कि एक ही ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन भी चलेगी और गुड्स ट्रेन भी चलेगी, तो ऑब्वियसली दोनों के लिए परेशानी होगी। तो पहले जितना डिस्टेंस काटने के लिए 6 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा लगता था, वो डिस्टेंस इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की वजह से कम होके आधे से भी कम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली यदि मुझे बड़ौदा से मुंबई किसी चीज को एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, तो जो ट्रैवलिंग टाइम था, ऑपरेशन कॉस्ट थी, वो जो पहले आती थी, वो इन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की वजह से काफी कम हो जाएगी। तो नो डाउट ये, इसमें दो तरह से हम देख सकते हैं इस चीज को, कि एक तो जो रेलवे के जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है कि नई लाइन शुरू करना, नई परिवहन सेवाएं शुरू करना, तो इनसे तो नए रोजगार के नए अवसर तो क्रिएट होंगे, साथ में इस प्रोजेक्ट से जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से लेके बड़ी इंडस्ट्रीज जो अभी गुजरात में आ रही है, गुजरात अहमदाबाद और मुंबई के बीच का जो कॉरिडोर है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उस बीच में जो नई इंडस्ट्रीज आ रही है, उन इंडस्ट्रीज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट और विद इन डोमेस्टिक, मतलब कंट्री में कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन सुविधा की जरूरत, वो सुविधाएं काफी बढ़ेगी। वो सुविधाएं बढ़ेगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन और पूरी इंडस्ट्री को एक तरह से बूस्ट मिलेगा।
1: यहाँ यदि हम ये समझना चाहें तो बड़े पैमाने पर इससे रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे, किस रूप में रोजगार का परिदृश्य बदलेगा, बढ़ेगा? एक ओर कारोबारियों का मुनाफा बढ़ेगा, दूसरी ओर आम लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा, थोड़ा इसको भी स्पष्ट कीजिए।
2: मतलब जिस तरह के प्रोजेक्ट्स एक के बाद एक आ रहे हैं, ब्रॉड लाइन कन्वर्जन से लेके नई लाइन क्रिएट करना, तो ऑब्वियसली नए प्रोजेक्ट्स में नए लोगों की खपत होगी, नए गुड्स की खपत होगी। तो जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज है, पूरी एक रेलवे लाइन को डेवलप करने के लिए या कोई एक नेशनल हाईवे को डेवलप करने के लिए, तो ऑब्वियसली जब काम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। और दूसरा, इनसे क्या है कि जो लोकल इंडस्ट्रीज है वो प्रॉस्पर होगी, और यदि लोकल इंडस्ट्रीज प्रॉस्पर होगी तो मेरे ख्याल से ये परिवहन की वजह से जो कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज, स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज जो बड़े प्रोजेक्ट पहले नहीं ला सकती थी, वो बड़े प्रोजेक्ट्स वो शुरू करेगी सब इंडस्ट्रीज। तो ऑब्वियसली किसी भी इंडस्ट्री का यदि ग्रोथ होता है, पूरे एक सेक्टर का ग्रोथ होता है, तो उसी सेक्टर में और उस इंडस्ट्री में नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
1: यहाँ पर हम प्रधानमंत्री के उस उद्बोधन को याद करना चाहेंगे जब प्रधानमंत्री ने ये कहा कि चिप से शिप तक स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगी और जिससे देश के भीतर एक संपूर्ण और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला तैयार की जा सके। किस रूप में इसे देखते हैं कि जो नया फ्रेट कॉरिडोर बना है, साथ ही जो नई कह लें औद्योगिक इकाइयां आ रही हैं, उससे किस तरह से पूरे देश के लिए और विश्व के लिए आने वाले दिनों में हम सप्लाई चेन के रूप में विकसित हो सकेंगे?
2: सप्लाई चेन एसेंशियल है और ऐसा इफेक्टिव सप्लाई चेन के लिए हमें चाहिए क्या, एक इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, चाहे वो रेलवे के जरिए हो या और जरिए से हो। आज जो प्रधानमंत्री ने वेस्टर्न के फ्रेट कॉरिडोर का डेडिकेट किया है नेशन में, उसमें देखिए आप तीन सेक्शन इंक्लूड है, एक साणंद से मकरपुरा मतलब बरोड़ा, एक उमरगाम से न्यू सफाले और तीसरा न्यू सफाले से मुंबई का JNPT पोर्ट। तो इस तरीके से देखें तो साणंद यहाँ है अहमदाबाद के बगल में
1: जी,
2: वहां से लेके मुंबई के JNPT पोर्ट तक जो गुड्स का परिवहन जिस गति से होना चाहिए था वो हो नहीं रहा था। अब ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की वजह से परिवहन में काफी तेजी आएगी, क्योंकि एक डेडिकेटेड कॉरिडोर है तो परिवहन में तेजी आएगी, तो ऑब्वियसली जो इंडस्ट्रीज है उनको बूस्ट मिलेगा। और दूसरा कि जिस तरह से हम पिछले अभी हमने देखा है कि गुजरात में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज आ चुकी है, पूरे विश्व की नजर अभी जिस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक और गैजेट्स की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, सेमीकंडक्टर की डिमांड बढ़ रही है, तो उस दिशा में हमें किसी पर आयात करने के लिए निर्भर न रहना पड़े, इसलिए प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया कहता है सेमीकंडक्टर से लेके जो जो भी चीजें जिस पर हम दूसरे देशों पे निर्भर हुआ करते थे इंपोर्ट करने के लिए, वही चीजें हम आज डोमेस्टिकली अपने देश में बना रहे हैं, शुरू हो गया है, कहीं प्रोजेक्ट स्पीड पकड़ चुका है। ऑटो इंडस्ट्री में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं, टेक्सटाइल तो हमारा है ही, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में हम काफी आगे बढ़ चुके हैं सेमीकंडक्टर चिप बनाने से लेके। तो जो एक 2047 का एक प्रधानमंत्री ने हमें जो पूरे देश को एक विकसित भारत का लक्ष्य दिया है, इस विकसित भारत के लक्ष्य में सबसे प्रमुख कोई चीज है तो वो है सेल्फ इंडिपेंडेंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहाँ जो चीज की जरूरत है वो चीज का उत्पादन भी हमारे वहाँ हो और उस चीज का बाजार भी हमारे यहाँ हो
1: जी।
2: तो ये दोनों तरीके से ये अलाइन होता है उनके विजन के साथ कि एक तरफ यदि हम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तो क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन वो जो उत्पादन हो रहा है उसको बाहर भेजने के लिए, उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट और देश के बाहर भेजने के लिए जो सुविधा हमें डेवलप करनी चाहिए, और उसी सिलसिले में उन्होंने शिप का जिक्र किया था
1: जी,
2: कि चाहे हम दरियाई रूट से एक्सपोर्ट करें या और अदर रूट से, लेकिन वो जो पोर्ट है पोर्ट से इंटीरियर एरिया में परिवहन करने के लिए भी इफेक्टिव सुविधा की जरूरत है। तो दिस वॉज द गैप विच वी वेर एक्सपीरियंसिंग पिछले कई सालों से, तो वो गैप आज इस प्रकार के प्रोजेक्ट की वजह से काफी कम होता जा रहा है, काफी हम उस दिशा में काफी आगे देखते जा रहे हैं।
1: यानी कुल मिलाकर हम देखें तो देश तेज गति से प्रगति कर रहा है और विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बड़े स्तर पर बदलाव हुआ है, इस बदलाव को किस रूप में आंकते हैं आप?
2: निश्चित तौर से एक बदलाव लोग अभी महसूस कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात पैसेंजर के तौर में मैं बताऊं, आज हम देख रहे हैं कि कितनी सारी वंदे भारत ट्रेन से कनेक्टिविटी बढ़ी है, सुविधाएं मिली है, नई नई वंदे भारत ट्रेन इंट्रोड्यूस हो रही है और वो डेडिकेट हो रही है, लेकिन इसके पीछे जो मेहनत है उसके पीछे का जो परिश्रम है वो ये रेलवे रिलेटेड फैसिलिटीज खड़ी करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है कि किसी एक ट्रेन को आप एक शहर के से दूसरे शहर को जोड़ते हैं तो इफेक्टिव कनेक्टिविटी बढ़ती है। तो उस दिशा में ये काफी सिग्निफिकेंट है कि पहले रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है, हमारे पास सबसे बड़ा कनेक्टिविटी पावर है, लेकिन अब तक कहीं ना कहीं हम ये महसूस नहीं कर पा रहे थे कि ईस्ट से लेके वेस्ट तक और नॉर्थ से लेके साउथ तक के जो लास्ट विलेजेस है भारत के वो हम रेल कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। तो इस सरकार ने जो रेलवे पर फोकस किया है, जैसे प्रधानमंत्री ने बताया कि 2.75 लाख करोड़ के रेलवे प्रोजेक्ट्स बनाए, जिसमें 50,000 कोच अपने आप में एक माइलस्टोन है। जिस देश में अभी 10-15 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि रेलवे कोच बनाएंगे, वहां

0: आज हम 50,000 रेलवे कोच नए छोड़ चुके हैं,
1: जी
0: तो रेलवे में अपने आप में ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छी गाड़ियां देखने को मिलती है, और आज गुजरात की बात करें तो अहमदाबाद से सूरत जाने के लिए, अहमदाबाद से मुंबई जाने के लिए आज आपके पास ट्रेन के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जो आपका समय बचाता है, आपकी एनर्जी बचाता है, और एट द सेम टाइम ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की वजह से जो इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, उसका समय बचेगा, इफेक्टिवली ट्रांसपोर्ट परिवहन कर पाएंगे, वो भी अपने आप में एक बहुत ही सिग्निफिकेंट है टुवर्ड्स 2047।
1: विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हम सधे कदमों से धीरे धीरे चलकर पूरा कर रहे हैं, और हम विश्वास रखते हैं कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तेज गति से देश हर मोर्चे पर आगे बढ़ेगा। केतन जी, आपने हमें बहुत उपयोगी जानकारियां दी हैं, श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात में विभिन्न विकास परियोजनाओं के शुभारंभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार केतन त्रिवेदी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: सुर्खियों में

आकाशवाणी दिल्ली का फिल्म गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और ये वक्त है सांस झले का। सांस झले में मैं विमलेश स्वागत करती हूँ आप सभी का। नमस्कार।

जी हाँ, अभी आपने बात एक रात की फिल्म से ये गीत सुना, हेमंत जी की आवाज़ थी। और अब एक और बेहतरीन सा गीत और सांस झली में, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि बेहतरीन नगमों का सिलसिला शुरू हो चुका है। बस अब आपको इन बेहतरीन गीतों को आराम से आँख बंद करके सुनना है और महसूस करना है इनके शब्दों को। कितने प्यारे शब्द हैं, ऐसे लगता है कि जैसे शायद मेरी और आपकी ही बात है इन गीतों में।

0: begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses, and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: आप सब ये बॉक्स देख रहे हो? इस बॉक्स में आप सबके लिए कुछ envelopes हैं. आप सब यहाँ आओ और ये envelopes ले लो.
3: मैम, मेरे वाले में तो HIV से related अलग अलग messages हैं.
4: और इसमें लिखा है कि असुरक्षित यौन संबंध से HIV हो सकता है.
5: मेरे वाले में needle या injection शेयर करने से HIV फैलने की बात लिखी है.
6: और इसमें लिखा है कि संक्रमित रक्त और रक्त उत्पादों से HIV हो सकता है.
7: मल्टीपल पार्टनर्स मतलब HIV का ज्यादा रिस्क.
2: हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं. तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं याद रखोगे.
8: HIV/AIDS से संबंधित अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सरकारी अस्पताल के ICTC में संपर्क करें या नेशनल टोल फ्री AIDS हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें. नैको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी.

बिल्कुल सही बात कि प्यार के बदले में अगर प्यार मिल जाए तो बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल ये इस प्रोग्राम का अंतिम गीत होगा और इसी के साथ मैं विमलेश आपसे अनुमति चाहती हूँ।

नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने नगर निगम को जन सुरक्षा के हित में सत्य निकेतन दुर्घटना स्थल के पास बनी जर्जर इमारतों को गिराने का आदेश दिया। सरकार सत्य निकेतन हादसे में प्रभावित छात्रों और मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। सरकार पीजी आवासों के लिए नया नियमन विधेयक लाएगी। लाइसेंस, किराया सीमा और सुरक्षा ऑडिट की व्यवस्था होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 सितंबर को राजधानी में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। और खाद्य विभाग ने बाजारों से 2,300 किलोग्राम से अधिक खराब खाद्य सामग्री जब्त की। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार ने नगर निगम को जन सुरक्षा के हित में सत्य निकेतन दुर्घटना स्थल के पास बनी जर्जर इमारतों को गिराने का आदेश दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि अग्निशमन सेवा के कर्मचारी व्यवस्थित तरीके से इन इमारतों के अंदर मौजूद छात्रों का सामान सुरक्षित बाहर निकाल रहे हैं। इसके साथ ही सभी छात्रों और स्थानीय निवासियों से अधिकारियों का सहयोग करने का अनुरोध किया गया है। असुरक्षित भवनों, अवैध निर्माण और भवनों के दुरुपयोग के कारण होने वाली घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से नगर निगम ने राजधानी में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही तेज कर दी है। महापौर प्रवेश वाही और निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने सभी जोनल उपायुक्तों को अपने अपने क्षेत्रों में जर्जर भवनों की पहचान करने, जोखिम के स्तर के आधार पर उनका वर्गीकरण करने और कानून के प्रावधानों के अंतर्गत जहां आवश्यक हो सीलिंग तथा ध्वस्तीकरण सहित तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर महापौर ने बताया कि उपायुक्तों को पेइंग गेस्ट आवासों, स्कूलों, होटलों और स्वास्थ्य सुविधाओं का व्यापक निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि सभी अनिवार्य स्वीकृतियां, अनुमतियां तथा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध और वैध हों। आयुक्त संजीव खिरवार ने कहा कि मानव जीवन की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सत्य निकेतन में भवन ढहने की घटना में घायल हुए लोगों से मिलने के लिए आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रभावित छात्रों और मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 12 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने घायल छात्रों के अभिभावकों से भी मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि उन्हें सर्वोत्तम संभव चिकित्सा देखभाल प्रदान

0: की जाएगी।
1: सारी स्थिति को देखते हुए हमने पेरेंट्स को भी इंश्योर किया है कि उनका इलाज पूरी तरीके से अच्छा हो और सरकार उसमें उनकी पूरी मदद करेगी, हर तरह की सहायता करेगी और जो बच्चे का या लेबर का जो परिवार है उनको हम हर तरह की आर्थिक मदद भी करेंगे और सभी पेरेंट्स से हम टच में हैं, किसी भी तरह की कोई जरूरत की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी।
0: सत्यनिकेतन इलाके में इमारत ढहने के मामले में पुलिस ने संपत्ति मालिक परिवार के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में हरिराम, पत्नी उर्मिला और बेटा महेश शामिल हैं। पुलिस के अनुसार इमारत का बिजली कनेक्शन हरिराम के नाम था जबकि उसका प्रबंधन बेटा महेश देख रहा था। संपत्ति उर्मिला के नाम दर्ज थी। तीनों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने हरिराम और उर्मिला को 14 दिन की न्यायिक हिरासत जबकि महेश को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हों expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
0: शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार पेइंग गेस्ट आवास विनियमन और सुरक्षा विधेयक लेकर आएगी। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य पेइंग गेस्ट संचालन के लिए अनिवार्य लाइसेंस, जोनवार किराया सीमा, संरचनात्मक और अग्नि सुरक्षा ऑडिट तथा एक केंद्रीय जीओवी पीजी पोर्टल की व्यवस्था करना है। श्री सूद ने यह बात आज दिल्ली सचिवालय में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कही। एक रिपोर्ट।
3: सत्यनिकेतन में हुए हादसे के बाद छात्रों की जीवन स्थितियों और सुरक्षा संबंधी मुद्दों को सीधे समझने के उद्देश्य से यह बैठक आयोजित की गई। बैठक में छात्र प्रतिनिधियों ने अपने अनुभव, विभिन्न समस्याओं और पीजी व्यवस्था से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परिचालन तथा बुनियादी ढांचे संबंधी समस्याओं के बारे में श्री सूद को जानकारी दी। छात्रों ने एक समर्पित वेब पोर्टल बनाने की मांग की जिस पर पीजी संचालकों के लिए किराया, भोजन व्यवस्था, उपलब्ध सुविधाओं तथा भवन की संरचनात्मक सुरक्षा संबंधी जानकारी पहले से उपलब्ध कराना अनिवार्य हो। वहीं मतदाताओं से बातचीत के दौरान शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने बताया कि शहरी विकास विभाग के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय बैठक में छात्रावासों के लिए दिशा निर्देश की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।
4: अर्बन डेवलपमेंट विभाग के अंतर्गत एक कमेटी जो पीजी चलने के कानूनों के बारे में बात करे, नए हॉस्टल्स के बारे में बात करे के संदर्भ में कमेटी का गठन किया है। उसी के कंटिन्यूएशन में आज स्टेक होल्डर्स के साथ हमने बात की है। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के तौर पर हमने ये निर्णय किया है कि कैसे उनको सुरक्षित पीजी मिल सकते हैं, क्या क्या कानून में परिवर्तन की आवश्यकता है और जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री जी केंद्र सरकार से नए हॉस्टल के लिए ज्यादा FPR लाने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिले, ये हमारी प्रतिबद्धता।
3: इसके अलावा श्री सूद ने यह भी बताया कि उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय संयुक्त समीक्षा बैठक में दक्षिणी परिसर, मुखर्जी नगर सहित राजधानी के प्रमुख छात्र क्षेत्रों में एक सप्ताह के भीतर कड़े संरचनात्मक सुरक्षा ऑडिट कराने तथा हॉस्टल के लिए फ्लोर एरिया रेशियो की सीमा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन बैठकों में रूस यूक्रेन संघर्ष समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
5: बायलेटरल द्विपक्षीय वार्ता बहुत सारे राजनेताओं के साथ हमारे प्रधानमंत्री की होगी। रशिया और यूक्रेन की जो संघर्ष चल रही है इसकी बारे बात है। ये मुद्दा भी बहुत सारे मुद्दे जो द्विपक्षीय वार्ता होंगे तो बहुत सारे मुद्दे ऊपर उठ के आएंगे और उसमें एक ये मुद्दा भी रहेगा।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने नेपाल की जनता और सरकार के साथ एकजुटता और संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई है और राहत, बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की तैयारियों के अंतर्गत आज राजधानी में मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 7:45 से रात 10 तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित किया जाएगा और 22 स्थानों पर मार्ग परिवर्तित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान सरदार पटेल मार्ग, मदर टेरेसा क्रिसेंट, अकबर रोड, मथुरा रोड, अशोक रोड, बाराखंबा रोड और टॉलस्टॉय मार्ग सहित कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इसके अलावा ब्रिक्स सम्मेलन के लिए दिल्ली यातायात पुलिस में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि

0: इसके लिए विभाग ने यातायात के लिए विस्तृत व्यवस्था की है।
1: ब्रिक्स समिट दिल्ली में 11, 12, 13 सितंबर को है भारत मंडपम में। इसमें बाहर से हेड ऑफ द नेशंस और फॉरेन डेलीगेट्स और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स, काफी वीआईपी मूवमेंट होगा। तो इसके तहत हम लोगों ने डिटेल ट्रैफिक अरेंजमेंट बनाया है। हमने 22 डायवर्जन पॉइंट्स बनाए हैं जहां से हम लोग डायवर्शन देंगे। भारत मंडपम के पास जो भी आसपास के जैसे मथुरा रोड है, भैरव मार्ग है, ये हमारे रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे।
0: यूजीसी नेट की पुनर्परीक्षा बुधवार और गुरुवार को होगी। इस परीक्षा से ठीक पहले परीक्षा में शामिल होने जा रहे दिल्ली के अभ्यर्थियों के लिए एक सलाह जारी की गई है। निर्देश में राजधानी में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के मद्देनजर यातायात व्यवस्था प्रभावित रहने की संभावना बताई गई है। विधानसभा के युवा संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने आज विधानसभा का दौरा किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता से संवाद भी किया। विद्यार्थियों ने विधानसभा के ऐतिहासिक परिसर का निर्देशित भ्रमण किया तथा इसके समृद्ध स्थापत्य और संस्थागत विरासत के बारे में जानकारी प्राप्त की। उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज उद्योग विभाग सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। इनमें प्रस्तावित दिल्ली औद्योगिक नीति 2026-2036, दिल्ली स्टार्टअप नीति 2026-2031, दिल्ली सिंगल विंडो सिस्टम, निर्यात संवर्धन, नवाचार पहलों के समयबद्ध क्रियान्वयन और एमएसएमई सहायता जैसे विषय शामिल रहे। इसके अलावा बैठक के दौरान दिल्ली के औद्योगिक और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने, निर्यात को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। साथ ही एमएसएमई और कारीगरों को सहयोग प्रदान करने, नवाचार को प्रोत्साहित करने तथा सरकारी सेवाओं की तेज और अधिक प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित करने से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण पहलों पर भी समीक्षा की गई। उप महापौर डॉक्टर मोनिका पंत ने आज घड़ौली वार्ड 194 क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं, स्वच्छता और यातायात व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं का जायजा लिया। इस दौरान उप महापौर ने अतिक्रमण, अवैध डेयरियों तथा सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं के संबंध में संबंधित विभागों को तत्काल और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के आदेश दिए। क्षेत्र में अतिक्रमण के कारण सार्वजनिक स्थानों के प्रभावित होने का संज्ञान लेते हुए उप महापौर ने संबंधित अधिकारियों को अतिक्रमण स्थलों को चिन्हित कर नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने तथा क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने के भी निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: सरकार ने त्योहारों के मौसम से पहले राष्ट्रीय राजधानी के प्रमुख खाद्य बाजारों में जांच अभियान तेज कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत खाद्य विभाग ने 2300 किलोग्राम से अधिक खोया, धाप और मक्खन जब्त किया है। जब्त किए गए खाद्य पदार्थों को खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत मजनू का टीला स्थित एमसीडी डंपिंग साइट पर नष्ट कर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि खाद्य सामग्री दुर्गंध युक्त और खराब अवस्था में थी और अत्यंत अस्वच्छ परिस्थितियों में लावारिस पाई गई। श्री सिंह ने खाद्य सुरक्षा विभागों को निर्देश दिया है कि वो गहन निरीक्षण जारी रखें और पूरे त्योहारों के मौसम में कड़ी निगरानी रखें। कला, संस्कृति और पर्यटन मंत्री कपिल शर्मा ने आज राजधानी को पर्यटक स्थल बनाने और विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पर्यटन अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि बैठक में राजधानी की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण, विश्व स्तरीय नागरिक सुविधाओं के विस्तार, आधुनिक पर्यटक इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटकों की सुरक्षा और सुगमता पर चर्चा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष के पुरस्कार विभिन्न भाषाओं, विधाओं और सिनेमाई रूपों में विविधताओं का प्रतीक है। मंत्रालय ने कहा कि आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के रूप में सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार मिलेगा। ये पुरस्कार मराठी, संथाली, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, तुलु और गढ़वाली सहित अन्य भाषाओं और विधाओं में उत्कृष्ट फिल्मों को भी मान्यता देते हैं। मंत्रालय ने बताया कि पहली बार किसी संथाली फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के गैर फीचर फिल्म वर्ग में सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजधानी से बाहर देश के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित करने का निर्णय लिया है। 1954 में शुरू हुए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए देश का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। आनंद की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने नगर निगम को जन सुरक्षा के हित में सत्य निकेतन दुर्घटना स्थल के पास बनी जर्जर इमारतों को गिराने का आदेश दिया। सरकार सत्य निकेतन हादसे में प्रभावित छात्रों और मजदूरों के परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। सरकार पीजी आवासों के लिए नया नियमन विधेयक लाएगी। लाइसेंस, किराया सीमा और सुरक्षा ऑडिट की व्यवस्था होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 सितंबर को राजधानी में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे और खाद्य विभाग ने बाजारों से 2300 किलोग्राम से अधिक खराब खाद्य सामग्री जब्त की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आज शाम मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के 7वें संस्करण को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम जैसी नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। उन्होंने बताया कि भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने फिनटेक कंपनियों से मजबूत साइबर सुरक्षा व्यवस्था, डेटा के नैतिक इस्तेमाल के लिए मानक और प्रभावी नियामक व्यवस्था विकसित करने का आग्रह किया।
5: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
4: देश की आर्थिक वृद्धि का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक संघर्षों, अनिश्चितताओं और ऊर्जा तथा उत्पादों की आपूर्ति व्यवस्था पर दबाव के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने पिछली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज की है। उन्होंने कहा कि इससे दुनिया का भारत पर भरोसा और मजबूत हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत यूक्रेन और रूस दोनों के संपर्क में है और संघर्ष को रोकने में मददगार सुझावों तथा विचारों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद कर सकता है तो वो इसके लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देश के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई।
6: अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधि।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz और ये वक्त है मधुरिमा का। मधुरिमा में मैं विमलेश स्वागत करती हूँ आपका। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम किसी न किसी राग के बारे में आपको जानकारी देते हैं और उस राग पर आधारित गीत हम आपको सुनवाते हैं। तो आज जिस राग का जिक्र होगा इस प्रोग्राम में वो राग है राग केदार।

जी हाँ, राग केदार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक अत्यंत भव्य, मधुर और आध्यात्मिक राग है, जिसका संबंध भगवान शिव से माना जाता है। इसका थाट कल्याण है, इसका वादी स्वर माँ और संवादी स्वर सा है। गाने का जो समय है, रात्रि का प्रथम पहर है। आइए सुनते हैं इस राग पर आधारित ये गीत।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: जी, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz आप सुन रहे हैं मधुरिमा विमलेश के साथ। जी हाँ, राग केदार का जिक्र है और राग केदार का ये अंतिम गीत होगा जो अभी आप सुनेंगे। जाने से पहले एक और जानकारी इस राग के बारे में हम आपको देना चाहते हैं। इस राग में शुद्ध और तीव्र दोनों मध्यम मा का प्रयोग किया जाता है, जबकि अन्य सभी जो स्वर हैं शुद्ध होते हैं। इसके अगर आप आरव की बात करें तो स म म प ध प नी ध स अवरो स नि ध प म प ध प म म म रेसा और पकड़ स म म प ध म म म म सा रे सा है। और अब इस प्रोग्राम को यहीं समेटने की बारी। मैं विमलेश आपसे अनुमति चाहती हूँ। फिलहाल के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। दलित ट्रॉफी के फाइनल में ईस्ट जोन की स्थिति मजबूत, साउथ जोन से 466 रन आगे। यूएस ओपन टेनिस प्रतियोगिता में अलेक्जेंडर ज्वेरेव, अलेक्जेंडर ब्लॉक्स और एलिना रिबाकिना ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। जूनियर हॉकी एशिया कप में भारतीय महिला टीम ने जापान और पुरुष टीम ने दक्षिण कोरिया को हराया। और पिकल बॉल विश्व कप में भारत ने 41 पदक के साथ किया अपने अभियान का समापन। कार्यक्रम की शुरुआत करते तीरंदाजी से, जहां खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आज कई पदक अपने नाम किए। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार, श्याम सुंदर स्वामी, हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी ने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: भारतीय तीरंदाजों ने आज शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए। पुरुषों की कंपाउंड और रिकर्व टीम ने स्वर्ण पदक जीते, जबकि स्वाति चौधरी ने एक ही दिन में 2 पदक हासिल किए। मौजूदा विश्व चैंपियन तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी की पुरुष कंपाउंड जोड़ी ने इराक के अब्बास कादिम और अनवर अल्दावोद को 152-139 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं 2 बार के पैरा ओलंपिक पदक विजेता हरविंदर सिंह और विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने स्लोवाकिया के डेविड इवान और डेनिस इवान को 6-2 से पराजित कर शीर्ष स्थान हासिल किया। महिला रिकर्व टीम में भावना और पूजा को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय जोड़ी को फाइनल में चीन के हाथों 0-6 से हार मिली। स्वाति चौधरी और आदिल मोहम्मद नजीर अंसारी ने मिक्स टीम W1 स्पर्धा में रजत पदक जीता है। स्वाति ने व्यक्तिगत W1 वर्ग में भी कांस्य पदक अपने नाम किया है। उन्होंने रूस की एलेना क्रुतोवा को 6-2 से हराया। मुनीश शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: और श्रोताओं, आपको बता दें कि W1 रिकर्व कंपाउंड वर्ग गंभीर शारीरिक अक्षमता वाले पैरा तीरंदाजों के लिए विशेष श्रेणी है। इस वर्ग में खिलाड़ी व्हीलचेयर से निशाना लगाते हैं और एक ही स्पर्धा में रिकर्व या कंपाउंड धनुष का इस्तेमाल करते हैं। उधर महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा में भारत कांस्य पदक से चूक गया। शीतल देवी और पायल नाग तीसरे स्थान के प्लेऑफ में चीन की वांग हुईटिंग और गाओ फांगशिया की जोड़ी से हार गई। और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। दलीप ट्रॉफी फाइनल के तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक साउथ जोन ने 6 विकेट पर 242 रन बना लिए हैं। तिलक वर्मा 56 और चामा मिलिंद 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: ईस्ट जोन ने दलीप ट्रॉफी के फाइनल मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। एमए चिदंबरम स्टेडियम में टॉस जीतकर बल्लेबाजी के लिए उतरी ईस्ट जोन ने पहली पारी में 708 रनों का विशाल स्कोर बनाया। अभिमन्यु ईश्वरन ने वैभव सूर्यवंशी के साथ पहले विकेट के लिए 100 रन की साझेदारी की। वैभव ने 44 रन बनाए। इसके बाद कप्तान ईशान किशन ने शिखर मोहन के साथ

0: छठे विकेट के लिए 94 रन जोड़े और कुमार कुशाग्र के साथ 230 रन की साझेदारी की। इसके अलावा ईशान ने अनुकूल रॉय के साथ छठे विकेट के लिए 140 रन जुटाए। ईशान ने 7 छक्कों और 30 चौकों के साथ 270 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। विपक्षी खेमे से त्रिपुरन विजय ने सर्वाधिक 4 विकेट निकाले, जबकि चामा मिलिंद और श्रेयस गोपाल को 2-2 विकेट हाथ लगे। साउथ जोन ने तीसरे दिन की समाप्ति तक पहली पारी में 6 विकेट पर 242 रन बनाए। दत्त पड्डिकल ने नारायण जगदीशन के साथ दूसरे विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 70 के स्कोर तक पहुंचा दिया। जगदीशन ने 6 चौकों के साथ 32 रन बनाए। पड्डिकल ने 4 चौकों के साथ 62 रन की पारी खेली। टीम ने 129 के स्कोर तक अपने 4 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद कप्तान तिलक वर्मा ने मोर्चा संभालते हुए स्मरण रविचंद्रन के साथ 5वें विकेट के लिए 45 रन और श्रेयस गोपाल के साथ 6वें विकेट के लिए 66 रन जुटाकर टीम को 200 के पार पहुंचा दिया। ईस्ट जोन की ओर से मोहम्मद शमी और मुकेश कुमार ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। कौनेर कुरैशी और शिखर मोहन ने 1-1 विकेट लिए। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
1: और श्रोताओं, आपको बता दें कि ये मुकाबला ईस्ट जोन के लिए ऐतिहासिक है। ईशान किशन ने 250 से ज्यादा का रन बनाया और मोहम्मद शमी ने भी अपना 100वां मुकाबला खेल रहे। उधर आईसीसी ने आज T20 क्रिकेट रैंकिंग जारी कर दी है। ताजा रैंकिंग में श्री चर्नी पहले, इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टन दूसरे, इंग्लैंड की चार्ली डीन तीसरे, दक्षिण अफ्रीका की एन मलबा चौथे और इंग्लैंड की लारेन बेल पांचवें स्थान पर है। भारत की अनुभवी स्पिनर दीप्ति शर्मा को 2 स्थान का फायदा हुआ है। दीप्ति अब 6 स्थान पर पहुंच गई हैं। उधर बल्लेबाजी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी पहले, जॉर्जिया वॉल दूसरे, दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वॉल वार्ड तीसरे, वेस्टइंडीज की हिली मैथ्यू चौथे और भारत की स्मृति मानधना पांचवें स्थान पर, जबकि भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर 10वें स्थान पर हैं। और अब चलते हैं टेनिस कोर्ट की ओर। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने लुसियानो डार्डरी को 6-2, 6-2, 7-6 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। उधर अलेक्जेंडर ब्लॉक्स ने फ्रांसिस्को सेरियनडोलो को 6-3, 4-6, 7-5, 7-5 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अलेक्जेंडर का सामना कल खचानोव से होगा। मुकाबले से पहले अलेक्जेंडर ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
2: I just do my thing. I work hard. Even though I have tough losses sometimes, I know that good times are always coming. And now it's one of those good times. So I'm going to try to enjoy it as much as I can.
1: उधर क्वार्टर फाइनल में बेन शेल्टन का सामना चैंपियन कार्लोस अल्काराज से होगा। अल्काराज ने इस मुकाबले को रोमांचक बताया।
3: Shelton, really powerful player. I think he used the crowd, the people, you know, behind him, you know, especially when, you know, he's playing here at home. So I'm excited about playing, you know, the quarterfinal. I gotta be ready. I'm gonna watch it and I'll be ready for that.
1: उधर बेन शेल्टन ने कहा कि कार्लोस एक मजबूत प्रतिद्वंदी हैं।
4: To be not playing for 5 months, to come out and do what he's done so far this tournament has been superhuman. We're happy to have him back on tour. You know, he lights up the stadium every time he plays. I think it's going to be fireworks on Tuesday night.
1: उधर महिला सिंगल्स में एलिना रिबाकिना ने नाओमी ओसाका को 6-1, 6-4 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला अपने नाम किया। क्वार्टर फाइनल में एलिना का मुकाबला क्विनवेन झेंग से होगा। मुकाबले से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं।
5: Well, of course, I wanted, I don't know anyone who wouldn't wish this, but yeah, definitely that's one of my goals. And I try to approach the same way, try to do everything I can, fight till the end my next match, and let's see what's going to happen. But yeah, if I serve well as I did today, I think I have all the chances. So yeah, again, I try my best and hopefully it's going to go my way.
1: और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज क्वार्टर फाइनल में एरिना सबलेंका और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने होंगी। और अब चलते हैं हॉकी के मैदान की ओर। जूनियर हॉकी एशिया कप में भारतीय पुरुष टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर सेमीफाइनल की उम्मीदें बरकरार रखी हैं। वहीं महिला टीम ने जापान को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक खास रिपोर्ट।
6: भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने आज दक्षिण कोरिया को 7-3 से हरा दिया। भारत ने 5वें मिनट में अनमोल के पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके बढ़त बना ली। दक्षिण कोरिया के डोहोन चोई ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। दूसरे क्वार्टर में लवनूर सिंह ने 18वें मिनट में फील्ड गोल करके भारत को आगे कर दिया, लेकिन दक्षिण कोरिया ने होगुक यू की मदद से पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके स्कोर 2-2 कर दिया। अजीत यादव ने 20वें मिनट में गोल करके भारत की बढ़त 3-2 कर दी। दक्षिण कोरिया ने तीसरे क्वार्टर में मैच का अपना दूसरा गोल किया, जिससे कोरियाई टीम तीसरी बार 3-3 से बराबर पर हो गई। जब मैच आखिरी क्वार्टर में बराबरी की ओर बढ़ रहा था तो प्रभदीप सिंह ने तीसरे क्वार्टर के आखिर में बैक थ्रू पाया और 42वें मिनट में इंडिया की लीड 4-3 कर दी। चौथे क्वार्टर में गुरसेवक सिंह ने भारत को बढ़त दिलाई। इसके बाद अनमोल ने पेनल्टी कॉर्नर पर फिर से गोल करके स्कोर 6-3 कर दिया। आर्यन जैस ने 98 मिनट में निर्णायक गोल को 7-3 से भारत की जीत पर मुहर लगाई। वहीं महिला टीम ने अपने तीसरे एलीट पूल मैच में जापान को 7-0 से हराया। इस जीत के साथ भारत ने टूर्नामेंट में अपना शानदार रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। भारत ने 5वें मिनट में कृष्णा शर्मा के गोल से 1-0 की बढ़त बनाई। 9वें मिनट में जापान के फाउल करने पर भारत को पेनल्टी स्ट्रोक मिला, जिससे उनकी बढ़त दोगुनी हो गई। पूर्णिमा यादव ने 14वें मिनट में फील्ड गोल दागा और भारत ने पहले क्वार्टर का समापन 3-0 की मजबूत बढ़त के साथ किया। भारत हाफ टाइम तक 3-0 की मजबूत बढ़त के साथ आगे रहा। इसके बाद भारत ने फिर से अपनी गति बढ़ाई और 5 मिनट में 3 गोल दागे। गीता यादव ने 41वें मिनट में फील्ड गोल करके स्कोर 4-0 किया और फिर 45वें मिनट में अपना दूसरा गोल पूरा किया, जिससे भारत की मजबूत स्थिति और भी मजबूत हो गई। पूर्णिमा यादव ने 46वें मिनट में गोल करके अपना दूसरा गोल पूरा किया और तीसरे क्वार्टर के आखिर तक भारत की बढ़त को 6-0 तक पहुंचा दिया। भारत ने आखिरी क्वार्टर के 50वें मिनट में सानिका चंद्रकांत के गोल की मदद से मुकाबले को 7-0 से जीत लिया। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
1: उधर भारतीय महिला हॉकी टीम जापान के आईची नागोया में होने वाले 20वें एशियन गेम्स के लिए रवाना हो गई है। एशियन गेम्स में भारतीय महिला टीम को पूल बी में जापान, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया और उज्बेकिस्तान के साथ रखा गया है। टीम अपना कैंपेन 20 सितंबर को उज्बेकिस्तान के खिलाफ शुरू करेगी। इसके बाद 21 सितंबर को इंडोनेशिया, 23 सितंबर को थाईलैंड, 25 सितंबर को जापान और 27 सितंबर को सिंगापुर के खिलाफ मैच खेलेगी। और अब बात पिकल बॉल वर्ल्ड कप पर। पिकल बॉल विश्व कप में भारत ने 41 पदक के साथ चौथे स्थान पर रहते हुए अपने अभियान का समापन किया। वियतनाम के दानांग में भारत ने 7 स्वर्ण, 17 रजत और 17 कांस्य समेत 41 पदक जीते। भारतीय टीम पिछले साल 7वें स्थान पर रही थी। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
7: 48 भारतीय खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप में टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए किड्स, जूनियर्स, ओपन, सीनियर्स और मास्टर्स टीम इवेंट्स में हिस्सा लिया। इसके अलावा 130 से ज्यादा खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत कैटेगरी में भी मुकाबला किया। वीर शाह के नेतृत्व में खिलाड़ियों ने किड्स टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीता। इसमें विरांश चोपड़ा, आर्यन बल्लानी, महिका राठौर, मानसी कार्तिक, आश्रिता एस, कबीर मेहता और प्रार्थना मोटियानी शामिल थे। भारतीय कप्तान को किड्स कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ कप्तान के तौर पर भी सम्मानित किया गया। भारतीय जूनियर टीम क्वार्टर फाइनल में वियतनाम टीम से हारकर चौथे स्थान पर रही। भारतीय ओपन टीम क्वार्टर फाइनल में यूएसए से हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गई। इंडियन मास्टर्स टीम भी क्वार्टर फाइनल में वियतनाम से हार गई। वहीं सीनियर टीम न्यूजीलैंड से हारकर राउंड ऑफ 16 से बाहर हो गई। इस बीच हर्ष मेहता ने व्यक्तिगत इवेंट में ओपन प्रो मेंस डबल्स कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि पूर्वांश पटेल ने अंडर 18 बॉयज सिंगल्स कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया। भूषण अकुत ने अशोक रोहिरा के साथ 60 प्लस मेंस डबल्स, 60 प्लस मेंस सिंगल्स और 60 प्लस मिक्स डबल्स में 3 गोल्ड मेडल जीते। फेरोज जैदी ने 40 प्लस वुमेन्स सिंगल्स में जीत हासिल की, जबकि विवेक रेड्डी ने इसी कैटेगरी में मेंस इवेंट जीता। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब जन्मदिन विशेष में आज क्रिकेटर और भारतीय कप्तान शुभमन गिल का 27वां जन्मदिन है। शुभमन गिल ने 43 टेस्ट मैच में करीब 43 की औसत से 3043 रन बनाए, वहीं एक दिवसीय क्रिकेट के 67 मुकाबलों में लगभग 60 की औसत से 9 शतकों की मदद से 3379 रन बनाए हैं। वहीं 2020 में 869 रन का उन्होंने योगदान दिया है, जिनमें एक शतक भी शामिल है। शुभमन गिल ने हमेशा टेस्ट क्रिकेट को शीर्ष पर रखा है और ये प्रमाण भी है कि इंग्लैंड में उन्होंने 5 शतक लगाए और 700 से अधिक रन भी बनाए।
8: ये तो ध्यान में होना चाहिए कि टेस्ट क्रिकेट है, अगर आप जल्दी आउट हो गए तो सारा दिन आपको बाहर बैठने को मिलेगा और जितनी देर आप क्रीज में है उतनी देर आप रन बना सकते हैं, बाहर बैठ के तो रन हो नहीं सकते। इसलिए ख्याल तो रखना पड़ता है कि लिफ्ट नहीं मारनी, जितना हो सके अपनी तरफ से ग्राउंडेड खेलना है।

0: अगर बहुत ज्यादा लूज बॉल फुल टॉस वगैरह मिलती है तो उन्हें मैं हवा में लिफ्ट मार देता हूँ। मेन मकसद वही है कि वो इंडिया का अपने टैग लगा।
1: स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम की ओर से शुभमन गिल को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करें कि शुभमन गिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो या वर्ल्ड कप में ऐसा ही प्रदर्शन कर भारत का नाम और आगे बढ़ाएं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के श्रीलंका दौरे पर कोलंबो पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा और समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया है। कहा, इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में कल मूसलाधार बारिश की आशंका। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
3: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
2: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
3: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने UPI के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
3: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा UPI। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो UPI के बिना अधूरी ही होगी।
2: श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
3: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है।
2: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने

0: पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है।
1: साथियों, अब भारत चीप से लेकर शिप तक निर्माण की एक नई गाथा लिख रहा है, यानी पुर्जे भी हमारे और प्रोडक्ट भी हमारा। आत्मनिर्भरता की एक पूरी चेन भारत में ही बनेगी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 9,50,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने में किसी भी तरह मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है।
5: मारे गए हमारे भारतीय नागरिक हैं, उनमें से कई लोग का पहचान नहीं हो पाया है। इस मामले में हम लोग उनके परिवारजन से बातचीत हमारी चल रही है और कई एक मामलों में जो डीएनए की सैंपलिंग भी ली गई है। 273 लोग लापता हैं अभी और ये जो हादसा हुआ है नेपाल में हुआ है, तो हम लोग इंतजार करते हैं कि किस प्रकार का वहां की सरकार, वहां के अधिकारी इस पर क्या खुलासा करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। श्री पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की स्थिति की जानकारी भी दे सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov

0: newsonair.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22 सितंबर को गुजरात के एकता नगर में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। एक रिपोर्ट।
2: आर्टिकल 370 को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और भंगार को सर्वश्रेष्ठ नॉन फीचर फिल्म चुना गया है। वहीं रामनामी को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का पुरस्कार दिया जाएगा। ब्रह्मयुगम के लिए मलयालम अभिनेता ममूटी और चंदू चैंपियन के लिए कार्तिक आर्यन को सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा, जबकि यामी गौतम को आर्टिकल 370 के लिए सर्वश्रेष्ठ मुख्य अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाएगा। रणदीप हुड्डा को स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक के लिए सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के नॉन फीचर फिल्म वर्ग में पहली बार किसी संथाली फिल्म को सम्मानित किया जाएगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में कोई ठोस कदम न उठाने के लिए पंजाब सरकार की आलोचना करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस्तीफे की मांग की है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने ड्रग माफिया का पूरा तंत्र फल फूल रहा है।
3: गुलजार सिंह एक वीडियो बनाता है और वीडियो में वो 4 लोगों को इसका जिम्मेदार बताता है कि कैसे पंजाब में हर जगह नशीले पदार्थ युवाओं में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है, कार्रवाई नहीं करती।
0: बम्बई उच्च न्यायालय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ टिप्पणी के मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने से इनकार कर दिया। याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के मजिस्ट्रेट न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अनुपस्थिति और अवकाश के दौरान जम्मू कश्मीर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि 4 सितंबर तक देश में खरीफ फसलों का क्षेत्रफल 1,086 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है। धान की खेती 421 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में और दालों की बुआई 117 लाख हेक्टेयर में हुई है। श्री अन्न और दरदरे अनाज की खेती 181 लाख हेक्टेयर से और तिलहन की खेती 191 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए ये बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए 2 बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। भारत सुरक्षित 6G वायरलेस नेटवर्क के विकास में तेजी लाने के लिए अमेरिका की अगुवाई वाली वैश्विक साझेदारी में शामिल हो गया है। अमेरिका ने बताया कि इस पहल में ब्रिटेन, जर्मनी और जापान तथा कुछ और देश भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 के दशक में 5G नेटवर्क की जगह 6G तकनीक आने से कई वर्ष पहले ही विभिन्न देशों की 6G रणनीतियों के बीच समन्वय स्थापित करना है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंग क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी बारिश की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। अंत में मुख्य समाचार।

एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की फिनटेक यात्रा नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है, इसमें नवाचार और समावेशन को केंद्र में रखा गया है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, चिप से लेकर जहाजों तक भारत विनिर्माण के एक नए भविष्य का निर्माण कर रहा है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया, कहा इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा। और अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित कुल 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मंथन। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए नशा मुक्त भारत की आगामी 3 वर्षों की कार्य योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस SPYM के कार्यकारी निदेशक डॉ. राजेश कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं श्रेया पाठक।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मंथन। आज का हमारा विषय बेहद गंभीर भी है और वह देश के भविष्य से सीधे जुड़ा हुआ भी, नशा मुक्त भारत, भारत का 3 वर्षीय एक्शन प्लान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ अगले 3 वर्षों के लिए एक व्यापक रोड मैप सामने रखा है। इस योजना में ड्रग नेटवर्क पर कार्रवाई से लेकर अवैध ड्रग लैब को खत्म करने, फरार आरोपियों को भारत लाने, नशे की मांग कम करने और डी एडिक्शन सेवाओं को मजबूत करने तक कई पहल शामिल है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं SPYM यानी सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर राजेश कुमार। मंथन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: थैंक यू श्रेया जी।
1: डॉक्टर राजेश, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जैसा कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाना है और इसके लिए अगले 3 वर्षों का एक स्पष्ट रोड मैप भी तैयार किया गया है, आप के तौर पर इस लक्ष्य को किस तरह देखते हैं और क्या 2029 तक नशा मुक्त भारत एक व्यवहारिक लक्ष्य है और इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या हो सकती है?
2: ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और अच्छी बात यह है कि इसको उन्होंने मिशन मोड में लिया है और जो जो इस पे कंटूर्स में जो इम्पोर्टेंट चीजें हो सकती है उन्होंने डाला है, से इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है, बाहर से जो क्रिमिनल्स हमारे जो ड्रग इंडिया में लेकर आते हैं उनको पकड़ के लाना है, ट्रीटमेंट सेंटर स्टार्ट करना है, वॉलंटियर्स बनाने हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये अगर मिशन मोड में सारे मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स अगर जुड़ेंगे तो थोड़ा चैलेंजिंग तो है नेक्स्ट 3 ईयर्स में पूरे देश को नशा मुक्त करना, मगर कंफर्टेबली अचीव हो सकता है, मगर 29 तक नहीं होगा शायद मेरे हिसाब से, चूंकि मैं पिछले लगभग 40 सालों से इस सेक्टर में काम कर रहा हूं, मगर एटलीस्ट एक मिशन मोड में काम तो शुरू हुआ और वो बहुत बड़ी चीज है।
1: जी, इस एक्शन प्लान को 4 प्रमुख स्तंभों पर आधारित बताया गया है, वो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिस पर भारत को सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है?
2: देखिए, ये चारों इम्पॉर्टेंट है, हम इसको कोई ये नहीं कह सकते ये नंबर 1 है या नंबर 2 है ना। फॉर एग्जांपल, अभी पिछले महीने में भारत सरकार ने एक बड़ा क्रिमिनल है बसोया जिसको दुबई से लाया गया, तो इंटेलिजेंस शेयरिंग विद इन द कंट्री और बिटवीन कंट्रीज ये हो रहा है और इसमें काफ़ी पॉजिटिव अब उसका रिजल्ट दिखने लग गया। विद इन द कंट्री जो जो ड्रग पैडलर्स हैं, जो ड्रग पुशर्स हैं, जो ड्रग कार्टेल्स हैं, उसके ऊपर भी बड़ी कार्रवाई हो रही है और काफ़ी लोग अब इस धंधे से निकल रहे हैं जैसा हमें लग रहा है। अब इसका इम्पैक्ट तो समय पे ही मिलेगा। सो पहला जो है वो है इंटेलिजेंस शेयरिंग, दूसरा इम्पॉर्टेंट है जिसको कहते हैं वो जो प्रीकर्सर एंड केमिकल ड्रग्स, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। देखिए, जो ड्रग जो केमिकल ड्रग्स है, दो तरह के ड्रग होते हैं, एक होता है जो नेचुरल ड्रग होता है जैसे गांजा है, भांग है, अफीम है, कोकीन है, ये सब नेचुरल ड्रग है, इसको नार्कोटिक्स ड्रग कहा जाता है, और जो जो केमिकल ड्रग है उसको साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस कहा जाता है। तो केमिकल ड्रग्स बनाने के लिए जो केमिकल चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली विद इन द कंट्री वो अवेलेबल है, तो उसको अगर आप जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं जो बना रहे हैं केमिकल्स उसके ऊपर निगरानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से ही कुछ ऐसे केमिकल पदार्थ निकलते हैं जिससे जैसे फॉर एग्जांपल अफीम को प्रोसेस करने के लिए जिन केमिकल की ज़रूरत होती है वो भी हम ही बनाते हैं, और कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिससे मेथामफेटामिन टाइप के जो केमिकल ड्रग्स हैं उसको भी बनाने के लिए केमिकल्स हम ही बनाते हैं। तो प्रीकर्सर्स को भी हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है जिससे कि वो ड्रग नहीं बन पाए जो अभी बाजार में अवेलेबल है, और जो केमिकल ड्रग्स हैं वो भी नहीं बन पाए जो अभी

0: नया ट्रेंड पिछले 4-5 सालों से शुरू हुआ है। तो जो सेकंड इम्पॉर्टेंट जो पिलर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये जो यंग पॉपुलेशन है ये अब चूंकि ये स्टिमुलेंट टाइप का ड्रग है जो लोगों को अच्छा लगता है अगर इस तरह का ड्रग लेते हैं, फिर बाद में बहुत परेशानी होती है, इसका इलाज भी मुश्किल है, जो केमिकल ड्रग्स हैं, जो मेथ टाइप के ड्रग्स हैं, एमडीएमए है, मगर ये ड्रग केमिकल ड्रग है और ये तेजी से फैल रहा है, तो इसके लैब्स को भी रोकने की जरूरत है और उसके ऊपर काफी कार्रवाई पिछले 1 सालों में मैंने देखा है।
1: जी, जैसा कि हम बात करते हैं ड्रग्स की, तो डिमांड और सप्लाई दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं जो हमें समझ में आते हैं। तो आपके हिसाब से क्या सिर्फ सप्लाई रोकना काफी है? क्योंकि क्या भारत को अब ड्रग्स पकड़ने के साथ साथ अगर हम देखें तो ड्रग्स की मांग क्यों पैदा हो रही है, इस सवाल पर भी उतना ही गंभीरता से काम करने की जरूरत है?
0: देखिए, आपने सही बोला, ये डिमांड एंड सप्लाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर सप्लाई है तो डिमांड जनरेट होता रहता है, और अगर सप्लाई कम हो रहा है और डिमांड है तो प्राइस ऊपर जाता है, तो फिर सप्लायर नए तरीके से मार्केट में आता है ना। फॉर एग्जांपल, नार्कोटिक्स ड्रग की जगह अब जो केमिकल ड्रग्स आ रहा है उसका कारण यही है कि नार्कोटिक्स ड्रग को सप्लाई करना बड़ा मुश्किल है, काफ़ी उसके ऊपर रोकथाम है, जो केमिकल ड्रग्स है उसको बनाना आसान है, और केमिकल ड्रग चूंकि मार्केट में आ रहा है और डिमांड है तो उसके लिए नया नया कंज्यूमर मार्केट में आ रहा है। कभी हो सकता है सप्लाई रिडक्शन पे ज्यादा हमें सफलता मिल सकती है और कभी हो सकता है डिमांड रिडक्शन पे ज्यादा सफलता मिलती है, बट दोनों को एक साथ लेके चलने की जरूरत है, और भारत सरकार ने इसके अलग अलग मंत्रालयों ने इसके ऊपर काफी काम करना शुरू कर दिया है।
1: सिंथेटिक ड्रग्स और नए तरह के नशीले पदार्थ तेजी से चिंता का विषय बन चुके हैं। आपके अनुभव में युवाओं को इन पदार्थों से दूर रखने के लिए स्कूल, विश्वविद्यालय, परिवार और सरकार, इन तीनों स्तरों पर क्या काम करने के लिए आवश्यकता है?
0: देखिए, अच्छी बात यह है कि 99% बच्चे नशा नहीं करते हैं, और वो फैक्ट है, अलग अलग डेटा में वो दिखता भी है। दूसरी अच्छी बात यह है कि अधिकतर बच्चे अब स्कूल में हैं, तो स्कूल बेस्ड अभी भारत सरकार ने एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया जिसका नाम है नवचेतना। इसमें लगभग 10 लाख मास्टर ट्रेनर्स ट्रेन हो रहे हैं और वो 10 लाख 20-20 टीचर्स को ट्रेन करने जा रहे हैं, और ये प्रोसेस शुरू हुआ है, और इसका भी इनिशिएटिव माननीय अमित शाह जी ने लिया था, और ये प्रोग्राम स्कूल बेस्ड है, टीचर लेड है, तो ये इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है। दूसरा इनिशिएटिव होना चाहिए घरों के अंदर। परेशानी यह है कि अधिकतर माँ बाप को पता नहीं है कि मेरा बच्चा नशा करने लग गया या नशा में अब वो लिप्त हो रहा है या एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो माँ बाप को भी सजग होने की जरूरत है।
1: सरकार ने देश में डी एडिक्शन सेंटर की संख्या बढ़ाकर 1751 करने की बात कही है। आपके अनुसार इलाज और पुनर्वास को और प्रभावी बनाने के लिए किन किन स्तरों पर सरकार का फोकस जरूरी है?
0: ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि अभी तक जो नंबर ऑफ सेंटर्स अवेलेबल थे मेरे ख्याल से 500 के आसपास था, और देश बहुत बड़ा है, और एक जो भारत सरकार का आंकड़ा है जिसको एम्स ने स्टडी किया था उसमें करीब 6 करोड़ लोग हैं जिनको आज इलाज की ज़रूरत है, तो ये अगर नंबर बढ़ा है 1000 जो भी आप नंबर बता रही हैं 751 अगर ये हो रहा तो ये सब वेरी पॉजिटिव स्टेप। समस्या दो है। पहली समस्या ये है कि लोग इलाज के लिए अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने परिवारजन को ट्रीटमेंट तक नहीं लेके जाना चाहते हैं, और उसमें स्टिग्मा एक बहुत बड़ा कलंक, एक बहुत बड़ा बैरियर है, तो सरकार को भी चाहिए, परिवार को भी चाहिए कि इस स्टिग्मा को एड्रेस करें, क्योंकि होता यह है कि अगर फादर को पता चला या मदर को पता चला कि मेरा बच्चा नशा लेता है तो वो उसको छिपाते हैं, जब वो छिपाते हैं तो धीरे धीरे वो समस्या और बढ़ता है, ऐसा नहीं है कि घट रहा है, और दूसरी बाय द टाइम उनको पता चलता है कि हाँ अब इसको इलाज के ले जाने की जरूरत है, तब तक शायद वो बच्चा इलाज के लिए अब तैयार नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टिग्मा को घटाने की जरूरत है। दूसरा, जितने भी ट्रीटमेंट सेंटर्स खुले हैं वहां पे जो स्टाफ है उसका प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। देखिए, ट्रीटमेंट का 4 फेज होता है। पहला फेज जिसको हम लोग कहते हैं मोटिवेशन का फेज, तो उसमें परिवार और काउंसलर्स की भूमिका होती है, टीचर्स की भूमिका होती है कि आप ट्रीटमेंट के लिए जाओ। दूसरा फेज होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिटॉक्स का फेज। डिटॉक्स का मतलब जिसमें उसकी जो टूटन है, उसका जो विड्रॉल है, उसको मैनेज किया जाता है। तीसरा है रिहैबिलिटेशन का फेज। रिहैबिलिटेशन का मतलब पुनर्वास। पुनर्वास का मतलब है कि जब वो नशा करना शुरू किया था उसके पहले उसका जो लाइफस्टाइल था वो वापस लाइफस्टाइल उसको मिलना चाहिए और अटेंड करना चाहिए, तभी तो वो वापस सोसाइटी में और परिवार में रीइंटीग्रेट होगा। और चौथा उसको हम लोग कहते हैं रिकवरी सपोर्ट, कि जब वो उसका इलाज हो गया, इलाज होने के बाद उसकी मदद करनी चाहिए कि वो रिलैप्स नहीं करे। तो इन तमाम चीजों के लिए जो सरकार

0: अरे जितने भी ट्रीटमेंट सेंटर्स बन रहे हैं उसमें जितने भी हर लेवल के जो स्टाफ है उसका प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। और अमित शाह जी ने अपने वो जो चौथा स्तंभ है क्षमता निर्माण है वो यही एग्जैक्टली, मतलब सप्लाई डिडक्शन में भी क्षमता निर्माण होना चाहिए और ड्रग ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेशन एंड प्रिवेंशन में भी क्षमता निर्माण होना चाहिए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें दो और मैं छोटी बात कहना चाहता हूँ कि एक बड़ा पॉपुलेशन है जिसको जो हमें दिख नहीं रहा है वो है बच्चों का पॉपुलेशन, जो बच्चे नशा करना शुरू कर दिया है, और महिलाओं का पॉपुलेशन। तो इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेशलाइज प्रोग्राम हो। स्पेशलाइज प्रोग्राम का मतलब है जो बच्चों का ट्रीटमेंट है वो एडल्ट के ट्रीटमेंट से बहुत डिफरेंट होता है। और महिलाओं का ट्रीटमेंट, चूंकि वो महिलाएं निकलना नहीं चाहती और परिवार निकलने नहीं देता है कि छिपाता है, तो ये जरूरी है कि दोनों के लिए स्पेशलाइज प्रोग्राम हो।
1: जी, सरकार ने 1,00,000 नशा मुक्त मित्र बनाने का भी लक्ष्य अपने सामने रखा है। आप इस पहल को किस तरीके से देखते हैं और नशा मुक्त मित्र जो ये अभियान है इसको जमीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए ये किस तरह का योगदान दे सकता है?
0: देखिए, ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम होना चाहिए क्योंकि नशा आम बीमारियों से बहुत अलग है। और अधिकतर जो यंग बच्चे जब नशा करते हैं तो उसके संपर्क में कौन होता है? माँ बाप नहीं होते, टीचर नहीं होते हैं, उन्हीं के हम उम्र के लोग होते हैं। तो अगर वो हम उम्र वाले बच्चों को अगर हमने ट्रेन किया, उनको हमने ओरिएंट किया, एक प्रोग्राम है जिसको पीयर लेड इंटरवेंशन कहा जाता है, तो उसके माध्यम से अगर हम उन बच्चों तक पहुंचे जो जिन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, जिन्होंने इनिशिएट किया है कि साहब अभी हम थोड़ा थोड़ा लेना हमने शुरू किया है, तो ये जो 1,00,000 वॉलंटियर्स हैं, और ये 1,00,000 वॉलंटियर अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। NSS है, NCC है, माई इंडिया है, इस तरह के जो बड़े बड़े प्रोग्राम भारत सरकार के चल रहे हैं उनके माध्यम से ये अचीवेबल है और ये होना भी चाहिए।
1: जी, अंत में डॉक्टर राजेश, मेरा आपसे एक प्रश्न रहेगा कि हम अक्सर नशे की समस्या को केवल कानून व्यवस्था या स्वास्थ्य का मुद्दा बना लेते हैं, लेकिन इसके पीछे परिवार, मानसिक सामाजिक परिस्थितियां, बेरोजगारी, साथियों का दबाव और सामाजिक वातावरण जैसे कई कारण भी हो सकते हैं। अगर किसी परिवार का कोई सदस्य नशे की गिरफ्त में हो तो आपका सबसे पहला संदेश क्या होगा और एक नशा मुक्त भारत बनाने में एक आम आदमी या आम नागरिक आज क्या भूमिका निभा सकता है?
0: बहुत लंबा सवाल है, संक्षेप में कहना थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी मैं बताऊं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि परिवार अपने बच्चों को जाने, उनसे बात करे। आजकल बच्चे परिवार के साथ नहीं बात करते हैं, वो रील से बात करते हैं। उन्होंने कुछ अगर सोशल मीडिया पे डाला और अगर उनको थम्सअप नहीं मिला तो वो निराश होते हैं, वो परेशान होते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। ये सारा गेम डोपामिन का है। अगर उसको डोपामिन स्पोर्ट्स से मिल रहा है, डोपामिन उसको परिवार से बात करने में मिल रहा है, अपने दूसरे जो फ्रेंड्स से उनसे बात करने में मिल रहा है, तो उसको इनकरेज करने की ज़रूरत है। तो इन सबसे काटने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि स्कूल और परिवार दोनों बच्चों को समझे, बच्चों के स्वभाव को समझे, बच्चे के बदलते हुए जो मानसिक स्थितियाँ हैं उसको समझे और उनसे बात करें।
1: जी, तो डॉक्टर राजेश, आपने हमें बड़े नशा की समस्या को सिर्फ एक कानून के नज़रिए से नहीं बल्कि रोकथाम, इलाज, पुनर्वास और समाज की भागीदारी, इन सभी पहलुओं से समझाया है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू श्रेया जी।
2: अभी आप सुन रहे थे नशा मुक्त भारत की आगामी 3 वर्षों की कार्य योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ यूथ एंड मासेस SPYM के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रही थीं श्रेया पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। मंथन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने UPI के 2400 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा है कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपने उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई है और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। उन्होंने बताया कि भारत और चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देश के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं महिला रिकर्व टीम में भावना और पूजा ने रजत पदक जीता।

0: बीच हुई वार्ता में रूस यूक्रेन संघर्ष समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। रूस ने यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया, कहा इस मुद्दे पर रूस भारत के रुख से सहमत। सऊदी अरब में कई तेल सुविधाओं पर हुती विद्रोहियों के हमले में 73 लोग घायल और अहमदाबाद में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने यूपीआई के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय यूपीआई अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।
1: भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास की दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है।
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBC+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल स्वामीनाथन कल से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान एडमिरल स्वामीनाथन ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। वे ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के प्रमुख संचालन और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों का भी दौरा करेंगे। नौसेना प्रमुख न्यूजीलैंड की रॉयल नेवी के अधिकारियों और पेशेवर सैन्य प्रशिक्षण ले रहे अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। न्यूजीलैंड में एडमिरल स्वामीनाथन रॉयल न्यूजीलैंड नेवी के वरिष्ठ अधिकारियों और न्यूजीलैंड के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के साथ चर्चा भी करेंगे। बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में राष्ट्रपति मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के महत्व पर बल दिया। भारतीय उच्चायोग ने बताया कि बातचीत में भारत और बांग्लादेश के बीच साझा इतिहास, घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों और दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों को रेखांकित किया गया। रूस ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत की ओर से किए जाने वाले किसी भी शांति प्रयास का वो स्वागत करेगा। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। दोनों नेता आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। श्री पुतिन प्रधानमंत्री मोदी को यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध की स्थिति की जानकारी भी दे सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 12 और 13 तारीख को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में मीडिया को ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन बैठकों में रूस यूक्रेन संघर्ष समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: बायलैटरल द्विपक्षीय वार्ता बहुत सारे राजनेताओं के साथ हमारे प्रधानमंत्री की होगी। रशिया और यूक्रेन की जो संघर्ष चल रही है इसकी बारे बात है। ये मुद्दा भी बहुत सारे मुद्दे जब द्विपक्षीय वार्ता होंगे तो बहुत सारे मुद्दे ऊपर उठ के आएंगे और उसमें एक ये मुद्दा भी रहेगा।

0: रूस यूक्रेन संघर्ष पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत रूस और यूक्रेन दोनों के संपर्क में है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों पर यमन में लगातार हमलों के बाद हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। यमन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन करने वाले सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने आज कहा कि हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के शहरों आबा, खमीस, मुशैत, जाजान और नजरा में नागरिक और आर्थिक स्थलों को निशाना बनाया। सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता तुर्की अल मलिकी ने कहा कि इन हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 73 नागरिक घायल हुए हैं। यह सऊदी अरब की संप्रभुता का उल्लंघन और उसके नागरिकों और निवासियों की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। ब्रिटेन ने भारत की कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना को मान्यता दे दी है। भारतीय निर्यातकों के लिए यह बड़ी राहत ब्रिटेन ने कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के अंतर्गत दी है। अब ब्रिटेन में कार्बन टैक्स के दायरे में आने वाले भारतीय उत्पादों पर भारत में पहले से चुकाए गए कार्बन मूल्य के आधार पर राहत मिल सकती है। इसमें इस्पात, एल्यूमिनियम, उर्वरक और सीमेंट जैसे उत्पाद शामिल हैं। इससे भारतीय निर्यातकों को एक ही कार्बन उत्सर्जन के लिए दो बार शुल्क चुकाने से राहत मिलेगी। ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस समेत 12 देशों ने आज घोषणा की कि वो वेस्ट बैंक में अवैध इसराइली बस्तियों के साथ व्यापार पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये कदम कब्जे वाले क्षेत्र में फिलिस्तीनी गांवों पर इसराइली बस्तियों द्वारा कथित हमलों में वृद्धि के बाद उठाया गया है। डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्पेन और स्वीडन के विदेश मंत्रियों ने भी बस्तियों के साथ व्यापार सीमित करने की योजना बनाई है। मंत्रियों ने कहा है कि 12 देश उन बस्तियों से आने वाले सामानों पर राष्ट्रीय और यूरोपीय व्यापार प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत अवैध हैं। उन्होंने कहा कि कुछ देश अपने राष्ट्रीय कानूनों और प्रक्रियाओं के अनुरूप अन्य उपायों पर भी विचार कर रहे हैं। ब्रिटेन के विदेश मंत्री एड मिलिबैंड ने आज संसद में बोलते हुए इसराइल की सरकार पर वेस्ट बैंक में बस्तियों द्वारा किए जा रहे जातीय सफाई को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान सरकार से मानवाधिकार अधिवक्ता ईमान मजारी हाजिर और हादी अली शट्टा को तुरंत और बिना शर्त रिहा करने की मांग की है। एमनेस्टी ने कहा है कि दोनों को साइबर अपराध कानूनों के दुरुपयोग के आरोपों के बीच लंबे समय से जेल में रखा गया है। दोनों वकीलों को इस वर्ष 23 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। इसके अगले दिन इस्लामाबाद की एक अदालत ने उन्हें इलेक्ट्रॉनिक अपराधों से जुड़े कानून के अंतर्गत 10 से 17 वर्ष तक की सजा सुनाई थी। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह और विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं महिला रिकर्व टीम में भावना और पूजा ने रजत पदक जीता। उधर स्वाति चौधरी और आदिल मोहम्मद नजीर अंसारी ने मिक्स्ड टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। स्वाति ने व्यक्तिगत W1 स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई के वैश्विक विस्तार और प्रेक्षण लागत में बचत पर बल दिया। नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई वार्ता में रूस यूक्रेन संघर्ष समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। रूस ने यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के भारत के शांति प्रयासों का समर्थन किया। सऊदी अरब में कई तेल सुविधाओं पर हूती विद्रोहियों के हमले में 73 लोग घायल और अहमदाबाद में आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani. I'm Harpreet Kaur with the World News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi pushes for global expansion of UPI and saving remittance costs. Russia-Ukraine conflict among various issues to figure in talks between Prime Minister

सभी इनोवेटर्स, लीडर्स और इन्वेस्टर्स, देवी और सज्जनों, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में देश विदेश से आए सभी गेस्ट और डेलीगेट्स का मैं अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि आज यहां एक और हैट्रिक लगी है। एक हैट्रिक तो 2024 में तीसरी बार सरकार बनने से लगी थी और एक हैट्रिक आप सभी के बीच आने से जुड़ी है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में लगातार ये मेरा थर्ड ईयर है। ये हैट्रिक बताती है कि विकसित भारत के लिए आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आपका काम कितना महत्वपूर्ण है। साथियों, हर बार जब मैं यहां आता हूं तो मुझे पहले से ज्यादा युवा दिखाई देते हैं, पहले से ज्यादा एनर्जी अनुभव होती है। मुझे पॉसिबिलिटीज का दायरा एक्सपेंड होता दिखता है। ये साफ साफ लगता है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, ड्रीम्स और बोल्ड हो रहे हैं और इसलिए विकसित भारत के फ्यूचर को लेकर मेरा विश्वास और मजबूत हो रहा है। साथियों, फिनटेक की इस एनर्जी के बीच ही मुंबई में सांस्कृतिक ऊर्जा भी इन दिनों चरम पर है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र सहित पूरे देश में गणेशोत्सव शुरू होने जा रहा है। हमारे यहां हर शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश को याद किया जाता है। मैं गणपति बापा को नमन करते हुए आप सभी को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, दुनिया के हालात क्या है ये आप सब भली भांति जानते हैं। दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है। एनर्जी और कमोडिटीज की सप्लाई चेन्स पर दबाव है, ट्रेड को लेकर भी तनाव है और ये स्थितियां कई महीनों से बनी हुई है। इसमें भी अप्रैल से जून का क्वार्टर सबसे चैलेंजिंग रहा है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है। और ये जो विश्वास है वो मैं यहां आप सभी के चेहरों पर भी साफ साफ देख रहा हूं। साथियों, भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरिन रेटिंग्स भी है। हाल में ही जापान की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरिन रेटिंग्स को ए कैटेगरी में अपग्रेड किया है। अपग्रेड करना तो खुशी की बात है, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है
कि सौभाग्य

तीन दशक के बाद आया है, 30 साल के बाद। ये दिखाता है कि भारत के ग्रोथ मोमेंटम, हमारी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बीते वर्षों में किए हैं, उन सब को लेकर दुनिया कितनी आश्वस्त है। और मैं फिर कहूंगा कि भारत की ये रिफॉर्म एक्सप्रेस और तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगी। साथियों, भारत की फिनटेक स्टोरी अद्भुत रही है और इसका एक बड़ा चैंपियन है हमारा यूपीआई। मैंने पिछले साल भी इसकी चर्चा की थी, लेकिन ये इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है कि जब भी फिनटेक की चर्चा होगी तो वो यूपीआई के बिना अधूरी ही होगी। साथियों, अभी कुछ ही दिन पहले 25 अगस्त को यूपीआई ने अपने 10 साल पूरे किए हैं। 10 वर्ष पहले जब मैं कहता था कि आपका बैंक आपकी फिंगर टिप्स पर होगा, तो कुछ लोगों को ये असंभव लगता था और मैं वेल इन्फॉर्म्ड लोगों की बात कर रहा हूं। चेहरा याद कर लीजिए, मैं उन करोड़ों भारतीयों की बात नहीं कर रहा हूं जिनके तब बैंक अकाउंट भी नए नए खुले थे। उनकी तो अनेक पीढ़ियों ने बैंक का दरवाजा तक नहीं देखा था, लेकिन आज 10 वर्ष बाद देखिए, वही करोड़ों लोग जो पीढ़ियों से बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे, वे भारत में फिनटेक ग्रोथ के बड़े ड्राइवर बन गए हैं। साथियों, आज अकेले अगस्त महीने में ही यूपीआई से 2400 करोड़ से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं। यानी हम यहां जितनी देर से बैठे हैं, सिर्फ 10 मिनट में ही औसतन 50 लाख से ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन देशभर में हो चुके होंगे। यही इंपैक्ट है जिसके कारण फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा, उन्होंने कहा था कि यूपीआई केवल टैक्स स्टोरी नहीं है, ये एक सिविलाइजेशनल स्टोरी है। और साथियों, यूपीआई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। कुछ वर्ष पहले यहां कोई कहता कि विदेश में भी भारत के बैंक अकाउंट से पेमेंट कर देगा तो शायद ही कोई विश्वास करता, लेकिन आज यह एक हकीकत है। भारत का यूपीआई अब दुनिया के 11 देशों में लाइव है। ये अद्भुत आंकड़े हैं जो हमें बताते हैं कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हम इस सफर से संतुष्ट हो जाएं? क्या भारत में फिनटेक की सफलता को ही फाइनल मान ले जाए? साथियों, पॉलिसी और गवर्नेंस से जुड़े इकोसिस्टम में मुझे अब 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं।

और जिन्होंने भी मुझे इन वर्षों में देखा है वो जानते हैं मोदी एक पड़ाव पर पहुंचकर जश्न मनाकर संतुष्ट होने वालों में से नहीं है। जब एक लक्ष्य प्राप्त होता है तो मैं उससे भी बड़े लक्ष्य की तैयारी में जुट जाता हूं। साथियों, आज हमारा यूपीआई कई देशों में पहुंचा है, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप है। अब उन देशों के पेमेंट सिस्टम के साथ जुड़ना हमारा अगला लक्ष्य होना चाहिए। सिंगापुर के साथ हम ये कर चुके हैं, इससे भारत और सिंगापुर के बीच ट्रांजैक्शन वैसे ही हो पा रहे हैं जैसे एक ही शहर के दो मोहल्लों के बीच होता है। यही कनेक्शन हमें अन्य देशों, अन्य बाजारों में भी बिल्ड करना है। इसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ना होगा। जहां भी भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं, जहां भी भारत बड़े पैमाने पर ट्रेड करता है, दुनिया का जो भी देश हमारे साथ चलने को तैयार है, हमें उन सबको जोड़ने के लिए काम करना होगा। साथियों, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि विदेशों में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं और दुनिया में सबसे अधिक भारतीय ही विदेश से पैसा भेजते हैं। लेकिन आज उस पैसे का एक हिस्सा ट्रांजैक्शन कॉस्ट में चला जाता है। यूपीआई भारतीयों को इसमें भी बचत दिला सकता है और पैसा तेजी से भारतीय परिवारों के पास पहुंच सकता है। साथियों, आज आप भारत में कार्ड से पेमेंट कैसे करते हैं? यह सिस्टम उन स्टैंडर्ड्स पर चलता है जो कहीं और डिजाइन किए गए थे। हमने उन स्टैंडर्ड्स और रूल्स को अपनाया जो दूसरों ने बनाया था। उस समय हमारे पास अपना कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब हमारे पास अपना विकल्प है। अब हम अपने खुद के रूल्स और स्टैंडर्ड बना सकते हैं और उन्हें दुनिया के साथ जोड़ सकते हैं। मुझे आप सभी पर पूरा भरोसा है कि आप ये कर सकते हैं। साथियों, टेक्नोलॉजी इंक्लूजन का सबसे प्रभावी टूल है और यूपीआई ने करके दिखाया है। जब फिनटेक की बात आती है तो इसका यूनिक फीचर ही वहां पहुंचने का होना चाहिए जहां ट्रेडिशनल मॉडल नहीं पहुंच पाए, जहां पारंपरिक बैंक नहीं पहुंच पाए, जहां बैंक ब्रांच नहीं पहुंच पाई। यूपीआई ने बैंकिंग व्यवस्था को उस स्थान, उस व्यक्ति तक पहुंचा दिया है। साथियों, आज फिनटेक बाजार का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ पेमेंट्स का है, लेकिन अब हमें यहां से नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है और तेजी से जाना है। अब फिनटेक मार्केट में पेमेंट्स के साथ साथ क्रेडिट ट्रांजैक्शन का हिस्सा भी बढ़ना चाहिए, इंश्योरेंस का हिस्सा बढ़ना चाहिए, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और पेंशन का हिस्सा बढ़ना चाहिए। साथियों, मैं समझता हूं फिनटेक देश की उस ताकत को उभार सकता है जो अभी ट्रेडिशनल फाइनेंशियल मॉडल्स की रीच से बाहर है या उस प्रकार से एड्रेस नहीं हो पा रही है। विकसित भारत के लिए इस ताकत का उभार बहुत जरूरी है। साथियों, इसका इम्पैक्ट क्या होता है ये हम सभी पीएम स्वनिधि

की सफलता से देख ही रहे हैं। हमारे स्ट्रीट वेंडर्स शहरों की रीढ़ हैं, लेकिन ये देश के बैंकिंग सिस्टम से, फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम से बाहर थे। पीएम स्वनिधि ने देश के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल सिस्टम से जोड़ा और अब इन साथियों के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है, यानी इनके पास एक फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस का टूल है। और स्टडीज बताती है कि स्वनिधि के इन बेनिफिशियरीज की एवरेज एनुअल इनकम 20% से ज्यादा बढ़ी है। यही नहीं, इससे इन परिवारों की हाउसिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एक्सेस और बच्चों की एजुकेशन, इनमें भी बहुत सुधार हुआ है। इसलिए सरकार ने स्कीम को 2030 तक बढ़ाने का फैसला भी लिया है। साथियों, पीएम स्वनिधि को यह सफलता हासिल ही नहीं होती अगर यूपीआई ही न होता। इस स्कीम की सफलता में यूपीआई की एक बहुत बड़ी भूमिका है। इसी अनुभव से सीखते हुए हमें फिनटेक की ताकत से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और बढ़ाना है। मैं आपको कैपिटल और क्रेडिट की दुनिया से एक उदाहरण देता हूं। एक बहन है जो छोटी दुकान चलाती है, उसको हर दिन डिजिटल पेमेंट मिलता है। अब उसकी इनकम और खर्च में एक क्लियर पैटर्न दिखता है, उसका बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। वो उस लेवल से आगे बढ़ चुकी है जहां कम कैपिटल भी काफी था। अब उसे अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए सामान चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए और इसके लिए थोड़े ज्यादा पैसों की जरूरत है। ये बहुत बड़ा क्रेडिट नहीं है और उस बहन का बिजनेस अभी भी इतना छोटा है कि ट्रेडिशनल क्रेडिट मॉडल उसको एफिशिएंट सर्विस नहीं दे सकते। इस प्रकार के बिजनेस हैं जिनकी जरूरतों को फिनटेक एनालाइज, एंटीसिपेट और एड्रेस कर सकते हैं, और ऐसे बिजनेस की संख्या बहुत बड़ी है। साथियों, टेक्नोलॉजी हमें ऐसे बिजनेसेस के इकोनॉमिक एक्टिविटीज को स्टडी करने और उनके लिए क्यूरेटेड मॉडल डिजाइन करने में बहुत काम आ सकती है। मेरा मानना है कि फिनटेक का नेक्स्ट चैप्टर यही लिखा जाएगा। हमने पेमेंट्स में स्पीड और स्केल दिखाई है, अब हमें नॉन पेमेंट्स ट्रांजेक्शन का शेयर बढ़ाने में मदद करनी होगी। जैसे कोई डिलीवरी पार्टनर है या अपना कोई छोटा मोटा काम करने वाला व्यक्ति है, वो हर महीने कमाता है लेकिन उसे सेविंग्स और पेंशन प्रोडक्ट जैसी सर्विसेज तक एक्सेस चाहिए। ऐसे लोगों की जरूरतों को फिनटेक एड्रेस कर सकता है। ऐसे ही फिनटेक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स और अन्य फाइनेंशियल सर्विस तक भी एक्सेस आसान बना सकता है। ये सब भी उतने ही सरल, सहज और सुलभ हो सकते हैं जितना आसान आज QR कोड से पेमेंट करना है। साथियों, 21वीं सदी का पहला क्वार्टर खत्म ही हो चुका है, अब हम साल 2026 में हैं। अब दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इंपैक्ट में कैसे बदले, और इसके लिए मैं चाहता हूं हमारी फिनटेक कंपनियां साथ मिलकर कुछ टास्क अपने लिए सेट करें
और उसके लिए मैं कुछ सुझाव

0: और भी आपके बीच रखना चाहता हूं। पहला, हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। दूसरा, हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। तीसरा, हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है। और चौथा, हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए, जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके। अगर हम इन कसौटियों पर खुद को कसेंगे तो भारत का फिनटेक सेक्टर असंख्य पॉसिबिलिटीज का गेटवे बन सकता है। हमारे पास अनुभव भी है, उसे जमीन पर उतारने का तरीका भी है, इसलिए हमें तेजी से काम करना है। साथियों, डिजिटल इंडिया की सक्सेस स्टोरी अब एक नए अध्याय के लिए तैयार है। हमारी फिनटेक सक्सेस स्टोरी की अब तक की सफलता स्केल है, स्कोप है, सिक्योर सिस्टम है, डेमोक्रेटाइजेशन अब टेक्नोलॉजी है और जनता का ट्रस्ट है। इन्हीं कोर वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए फिनटेक सेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन इनोवेशन पर फोकस करना है। इसी आग्रह के साथ आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 के सातवें संस्करण के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री का संबोधन।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्राओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।
1: हमें भारत में साइबर सिक्योरिटी को टॉप नॉच बनाना है। हमारी इंडस्ट्री के पास अपने इथिकल डेटा प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। हमें एक मजबूत फिनटेक रेगुलेटर इंडस्ट्री इनोवेशन इकोसिस्टम बनाना है और हमारे पास एक फिनटेक कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंडेक्स होना चाहिए जिसके आधार पर हर कंपनी की पारदर्शी रेटिंग हो सके।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले महीने UPI के 2400 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की 7.8% की विकास दर दुनिया को एक नया भरोसा दे रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है और अब अपनी उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच का निर्माण कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 दिन की श्रीलंका यात्रा पर कोलंबो पहुंचे। रक्षा मंत्री रक्षा और समुद्री साझेदारी को मजबूत करने सहित कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। वे कोलंबो में भारतीय समुदाय से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई और राहत बचाव और पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। उन्होंने बताया कि अब तक 7 विमानों के जरिए 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मारे गए कई भारतीय नागरिकों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में आज भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में, हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi said that India has taken fintech journey to new heights with innovation and inclusion at its core. He said technologies like agentic AI, tokenization and quantum are opening new possibilities in the financial sector.

0: Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak.
1: Namaskar, aur hamare saath khabron par charcha ke liye studio mein aamantrit hain desh ke jane mane अर्थशास्त्री डॉक्टर एस पी शर्मा. डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
0: वार्म वेलकम डॉक्टर शर्मा.
2: जी शुक्रिया, थैंक यू.
1: आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्सेस डिक्लाइन, सेंसेक्स फॉल्स ओवर 550 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स एट 23,635.

0: 2025. Prime Minister Narendra Modi lays foundation stone, inaugurates and dedicates to the nation development projects worth 35,000 crore rupees in Gujarat, says India has emerged as a global manufacturing hub, producing its own advanced train and metro coaches. And global crude oil prices rise.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज हुई गिरावट. सेंसेक्स 550 अंक से अधिक लुढ़का. निफ्टी 23,635 दर्ज हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए राष्ट्र को समर्पित किया. कहा, स्वदेशी उन्नत ट्रेन और मेट्रो कोच का उत्पादन कर भारत वैश्विक निर्माण हब के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम बढ़े.
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और आइए अब शुरू करते हैं घरेलू शेयर बाजार से खबरों का सिलसिला. घरेलू शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन आज बिकवाली की गई और प्रमुख सूचकांक इस वर्ष जून के मध्य के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आकर बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 555 अंक यानी 0.73% नुकसान के साथ 75,578 पर बंद हुआ. उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 144 अंक यानी 0.61% घाटे के साथ 23,635 दर्ज हुआ. हालांकि विस्तारित बाजारों में लिवाली कहीं अधिक तेज देखी गई सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मिड कैप 100 और स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 0.2% लाभ में रहा.
0: बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडेक्स डिक्लाइन फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव सेशन टुडे, एंडिंग एट द लोएस्ट लेवल सिंस मिड जून. The Sensex declined 555 points or 0.73% to end at 75,578, while the Nifty shed 144 points or 0.61% to settle at 23,635. However, in the broader market of the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 and the Small-Cap 100 indices gained 0.2% each. Earlier, the markets opened lower and remained under pressure throughout the session as Brent crude prices edged closer to the $100 per barrel mark, heightening concerns over inflation and broader economic uncertainty.
1: नजर डालते हैं सेंसेक्स में शामिल कंपनियों पर जिनके प्रदर्शन में कहीं गिरावट कहीं तेजी देखने को मिली. सबसे पहले अधिक नुकसान में रहने वाली कंपनियां. ICICI बैंक को आज 2% का घाटा हुआ. एक्सिस बैंक के शेयरों में 1.7% की गिरावट आई. अल्ट्राटेक सीमेंट 1.2% नुकसान के साथ बंद हुआ. उधर लाभ कमाने वाली कंपनियों में सम्मिलित रही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसे 1.5% का फायदा हुआ. अडानी पोर्ट्स के शेयरों में 1.1% और हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर 0.8% लाभ के साथ बंद हुए.
0: इन द सेक्टोरल इंडेक्सेस ऑन द BSE 14 आउट ऑफ 28 सेक्टर एज्ड डाउनवर्ड. अमंग द टॉप अंडर परफॉर्मेंस इंश्योरेंस एज वेल एज टॉप 10 बैंक्स फेल 1%. प्राइवेट बैंक्स इंडेक्स ड्रॉप्ड 0.9% एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लॉस्ट 0.8%. In contrast, capital goods advanced 1.3%, power gained 0.7%, and healthcare as well as industrials added 0.6%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,384 companies declined, 2,009 advanced, and 216 remained unchanged.
1: नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 34 पैसे कमजोर हुआ. 94.83 रुपए के स्तर पर बंद हुआ. डॉक्टर शर्मा, बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे. कुल मिलाकर ठीक ठाक गिरावट हुई और जून मध्य के बाद से अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है बाजार. किस अर्थ में ले रहे कारोबार को?
2: देखिए मनोज जी, एक तो ये बहुत स्ट्रांग प्रॉफिट बुकिंग मैं कहूँगा, क्योंकि जो ग्लोबल सिचुएशन है, जो

0: अनसर्टेनिटीज़ हैं वो वापस फिर एक हाइटेंड मोड पर हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसमें कोई ऐसा चिन्ह नहीं आ रहा है जिससे कि हमें लगे कि शांति किसी एजेंडा पे हो या कुछ उसका वजूद हमें नज़र आए, तो जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस वापस एस्केलेशन में है। और जब क्रूड प्राइसेस एस्केलेशन में है तो उसका सीधा असर जो है पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था के ऊपर आता है, भारत के ऊपर आता है और जो भी इसके इम्पोर्टर हैं उनके ऊपर आता है, ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर ही बहुत काफ़ी असर होता है। तो उससे के मद्देनज़र मैं ये समझता हूँ कि जो अभी मार्केट में जो इन्वेस्टर सेंटिमेंट है वो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ रहा पिछले कुछ सेशंस में, जिसमें उन्होंने प्रॉफिट बुक किया अनसर्टेनिटीज़ को देखते हुए कि ग्लोबल लेवल पे कुछ ऐसी दिशा नहीं मिल रही है कि कोई पीस की वार्ता आगे कोई किसी एजेंडा में हो। तो एक तो ये, दूसरा जो एक जो इन्फ्लेशन को लेके कि जो इन्फ्लेशन अभी आने वाले टाइम में या तो राइज कर सकता है या फिर उसी जो हायर स्टिकी जोन में रह सकता है, जैसे कि यूएस का इन्फ्लेशन है 3.4% पे, तो उनके टॉलरेंस लेवल से काफ़ी ज़्यादा है, जिसे फेड आने वाले टाइम में क्या डिसीजन लेगा वो एक अनसर्टेनिटी जो है इन्वेस्टर्स के माइंड में है, जो भी कुछ ही दिनों में हमारे सामने आएंगे उनके रिजल्ट जो भी फेड डिसीजन लेगा। और तीसरे नंबर पे जो एक ऐसा जो अनुमान था कि बहुत जल्दी मार्केट्स में एक तेज़ी आएगी, जब पीस हो जाएगा, जब कुछ ऐसी वार्तालाप होगी, तो वो सभी चीज़ों के ऊपर कोई ऐसा विचार नहीं।
1: सो व्हाई डिड द मार्केट फेल टू फाइंड सपोर्ट डिस्पाइट सेलेक्ट रिजिलियंस इन मिड कैप एंड डिफेंसिव सेक्टर्स?
0: मिस्टर लेक, बिकॉज पीपल आर बुकिंग देयर प्रॉफिट्स एट दिस जंक्चर, अपना एंटिसिपेटिंग द हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस इन द कमिंग टाइम्स एंड द हाई इन्फ्लेशन एंड द अनसर्टेनिटी एट द ग्लोबल लेवल। दैट्स वाई इन्वेस्टर्स आर नॉट टेकिंग द लॉन्ग कॉल टू गो अहेड विद द इन्वेस्टमेंट्स। वेयर देयर इज सम प्रॉफिट देन दे आर बुकिंग सम पार्शल प्रॉफिट और the full profit or far profit, but the profit booking is significantly high in the market at this juncture. That's why markets are significantly low to the level of June 2026. But going forward, if some peace process happens at the global level, then I believe markets will recover sooner than later.
1: So today the top 10 banks fell 1%, private banks index fell 0.9%, and the financial services lost 0.8%. So are banks vulnerable mainly because of risk aversion, or could high crude ultimately affect loan growth and asset quality as well?
0: I believe all these three factors are working, because when the crude prices rise, then the inflation trajectory also expands and go high, then the banks, central banks are also in a mood of tough monetary measures. So that's why banking sector is not in that much comfortable position after observing such kind of developments at the global level, whether the West Asia or the Russia Ukraine, their war is also intensifying. So that's why the situation is not in any direction. People are confused and they are taking their decisions to book the profit and to make some gains from the market.
1: So in contrast to what I just mentioned about banks and all going down, we also had pharma and healthcare attracting money today. What could be the reason? Is it defensiveness? Is it export potential? Or is it
0: because
1: a rupee related benefit?
0: Yes, because this is a export oriented sector actually, jo pharma and Ayush and all these related activities like the technical stocks also. So these export oriented stocks sometimes gain when the market declines, so that may be the reason these stocks are showing the strength in the market.
1: So what does it say to you about the domestic investors being very confident when you see that the mid cap has gained today Does it show their confidence, or could that pocket face delayed profit booking if volatility persists?
0: No, Lekji, this is some kind of churning. When the people book their profits in the blue chips and then they shift to the other prospective mid caps, so that their investments are not out of the market. So that's why this is the shift from some profit booking in the blue chip companies, then the shift towards the mid cap, small and mid cap. So that churning is happening between the larger and smaller stocks.
2: यहाँ पर एक संक्षिप्त सा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि रुपया कमजोर हुआ है, निसंदेह आज भी गिरावट हुई है, लेकिन रुपए के गिरने ने किस रूप से हमारे निर्यात को प्रोत्साहित किया है और किस रूप से प्रतिस्पर्धी बने हैं हमारे बाजार, बहुत संक्षिप्त में?
0: मनोज जी, जब रुपी डेसिलेरेट होता है, गिरता है, तो उसका उसके जब तो प्राइस कॉस्ट मार्जिन जो एक्सपोर्टर के लिए थोड़ा फायदा होता है, उनके जो प्रोडक्ट्स है वो कॉम्पिटिटिव हो जाते हैं, जिससे अर्निंग्स भी इंक्रीज हो जाते हैं.
3: रिजर्व बैंक हैज कंसिस्टेंटली व्यूड फिनटेक एज अ वैल्यूएबल पार्टनर इन बिल्डिंग द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द फ्यूचर, द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब एंड आवर स्ट्रक्चरल and continued dialogues with startups, fintechs and other stakeholders all rest on the conviction that better policy emerges from continuous, open and constructive engagement. We have encouraged self-regulation within the sector. We have supported the development of digital public infrastructure that fintechs can build upon. We have been open to new ideas and new players. We have promoted responsible innovation while safeguarding trust that is the very foundation of finance, and we will continue with this approach, guided by a vision to build a financial system that is safer, more trustworthy, more inclusive, fair, efficient, and supports economic growth and public welfare. Honorable Prime Minister, this festival is a testament to what is possible when policymakers, regulators, investors, financial intermediaries, and innovators share a common purpose. I, on behalf of all the participants, express a heartfelt gratitude to you for taking out precious time for this event.
2: आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. प्रधानमंत्री ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 3 अहम हिस्सों को देश को समर्पित किया, जिससे फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क का काम पूरा हो गया और अब ये चालू हो गया है. इस अवसर पर एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में तेजी से हो रहे बदलावों का जिक्र किया. उन्होंने 2,800 किलोमीटर से अधिक लंबे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के पूरा होने को 21वीं सदी के भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि और देश की बदलती हुई कार्य संस्कृति का प्रमाण बताया. प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर उभरा है और अपनी खुद की उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच बना रहा है. उन्होंने कहा कि भारतीय रेलवे नेटवर्क में 50,000 से अधिक आधुनिक रेलवे कोच और 2.5 लाख वैगन जोड़े गए हैं. प्रधानमंत्री ने चिप टू शिप लोकल प्रोडक्शन के दृष्टिकोण के बारे में बताते हुए कहा कि देश के भीतर एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर सप्लाई चेन बनाई जा रही है, जिसमें हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर भारी समुद्री शिपिंग तक सब कुछ शामिल है.
1: Let's take you live once again to Mumbai, where the Prime Minister is now addressing the gathering at the Global FinTech Fest 2026.
4: तीसरी बार सरकार बनने से लगी थी और ये हैट्रिक आप सभी के बीच आने से जुड़ी है. ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में लगातार ये मेरा थर्ड ईयर है. ये हैट्रिक बताती है कि विकसित भारत के लिए आप कितने महत्वपूर्ण हैं, आपका काम कितना महत्वपूर्ण है. साथियों, हर बार जब मैं यहां आता हूं तो मुझे पहले से ज्यादा युवा दिखाई देते हैं, पहले से ज्यादा एनर्जी अनुभव होती है, मुझे पॉसिबिलिटीज का दायरा एक्सपेंड होता दिखता है। ये साफ साफ लगता है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, ड्रीम्स और बोल्ड हो रहे हैं, और इसलिए विकसित भारत के फ्यूचर को लेकर मेरा विश्वास और मजबूत हो रहा है। साथियों, फिनटेक की इस एनर्जी के बीच ही मुंबई में सांस्कृतिक ऊर्जा भी इन दिनों चरम पर है। कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र सहित पूरे देश में गणेशोत्सव शुरू होने जा रहा है। हमारे यहां हर शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश को याद किया जाता है। मैं गणपति बापा को नमन करते हुए आप सभी को ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
2: ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में प्रधानमंत्री तीसरी बार पहुंचे और उन्होंने लोगों को शुभकामनाएं देते हुए नए विकसित हो रहे भारत के भविष्य के बारे में थोड़ी सी जानकारियां दी। हम समझना चाहेंगे कि इस तरह के आयोजन किस रूप में एक विश्व समुदाय को आपस में नज़दीक लाते हैं और ये जो फिनटेक फेस्ट है वह क्या आकार लेगा, हमारे आर्थिक तंत्र को, वैश्विक आर्थिक तंत्र को क्या योगदान देगा।
0: देखिए मनोज जी, जो फिनटेक है वो हमारी इकोनॉमी को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है और वी आर प्राउड के हम भारत पूरे ग्लोबल लेवल पे लीडर हैं। हमारी जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं वी आर नंबर वन, 20 बिलियन से भी ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं एक महीने में, एक बहुत बड़ी बात है जिसमें जो बड़े कंट्रीज हैं वो काफ़ी पीछे हैं। तो ऐसे जो सम्मेलन है इससे एक तो हमारी जो अवेयरनेस है, हमारी जो अप्रोच है वो पूरे विश्व में उजागर होती है कि भारत में इस तरीके की डेवलपमेंट्स हैं और भारत इन इन चीज़ों में आगे अपनी लीडरशिप बना के रखे हुए है। और दूसरा जो हमारा लक्ष्य है, जो हम विकसित भारत की तरफ जो बहुत तेज गति से दौड़ रहे हैं, जो अभी हमारे पास 20 साल और है हमें बड़ी ऊर्जा के साथ काम करने के, तो ये जो सेक्टर है चाहे वो फिनटेक है, एआई है, डिजिटलाइजेशन है, तो ये सभी सेक्टर जो न्यू इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं ये पूरी इकोनॉमी को गति दे रहे हैं, उसकी स्पीड को तेज कर रहे हैं, जो हमारे जिसकी वजह से हम देखिए अपना जो जीडीपी है 7.8% जी, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज पहले होती थी उनसे कहीं ज़्यादा हमारा जो ग्रोथ है वो कहीं आगे निकल गया है। अब चाइना का ग्रोथ है वो 4-4.5% के आसपास अटका हुआ है एंड वी आर सिग्निफिकेंटली हायर देन द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो ये सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि हमारी जो रफ्तार है, हमारी जो ग्रोथ है, हमारी जो ऊर्जा है वो पूरे विश्व में अभी विजिबल है।
1: सो इन नटशेल, GFF 2026 सीक्स टू बिल्ड ऑन इंडियाज लीडरशिप इन डिजिटल पेमेंट्स एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड मूव फ्रॉम पोटेंशियल टू इम्पैक्ट।
2: यहाँ पर डॉक्टर शर्मा, हम आपको एक बार फिर से श्रोताओं को लिए चलना चाहेंगे गुजरात, जहाँ वडोदरा में एक बड़ी उपलब्धि देश ने हासिल की है। हमारा पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर आज देश को समर्पित कर दिया गया, इसके 3 अहम हिस्से हैं वो भी पूरे हो गए। किस रूप में ये सहायक होगा माल परिवहन के लिए और कैसे यह जो लॉजिस्टिक्स का हमारा क्षेत्र है उसे कह लें योगदान देने वाला है।
0: देखिए मनोज जी, मैं इन कॉरिडोर्स को फ्रेट कॉरिडोर्स ही नहीं, मैं इनको ग्रोथ कॉरिडोर्स मानता हूँ जी। ये भारत की ग्रोथ कॉरिडोर्स हैं, जब भी कोई नए कॉरिडोर्स आते हैं तो भारत की जो ग्रोथ है और भी गतिमान हो जाती है। तो आने वाले टाइम में हम समझते हैं कि जो हमारा लक्ष्य है, जिस तरीके से हमारी जो रफ्तार है जैसे मैंने पहले बताया, तो और सुदृढ़ होगी और हमारी ग्रोथ जो है उसको आगे सस्टेनेबल बनाने में ऐसी हमें ग्रोथ कॉरिडोर्स और चाहिए जो हमें और ज़्यादा सपोर्ट करेंगे।
2: यहाँ पर एक और तथ्य हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है और खुद की उन्नत रेलगाड़ी और मेट्रो कोच तक बनाने लगा है। किस रूप में देख रहे हैं आप हब बनने की स्थिति?
0: जी बिल्कुल मनोज जी, देखिए अभी हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हो या फिर मोबाइल एक्सपोर्ट्स में हो, वी आर द लीडिंग इकोनॉमी अमंग द मेजर इकोनॉमीज। तो जो

0: हम नेट इम्पोर्टर होते थे, जो मोबाइल नाम का नामो निशान नहीं था, हम सब कुछ ही 100% हम इम्पोर्ट कर रहे थे, तो अभी हम उसके बहुत बड़े एक्सपोर्टर बन गए हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग की ही देन है कि हमारी जो ऊर्जा जो हमारी मेक इन इंडिया से हमें मिली, उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और PLI स्कीम सभी ने हमें इतना सपोर्ट किया, और हमारी जो विश्व में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं अभी वो विख्यात होने लगे हैं, जिसे हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स बताते हैं कि आवर प्रोडक्ट्स आर इन डिमांड सिग्निफिकेंटली एट द ग्लोबल लेवल। जो एक्सपोर्ट्स है वो 13-14% के ऊपर ग्रो करना, और मर्चेंडाइज 17-18% पे ग्रो करना एक बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम वैल्यू एडेड देखें, जो पहले चाइना कहीं आगे होता था, तो अभी चाइना भी उससे पीछे है। हम मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्रोथ है उसमें वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ से ऊपर है, 2 परसेंटेज पॉइंट ऊपर हम जो ग्लोबल लेवल का मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ से ऊपर है। तो स्वाभाविक है कि हम एक आने वाले टाइम की एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहे हैं।
1: आइए आगे
2: बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे।
1: फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन FADA की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त में देश में ऑटोमोबाइल की खुदरा बिक्री वार्षिक आधार पर 17.51% बढ़कर 24,23,201 इकाई पर पहुंच गई। CNG हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक अगस्त महीने में ही EV जैसे वैकल्पिक ईंधन वाले पैसेंजर वाहनों की बिक्री पहली बार पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से आगे निकल गई और बाजार में ट्रांजेक्शन हुए 41.95% रही।
2: यानी
1: पेट्रोल वाहनों की हिस्सेदारी
2: हम यहाँ जितनी देर से बैठे हैं
1: जो ग्राहकों की पसंद में बड़े बदलाव को दिखाता है। अगस्त में पैसेंजर वाहनों की बिक्री 16.14% बढ़े, जबकि कमर्शियल वाहनों की बिक्री में सालाना आधार पर 14.45% की बढ़ोतरी हुई। साथ ही उल्लेखनीय बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में ऑटोमोबाइल की बिक्री शहरी इलाकों की तुलना में बेहतर रही है। शहरी बिक्री में 15.17% की वृद्धि हुई, जबकि आलोच्य अवधि में ग्रामीण बिक्री वार्षिक आधार पर 19.79% बढ़ी है। यहाँ पर बहुत संक्षेप में आपको आपसे ये प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, क्या दिखा रहे हैं आंकड़े, खासतौर से जो ईवी की बिक्री बढ़ी है और ग्रामीण भारत में वाहनों की बिक्री अधिक बढ़ रही है।
0: देखिए मनोज जी, जो पैसेंजर व्हीकल्स है ये एक डिमांड इंडिकेटर है, जिसे हमें पता चलता है कि हमारी इकोनॉमी में डिमांड कितनी है। और सेकंड जो रूरल डिमांड, जैसे आपने बताया कि जो रूरल एरियाज में इनकी डिमांड और तेज गति से बढ़ी है, तो आने वाले टाइम में ये एक इंडिकेशन है कि हमारी जो डिमांड ट्रैजेक्टरी है वो बहुत स्ट्रांग है, जिसकी वजह से जो हमारा जो ग्रोथ है वो भी सुदृढ़ रहेगा। सो दिस इज इंडिकेटिंग अ पॉजिटिव ग्रोथ ट्रैजेक्टरी इन द कमिंग टाइम्स।
1: आइए लिए चलें श्रोताओं आपको वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई बाजार, जहां जापान का निक्केई 225 1.7% बिकवाली के दबाव में नीचे आ गया। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.6% की कमी आई। अन्य आर्थिक खबरों पर ध्यान दें तो इस वर्ष पिछली तिमाही की तुलना में अप्रैल जून तिमाही में जापान के GDP में 0.4% की वृद्धि हुई। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वार्षिक आधार पर देश की अर्थव्यवस्था में इस दौरान 1.4% की वृद्धि हुई। यहां पर अगले सप्ताह के जापान में केंद्रीय बैंक की बैठक होने वाली है, साथ ही जापान के GDP के जो आंकड़े आए हैं वो क्या दर्शा रहे, ये जो तेज वृद्धि, यानी इसे हम कहें या किन अर्थों में ले।
0: देखिए जापान ने भी ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए बहुत एफर्ट किए हैं, और उसी की वजह से ग्रोथ बड़ा स्ट्रांगली विजिबल हुई है, रिबाउंड हुई है
1: जी।
0: और जो मेजर्स लिए गए हैं, मैं समझता हूँ कि अभी आने वाले टाइम में जो ग्रोथ है जापान की बहुत सुदृढ़ रहेगी और ज़्यादा स्ट्रेंथन होगी
1: जी।
0: सो दिस इज अ ग्रेट सपोर्ट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो।
3: Canada's retaliatory tariffs on $28 billion worth of U.S. goods took effect today with duties of up to 50%. The tariffs target products including steel, furniture and clothing, while fresh fish and lobster were removed following pressure from Canada's seafood industry. The move comes after trade talks between Canada and the United States collapsed last week with no sign yet of negotiation resuming anytime soon. The global crude oil prices climbed to multi-week highs as Houthi attacks on Saudi energy facilities intensified concerns about disruptions in global oil supplies. Brent crude was trading 1.7% up at $98.67 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 2.4% up at $93.90 per barrel when reports

0: class came in. What do you expect, Dr. Sharma, now that the oil is now towards $98?
1: Yes, considering the very tense situation in the Strait of Hormuz, so I believe the prices will remain elevated. Though the volatility will come in the coming times, the prices are in the rising mode at this juncture.
2: यानी किस रूप में हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा बहुत संक्षेप में
1: देखिए जहां तक क्रूड का सवाल है अगर वो $100 या इसके नीचे रहता है तो हमारी ग्रोथ के ऊपर कोई असर आने की संभावना नहीं है हमारी ग्रोथ इंटैक्ट रहेगी हाँ अगर इसमें बहुत तेज एस्केलेशन आती है तो हमारी ग्रोथ इम्पैक्ट हो सकती
2: है आइए श्रोताओं आपको लिए चलें सर्राफा बाजार भारतीय सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.2% बढ़त के साथ 1,53,077 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा था जबकि चांदी भी थोड़ी सी तेज थी इसके मूल्यों में 0.9% की बढ़ोतरी थी और इसके भाव 2,33,826 रुपए प्रति किलो के स्तर पर कारोबार कर रहे थे और बस अब यहीं पर श्रोताओं की ओर से हम आपको डॉक्टर शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद देना
1: जी शुक्रिया मनोज जी
0: थैंक यू फॉर बीइंग विद अस थैंक यू बिफोर वी क्लोज द हेडलाइंस वंस अगेन बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडेक्स डिक्लाइन सेंसेक्स फॉल्स ओवर 550 पॉइंट्स निफ्टी सेटल्स एट 23,635 Prime Minister Narendra Modi lays foundation stone, inaugurates and dedicates to the nation development projects worth 35,000 crore rupees in Gujarat, says India has emerged as a global manufacturing hub, producing its own advanced train and metro coaches. And global crude oil prices rise. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें
4: You were listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 p.m.

ब्रह्मचारी फिल्म के इस गीत को आप जानते ही होंगे कि ये था मोहम्मद रफी की आवाज में। इसके साथ ही इस कार्यक्रम को भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसका नाम है गीत मेरे मनमीत। मैं हूं आपके साथ अभिनीत शुक्ला, नमस्कार। और अब अगला गीत लता मंगेशकर का गाया हुआ फिल्म पतिता से, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

मेरे जीवन साथी फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में इस गीत के साथ ही हमारे चलने का भी समय अब हो चुका है। तो आज के दिन, आज की तारीख, आज के गीत मेरे मनमीत के साथ ही मुझे यानी कि अवनीत शुक्ला को दीजिए आज्ञा। आगे सुनिए समाचार और हमेशा सुनते रहिए FM 100.1 MHz पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदलें।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने UPI के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है।

0: श्री मोदी ने यूपीआई को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिम क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई है और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को कटक में सरला साहित्य संसद की ओर से कलिक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार में देवी सरस्वती की चांदी की मूर्ति और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। इस मौके पर न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने कहा कि इंसान जिंदगी में भले ही कितनी भी दूर क्यों न चला जाए, लेकिन उसकी जन्मभूमि की मिट्टी ही उसकी यादों, पहचान और सांस्कृतिक विरासत को आकार देती है। एशियाई खेल 2026 के लिए भारतीय दल को नई दिल्ली से जापान के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल सचिव हरिरंजन राव और दल के प्रमुख सहदेव यादव के साथ मिलकर खिलाड़ियों और सहयोगी सदस्यों की मौजूदगी में भारतीय दल की आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया। खेल मंत्री ने कहा कि 503 सदस्यों वाले दल में 300 से अधिक खिलाड़ी एशियाई खेलों में पहली बार भाग ले रहे हैं। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह और विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं महिला रिकर्व टीम में भारत भावना और पूजा ने रजत पदक जीता। उधर स्वाति चौधरी और आदिल मोहम्मद नजीर अंसारी ने मिक्स टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। स्वाति ने व्यक्तिगत W1 स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi said that India has taken fintech journey to new heights with innovation and inclusion at its core. He said technologies like agentic AI, tokenization and quantum are opening new possibilities in the financial sector. Mr. Modi said this while addressing the 7th edition of the Global Fintech Fest in Mumbai. The Prime Minister hailed UPI as the champion of fintech, noting that more than 2,400 crore UPI transactions were recorded in last month. He said, Indian UPI is now operational in 11 countries. Mr. Modi stressed that global collaboration in fintech systems should be a new goal to reduce transaction costs in remittances. The Prime Minister urged stakeholders at the GFF 2026 to use fintech as a tool for financial inclusion.

दोस्तों आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं अंजू, आपके साथ लेकर आई हूं कार्यक्रम निशिकंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। चांदनी रात के सन्नाटे में बस एक ही नाम गूंजता है, तुम्हें हम पुकारते हैं इन रातों में जब जब ये सारा जहां सोता है। तुम्हारी यादों से रोशन हो जाती है ये तन्हाई मेरी, हर एक आहट पे ये दिल सिर्फ तुम्हें ही ढूंढता है।

0: वो देखो फिजा में रंग घुला है और ये हवाएं महकने लगी हैं। तुम्हें पता है तुम्हें ये बहारें पुकारती हैं कि अब तो आ जाओ। तुम्हारे बिना ये गुलशन भी अधूरा सा लगता है। फूलों की कलियां भी अब तुम्हारे ही नाम से खिलने लगी है।
1: शील? शील? कहाँ खोई हुई हो?
2: मिलन की इन खूबसूरत घड़ियों में इंतजार की वो कभी ना भूलने वाली घड़ियां याद आ गई, जब मैं तुम्हारे लिए तड़पा करती थी, तुम्हारा इंतजार किया करती थी।
1: मैं भी तो तड़पा करता था, मैं भी तो इंतजार किया करता था।
2: उस इंतजार में भी एक अजीब मजा था। आओ रवि, थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से दूर रहकर इंतजार की उन खूबसूरत घड़ियों में एक बार फिर से जी कर देखें, जिन्होंने हमें हमेशा हमेशा के लिए एक कर दिया। तुम वहां चले जाओ रवि, दूर उस पार, और मैं वहां

देख लो, जमाने की बंदिशें और ये दूरियां हमारे लिए कुछ भी नहीं है। तुम एक बार पुकार कर तो देखो, हम दौड़े चले आएंगे। महफिल हो या तन्हाई, हर मोड़ पर तुम्हारा साथ निभाएंगे। तुम आवाज तो दो, कैसी भी राहें हों, हम वहीं से लौट आएंगे।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दोस्तों अब समय हुआ है 12:26:40। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंजू के साथ सुन रहे हैं आप कार्यक्रम निशिगंधा।

ना होश है अपना और ना इस जमाने की खबर है, ना होश है अपना और ना इस जमाने की खबर है, तुम्हारी चाहत में ही ऐसी बेखुदी सी छाई है।

जिधर भी देखूं बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है और मेरी आंखों में बस तुम्हारी ही सूरत समाई है।

चांदनी भी आज अपनी पूरी रंगत पर आई है। हर तरफ एक मदहोश कर देने वाली तन्हाई है। इस रात में आके मिल जा, क्योंकि मिलने की जो घड़ी आई है।

देखो तो हर एक नजारा तुम्हारी ही बात करता है, और ये दिल हर लम्हा सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार करता है। उड़ती हुई धुंध में छिपा है एक हसीन सा पैगाम कि ये शाम का हल्का धुआं कहता है कि कोई तुम्हें बेइंतहा मोहब्बत करता है।

न जाने कौन से मोड़ पर ले आई है ये मोहब्बत हमें, न जाने कौन से मोड़ पर ले आई है ये मोहब्बत हमें, न महफिल में दिल लगता है और न तन्हाई भाती है, आंखें बंद करूं तो तेरा चेहरा नजर आता है। सच तो ये है कि हर एक सांस में मुझे तेरी है।

दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल, क्योंकि मिलेंगे आपसे 1:10 पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने UPI के 2400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिम क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संकट के समय भारत

0: हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्रीलंका की अपनी पहली 3 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंचे राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों वाले एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे रक्षा मंत्री का श्रीलंका के रक्षा उपमंत्री अरुणा जयसेकरा ने बंदर नायक के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अफगानी की। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीश और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 2 अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए। कानून मंत्रालय के अनुसार 3 न्यायिक अधिकारियों को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 1 वकील और 1 न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। महिला कल्याण और बाल विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव लीना जौहरी ने इस संबंध में सरकारी आदेश जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई है और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रहेगा। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और ओडिशा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पुंडुचेरी, कराईकल में भी बारिश की संभावना है। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के 3रे चरण में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं महिला रिकर्व टीम में भावना और पूजा ने रजत पदक जीता। उधर स्वाति चौधरी और आदिल मोहम्मद नजीर अंसारी ने मिक्स्ड टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। स्वाति ने व्यक्तिगत W1 स्पर्धा में कांस्य पदक भी जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has said that India has taken fintech journey to new heights with innovation and inclusion at its core. He said technologies like agentic AI, tokenization and quantum are opening new possibilities in the financial sector. Mr. Modi said this while addressing the 7th edition of the Global Fintech Fest GFF 2026 in Mumbai. The Prime Minister hailed UPI as a champion of fintech, noting that more than 2,400 crore UPI transactions were recorded in last month. He said, Indian UPI is now operational in 11 countries. Mr. Modi stressed that global collaboration in fintech systems should be a new goal to reduce transaction costs in remittances. The Prime Minister urged stakeholders at the GFF 2026 to use fintech as a tool for financial inclusion. Lauding the country's remarkable GDP growth in the last quarter, Mr. Modi said, "World has gained reassurance from India's 7.8% growth, despite challenging global conflicts, uncertainties and stress on global supply chains of energy and commodities."
2: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदलें।

दोस्तों समय हुआ है 1:11 और 13 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम गीत सुहाने का। मैं अंजू एक बार फिर से करती हूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। शुरुआत बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, और शुरुआत में कुछ हमेशा की तरह अल्फाज भी।

हवाओं के रुख भी आज हमारे हक में बदलने लगे हैं। जब से हम और तुम एक ही राह पर साथ चलने लगे हैं, अब मंजिल मिले या ना मिले इस बात का मलाल नहीं। ले चलो जहां तक ये राहें, ये घटाएं, ये हवाएं, क्योंकि अब तो हम तुम्हारे संग संभलने लगे हैं।

ना कोई वजह है इसकी और ना कोई बहाना है, बस ये दिल तुम्हारी सादगी का दीवाना है। तुम खुद से पूछो कि तुम इतने हसीन क्यों हो, वरना हमें क्या पता कि क्यों हमें तुमसे मोहब्बत है।

इन हसीन वादियों को गवाह बनाकर तुम्हें अपना बना ले, इन हसीन वादियों को गवाह बनाकर तुम्हें अपना बना ले। हम रहेंगे इन वादियों में सदा, और चाहे ये दुनिया हमें भुला दे।

बड़ी मुश्किल से मिला है उनकी महफिल में बैठने का ये हसीन लम्हा, बड़ी मुश्किल से मिला है उनकी महफिल में बैठने का ये हसीन लम्हा। जरा ठहर जाए चांदनी ए रात, यहीं रुक जा आज कि अभी दिल की बात बहुत अधूरी है।

मोहब्बत के कायदों से अभी तुम वाकिफ ही कहाँ हो, मोहब्बत के कायदों से अभी तुम वाकिफ ही कहाँ हो, अभी तो तुम कमज़ोर हो। इस दिल की बेताबी को यूं खेल ना समझो।

फिजाओं में एक मीठी सी खुशबू सी बिखर जाती है पल भर में, फिजाओं में एक मीठी सी खुशबू सी बिखर जाती है पल भर में, जब भी मेरी नजरों से आकर मिलती हैं ये तुम्हारे प्यार में महकती आंखें।

खुशी के हर लम्हे में और दर्द के हर मोड़ पर मैं साए की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम आवाज तो देकर देखो दिल से, साथ होगा मेरा हर पल, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी।

दोस्तों कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर फिर से आपसे मिलूंगी, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने UPI के 2,400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संकट के समय भारत हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्रीलंका की अपनी पहली 3 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंचे राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान ये बात की। रक्षा और विदेश मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों वाले एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे रक्षा मंत्री की श्रीलंका के रक्षा उपमंत्री अरुणा जयसे ने बंदर नायक के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अगवानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई है और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में 3 न्यायाधीश और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 2 अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए। कानून मंत्रालय के अनुसार 3 न्यायिक अधिकारियों को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 1 वकील और 1 न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के 3रे चरण में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं महिला रिकर्व टीम में भावना और पूजा ने रजत पदक जीता। उधर स्वाति चौधरी और आदिल मोहम्मद नजीर अंसारी ने मिक्स टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और ओडिशा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी बारिश की संभावना है। विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की भी संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi has said that India has taken fintech journey to new heights with innovation and inclusion at its core. He said technologies like agentic AI, tokenization and quantum are opening new possibilities in the financial sector. Mr. Modi said this while addressing the 7th edition of the Global Fintech Fest GFF 2026 in Mumbai. The Prime Minister hailed UPI as a champion of fintech, noting that more than 2,400 crore UPI transactions were recorded in the last month. He said Indian UPI is now operational in 11 countries. Mr. Modi stressed that global collaboration in fintech systems should be new goal to reduce transaction costs in remittances. The Prime Minister urged stakeholders at the GFF 2026 to use fintech as a tool for financial inclusion. Lauding the country's remarkable GDP growth in the last quarter, Mr. Modi said, "World has gained reassurance from India's 7.8% growth despite challenging global conflicts, uncertainties and stress on global supply chains of energy and commodities."
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरिन रेटिंग्स भी है।
2: The 4-day Global Fintech Fest 2026 is being held in Mumbai from the 8th to 11th of September. The revamped Nehru Planetarium, a premier public outreach facility under the Prime Minister's Museum and Library, that is PMML, was inaugurated in New Delhi yesterday. The upgraded facility aims to strengthen science communication, promote astronomy awareness, and enhance public engagement.

दोस्तों समय हुआ है 2:11 और 2 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं एक बार फिर से अंजू करती हूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और गाने लाई हूँ बहुत ही मधुर। तो चलिए शुरुआत करती हूँ जो मेरा बहुत पसंद गीत है और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत पसंद आएगा।

देखो, अब इस पर मेरा कोई हक नहीं और ना ही कोई जोर है। जमाने भर की बातें छोड़ो, मैंने तो ये दिल तुम्हें दे ही दिया है।

जिधर से तुम आई हो वहाँ का हाल कैसा है? क्या आज भी उनके दिल में मेरे लिए मलाल वैसा है? मेरी धड़कनें बेकरार हैं उनका जिक्र सुनने को। हवाओं तुम्हें कुछ बता दो कि मेरा हमसफर अब कैसा है।

न इससे पहले किसी को चाहा, न इसके बाद किसी की तमन्ना रही। न इससे पहले किसी को चाहा, न इसके बाद किसी की तमन्ना रही। तुम मानो या ना मानो, तुम ही मेरी पहली मोहब्बत और आखिरी ख्वाहिश रही।

हमारी खामोशियां भी अब दास्तान इश्क बयां करने लगी हैं, हमारी खामोशियां भी अब दास्तान इश्क बयां करने लगी हैं। इस कदर ना चाहो मुझे महफिल में, देखो कहीं ये अफसाना ना बन जाए।

महफिल में सब मौजूद हैं, पर दोनों की नजरें सिर्फ एक दूसरे पर टिकी हैं। वो देखो कैसे चुपके से देख रहे हैं एक दूसरे को, वो देखो कैसे चुपके से देख रहे हैं एक दूसरे को, जैसे जैसे जमाने की आंखें तो सोई हुई हैं।

दूसरे कार्यक्रम का आखिरी गीत है, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के उस पार यानी 3:10 पर आपके साथ रहेंगे सुरभि, कार्यक्रम हमराही लेकर। मुझे अनुमति दीजिए, जल्द मिलूंगी आपसे। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदलें।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने UPI के 2400 करोड़ से अधिक लेनदेन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री ने बताया कि 3 दशक के लंबे इंतजार के बाद जापान ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को BBB+ से बढ़ाकर A- कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिम क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई है और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी योग जारी रहेगा। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि

प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संकट के समय भारत हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा, दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्रीलंका की पहली 3 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंचे राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। श्री सिंह के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन आज से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान एडमिरल स्वामीनाथन ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। वे ऑस्ट्रेलिया की नौसेना प्रमुख संचालन और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों का भी दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। महिला कल्याण और बाल विकास विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव लीना जौहरी ने इस संबंध में सरकारी आदेश जारी किया। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, पुदुचेरी तथा कराईकल में भी बारिश की संभावना है। इस बीच हिमाचल प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश होने का अनुमान है। विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, केरलम और माही में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की भी संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं सुरभि, आपके साथ प्रोग्राम है हम राही। कभी कभी हमारे ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आ जाता है जिसके साथ रहते हुए हमें किसी खास पल का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। उसकी मुस्कुराहट और उसका साथ ही दिन को बेहतर बना देता है। जी हाँ, क्योंकि प्यार में बड़े बड़े वादे नहीं किए जाते और प्यार में सिर्फ प्यार होता है। चलिए आगाज़ करते हैं हम राही का इस गीत के साथ।

कुछ तस्वीरें सिर्फ तस्वीरें नहीं होती, उन्हें देखते ही किसी की याद हो आती है, कोई आवाज़ सुनाई देने लगती है और दिल अचानक उसी इंसान के पास पहुंच जाता है जो दिल के करीब होता है। तस्वीर तेरी दिल में आज भी वैसी ही है, वक्त बदला, मौसम बदले, मुलाकातों के बीच फासले भी आए, लेकिन उस तस्वीर से जुड़ा एहसास नहीं बदला।

हमराही प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। जी हाँ, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी शाम फिर से सामने आकर ठहर गई हो। हवा में हल्की सी ठंडक है, आसपास खामोशी है और दिल में किसी अपने की याद। ऐसे में संगीत सिर्फ संगीत नहीं रहता, वो एक एहसास बन जाता है। अगला गीत कुछ ऐसा ही है जिसमें मोहब्बत की खूबसूरती है, जिसमें कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई शोर नहीं है, बस किसी अपने के किसी खास के लिए दिल में एक उठती मीठी सी कसक है। किसी को चाहना, यही तो शायद चाहत है कि उसका नाम आते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और उसकी याद आते ही मन थोड़ा सा भर जाता है, ठहर जाता है उसकी आवाज़ सुनने के लिए। तो चलिए, अगर आप भी किसी को याद करते हैं तो उसके लिए ये गीत, उसके नाम ये गीत।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

हमराही प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ, और आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। वक्त हुआ है 3:46 और 24 सेकेंड। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म है काजल, महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाज़ में।

कुछ गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं, और उन्हीं गीतों में से कुछ गीत हम आपके लिए हमेशा चुनकर लाते हैं। और अगला गीत ऐसा ही है जिसमें भरी है प्यार की मिठास और किसी अपने के साथ यूं ही चलते रहने की खूबसूरत ख्वाहिश।

और इसी गीत के साथ हमराही का ये सफ़र यहीं तक। हमारी आपकी मुलाकात होगी 4:10 पर अरुणिमा में, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेज़ी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अंजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाएं खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने UPI के 2,400 करोड़ से अधिक लेन देन हुए। भारतीय UPI अब 11 देशों में संचालित हो रहा है। श्री मोदी ने UPI को फिनटेक क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को होने वाली ब्रिक्स बैठक के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत ने तुरंत मदद पहुंचाई है और राहत बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी सहयोग जारी रखेगा। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडर स्तर की बैठक अरुणाचल प्रदेश के वाचा और चीन के दमाई में हुई है। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संकट के समय भारत हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्रीलंका की अपनी पहली 3 दिवसीय यात्रा पर कोलंबो पहुंचे राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। श्री सिंह के साथ रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी गया है। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन आज से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान एडमिरल स्वामीनाथन ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। वे ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के प्रमुख संचालन और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों का भी दौरा करेंगे। अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम किए। तोमन कुमार और श्याम सुंदर स्वामी ने कंपाउंड टीम स्पर्धा में और हरविंदर सिंह तथा विजय सुंडी की रिकर्व जोड़ी ने पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं महिला रिकर्व टीम में भावना और पूजा ने रजत पदक जीता। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और ओडिशा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi has said that India has taken fintech journey to new heights with innovation and inclusion at its core. He said, technologies like agentic AI, tokenization and quantum are opening new possibilities in the financial sector. Mr. Modi said this while addressing the 7th edition of the Global Fintech Fest GFF 2026 in Mumbai yesterday. The Prime Minister hailed UPI as a champion of fintech, noting that more than 2,400 crore UPI transactions were recorded in last month. He said Indian UPI is now operational in 11 countries. Mr. Modi stressed that global collaboration in fintech systems should be new goal to reduce transaction costs in remittances. The Prime Minister urged stakeholders at the GFF 2026 to use fintech as a tool for financial inclusion. Lauding the country's remarkable GDP growth in the last quarter, Mr. Modi said, the world has gained reassurance from India's 7.8% growth despite challenging global conflicts, uncertainties and stress on global supply chains of energy and commodities.
1: दुनिया कॉन्फ्लिक्ट्स और अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रही है और इसमें भी जब भारत 7.8% से ग्रो करता है तो दुनिया को एक नया भरोसा मिलता है। भारत पर इस बढ़ते भरोसे का एक और उदाहरण हमारी सॉवरिन रेटिंग्स भी है।
2: The 4-day Global Fintech Fest 2026 is being held in Mumbai till the 11th of September. The revamped Nehru Planetarium, a premier public outreach facility under the Prime Minister's Museum and Library, PMML, was inaugurated in New Delhi yesterday. The upgraded facility aims to strengthen science communication, promote astronomy awareness and enhance public engagement. Former Chief Justice of India, Justice Deepak Mishra, was conferred with the Kalinga Ratna Award by Sarla Sahitya Sansad in Cuttack yesterday. The award comprises a silver idol of Goddess Saraswati and a citation. Speaking on the occasion, Justice Mishra said, a person may travel far in life, but the soil of birth continues to shape memory, identity and cultural inheritance. Defence Minister Rajnath Singh has said that India will always stand firmly with Sri Lanka in times of crisis, underlining that the relationship between the two countries is based on shared history, culture and faith. Mr. Singh, who arrived in Colombo on his maiden 3-day visit to hold talks with Sri Lanka's top leadership, made the remarks during an interaction with the Indian diaspora yesterday. The defense minister said that India will always stand firmly with Sri Lanka whenever the island nation faces a crisis. He said, both the nations share close cultural and civilizational ties, which have provided a strong foundation for the growth of the bilateral relationship. 3 judges were appointed to the Chhattisgarh High Court and 2 additional judges to the Guwahati High Court yesterday. According to the Union Law Ministry,

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़। प्रोग्राम है अरुणिमा और मैं हूँ सुरभि। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद और ढेर सारी खूबसूरत बातों को लेकर। जी हाँ, सुबह की ताजगी और एक अच्छे संगीत के साथ जब दिन की शुरुआत होती है तो वो एहसास ही कुछ और होता है। तो चलिए सबसे पहले सुनते हैं सरगम फिल्म का ये गीत।

0: अरुणिमा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। दोस्तों, जिंदगी में सुख और दुख दो पहलू की तरह चलते हैं। सुख हो, सुकून हो, चेहरे पर मुस्कान हो, दिल में अपनों के लिए प्यार हो, और इन्हीं खूबसूरत एहसासों के साथ जब दिन की सुबह शुरू होती है तो एक अलग ही जज्बा होता है। हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है कुछ अच्छा सोचने का, कुछ अच्छा करने का, और ज़िंदगी को और थोड़ा सा खूबसूरती से जीने और जानने का। तो चलिए अगला गीत सुनवाते हैं आपको ईश्वर फिल्म से।
1: तार सप्तक, मंदिर सप्तक,

अरुणिमा आप सुन रहे हैं सुरभि के साथ। सुबह की शुरुआत अगर सच्चाई, अच्छाई और खूबसूरती के एहसास के साथ हो तो पूरा दिन कुछ अलग ही महसूस होता है। जिंदगी में जो सच्चा है, जो शुभ है, जो सुंदर है, वही हमारे दिल को सुकून देता है। और इसी खूबसूरत भावना के साथ चलिए सुनते हैं सत्यम शिवम सुंदरम।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। प्रोग्राम अरुणिमा सुन रहे हैं सुरभि के साथ। जिंदगी का सफर हमेशा आसान नहीं होता, रास्ते में कई दफा मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन हर मोड़ पर हर मुश्किल हमें कुछ नया सिखाती है और आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। तो चलिए इसी एहसास के साथ सुनते हैं ये गीत।

के साथ अरुणिमा कार्यक्रम यहीं तक। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 5:10 पर भोर सुहानी में। और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने अपनी फिनटेक यात्रा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। इसमें नवाचार और वित्तीय समावेशन को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियां वित्तीय क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही हैं।
1: 21वीं सदी का दूसरा क्वार्टर हमारे लिए और भी नई संभावनाओं लेकर आया है। एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, ऐसी टेक्नोलॉजीज फाइनेंशियल सेक्टर में नई संभावनाओं के द्वार खोल रही है। अब हमारे सामने चुनौती है इन संभावनाओं को वास्तविक इम्पैक्ट में कैसे बदले।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। श्री मोदी ने पश्चिमी क्षेत्र के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे के 3 प्रमुख खंडों को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके साथ ही माल ढुलाई गलियारे के संचालन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि ये गलियारा विकसित भारत की जीवन रेखा है।
1: ये 21वीं सदी के भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक कार्य संपन्न हुआ है। ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर इस बात का साक्षी है कि बीते 12 साल में देश की काम करने की संस्कृति कैसे बदली है।
0: प्रधानमंत्री मोदी नई दिल्ली में 12 और 13 सितंबर को ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि इन बैठकों के दौरान रूस यूक्रेन संघर्ष सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि भारत युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी तरह की मदद करने के लिए तैयार है। श्री जायसवाल ने कहा कि नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद भारत ने तुरंत सहायता पहुंचाई है और भारत राहत और बचाव तथा पुनर्निर्माण के प्रयासों में आगे भी नेपाल का सहयोग जारी रखेगा। श्री जायसवाल ने बताया कि भारत और चीन सीमा संबंधी मुद्दे पर लगातार संवाद कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिए भारत के शांति प्रयासों का स्वागत किया है। रूस की सरकार के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि इस मुद्दे पर रूस का रुख भारत जैसा ही है। रूस यूक्रेन संघर्ष का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से चाहता है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। श्री पेस्कोव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि संकट के समय भारत हमेशा श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध साझा इतिहास, संस्कृति और आस्था पर आधारित हैं। श्रीलंका की अपनी पहली 3 दिन की यात्रा पर कोलंबो पहुंचे श्री राजनाथ सिंह ने भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन आज से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। श्री स्वामीनाथन ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। वे ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के प्रमुख संचालन और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों का भी दौरा करेंगे। उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कुल 12,000 रुपये प्रतिमाह और सहायिकाओं को 6,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। बढ़ा हुआ मानदेय सितंबर से लागू होगा और इसका भुगतान अक्टूबर में किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, नागालैंड और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश तथा पुदुचेरी और कराईकाल में भी बारिश की संभावना है। इसके अलावा अहमदाबाद में विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला के तीसरे चरण में भारत ने 2 स्वर्ण सहित 5 पदक अपने नाम कर लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज कॉल्ड फॉर एक्सपेंडिंग द ग्लोबल रीच ऑफ इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस दैट इज यूपीआई। He urged the fintech sector to connect the country's homegrown retail payment network UPI with payment systems in more countries and help the Indian diaspora reduce remittance costs. Mr. Modi stated this while addressing the 7th edition of the Global Fintech Fest in Mumbai yesterday. The Prime Minister hailed UPI as a champion of fintech, noting that more than 2,400 crore UPI transactions were recorded last month. Mr. Modi stressed that global collaboration in fintech systems should be new goal to reduce transaction costs in remittances. Prime Minister Narendra Modi said that India has taken fintech journey to new heights with innovation and inclusion at its core. He said technologies like agentic AI, tokenization and quantum are opening new possibilities in the financial sector. The 4-day Global Fintech Fest 2026 is being held in Mumbai from the 8th to 11th of September. The revamped Nehru Planetarium, a premier public outreach facility under the Prime Minister's Museum and Library PMML, was inaugurated in New Delhi yesterday. The upgraded facility aims to strengthen science communication, promote astronomy awareness, and enhance public engagement. The newly added facilities include a dedicated reading room library, upgraded exhibition and projection systems, and improved visitor amenities, providing a more accessible and enriching educational experience. The Union Ministry of Women and Child Development will launch the 9th National Nutrition Month 2026 in Varanasi today. Union Women and Child Development Minister Annapurna Devi will launch the campaign at the Rudraksh Convention Center in the presence of Chief Minister Yogi Adityanath. The campaign will be conducted throughout the month of September in Aganwadi centers, schools, panchayats and homes across the country with community participation. This year, the theme of National Nutrition Month is Our Aganwadis, Our Responsibility. Uttar Pradesh government has enhanced the honorarium for Aganwadi workers and helpers. State government has issued an order in this regard. As per the order, an additional increase of 4,000 rupees per month has been made in the state share of Aganwadi workers and 2,000 rupees per month in the state share of helpers. Following this revision, Aganwadi workers will receive a total honorarium of 12,000 rupees per month, while helpers will receive 6,000 rupees per month. The enhanced honorarium will be effective from this month and will be paid next month, that is October 2026. Defence Minister Rajnath Singh has said that India will always stand firmly with Sri Lanka in times of crisis, underlining that the relationship between the two countries is based on shared history, culture and faith. Mr. Singh arrived in Colombo yesterday on his maiden 3-day visit to hold talks with Sri Lanka's top leadership. He made the remarks during an interaction with the Indian diaspora. He said both the nations share close cultural and civilizational ties, which have provided a strong foundation for the growth of the bilateral relationship. Prime Minister Narendra Modi will hold bilateral talks with numerous leaders during the BRICS summit, which will be held on the 12th and 13th of this month in New Delhi. External Affairs Ministry spokesperson Ardhir Jaiswal said this during a media briefing in New Delhi. Mr. Jaiswal said that the Russia and Ukraine conflict will be one of the many issues that will come up during the bilateral discussions. Speaking on devastating flash flood in Nepal, Mr. Jaiswal said, India has responded promptly and as a close friend and neighbor will continue to support Nepal's relief, rescue and reconstruction efforts. Replying to another query, Mr. Jaiswal said that India-China ties are gradually

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। प्रोग्राम है भोर सुहानी, मैं हूँ सुरभि आपके साथ। भोर की ये सुहानी बेला एक नई उम्मीद, नई रोशनी और एक खूबसूरत सफर और उसका संदेश लेकर आती है। तो इस प्यारी सुबह को संगीत के साथ और भी यादगार बनाते हैं और चलिए शुरुआत करते हैं भोर सुहानी प्रोग्राम के इस गीत के साथ।

जिंदगी एक सफर है और हम और आप हम सभी इस जिंदगी में मुसाफिर हैं। कुछ लोग रास्ते में मिलते हैं, कुछ याद बनकर रह जाते हैं और ये सफर यूं ही आगे बढ़ता रहता है।

सुरभि के साथ आप सुन रहे हैं प्रोग्राम भोर सुहानी। कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि हम अकेले हैं और कोई भी हमारा साथ देने वाला नहीं है, लेकिन ऐसे ही वक्त में एक भरोसे की आवाज़ बहुत मायने रखती है जो ये कहे कि हिम्मत रखो, रास्ता भी बाकी है।